FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। आज मंगलवार है, शक संवत 1948 की वैशाख मास की 15वीं तिथि, तदनुसार 5 मई सन 2026। इस समय प्रातः के 5:57 होने वाले हैं। हमारा आज का प्रसारण अब प्रारंभ होता है।

0: ये आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण है। प्रातः के 6 बजने वाले हैं। कुछ ही पलों में समाचार हम आकाशवाणी दिल्ली से रिले करेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुनीश शर्मा। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में जबरदस्त जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने अभी तक विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दलों को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से 15,000 से ज्यादा मतों से हार गई हैं। नंदीग्राम सीट से भी सुवेंदु अधिकारी ने जीत दर्ज की है। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट को 2 सीटें मिली हैं। जालुकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में विजय के नेतृत्व में तमिलगा वेत्री कड़गम टीवीके सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर इतिहास रचने जा रही है। टीवीके ने 234 में से 108 सीटें जीती। टीवीके के अध्यक्ष विजय ने अपनी दोनों सीटों पेरम्बूर और तिरुचि में जीत दर्ज की है। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के नेतृत्व में डीएमके ने 59 सीटों पर जीत हासिल की है। एआईएडीएमके 47 सीटें जीत चुकी है। कांग्रेस ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट पर विजय हासिल की है। कोलाथूर सीट से मुख्यमंत्री और डीएमके उम्मीदवार एमके स्टालिन को तमिलगा वेत्री कड़गम पार्टी के वीएस बाबू ने हराया। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हुए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है जो सत्ता में उसकी निर्णायक वापसी को बताता है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग आईयूएमएल ने 22 सीटें जीती।

0: सीट ली हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआईएम ने 26 सीटें जीती हैं, सहयोगी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी सीपीआई ने 8 सीटें जीती हैं, जबकि केरल कांग्रेस को मिली हैं 7 सीटें। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगासामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। सभी सीटों के परिणाम आ चुके हैं। एन रंगासामी की एआईएनआरसी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं, जबकि भाजपा ने 4 सीटें जीती हैं। 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये दिन कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया है। वहीं आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला शाम 7:30 बजे खेला जाएगा। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः की 6:05 हुए हैं। प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना।

हर सुबह की तरह आराधना की शुरुआत देश वंदना के साथ हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतिज्ञ हो चलो प्रशस्ति पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। विश्व में मानवता सत्य और अहिंसा का संदेश देने वाले भारत माटी को करते हैं प्रणाम। सुनते हैं ये देश वंदना समूह स्वर में।

ये देश वंदना समूह स्वर में अभी आपने सुनी और आइए अब आरंभ करते हैं ईश वंदना। सबसे पहले लेते हैं कल्याणकारी शिव का नाम इस भजन के स्वाद, जिसे स्वर दिया है अनुराग दीक्षित और साथियों ने।

भोले भंडारी को समर्पित ये भक्ति रचना आपने सुनी अनुराग दीक्षित और साथियों के स्वर में। और आइए अब लेते हैं जगतधात्री देवी माँ का नाम, जो भक्तों पर कल्याण भी करती हैं, असुरों का संहार भी करती हैं और पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण भी करती हैं। ये स्तुति आइए सुनते हैं विधि शर्मा के स्वर में।

अभी आप सुन रहे थे देवी स्तुति, स्वर था विधि शर्मा का। आकाशवाणी बिलासपुर से इस समय आप सुन रहे हैं आराधना, भक्ति रस से परिपूर्ण आराधना में। आइए करते हैं हरि गुण का गान इस भजन के साथ।

पुष्पेंद्र पांडे और साथियों की स्वर में ये भजन आप सुन रहे थे। वाणी हरे गुण गाए। सच में जब पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ हम अपने आराध्य को याद करते हैं, उनसे अपनी समस्याएं बताते हैं और किसी परेशानी का हल चाहते हैं, तो सच्चे हृदय से प्रार्थना की जाने से वो हमेशा सुनते हैं और हमारी मदद भी करते हैं। बस मन में पूरा विश्वास होना चाहिए। तो आइए ऐसा ही भजन सुनते हैं मान्या अरोड़ा के स्वर में।

ईश्वर पर आस्था और सच्चे मन से की गई प्रार्थना वो अवश्य सुनते हैं। बस विश्वास दृढ़ होना चाहिए, संकल्प होना चाहिए कि हम कठिन परिस्थिति से हर हालत में बाहर निकल सकते हैं। और मान्या अरोड़ा के गाए इस भजन के साथ ही आज की आराधना हम यहीं संपन्न करते हैं।

0: देशवंदना और भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना अभी आप सुन रहे थे। FM बैंड 103.2 MHz पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:30 हुए हैं। समय हो चला है खेती की बात सुनने का। केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा कम कैसे करें, इस विषय पर सामूहिक सुझाव आप सुनेंगे। जानकारी का वाचन किया है अभिनव गौरहा ने।
1: किसान भाई हो, राम राम, जय जोहार। आजकल के खेती किसानी में देखी तो आनी बानी के जिनिस के खर्चा में हमन अपन खेती के लागत ला बढ़ा लेते। बहुत कन ऐसा व्यवस्था है जोन में हमन ला पैसा लगाना पड़ते, चाहे उर्वरक के बात करी, चाहे महंगा महंगा रसायन के बात करी। आज यही बात करबो के खेती किसानी में रासायनिक उर्वरक के खर्चा ला कम कैसे करी। का होते अधिक उत्पादन के चाह में कई पैत किसान जरूरत से ज्यादा उर्वरक अपन खेती में डाल देते, जेखर से लागत बढ़ते और माटी के सेहत घलो खराब होते। एकरे बर जरूरी है वैज्ञानिक और संतुलित तरीका ला अपना के उर्वरक के खर्चा ला कम करे जाए। आज ऐसा है कुछ जानकारी अपन ला देबो जेखर से हम अपन उर्वरक के खर्चा ला कम कर सकत हन। एमा सबले पहली याद है मृदा परीक्षण मतलब सॉइल टेस्टिंग। हर खेत के माटी अलग होते और ओमा पोषक तत्व के मात्रा घलो अलग अलग होते। बिना परीक्षण के खाद ला डालना, उर्वरक ला डालना, आंखी बंद करके दवाई पीना जैसे होते। अगर किसान माटी परीक्षण करा के ये जान ले के खेत में नाइट्रोजन, स्फुर, पोटाश के कतका कमी है तो केवल उतके मात्रा उर्वरक डाले जतका जरूरत है। भाई जतका भूख लगी तत्ते तो खाबो। दूसर जैविक खाद के ज्यादा उपयोग, गोबर के सरे हुए खाद, वर्मी कंपोस्ट, कंपोस्ट और हरियर खाद जैसे जैविक विकल्प रासायनिक उर्वरक के अच्छा विकल्प है। ये न केवल माटी में पोषक तत्व तो बढ़ाते बल्कि माटी के संरचना और जल धारण क्षमता ला भी सुधारते। लगातार जैविक खाद के उपयोग से माटी उपजाऊ बने रही थे और रासायनिक उर्वरक मन के जरूरत धीरे धीरे कम हो जाती। हम अभी हरियर खाद के बात करे हैं, कुछ भी हरियर जिनिस है जैसे उरीद हो गए, मूंग है, ढेंचा है, सनई है, ये सब ला लगा के हमन भूया मा कार्बनिक पदार्थ ला बढ़ाथन, जेकर से हम जौन भी उर्वरक देथन ओ फसल ला पूर्ण रूप से मिलते। अगला हम बात करी फसल चक्र के। फसल चक्र मिश्रित खेती, एक ही फसल ला बार बार उगाए से का होते माटी में पोषक

0: तत्व की कमी हो जाती है। अगर हम धान खरीफ में भी लेथन गर्मी में भी लेथन तो पोषक तत्व ज्यादा खींच लिए जाते हैं। किसान अगर फसल चक्र अपना ही जैसे दलहनी फसल ले ही चना मसूर अरहर लर शामिल कर ही रबी में गेहूं ले ही तो माटी में नत्रजन की मात्रा स्थिर हो ही वातावरण से ओखर बर अगला जब हम फसल लेबो तो ओमा ओखर पूर्ति हो जाए। आगो बात करी जैव उर्वरक मन के उपयोग राइजोबियम है एजोटोबैक्टर है जो स्पाइरिलम और पीएसबी जैसन कल्चर है एला माटी में डार के जिन पोषक तत्व हमर शुरू ले ही माटी में परे हवा ओला खींच के पौधा ला उपलब्ध करवाते। काबर हम डीएपी हर पे डालथन डीएपी हम डालथन तो माटी पत्थल कस कठोर हो जाते। ओहा डीएपी पड़े रही थे माटी के जड़ के एक बित्ता दूरी में है तबो ओला नहीं मिला। अगर हम पीएसबी कल्चर से उपचारित करबो अपन जरई ला अपन बीजा ला तो जरई क्षेत्र से जिन बाहर में परे है उर्वरक पीएसबी कल्चर ओला खींच के जरई ला उपलब्ध कराए। तो ऐसा ऐसा अगर हमन विज्ञान ला लगाई खेती में तो हमारा लाभ हो सकत है। अगला बात करी उर्वरक के सही समय और सही विधि। कई पैत का करते किसान भाई मन पूरा उर्वरक ला एक साथ खेत में डाल देते हैं जेकर से उन मल्ला पूरा लाभ नहीं मिले पौधा ला पूरा लाभ नहीं मिल पावे। जैसे स्प्लिट डोज के बात करी तोड़ तोड़ के मात्रा ले देने जैसे कई जी किसान भाई मन का करते धान के फसल में दुए पैत यूरिया ला डालते हैं पूरा ओखर धान के जीवन काल में जबकि हमन ला कम से कम तीन पैत मात्रा देना चाहिए। आखिर जिन समय होते बीज भराए के ओ समय भी देबो तो हमन ला उत्पादन भी बढ़िया मिलही उर्वरक के सही मात्रा पौधा ला मिलही। अगर यूरिया के उपयोग करत हन तो नीम कोटेड यूरिया के उपयोग करी हमन। नीम कोटेड यूरिया के उपयोग करे से नत्रजन धीरे धीरे निकलते और धीरे धीरे घूरते जेखर से पौधा ला लंबा समय तक पोषण मिलत रहते। एखर से यूरिया के खपत कम होते और लागत में कमी आते संग में माटी में नत्रजन के नुकसान ला भी कम करते। आखिर बात करी निष्कर्ष के रासायनिक उर्वरक के खर्चा कम करना पूरा तरह से संभव हवे बशर्ते किसान वैज्ञानिक तरीका अपनाए। माटी परीक्षण जैविक खाद फसल चक्र जैव उर्वरक और आधुनिक तरीका के सही उपयोग करके किसान भाई अपन लागत ला कम कर सकते हैं और अधिक लाभ कमा सकते हैं। संग मा माटी के उर्वरता बने रही और पर्यावरण गलो सुरक्षित रही। राम राम जय जोहार।
1: अभी आप सुन रहे थे खेती की बात केमिकल फर्टिलाइजर का खर्चा कम कैसे करें इस विषय पर अभिनव गौरहा की दी हुई जानकारी। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। प्रातः के 6:35 हुए हैं। प्रस्तुत है श्री रामचरित मानस गान। आज के अंक में मुख्य गायन स्वर भूपेंद्र सिंह का है। संगीत संयोजन सतीश भाटिया का है।

राक्षसों तथा पापाचारियों से आतंकित पृथ्वी तथा ब्रह्मा सहित देवताओं ने परम पिता की स्तुति करके उन्हें प्रसन्न किया। तब गंभीर आकाशवाणी हुई, हे मुनिसिद्ध और देवताओं के स्वामी, भयभीत न हो। तुम्हारे कल्याण के लिए मनुष्य रूप धारण करके मैं सूर्य वंश में अवतरित होऊंगा। अदिति तथा कश्यप ने कठोर तपस्या करके मेरा वरदान प्राप्त किया और वे ही कौशल्या तथा दशरथ के रूप में अयोध्या में प्रकट हुए हैं। उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

उन्हीं के घर श्रेष्ठ चार भाइयों के रूप में मैं अपनी परम शक्ति समेत पैदा होऊंगा। आकाश में गूंजती ब्रह्मवाणी अपने कानों सुनकर सभी देवता आश्वस्त हुए।

0: श्री रामचरितमानस गान का आज का अंक आप सुन रहे थे भूपेंद्र सिंह के स्वर में सतीश भाटिया के संगीत संयोजन में। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रातः के 6:45 हुए हैं। अब प्रस्तुत है चिंतन, कठिन परिस्थितियों में ना घबराएं। इस विषय पर आज का चिंतन आप सुनेंगे, आलेख श्री गोविंद लाल वोरा का है।
1: मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। इसीलिए कहा जाता है कि कठिन परिस्थितियों में भी विचलित नहीं होना चाहिए। कठिन घड़ियां तो दृढ़ संकल्प के फल स्वरूप निकल जाएंगी, फिर निर्विघ्न काम होने लगेगा। इसके लिए मन को निश्चलता के साथ दृढ़ होना आवश्यक है। वैसे ये बहुत सरल है, साथ ही कठिन भी है। यदि मन में कोई द्वेष भाव न रहे, किसी का बुरा होने का विचार ही न आए, तो मन निर्मल रहेगा। जहां निर्मलता है, वहां असफलता के लिए कोई स्थान ही नहीं रहता। बुरे के साथ बुरा बनना किसी भी स्थिति में न्याय संगत नहीं होता। बुराई के लिए बुराई नहीं,

0: की अच्छाई तो स्वयं के लिए तो हितकारी है ही, साथ ही जिसमें बुराई के दुर्गुण हैं उसकी भी भलाई है। अच्छाई के सामने उसकी बुराई शून्य हो जाती है। बुराई पर सदैव ही अच्छाई की विजय हुई है। जीवन में संतुलन का बड़ा महत्व है, इसी में सफलता का राज छिपा हुआ है। किसी को प्रताड़ित करते हुए अपशब्दों का उपयोग अथवा अपमानजनक व्यवहार करने से सामने वाले में तो सुधार नहीं ला सकते, साथ ही स्वयं के मन में कुंठा उत्पन्न होगी कि मैं तो उसकी भलाई के लिए कह रहा था, उसे उसमें भी बुराई के भाव दिखाई देने लगे। चार लोगों के सामने किसी को मूर्ख अथवा चोर कहेंगे तो उस पर विपरीत प्रक्रिया ही होगी, साथ ही उसके मन में ये भाव आएंगे कि खुद को बड़ा ईमानदार समझता है। चोर कहीं का सबको बेईमान समझकर स्वयं सत्यवादी होने का ढिंढोरा पीटता है। मन में सदा शयता होना सफलता की कुंजी है। गुणवान को अपने मुंह से स्वयं की डींग हाँकने का अर्थ होता है कि व्यक्ति अभिमानी है। यदि सही में व्यक्ति अच्छा है, लोगों की निस्वार्थ सेवा करता है, तो उससे लाभान्वित होने वाले लोग जगह जगह उसकी प्रशंसा स्वयं ही करेंगे। इसमें भी प्रशंसकों के बीच ये कहकर बात डालना चाहिए कि कोई खास बात नहीं है, साधारण बात थी। वो आया तो मैंने उसका ढांढस बढ़ाया और चिंता नहीं करने के लिए कहा। जिसके पास जो निधि हो उस पर अपना एकाधिकार नहीं समझकर जरूरतमंदों के बीच उसका वितरण करना चाहिए। यदि आप ज्ञानवान हैं तो अपने ज्ञान की गठरी बांधकर केवल वो अपने लिए हैं ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि जितना आप अपने ज्ञान दूसरों को देंगे तो आपके ज्ञान में वृद्धि होगी, साथ ही अन्य भी उससे अपना जीवन सार्थक बनाएंगे, लाभान्वित होंगे। संत महात्माओं के प्रति लोग इसलिए आदर भाव रखते हैं क्योंकि वे सारे सांसारिक सुखों को छोड़कर मानव समाज को सही दिशा देकर लोगों को सफल जीवन जीने की प्रेरणा देते हैं, साथ ही एक सार्थक काम करने के संकल्प की पूर्ति की दिशा में निस्वार्थ कार्य कर रहे हैं। दान देने का अर्थ ये कदापि नहीं होता कि आप किसी की मदद कर सामने वाले पर कोई एहसान कर रहे हैं। एहसान के भाव से किए गए दान का महत्व शून्य हो जाता है। जो धनी है उन्हें स्वयं को समाज का एक ट्रस्टी समझकर कार्य करना चाहिए। कहा भी जाता है, सबै भूमि गोपाल की, अतः मन में इसका गुमान न करें। अच्छे मन से लोगों की मदद करने से खुद के धन में कोई कमी नहीं होगी, बल्कि उसकी वृद्धि होगी। मन में भाव रखें कि सब ईश्वर का है, वो तो उसके द्वारा निमित्त बनाया गया है। सत्कर्मों से वो अपने जीवन को सार्थक बनाए। मन और हृदय निर्मल है तो किसी को हानि पहुंचाने अथवा उसका अहित होने के विचारों के लिए कोई स्थान ही नहीं रहेगा। यश अपयश की चिंता किए बगैर सेवा करना ही सच्ची सेवा है। इसका फल स्वयं के जीवन में मिलेगा। ये याद रहे कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन। व्यक्ति के मन में लालच होती है कि सारे सुखों का मालिक वो बन जाए, चाहे इसके फलस्वरूप दूसरे दुखों से गिर जाए। ऐसा सोचना भी स्वयं को मन के किसी कोने में दुखी करने जैसा है। मन में सर्वे सुखिनः संतु सर्वे संतु निरामयः का भाव सदा रहना चाहिए। मन बहुत चंचल है, वो अच्छा कराता है, कमजोर घड़ी में वो गुमराह करने में भी नहीं चूकता। मन की चंचलता की लगाम इतनी तगड़ी पकड़े कि उससे गुमराह होने का आबंडर ही न आए। मनुष्य स्वयं अच्छा रहे, साथ ही दूसरों को भी अच्छा रहने की प्रेरणा देता रहे, इसी में जीवन की सार्थकता है।
1: कठिन परिस्थितियों में ना घबराएं, इस विषय पर आज का चिंतन आप सुन रहे थे। आलेख श्री गोविंदलाल वोरा का था। हम आकाशवाणी बिलासपुर से बोल रहे हैं। 6:50 हुए हैं। समय हो चला है आपको हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले शेष कार्यक्रमों की जानकारी देने का। हर दिन की तरह कार्यक्रम आज सुबह आप सुनेंगे 7:05 से। फिल्मी संगीत के कार्यक्रमों में सुबह 7:30 सुनिएगा सदाबहार नगमे और 10:30 से नए तराने हमारे केंद्र से। 11:00 से 11:30 तक हम प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण करते हैं।

आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित छत्तीसगढ़ी में समन्वित साहित्यिक पत्रिका मोर भैया हमरे ले करेंगे 8:30 बजे। एक और प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर आकाशवाणी रायपुर से 10:00 बजे और प्रादेशिक समाचार 9:55, 11:55 पर आकाशवाणी रायपुर से हम रिले करेंगे।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: शाम की सभा में संध्या 5 बजे आप सुनते हैं प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। आज 5:05 पर सुनिएगा कार्यक्रम अमृत धारा। भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचें और सुरक्षित रहें, इस विषय पर कार्यक्रम होगा। डॉक्टर योगेश जैन से बातचीत करेंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। 5:35 का समय होता है बहनों के कार्यक्रम महिला सभा का। 7:20 पर आप हमारे साथ होते हैं ग्राम सभा में, जिसमें आज बेरा के गोट का विषय है बूंद बूंद पानी हमर जिनगारी। 7:30 से रात्रि 8 बजे तक किसान वाणी कार्यक्रम आप सुनते हैं, जिसमें आज की बात का विषय है खेत तालाब योजना और जल संरक्षण। साथ ही साथ स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में हम आपको सुनवाएंगे, जिसमें ग्राम बेलटुकरी विकासखंड मस्तूरी की कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम सुनेंगे आप। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी, संपादन और रिकॉर्डिंग महेंद्र साहू की होगी। रात्रि 8 बजे आप सुन सकते हैं सुगम संगीत और 8:15 से आनंद लीजिएगा रजनीगंधा कार्यक्रम का। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ। FM बैंड 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। प्रातः के 6:55 होने वाले हैं, कुछ ही क्षणों में संस्कृत और 7 बजे हिंदी में समाचार क्रमशः आकाशवाणी दिल्ली से हम अनुप्रसारित करेंगे।
2: एम आकाशवाणी संप्रति वार्ता श्रूयंताम प्रवाचकः डॉक्टर गणेश हेगडे। अथ वार्ताः। भारतीय जनता पार्टीति दलेन पश्चिम बंगाल राज्ये 94-200 सदस्यीय राज्य विधानसभायां प्रचंडं जनादेशं प्राप्य इतिहासः विनिर्मितः। अनेन स्वाधीनतानन्तरं प्रथमवारं पश्चिमबंगालराज्ये भाजपादलं बहुमतेन सत्तायामागतमस्ति। असमराज्ये सत्ताधारी भाजपानेतृत्वयुक्तेन NDA-दलेन पुनरेकवारं जनादेशं प्राप्य तृतीयवारं सत्तायामागम्यते, यत्र हि भाजपादलेन 73 आसनानि विजितानि। केरलं राज्ये कांग्रेस नेतृत्वेन UDF इति संयुक्तलोकतान्त्रिकघटबन्धनेन 69 आसनेषु विजयं प्राप्य निर्णायकरूपेण सत्तां प्रति प्रत्यागमनस्य संकेतः प्रदत्तः, यत्र च कांग्रेसदलेन 63 आसनानि विजितानि। पुदुचेरीत्यत्र राष्ट्रिय प्रजातान्त्रिकघटबन्धनेन NDA इत्यनेन 30 आसनेषु 18 आसनानि विजित्य सर्वकारं रचयितुं स्पष्टबहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिम बंगाल राज्ये भवानीपुर विधानसभा क्षेत्रे भाजपा प्रत्याशी सुवेन्दु अधिकारी पश्चिम बंगालस्य मुख्यमंत्रीं TMC नेत्रीं ममता बैनर्जीं 15,000 मतैः पराजितवान्। निर्वाचन सूची विशेष

0: सघनपुनरीक्षणस्य एसआईआर इत्यस्य अनन्तरं प्रथमनिर्वाचने ममता बैनर्जी नेतृत्वेन तृणमूल कांग्रेस इत्यस्य 15 वर्षीयं शासनं समाप्तं कृत्वा भाजपादलेन बहुमतं प्राप्तमस्ति। पश्चिमबंगालराज्ये भाजपादलेन 6-2 तृणमूल कांग्रेस दलेन 80 आसनानि च विजितानि। अभिनेता परिवर्तित राजनेता च चंद्रशेखरन जोसेफ विजयस्य नेतृत्वे तमिलग वेत्री खजगम टीवीके इति दलेन तमिलनाडु विधानसभा निर्वाचने एकैक बृहत्तम दलरूपेण उद्भवन इतिहास विनिर्मित। राज्ये 34-200 निर्वाचन क्षेत्रेषु टीवीके दलेन 8-100 आसनानि प्राप्तानि। भाजपा दलस्य वरिष्ठ नेत्रा अथ प्रधानमन्त्रिणा श्री नरेन्द्र मोदिना ऐतिहासिकः अभूतपूर्वः दिवसोऽयमिति उक्त्वा पश्चिम बंगाल असम पुदुचेरी तमिलनाडु केरलम राज्यानां जनानां दलकार्यकर्तॄणां च प्रति आभारः प्रकटितः। ह्यः नवदिल्ल्यां भाजपा मुख्यालये दलकार्यकर्तॄन् सम्बोधयन् श्रीमोदी अवदत् यत् अयं राष्ट्रस्य कृते नूतन प्रभातस्य सूचकः अस्ति तथा च जनाः भारतस्य महालोकतन्त्रे कार्यप्रदर्शनस्य राजनीतिषु एकभारत श्रेष्ठ भारतस्य भावनायाञ्च विश्वासं स्थापितवन्तः।
1: जय पराजय लोकतंत्र और चुनावी राजनीति का एक स्वाभाविक हिस्सा होता है, लेकिन 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है कि ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: प्रधानमन्त्रिणा श्रीमोदिना उक्तं यत् देशस्य 20-अधिकेषु राज्येषु भाजपा एनडीए सर्वकाराः सत्तायां सन्ति तथा च भाजपायाः मन्त्रः जनता एव जनार्दनः इति। भाजपादलेन पुदुचेरीत्यत्र विधानसभायाः नेतारं निर्वाचयितुं दलस्य वरिष्ठनेता एवं केन्द्रीयमन्त्री डॉ मनसुख मांडविया एवं पुदुचेरीत्यत्र दलस्य प्रभारी निर्मलकुमार सुराना च केन्द्रीय पर्यवेक्षकरूपेण चितवन्तौ। नामद्वयमपि भाजपा संसदीयमण्डलस्य केन्द्रीय पर्यवेक्षकमण्डलेन अनुमोदितमासीत्। आईपीएल इति 20 प्रतिविंशतिः क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धायां मुंबई नगरस्य वानखेड़े क्रीडांगणे गतरात्रौ मुंबई इंडियंस दलेन लखनऊ सुपर जायंट्स दलं 6-2 पराजितम्। अद्य सायं 7:30 दिल्ली कैपिटल्स अथ चेन्नई सुपर किंग्स दलयोर्मध्ये दिल्ल्याः अरुण जेटली क्रीडांगणे क्रिकेट लीग प्रतिस्पर्धा निश्चिता वर्तते इति वार्ताः।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की। वाम दल को एक सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के सुवेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरामपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। विधानसभा की 126 सीटों में से भाजपा और उसके सहयोगी दल 102 सीटें जीत चुके हैं। दूसरी ओर कांग्रेस 19 सीटों पर जीत हासिल कर चुकी है। जालूकबारी निर्वाचन क्षेत्र से मुख्यमंत्री हेमंता बिस्वा सरमा चुनाव जीत गए हैं। तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिल त्रगावेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। टीवीके प्रमुख सी जोसेफ विजय ने

0: पेरम्बूर और तिरुची पूर्व दोनों सीटें जीती हैं। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कशगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कशगम ने 47 सीटें जीती। मुख्यमंत्री एमके स्टालिन चेन्नई के कोलाथुत सीट से हार गए। वहीं केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन तिरुपुर जिले के अविनाशी आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में टीवीके की कमाली एस से हार गई। केरलम में सभी 140 सीटों के परिणाम घोषित हो गए हैं। यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने 102 सीटों पर शानदार जीत दर्ज की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती हैं, जबकि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें अपने नाम की हैं। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 26 सीटें जीती हैं। भारतीय जनता पार्टी को राज्य में 3 सीटें मिली हैं। पुदुचेरी में एन रंगास्वामी के नेतृत्व वाली अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के तहत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार फिर से बनने जा रही है। एन रंगास्वामी की पार्टी और सहयोगी दलों को 18 सीटें मिली हैं। और 5 राज्यों की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा ने 4 सीटों पर जीत हासिल की है, जबकि कांग्रेस को 2 और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी को 1 सीट मिली है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि ये जीत कई मायनों में ऐतिहासिक और अभूतपूर्व है। नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने ये बात कही।
1: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
0: श्री मोदी ने कहा कि देश में गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक भाजपा का कमल खिला हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पुदुचेरी में विधायक दल का नेता चुनने के लिए वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया तथा पुदुचेरी के प्रभारी निर्मल कुमार सुराना को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। इन नामों पर बीजेपी की संसदीय बोर्ड ने मंजूरी दी है। केरलम में राजनीतिक बदलाव के बीच मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने उनका इस्तीफा स्वीकार किया। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होंगे। मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। और दिल्ली में तेज बारिश और तूफान के बाद ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। अगले कुछ घंटों में ओले गिरने, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कश्मीरी गेट, इंडिया गेट, अक्षरधाम, सफदरजंग, नेहरू स्टेडियम और लाजपत नगर सहित दिल्ली के कुछ स्थानों पर बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: आकाशवाणी दिल्ली से अनुप्रसारित समाचार अभी आप सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम आज सुबह।

आज सुबह। बहुत बहुत स्वागत कार्यक्रम आज सुबह सुनने वाले सभी श्रोताओं का, स्वीकार कीजिए हमारा नमस्कार।

लेकर अपनी बातों का पिटारा, गीतों का सहारा, कुछ संदेश और सूचनाओं के साथ हम हाजिर हैं आज सुबह का ये अंक लेकर। स्वागत अभी

अभिनंदन सभी श्रोताओं का। हर सुबह कुछ खास होती है, एक नई शुरुआत होती है, एक नया आगाज होती है। हर बीतने वाली रात नए दिन का आभास तो देती है, साथ ही साथ सुबह लेकर आती है कभी हमारे लिए चुनौतियां तो कभी खुशियां। जाती जाती शाम कभी दे जाती है सुकून तो कभी तजुर्बा और अनुभव। और अगर आजकल की बात करें तो मौसम है गर्मियों का, बच्चों की छुट्टियां भी लग गई हैं और साल भर की लंबी छुट्टियों का इंतजार किया जाता है ताकि कुछ दिन चैन भरी सांसें हम ले सकें। कुछ अभिभावक बच्चों को लेकर अपने गांव जाते हैं जहां नानी का घर है, पीपल की छांव है, आम और इमली के बगीचे हैं, तो वहीं कुछ लोग पहाड़ों पर हिल स्टेशंस में ठंडी हवा का आनंद लेने चले जाते हैं। श्रोताओं, बड़े शहरों के लोग ये फर्क बखूबी समझ लेते हैं, महसूस कर लेते हैं, क्योंकि उनकी तेज जिंदगी पक्की सड़कों, बड़ी इमारतों और कारों, बसों, मेट्रो स्टेशंस, मेट्रो गाड़ियों, ऑटो रिक्शा के बीच में प्रदूषण वाली हवा रोज खानी पड़ती है उन्हें, जबकि गांव में ताजी हवा के साथ साथ अपने हाथों से खीरा ककड़ी तोड़ना, निशाना लगाकर आम गिराना और पहाड़ों में जाकर झरनों का मीठा पानी, ठंडी ताजी हवा लेना एक सुखद एहसास देता है। शहरों में खीरा ककड़ी तोड़ना, आम के पेड़ पर चढ़ना जैसी चीजें तो दूर की बात हो चुकी है, यहां तक कि पेड़ पौधे पहचानना तक भूलने लगे हैं नई पीढ़ी के बच्चे। आशा करते हैं हम सब फिर से प्रकृति से जुड़ेंगे, अपनी कुदरत के साथ सहकार से जीना सीखेंगे, उन संस्कारों को बढ़ावा देंगे जो धरती की गोद में हर प्राणी को सुरक्षित रहने का एहसास देता है। आशा और उम्मीद तो हम कर ही सकते हैं श्रोताओं, क्योंकि जब तक सांस है तब तक आस है और हर आती जाती श्वास की गिनती चलती रहती है। हम अपनी अंतिम सांस तक उस ख्वाहिश को याद भी रखते हैं जो कभी पूरी नहीं हुई। इसलिए कहते हैं वक्त रहते सही समय पर काम कर लिए जाने चाहिए जो जरूरी है। वक्त और सांसें एक बार हाथ से निकल गए तो फिर ये वापस नहीं मिलने वाले। वैसे आपने सुना होगा कि एक साल की कीमत उस विद्यार्थी को अच्छे से पता है जो परीक्षा में चूक गया हो पूरी मेहनत करने के बाद। एक घंटे की कीमत उसे मालूम है जिसे बहुत देर तक किसी का इंतजार करना पड़ा हो। एक मिनट की कीमत उसे मालूम है जिसकी ट्रेन स्टेशन पर पहुंचते ही छूट गई हो। और एक सेकंड या एक सांस की कीमत उस व्यक्ति को मालूम है जो जीना चाहता है, कुछ कहना चाहता है, कुछ कहना बाकी रह गया हो परंतु उसे सांस नहीं आ रही है। हम सभी जानते हैं श्रोताओं, भोजन पानी के बिना कुछ दिन जिया जा सकता है परंतु प्राणवायु के बिना एक पल भी हम जी नहीं सकते। कुछ क्षणों में ही दम घुटने लगता है और अशुद्ध हवा में अगर सांस लेनी पड़े तो इससे हृदय रोग, स्ट्रोक, फेफड़ों का कैंसर और अस्थमा जैसे रोग हो जाते हैं। वैसे माना तो यह भी जाता है कि दमा दम लेकर निकलता है, परंतु ऐसा बिल्कुल नहीं है श्रोताओं। दमा या अस्थमा कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, बल्कि सही दवाओं के साथ उन कारणों का, उन एलर्जीज का सही तरीके से पता लगा लिया जाए तो इसका निदान और उपचार संभव है। अस्थमा के दौरे पड़ने पर छोटे छोटे इनहेलर्स उपयोग में लाए जाते हैं जो सीधे श्वसन कोशिकाओं को उपचारित करते हैं, उन्हें रिलैक्स करते हैं और दौरे को कम करने में हमारे सहायक होते हैं। बस इन्हीं बातों को जनता तक पहुंचाने के लिए हर साल मई माह के पहले मंगलवार को वर्ल्ड अस्थमा दिवस मनाया जाता है। जी हां श्रोताओं, जीना नाम की संस्था द्वारा ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा के प्रयास के रूप में अस्थमा के प्रति जागरूकता फैलाने और इस दिवस को भरपूर तरीके से लोगों तक पहुंचाने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम रखे जाते हैं। इसी तरीके से अगर देखा जाए तो हर साल नई नई थीम और नए नए तरीके से लोगों को जागरूक किया जाता है, जिसमें इस वर्ष की थीम रखी गई है अस्थमा पीड़ितों के लिए सूजन रोधी यानी एंटी इन्फ्लेमेटरी इनहेलर्स की पहुंच आवश्यक भी है और आसान भी होनी चाहिए। श्रोताओं, अस्थमा दीर्घकालिक श्वसन रोग है जो प्रदूषण के कारण हो सकता है, तेजी से बढ़ता जा रहा है, अनुवांशिक भी हो सकता है, एलर्जीज के कारण भी हो सकता है, परंतु उचित दवाओं के साथ, उचित निदान के साथ बेहतर जीवन जिया जा सकता है। आवश्यकता है सही जीवनचर्या, उचित खान पान और
555 का नियम अपनाने की।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम आज सुबह, और श्रोताओं आज वर्ल्ड अस्थमा दिवस पर हम चर्चा कर रहे हैं अच्छी लाइफ स्टाइल, संतुलित आहार के साथ साथ सांस लेने के नियम के बारे में। जी हाँ, एक छोटा सा नियम है 555 का, इसकी जानकारी भी हमारे काम की है। श्वास को अंदर लेना 5 सेकंड तक की गिनती गिनते, सांस को रोक कर रखना और 5 सेकंड की गिनती फिर से गिनिए, फिर धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ना 5 की गिनती तक। इस प्रक्रिया को 555 का नियम कहते हैं, जो कि शांत मन से आराम से बैठकर थोड़ी देर तक करने से अभ्यास में लाया जा सकता है। चलते फिरते करना ऐसा मुमकिन नहीं हो पाता, इसलिए सुबह सुबह की ताजी हवा या फिर शांत कमरे में शांत जगह पर

बैठकर आप इसे कर सकते हैं, चाहे तो 3 सेकंड की गिनती या फिर 4 सेकंड की गिनती, यानी कि 333, 444 से भी इसको शुरू किया जा सकता है। धीरे धीरे बढ़ा सकते हैं और अपने मन को, अपने श्वासों को अच्छा कर सकते हैं। श्रोताओं, आपको ऐसा करने से निश्चित रूप से अच्छा भी लगेगा और शरीर को ऑक्सीजन की पूर्ति भी होगी। आपको जानकर ये भी अच्छा लगेगा कि हमारा छत्तीसगढ़ वनों से आच्छादित है और यहाँ पर 1% में इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो जब हम सांस लेते हैं तो अपने पृथ्वी के ट्रोपोस्फीयर में मौजूद ऑक्सीजन सांस में लेते हैं, जो कि 21% है। सांस लेने के लिए सबसे स्वच्छ वायु दक्षिणी ध्रुवों के आसपास पाई जाती है और धरती का फेफड़ा अमेज़न के वर्षा वनों को कहा जाता है, जो कि विशाल वनस्पति के माध्यम से भारी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे गैसें अपने अंदर सोख लेता है और उन्हें प्राणवायु में बदल देता है। 70 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, 9 देशों में फैला हुआ है अमेज़न वर्षा वन। हमारे देश में भी बरगद तुलसी के साथ साथ पीपल सबसे शुद्ध ऑक्सीजन देने वाले पेड़ों को पूजा जाता है, उनका संरक्षण किया जाता है। और अगर देखें तो आमतौर पर जो छोटे पौधे होते हैं वो 0.5 मिलीलीटर ऑक्सीजन पैदा करते हैं, वो भी सिर्फ दिन के समय, जबकि पीपल का वृक्ष दिन और रात में भी ऑक्सीजन देता है। और एक स्वस्थ मानव 11,000 लीटर हवा की सांस दिन भर में ले लेता है और इसी से चलता है हमारा जीवन। धरती पर जीवन का कारण ही माने जाते हैं शुद्ध हवा का होना, पानी का होना और सूर्य की ऊर्जा। तो हम अपने जीवन रक्षण के लिए पौधों को संरक्षित कर सकते हैं, अपने जीवन रक्षण के लिए जो भी आवश्यक चीजें हैं उन पर ध्यान तो दे ही सकते हैं। घर की सुंदरता के नाम पर, साफ सफाई के नाम पर, विकास के लिए, उद्योगों के लिए 6 लेन या फिर 8 लेन की सड़कों को बनाने के लिए पेड़ों को काटना पड़ता है, लेकिन ये जरूरी नहीं है। अगर ऐसा करना भी पड़े तो हम एक की जगह 10 पेड़ लगाने का संकल्प अवश्य ले सकते हैं। श्रोताओं, पेड़ पौधे सिर्फ फल फूल औषधि या लकड़ी से के लिए ही हमारे लिए फायदेमंद नहीं है, बल्कि ये अपने जीवन काल में लाखों टन ऑक्सीजन भी हमें देते हैं। घने पेड़ बादलों को आकर्षित करते हैं जिससे बारिश होती है, मिट्टी को मजबूती से पकड़कर रखते हैं और प्रदूषण को सोख लेते हैं। तो किसी भी पौधे को नुकसान पहुंचाने से पहले, पेड़ को काटने से पहले हमें सोचना जरूर चाहिए और संकल्प भी लेना चाहिए कि नए नए पौधे हम लगाते रहेंगे, उनका संरक्षण और देखभाल भी पूरी मजबूती से करते रहेंगे। और कार्यक्रम में प्यारा सा गीत हमने सजा के रखा है, आइए गुनगुनाते हैं ये गाना।

0: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: दिल में अटका हो।
2: आज सुबह कार्यक्रम में अब भारी है यातायात व्यवस्था जानने की, सुन लेते हैं आज की ट्रैफिक अपडेट्स जो हमें प्राप्त हुए हैं यातायात पुलिस बिलासपुर से।
3: ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को उमाशंकर पांडे का स्वीकार करें सादर अभिवादन। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शहर में विभिन्न समूह या संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं मशाल रैली निकाले जाने की योजना है। इसी क्रम में आज शाम कांग्रेसजनों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में शाम 4 बजे कांग्रेस भवन में एकत्र हो वहां से रैली शुरू नेहरू चौक आकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। चूंकि नेहरू चौक शहर का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चौक है, प्रायः सभी शासकीय कार्यालय के समूह का केंद्र बिंदु है, पास ही माननीय जिला न्यायालय है, इसी चौक से होकर माननीय उच्च न्यायालय जाने का प्रमुख मार्ग भी है। धरना प्रदर्शन के प्रस्तावित समय में ही लगभग सभी शासकीय कार्यालय बंद होने का समय होगा। इस समय यहाँ यातायात बहुत अधिक होगा, अतः प्रदर्शनकारी यह सुनिश्चित करें कि आपके इस विरोध प्रदर्शन से आम यातायात बाधित ना हो। इसी प्रकार आज ही इसी समय सहायक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। फेडरेशन के सभी सदस्य भी यह ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से आम यातायात प्रभावित ना हो। इतना ही नहीं, आज ही इसी समय सर्व ईसाई महासभा छत्तीसगढ़ एवं इनके सहयोगियों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में शाम 4 बजे संयुक्त संचालक कार्यालय तारबहार स्कूल मैदान से अंबेडकर चौक तक सर्वदलीय सभा मशाल रैली निकाले जाने की योजना है। मशाल रैली के सभी सदस्य रैली के दौरान पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए कतार में चलें, सड़क के एक किनारे चलें तथा एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों को तत्काल साइड देवें। साथियों, इस प्रकार के प्रदर्शन में सदैव यह ध्यान रखना होगा कि अपने अधिकारों या मांगों के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, अर्थात आम आवागमन सड़कों में तनिक भी बाधित ना हो, ताकि लोग अपने गंतव्य समय पर पहुंच सकें। मित्रों, हमारा हर संभव प्रयास होना चाहिए कि सड़कों में कोई दुर्घटना ना हो। फिर भी जाने अनजाने किन्हीं कारणों से दुर्घटना हो भी गई और व्यक्ति चोटिल हुआ हो, यदि आर्थिक तंगी से वह अपना इलाज ना करा पावे तो उसे इसी हालत में ना छोड़े। ऐसे प्रकरण में सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है, जिससे जान बच सकती है, व्यक्ति विकलांगता से भी बच सकता है। बस घायल को तत्काल किसी भी अस्पताल ले जाने, वहां से उसे संबंधित अस्पताल भेजा जा सकता है और उसे मिल सकती है एक नई जिंदगी। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
2: बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं यातायात पुलिस बिलासपुर को इन अपडेट्स के लिए। और हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत धारा। भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचें और सुरक्षित रहें, इस विषय पर कार्यक्रम होगा। डॉक्टर योगेश जैन से बात करेंगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। इसके बाद आप सुनेंगे कार्यक्रम महिला सभा। एक और सूचना देते हैं हम आपको श्रोताओं, प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है।

है जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 7 मई को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉ आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 बजे से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव एवं नर्सरी प्रबंधन। इसके बाद 11 बजे से 11:30 बजे तक आप पूछ सकते हैं खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व और सावधानियों विषय पर सवाल। इन समस्याओं का समाधान पाने के लिए आप हमसे फोन पर बात कर सकते हैं। नंबर है 07752266592। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 7 मई और 8 मई को शाम 7:30 बजे से 8 बजे के बीच आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: और बस इन्हीं बातों गीतों के साथ कार्यक्रम आज सुबह का समय हो चला है समाप्त। तो आपके हंसते मुस्कुराते खुशनुमा दिन की शुभकामनाओं के साथ हम आपसे लेते हैं विदा। नमस्कार।

प्रातःकालीन सूचनात्मक कार्यक्रम आज सुबह अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर आकाशवाणी बिलासपुर है। 7:30 हुए हैं। प्रस्तुत है कार्यक्रम सदाबहार नगमे। फिल्म संगीत के कार्यक्रम में आइए सुनते हैं सबसे पहला गीत। फिल्म सरगम से इसे हमने लिया है। लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की युगल स्वर हैं। आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना है। लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत निर्देशन।

मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल सुरों में सरगम फिल्म का ये मीठा सा गीत आप सुन रहे थे। आइए सुनते हैं कार्यक्रम में प्यारा सा गीत। सिलसिला फिल्म से इसे हमने लिया है, लता मंगेशकर और किशोर कुमार की युगल आवाज़ें आप इस गीत में आप सुन सकते हैं। जावेद अख्तर का लिखा हुआ गाना है।

0: है तार टेली लॉ के ऐप वेबसाइट www.tele-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: मेरे दिल में
2: अटका हो कोई गाना तो सोचिए मत, भेजिए ईमेल और सुनिए अपना फेवरेट गीत।
1: होता है तो ये प्यार है।
2: कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में रोज शाम 6:20 से 6:45 तक और 7 से 7:20 तक।
1: तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ।
2: आकाशवाणी बिलासपुर से। ईमेल आईडी है geetmail@gmail.com। नई चेतना आई है, बदलाव की बयार लाई है। हिंसा को ना कहें, सम्मान को हाँ कहें। महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, जीरो टॉलरेंस यही है हमारी तैयारी। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना, नया भारत।
3: आकाशवाणी बिलासपुर से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार नगमे। आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज संध्याकालीन प्रसारण में शाम 5:05 पर आप सुन सकते हैं कार्यक्रम अमृत धारा। भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचे और सुरक्षित रहे, इस विषय पर डॉक्टर योगेश जैन से भेंटकर्ता और सुप्रिया प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतन की बातचीत आप सुन पाएंगे। ग्राम सभा में बूंद बूंद पानी हमर जिंदगानी, इस विषय पर बिरा के गोट होगा। किसान वाणी कार्यक्रम में 7:30 से 8 तक आप सुन सकते हैं भेंट वार्ता, जिसमें स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसान वाणी गांव में बेल टुकड़ी विकासखंड मस्तूरी के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम इसमें प्रसारित किया जाएगा। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी, संपादन और रिकॉर्डिंग महेंद्र साहू का होगा। चलिए अब बढ़ते हैं फिल्म संगीत की ओर और कार्यक्रम का अगला गीत सुनते हैं।

ये खनकती हुई आवाज थी अलका याग्निक की फिल्म राजा हिंदुस्तानी के लिए। इस गीत को लिखा था समीर ने, नदीम श्रवण ने संगीत से सजाया था। और कार्यक्रम सदाबहार नगमे का अगला गीत आप सुनेंगे कुमार सानू के साथ अलका याग्निक की आवाज में फिल्म सलामी से। इस गीत को लिखा है समीर ने, नदीम श्रवण ने ही संगीत से सजाया है।

0: नदीम श्रवण के संगीत निर्देशन में ये प्यारा सा गीत सलामी फिल्म से आप सुन रहे थे, अलका याग्निक कुमार सानू के युगल स्वरों में।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: आइए सुनते हैं सदाबहार नगमों का कार्यक्रम में आखिरी गीत कविता कृष्णामूर्ति और साथियों की आवाजों में। इस गीत को हमने लिया है फिल्म अग्नि साक्षी से। समीर का लिखा हुआ यह गाना है, नदीम श्रवण का संगीत निर्देशन।

0: ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म अग्निसाक्षी से कविता कृष्णमूर्ति और साथियों की आवाजों में। कार्यक्रम में एक सूचना हम अपने श्रोताओं तक पहुंचा दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 बजे से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है, जिसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं का समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछते हैं। इसी कड़ी में 7 मई को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉ आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे, जिनसे धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव और नर्सरी का प्रबंधन के अलावा खरीफ फसलों में बीज उपचार की विधियों, महत्व और सावधानियों पर सवाल पूछे जा सकते हैं, जिसके लिए हमारा फोन नंबर है 07752266592। कार्यक्रमों का प्रसारण होगा 7 मई और 8 मई की शाम 7:30 बजे से रात्रि 8 बजे के बीच। सूचना समाप्त हुई। FM 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 8 बजने वाले हैं। कुछ ही पड़ों में समाचारों के लिए हम आकाशवाणी दिल्ली से जुड़ेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार बल। मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुद्दुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन की जीत। तमिलनाडु में टीवी के 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने प्रदर्शन की राजनीति पर भरोसा जताया। ईरान के ड्रोन हमले में संयुक्त अरब अमीरात में 3 भारतीय नागरिक घायल। और आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। अब समाचार विस्तार से। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में अभूतपूर्व जीत हासिल कर इतिहास रच दिया है। पार्टी ने विधानसभा की 293 सीटों में से 206 सीटें जीतकर स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया है। स्वतंत्रता के बाद पश्चिम बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। वाम दल को 1 सीट मिली है। मुख्यमंत्री और टीएमसी नेता ममता बनर्जी भवानीपुर और नंदीग्राम निर्वाचन क्षेत्र में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से हार गई हैं। बहरमपुर सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अधीर रंजन चौधरी चुनाव हार गए हैं। एक रिपोर्ट।
2: विधानसभा चुनाव में 2/3 बहुमत के साथ पहली बार पश्चिम बंगाल की सत्ता पे आ रही है भाजपा। लगातार 15 साल सत्ता में रहने के बाद तृणमूल कांग्रेस की इस हार से राज्य की राजनीति एक नई मोड़ पर आ चुकी है। पहले ही बताया गया था कि चुनाव आयोग के निर्देश पर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा के क्षेत्र में पुनः चुनाव 21 मई को होगा। उस सीट की गिनती 24 मई को होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि इस बार विधानसभा चुनाव में भाजपा के सुशासन की राजनीति की जीत हुई है। जनता की आशा और आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए नई सरकार हर संभव प्रयास करेगी। संदीप अंदाज गुप्ता।

0: आकाशवाणी न्यूज कोलकाता।
1: उधर तमिलनाडु में अभिनेता से राजनेता बने विजय की पार्टी तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके ने गठन के बाद हुए पहले चुनाव में 108 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया है और राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। सत्तारूढ़ द्रविड़ मुनेत्र कजगम डीएमके ने 59 सीटें हासिल की, जबकि अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम ने 47 सीटें जीती। इससे जुड़ी और जानकारी हमारे संवाददाता से।
2: तमिलनाडु के सियासी पर्दे पर फिल्म स्टार विजय ने सुपरहिट एंट्री ली और उनकी पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। थलाइवा, जननायकन, मरसल, सरकार जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के नायक रहे जोसेफ विजय अब फिल्मी पर्दे पर नहीं बल्कि असल जीवन में मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और उनके सामने राज्य के मतदाताओं के सपनों को पूरा करने की बड़ी चुनौती है। 51 साल के अभिनेता को आज उनकी पार्टी के विधायकों द्वारा नेता चुने जाने की संभावना है। पार्टी गठबंधन सरकार के गठन को लेकर फिलहाल चुप्पी साधे हुए हैं और विजय के सामने अब सबसे बड़ी चुनौती सरकार बनाने और उसे बेहतर ढंग से चलाने की होगी, क्योंकि इस बार उन्हें अपनी कामयाबी की स्क्रिप्ट खुद लिखनी है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: असम में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन ने ऐतिहासिक रूप से लगातार तीसरी बार सत्ता हासिल कर 126 सदस्यीय विधानसभा में 64 सीटों के बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। भाजपा को 82 सीटें मिली, जबकि उसके सहयोगी असम गण परिषद एजीपी ने 9 सीटें और बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने 10 सीटें जीती। दूसरी ओर कांग्रेस को 19 सीटें, ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट और रायजोर दल को 2-2 सीटें और टीएमसी को 1 सीट मिली। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यूडीएफ ने निर्णायक जीत हासिल की है। कांग्रेस ने 63 सीटें जीती, जबकि उसके सहयोगी इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने 22 सीटें जीतकर गठबंधन को पूरे राज्य में मजबूत स्थिति में पहुंचा दिया। राज्य भर में लगभग सभी प्रमुख यूडीएफ नेता स्पष्ट बहुमत से निर्वाचित हुए। सत्तारूढ़ लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट एलडीएफ से सीपीआईएम ने 26, सीपीआई ने 8 और आरजेडी ने 1 सीट हासिल की। विधानसभा में एक भी सीट ना होने के बावजूद भाजपा ने इस बार 3 सीटें अपने नाम की। पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए ने 30 सदस्यीय विधानसभा में 18 सीटों के आरामदायक बहुमत के साथ सत्ता में वापसी की है। इसके घटक दलों में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 सीटें, भाजपा ने 4 सीटें जीती, जबकि अन्य सहयोगी दलों अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कजगम और एलजेके ने 1-1 सीट हासिल की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनता पार्टी की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही।
3: ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। भरोसा भारत के महान लोकतंत्र पर, भरोसा परफॉर्मेंस की पॉलिटिक्स पर, भरोसा स्थिरता के संकल्प पर, भरोसा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना पर।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता और पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
3: देश के 20 से ज्यादा राज्यों में भाजपा एनडीए की सरकारें हैं। हमारा मंत्र है नागरिक देवो भव। हम जनता की सेवा में जुटे हुए हैं और इसलिए जनता भाजपा पर ज्यादा से ज्यादा भरोसा कर रही।
1: श्री मोदी ने कहा कि भाजपा का मंत्र है नागरिक ही भगवान है और पार्टी जनता की सेवा के लिए समर्पित है। उन्होंने कहा कि देश में एक नया सवेरा हुआ है और जनता ने भारत के महान लोकतंत्र, प्रदर्शन की राजनीति और एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना में अपना विश्वास जताया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को मार्गदर्शन देने के लिए भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन की सराहना की। भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने चारों राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश की जनता को भाजपा और एनडीए पर अपना समर्थन और विश्वास जताने के लिए आभार व्यक्त किया। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल, असम और पुदुचेरी में पार्टी की जीत का स्वागत किया है। उन्होंने पश्चिम बंगाल की जीत को भय, तुष्टीकरण और घुसपैठियों को पनाह देने वालों के खिलाफ जनता की करारी प्रतिक्रिया बताया।

0: श्री शाह ने असम की जनता को ऐतिहासिक हैट्रिक जनादेश के लिए बधाई दी। उन्होंने इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में एनडीए सरकार द्वारा सुरक्षित, शांतिपूर्ण और प्रगतिशील राज्य के निर्माण के लिए किए गए अथक प्रयासों का सशक्त समर्थन बताया। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने जमैका की विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट मंत्रियों के साथ बैठक की। डॉक्टर जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत और जमैका के बीच साझेदारी के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा की। उन्होंने शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, डिजिटल पर्यटन, खेल, मनोरंजन और बहुपक्षीय मुद्दों में संबंधों को आगे बढ़ाने पर विचार विमर्श किया। सरकार ने कहा है कि देश भर में एलपीजी वितरकों के यहां आपूर्ति की कोई कमी नहीं हुई है और पश्चिम एशिया में बदलती स्थिति के बीच पेट्रोलियम उत्पादों और एलपीजी की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने के उपाय किए जा रहे हैं। कल दोपहर नई दिल्ली में हुई अंतर मंत्रालयी बैठक में अधिकारियों ने नागरिकों से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की घबराहट में खरीदारी न करने और सटीक जानकारी के लिए आधिकारिक स्रोतों पर भरोसा करने का आग्रह किया। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कल नई दिल्ली में प्रमुख अधिकारियों और मुख्य वार्ताकारों के साथ भारत के मुक्त व्यापार समझौतों की प्रगति का आकलन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री गोयल ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने भारत से निर्यात करने के लिए अधिक व्यवसायों को प्रोत्साहित करने के तरीकों पर चर्चा की। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। ईरान के ड्रोन हमलों के बाद कल फुजेराह तेल उद्योग क्षेत्र में भीषण आग लग गई। पिछले महीने युद्ध विराम लागू होने के बाद से संयुक्त अरब अमीरात पर यह पहला हमला है जिसमें भारी नुकसान हुआ है। इस हमले में 3 भारतीय नागरिकों को मामूली चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। एक रिपोर्ट।
1: सोमवार के हमलों ने 8 अप्रैल को अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध विराम लागू होने के बाद से हफ्तों से बनी शांति को भंग कर दिया। ईरान ने इस कदम को खारिज करते हुए चेतावनी दी कि जलमार्ग में प्रवेश करने वाली प्रत्येक जहाज पर हमला किया जाएगा। इसी पृष्ठभूमि में ईरानी ड्रोन और मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाया, जिससे फुजेराह में एक प्रमुख तेल संयंत्र में आग लग गई। एक वरिष्ठ ईरानी सैन्य अधिकारी ने सरकारी टेलीविजन पर कहा कि ईरान के संयुक्त अरब अमीरात को निशाना बनाने की कोई योजना नहीं है। इस बीच संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन हमलों की कड़ी निंदा की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में इन हमलों को हिंसा और अंतर्राष्ट्रीय कानून तथा संयुक्त राष्ट्र चार्टर का स्पष्ट उल्लंघन बताया है और चेतावनी दी है कि ये देश की सुरक्षा और स्थिरता के लिए सीधा खतरा है। फुजेराह पर ड्रोन हमलों की ये खबरें ऐसे समय में सामने आई जब अमरीका और तेहरान के बीच युद्ध विराम वार्ता ठप पड़ी है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
0: अमरीका और ईरान के बीच नई चेतावनियों और सैन्य कार्रवाइयों के दावों के बीच होर्मूज जलडमरू मध्य में तनाव बढ़ता जा रहा है। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान अमरीका के जहाजों को निशाना बनाता है तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पश्चिम बंगाल में उद्योग जगत और व्यापार संघों ने विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की शानदार जीत पर उन्हें बधाई दी है। व्यापारिक नेताओं का कहना है कि उन्हें उम्मीद है कि नई सरकार औद्योगिकरण, बुनियादी ढांचे के विकास और निवेश अनुकूल नीतियों के एक नए युग की शुरुआत करेगी। आईपीएल क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने कल रात मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। लखनऊ सुपर जायंट्स द्वारा निर्धारित 229 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए मुंबई इंडियंस ने 18 ओवर और 4 गेंद में 4 विकेट खोकर लक्ष्य हासिल कर लिया। रॉयल रिकेल्टन को प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। प्रतियोगिता में आज दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स का मुकाबला होगा। मौसम विभाग ने आज देश के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, तटीय आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल में हिमालय के तराई क्षेत्रों, सिक्किम, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज बारिश की संभावना है। बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और गांगेय पश्चिम बंगाल सहित उत्तरी राज्यों के कुछ हिस्सों में दिन के समय गरज के साथ बारिश होने की उम्मीद है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुनीष शर्मा।
2: धन्यवाद मुकेश। पश्चिम बंगाल में

0: भाजपा की रिकॉर्ड जीत, ये आज सभी समाचार पत्रों की पहली सुर्खी है। असम पुदुचेरी में एनडीए गठबंधन के सर सत्ता का ताज सजने, तमिलनाडु में टीवीके के धमाल और केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत को भी मुख्य अखबारों ने अपने पहले पन्ने पर जगह दी है। पश्चिम बंगाल में भाजपा की जीत पर दैनिक भास्कर की सुर्खी है, छा गए बाबू मोशाय। दैनिक ट्रिब्यून लिखता है, बाबू मोदी शाय। तमिलनाडु में टीवीके की लहर को प्रकाशित करते हुए हिंदुस्तान ने सुर्खी दी है, विजय की सुनामी में सियासी दिग्गज साफ। केरलम में कांग्रेस गठबंधन की जीत पर पंजाब केसरी लिखता है, केरलम में कांग्रेस को सत्ता, सीएम पिनराई का इस्तीफा। असम में लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही भाजपा की जीत पर नवभारत टाइम्स ने जीत के नायक मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा का चित्र प्रकाशित करते हुए लिखा है, असम में सत्ता की हैट्रिक। भाजपा के पक्ष में आए भारी जनादेश पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान, बदला लेने के बजाय बदलाव के लिए करें काम को भी ज्यादातर अखबारों ने प्रमुखता से छापा है। हिंदुस्तान ने जनादेश का संदेश शीर्षक से संपादकीय में पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के हाथों सत्ता फिसलने का विश्लेषण करते हुए लिखा है, अव्वल तो एसआईआर की जरूरत से ज्यादा आलोचना तृणमूल को भारी पड़ी। दरअसल इससे संदेश गया कि पार्टी संदिग्ध वोटरों को बचाना चाहती है। होर्मुज जल क्षेत्र पर अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट फ्रीडम से बढ़ता तनाव भी मुख्य समाचार पत्रों की सुर्खी बना हुआ है। और आंधी बारिश ने दिल्ली को दिलाई सबसे साफ हवा, 88 रहा AQI, मौसम के मिजाज पर ये है नवभारत टाइम्स के शब्द।
1: धन्यवाद मुनीश। और अंत में एक बार मुख्य समाचार फिर। पश्चिम बंगाल और असम में भाजपा सरकार बनाने के लिए तैयार, पुदुचेरी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन बरकरार, केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले UDF गठबंधन की जीत, तमिलनाडु में TVK 108 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, राज्य में किसी को बहुमत नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, लोगों ने सुशासन की राजनीति पर भरोसा जताया। पश्चिम बंगाल के औद्योगिक निकायों और व्यापार संघों ने भाजपा की जीत का स्वागत किया। और IPL क्रिकेट में मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अनुजा कुमार। द हेडलाइंस: BJP set to form government in West Bengal and Assam. NDA retains Puducherry. Congress-led UDF comes to power in Keralam. Hung Assembly in Tamil Nadu. TVK emerges as largest party with 108 seats. Prime Minister Narendra Modi says people have placed trust in politics of performance. West Bengal's industry bodies and trade associations hail BJP's victory. 3 Indians injured in UAE in drone attack by Iran. And in IPL cricket, Mumbai Indians beat Lucknow Super Giants by 6 wickets. And now the news in detail. History has been created in the assembly elections in West Bengal and Tamil Nadu. While the Bharatiya Janata Party has secured overwhelming mandate in West Bengal and set to form government in the state for the first time, debutant Tamilaga Vetri Kadagam, or TVK, has emerged as the largest party in Tamil Nadu. In other assembly elections, Assam and Puducherry have re-elected its outgoing governments, while the Congress-led UDF has come to power in Kerala. In West Bengal, the BJP has won 206 seats to secure more than 2/3 majority in the assembly, ending the TMC's 15-year rule. TMC trailed far behind, managing to win 80 seats in the first election after special intensive revision of electoral rolls in the state. Out of 293 assembly seats, results have been declared for 292 constituencies. Our correspondent reports, Congress and Aam Janata Unnayan Party secured 2 seats each. CPIM clinched 1 seat.
3: With a vote share of nearly 45.84%, the BJP has won 206 seats in West Bengal. Meanwhile, the Trinamool Congress's vote share dropped by almost 8 percentage points to 40.8 compared to the 2021 election when it bagged 48.5% votes. Several heavyweight leaders of

0: जम्मू श्रोता संगवारी मल्ला हमर नमस्कार। हमर संस्कृति हमर कलाकार में आज लोक गायिका श्रीमती जयंती यादव जी के साथ होय गोट बात के दूसरा भागला सुनबो। जयंती यादव जी हा अभी लगभग 80 बच्छर के हे और अपन परिवार के संग बेटा बहू नाती के संग दुरुग मा रही थे। 1970 और 80 के दशक में लोक गीत के माध्यम ले वो मनहा छत्तीसगढ़ के संस्कृति के प्रसार में अपन महत्वपूर्ण भूमिका निभाईन और लोगन मनला गीत के माध्यम ले नवरद्दा घलो दिखाई। हमनहा पिछला कड़ी में सुने रहेन कि जयंती यादव जी के भेंट लोक कलाकार श्री गणेश यादव जी के संग कैसे होइस और कैसे वो हा आखिर ओखर जीवन साथी बनीस। गणेश यादव जी हा मांदर बजाए औ जयंती यादव संग शर्त लगीस कि मैं हतोला मांदर बचा के हरवा दूं ते मोर संग नहीं गा सकस। ये शर्त में गणेश यादव हा हार जथे और वो हा जयंती यादव जी ले माफी मांग लेथे। एकर बाद ओखर मन के जीवन में जो मोड़ ऐसे वो हा बहुत मार्मिक है। ता आव सुनथन जयंती यादव जी संग होय गोट बात के दूसरा भाग।
1: कर बाद में दाऊ जी हा
0: हाँ।
1: दाऊ जी ढोलक
0: हाँ।
1: ला ये में डाल दी
0: कामे
1: ओ गाड़ी में
0: हाँ।
1: और चद्दर मद्दर मलग

0: डाल दी, मैं हाँ, जाऊंगा, मैं बजाऊंगा।
1: हाँ,
0: वो जीत गई,
1: हाँ,
0: मैं हार गया। मैं उसके जाऊंगा उसको बजाने के लिए दाऊजी,
1: हाँ,
0: मोहल पार्टी में रख ले कह के मदराजी दाऊल की
1: हाँ,
0: मोलो पूछते दाऊजी है
1: हाँ,
0: वो लड़का है जाहू कहा थे वो
1: हाँ, हाँ,
0: तो ढोलक बजा। अब वो समय ना
1: हाँ,
0: ये हवा जा
1: हाँ,
0: वो का कहते
1: हाँ,
0: अरे मुंह मांगे सब मन मर गए
1: हाँ,
0: बेचारा ब्रिज हवा जाए
1: अच्छा
0: तो वो कर्म बजाय मेरे को ठिकाना नहीं रहा।
1: हाँ,
0: मोला दाऊ जी कहते वो जाहू कहा थे वो आदोहा
1: हाँ,
0: तो लेगर
1: हाँ,
0: ये बोलो क्या गजब के बजा थे दाऊ जी
1: हाँ,
0: ते धर ले बोला
1: हाँ,
0: हमार पार्टी में बजा ही
1: हाँ,
0: तहने। अब वो ढोलक बाज मारे थे काकरे
1: हाँ,
0: ओकरे वो नुनी
1: हाँ,
0: अब चद्दर मदर धरे थे ओकरे च नुनी झोला आ झोला में है ते ओकरे ची
1: हाँ,
0: ऐसे।
1: हाँ,
0: तब फिर रिहर्सल मिहर्सल हुई
1: हाँ,
0: ऐसे मुसीबत ऐसे मोर बाबू के मोर
1: हाँ,
0: माँ के
1: हाँ,
0: तबीयत एकदम खराब हो गई।
1: हाँ,
0: और 700 रुपया
1: हाँ,
0: 700 रुपया
1: हाँ,
0: मोर बाप है अपन इलाज बर मांगे रही सी
1: दाऊजी
0: कोनो
1: ने,
0: ला दाऊ जी नहीं
1: हाँ,
0: दूसरा ला
1: हाँ,
0: एक झन रही से।
1: हाँ, हाँ,
0: और वो कहता तोर बेटी 700 रुपया वो समय में बहुत
1: हाँ, हाँ,
0: 700 रुपया मोर नहीं देवे हमार माला बाबूजी खत्म हो गई से
1: हाँ हाँ
0: तो नहीं देवे तो तोर बेटी लेक जाऊं मैं यहाँ की।
1: हाँ हाँ
0: अब मैं रोत रहा
1: हाँ
0: हे भगवान सासों को कहूँ थे मैं दे दू दाई हो मैं दे दू काबर मोर माला परेशान करत हो। हाँ तो दे नहीं तो मोर बेटा के साथ शादी कर
1: अच्छा
0: ओके।
1: हाँ
0: हाँ मैं कह मोला 3 दिन वादा वक्त दे मोला 3 दिनों वक्त दे मैं तोर बेटा के साथ शादी नहीं करूं मोर कलाकारी में करूं मैं कलाकारी करके तोर पैसा दे दू फिर मोला शादी वादी करे कभी मैं नहीं करूं
1: हाँ
0: मोला ऐसा मत था दो और
1: हाँ
0: मोला ऐसा मोरमाल मत सताए करो
1: हाँ
0: ऐसे की के मैं हाँ
1: हाँ
0: दाव जी कर गये।
1: हाँ
0: तो गाड़ी घोड़ा नहीं रहा
1: हाँ
0: नान गांव ले रेंगत रेंगत रेंगत रेंगत रेंगत मैं यहाँ रवेली गया रवेली में रही से यादव जी आओ दाव जी के हूँ दाव जी 700 रुपया देवे का
1: हाँ
0: मोर माँ हाँ दूसरा करल पैसा मांगे रही से। अब वो हम मोला उल्टा सीधा बोला थे नहीं देवे थे तोर बेटी हमन ब्याह कर वो ऐसे की कहाँ थे दाव जी मोरी इज्जत ला बचा ले बाबू मैं एक एक पाई पाई करके तोड़ छोड़ दूंगा ऐसे के हूँ। तो ये आदू जी का काम करी
1: हाँ
0: ताका थे लेना है आज तो आ रही टूरी
1: हाँ हाँ
0: काली तेहा
1: हाँ
0: समार हा खुली ही
1: हाँ
0: बैंक है तान पैसा निकाल के तोला दे दू।
1: हाँ
0: अच्छा ता फलाना बोला कहते
1: हाँ
0: गन्नू तेला नान गांव छोड़ दे बेटा ऐसे कह के। तो मोला नान गांव छोड़ल गेरी से जो दाई आ गिरी से और दाई मल्ला कहाँ रखते हूँ मोर साथ
1: हाँ
0: तो ओकर मन भर कुरिया बना के
1: हाँ
0: रखे रहे हूँ। तो मैं कहूँ
1: जी
0: चल अब मोला साइकिल में लाई सो बैठार के
1: हाँ हाँ
0: अब मोला घर छोड़ दीस और
1: हाँ
0: सीधा दुरुक पहुंच गया वहां।
1: हाँ
0: अब दुरुक में 12 लड़के हमार सास के कर धर रही से
1: हाँ हाँ
0: तेला वो बेच के अपने
1: हाँ
0: छा
1: हाँ हाँ
0: अब बेच के वो पैसा मोला अब मैं
1: हाँ
0: नहात रही हूँ तरिया में
1: हाँ हाँ
0: एडरी कोला देना है पैसा तेला
1: हाँ
0: बता।
1: हाँ हाँ
0: तो मैं कह हूँ ओ एक जन गोंदिया नाम के हावे
1: हाँ हाँ
0: तेला देना है
1: हाँ
0: ऐसे कह के
1: हाँ
0: चल तहन मोल पैसा दे दीस दीस ताने वो पैसा ला लेके हैं ये दे तोर 3 दिन कह रहे हो ना मैं 2 दिन में तोर पैसा दे दू मगर मैं तोर बेटा नहीं करूं बिहाव। हाँ अब मोर ए ले तोर 700 रुपया कह के दे दे हूँ दाव लो पता नहीं रही से
1: हाँ
0: अब दाव हा सम्मार हो वो है एतवार एक ला के दे दीस
1: हाँ
0: शाम के पैसा
1: हाँ
0: दुरुग में दुरुग ले आके अपन माँ के करधाला मांग के गिरो
1: हाँ
0: धर के दे दीस
1: हाँ
0: आधो जी हा।
1: हाँ
0: भावना
1: हाँ
0: मैं बहुत भावना कदर करती हूँ
1: हाँ
0: अब करे
1: हाँ
0: तब आज मैं यहाँ छत्तीसगढ़ में जागृत हुई। अरे मैं क्यों दावा भेजे वही पैसा ला
1: हाँ
0: 700 लगा
1: हाँ
0: सुबेरे आते दाऊ हसाई

0: इल्मी
1: हाँ
0: 10 बजे
1: हाँ
0: बैंग ले छोड़ा
1: हाँ
0: के पैसा ला
1: हाँ
0: जेंटी काय
1: हाँ
0: बाबू जी कहाँ है तो तोर माँ हाँ वही बैठे एले पैसा का के पैसा दे तो पैसा दे दे अपना आदो जिला ओ आदो बाबू ला ओ भैया का भैया कहाँ वाला बोला तो दे दे इतना ते पैसा शाम के भेजे इतना दो जी ऐसे कही के कथे अरे कहाँ कथा ते है वो मैं कहाँ पैसा भेजू रात के वो
1: हाँ
0: तो वो तो रात के 10 बजे रात के पैसा लो मोला दी से
1: हाँ
0: 700 रुपया
1: हाँ
0: तो मैं तोला भेजे की के कहा रहे हूँ पापा
1: हाँ
0: अरे आदो जील कथे
1: हाँ
0: कैसे रे
1: हाँ
0: का विचार है तू
1: हाँ
0: मैं शादी करना चाहता हूँ जयंती से ऐसे तो तोल पूछे तोला रे

0: बोला तो दे दे इतना ते पैसा शाम के भेजे इतना दो जी ऐसे कह के तो कथे अरे कहाँ कथते है वो मैं कहाँ पैसा भेजू रात के वो तो वो तो रात के 10 बजे रात की पैसा लो मोला दी से 700 रुपया तो मैं तोला भेजे की के कहा रहे हूँ पापा अरे आदो जील कथे कैसे रे का विचार है तू मैं शादी करना चाहता हूँ जयंती से ऐसे तो पूछे तोला रे बड़ा घुसली नहीं तू भी पहले नहीं दाऊजी नहीं पूछे तो ते काबर ऐसा नहीं करते थे वो मन हाँ गुड़िन जाते आदिवासी वो मन एक ठक बात ला जानते वो मन लंदर फंदर ला नहीं जाने ते ये करता तो तुर बिहा हो गए और बिहा घरी से हमारा दो जी की
1: अच्छा
0: ओकर भाई हक का कथे माता में ग्रीता बोला अकलड्डी हमरा दिस आदो जी हां हां तो तू राहत लड़का जे सिरी ही से मोला आके कथे दाऊ जी मोला नहीं एकदम फटाक से नहीं बोलीस मोला काबर रिगुसली है और ये चीज से वो पसंद नहीं करे कलाकारी उमंग है बोला तो वो आ के दाऊ जी कथे दे दे इतना बाबूजी पैसा हाँ मैं दे दे हूँ बेटी कहते दाऊ जी बड़ा अजीब टाइप की लड़की फंसा दिस बोला अब मोहल फंसा दिस तब फिर कहते दाऊ जी अच्छा मुश्किल में ही एकदम एकदम ये भावना से बताइस दाऊ जी है सने सन पाते जिंदी वो लड़का तोरी इज्जत बचाई से हाँ तोर माँ के पैसा नहीं दे हो वो लड़का दे से तो मैं बोलो बहुत बड़ा अच्छा लगी फिर बोलो ओहो हो आज मैं डूबत रहे हो आज बोला झिकत नहीं देते हो 3 दिन में पैसा ला तो वो झिक के ले जतीस और वो समय बड़ा अजीब टाइप के रहा है माहौल है निकलने में मोर इज्जत बचाई से दाऊ जी जब ओकर भावना छोके है तो ओकर माँ बाप ला पूछ ले और मैं कल हूँ शादी की हूँ तहने फिर दाऊ जी ओकर बाबू जी आई हमार ससुर बोला देखे रही से नाचा में तो कहते टिका जाते कहते मैं आदिवासी लेके आऊंगा और मोर का कहते मैं गोड़ी ने मार कामिन बेटी हूँ मोर गोत्रल बताए का बात है तो मोर बेटा सा शादी कर दे आप बाबूजी है सब है आप सियान सियान हो आप तुम्हार मन के बात ला मैं कैसे काटू हूँ तो तोला सदा प्रोग्राम करेल पड़ी मैं वो प्रोग्राम काबर नहीं करूँ मैं करूँ मैं प्रोग्राम करूँ ऐसे ऐसे बाबू के दाऊ जी कथे प्रोग्राम करवे नहीं टूरी हाँ तोर पार्टी ला हम दोनों जन पार्टी ला चलाबो मंदराज जी बाबू कथे तोर बिहाव हो जाए ताने ताने धर के लेग जाई नहीं बाबू शादी कर ही तब मैं हाँ तोला छोड़ के नहीं जाऊं ना तोर पार्टी छोड़ के नहीं जाऊं ये ढोलक बजाई मैं प्रोग्राम करूं ऐसे ऐसे में ऐसे ऐसे में आ हा हा ओकर बाद में वो समय तोर रवेलिन ए नहीं रही से का कथे दिल्ली गेन अब दिल्ली से जब आपस आए ना अब ये तो आदो जी की बात हो गई शादी शुदा के बात हो गई जब आए ना तो यहाँ कोई पार्टी नहीं रही से ना चंदेनी गोंदा रही से ना सोनहा बिहार रही से ना नवा बिहार नहीं रही से कुछ नहीं रही से सिर्फ पहले प्रथम दौना पान के कलाकार भिलाई में हुई ओह देखे पर एकदम तो वही में मोला लोरी दिस दाऊ जी ओकर फोटो हवे ओकरो फोटो हवे दाऊ जी के

0: एकदम ए दौना पान में
1: हाँ हाँ
0: पूरा भेले ही।
1: हाँ
0: कोनो मोर बर दुकान लगाए बर
1: हाँ हाँ
0: कोनो कुछ उभर
1: हाँ हाँ
0: बोर सहारा करिस ए
1: अच्छा
0: लइका हा।
1: हाँ
0: घर तो बाहर ही से
1: हाँ
0: आदो जी के
1: हाँ हाँ
0: ताने मोला लग रखन लगिस।
1: हाँ हाँ
0: अब मोरो एक जन लइका नुनी आगे
1: हाँ हाँ
0: ताने ओकर बाद में
1: हाँ
0: फिर दाव जी हा चंदेनी गोंदा में वगैरह बुलाइस मुला। ओ समय में कथे
1: हाँ
0: कहाँ ते भिड़ा रही ये लड़का ला
1: हाँ हाँ
0: कहाँ पाए ये डूरी ला
1: हाँ हाँ
0: क्या गजब के लड़का है। कहाँ रथे
1: हाँ हाँ
0: बहुत वहाँ नान गांव रथे
1: हाँ
0: क्या कलाकार है लड़का है।
1: हाँ
0: मन चला रोवा दिस
1: हाँ हाँ
0: पब्लिक रोवा दिस गा के
1: हाँ
0: वो लड़का तक मन सो जाए
1: अच्छा लोरील सुन के
0: ये लोरी सुन के। देखल गिरी से महासिंह और देशमुख है भेलै आ रही से
1: हाँ हाँ
0: तब फिर बोला ये करते दाव जी हा कथे जयंती ते हा हमन पार्टी बनाबो कथन नवा बिहान ए सोनाहा बिहान।
1: हाँ हाँ
0: कौन कथे महासिंह आप ले देशमुख
1: हाँ
0: आदो जी बुला के हमन पार्टी बनाबो कथन गा आदो जी हम छत्तीसगढ़ ला जागृत करना चाहतन।
1: हाँ
0: ये लड़का के आवाज के माध्यम से छत्तीसगढ़ ही तब फिर में गए

0: नू
1: भापरी देशमुख, अब ये तानी दोनों जन के महासिंह के और देशमुख के एटुरी हम आदो जी। तो वो समय डॉक्टर रहा,
0: कौन
1: वो डॉक्टर है
0: हाँ।
1: वो मुलोग लेकर मन भर चाउर दे
0: हाँ।
1: पैसा दे
0: हाँ। हाँ।
1: वो गाना रही से वो आधार के इस मोर घर में
0: हाँ।
1: मैं गाना लिख के लाए हो जयंती।
0: हाँ हाँ।
1: कौन से गाना है पापा?
0: हाँ।
1: अरे ती गा सकता थे ला।
0: हाँ हाँ।
1: ये गाना हाँ ना सुना बिहान में चली। तो कौन से गाना है?
0: हाँ।

0: अभी लगाओ।
1: आचार्य नरेंद्र देव जील कहा थो का?
0: हाँ
1: हाँ, तो ओकरे ओकरे कुछ संस्मरण ला बताओ
0: हाँ
1: हमारे श्रोता मल्ला।
0: ओहो हाँ,
1: हाँ
0: मोर गाना ला वो सुनेरी से,
1: हाँ हाँ
0: ये लोरी गाना ला,
1: हाँ हाँ
0: ये में
1: हाँ
0: का कथे, ओ बम्बई दिल्ली भुला गया
1: हाँ हाँ
0: मोर छत्तीसगढ़। मैं छत्तीसगढ़ के बेटी हूँ तो छत्तीसगढ़ गाना गाऊँ,
1: हाँ
0: मैं बम्बई दिल्ली नहीं जाऊँ,
1: हाँ
0: मैं अपन छत्तीसगढ़ में ऐसे ऐसे गाना। बाबूजी मन हा
1: हाँ
0: बिकल गुरु जी
1: हाँ
0: आए तो का कथे, ये मन सब गाना लिखन लगी, मोला देख देख के, मोर आवाज ला सुन सुन के,
1: हाँ
0: मुरली चंद्राकर गाना लिखन लगी छत्तीसगढ़ी गाना।
1: हाँ
0: और वो समय और वो का कथे तो ये परमानंद डोकरा
1: हाँ
0: घलो गाना लिख

0: अपना गीत छत्तीसगढ़ी गाना
1: ओह
0: दीवाना हो गए छत्तीसगढ़ तेला जाने नहीं छत्तीसगढ़ गाना कैसे होते आपके गाना मन ला सुन थे जिला हम मेहनत करे हैं उसने गा के बताए तीयर जी कहाँ पर बुधी अरे मोर सुर तक भुला गिरे तिहरे तीयर जी कहाँ पर बुधी अरे मोर सुर

0: अच्छा दीदी, अभी आप मन हाँ बतात रहे हो जो अरपा पैरी की धार गीत ला आप गाए हो ओला, तो ओकर से जुड़े कोनो संस्मरण है, याद है तिला हमर श्रोता मल्ला बताओ।
1: अब महासिंह देशमुख दोनों जन के आंकड़ा चलत रहा है।
0: हाँ
1: शाम के सुबेरे 10-11 बजे महासिंह में करण रिहर्सल है,
0: हाँ हाँ
1: और ओकर बाद रात के
0: हाँ
1: देशमुख
0: हाँ हाँ
1: रिहर्सल करन हमन।
0: हाँ हाँ
1: वो चंदनी गोंदा बनाए
0: हाँ हाँ
1: और ये है सोनाहा बिहान बनाए
0: हाँ
1: महासिंह
0: हाँ हाँ हाँ
1: है गा। वहां में गांव ये टूरी का आवाज है बने लगते। तब मोलो चाउर मोर नान नान लेकर है
0: हाँ
1: दो तीन जन हो गयो।
0: हाँ
1: तब नान नान लेकर है तो चाउर दे मोलो दो कोनो बेखत 2 किलो 3 किलो 4 किलो पै चाउर दे।
0: हाँ
1: डॉक्टर हा के इलाज
0: नरेंद्र देव
1: करन।
0: वर्मा जी। हाँ
1: हाँ
0: हाँ
1: हाँ
0: हाँ वो हाँ घलो जुड़े रही इसका
1: हाँ
0: कौन से पार्टी जो
1: महासिंह
0: सुनहा बिहान में।
1: सोनाहा बिहान में
0: हाँ हाँ
1: ओला दिस गाना
0: हाँ
1: मुरली चंद्राकर हा
0: हाँ
1: घलो ओला दिस महासिंह ला
0: हाँ हाँ
1: ता असने कही दिस गात रहा हूँ गाना मल्ला।
0: हाँ
1: ओ सब गाना मल्ला सब लेखक गुरुजी मन हा
0: हाँ
1: सब मोर मुंह से गवाए
0: हाँ
1: तोर मुंह से 36 गिड़ी गाना अच्छा लगते वो
0: हाँ
1: बेटी
0: हाँ
1: ते गा
0: हाँ
1: ए
0: हाँ
1: एक गोटी मारो रे सना ना जा दूसरिया गोटी मारो रे धनीला पारी जाए चिड़ैया लकी गुटी मारो चिड़ैया लकी गुटी मारो चिड़ैया लकी गुटी मारो दौना फूल मुर चढ़ती जवानी के दिन चिड़ैया लकी गुटी मा। ये गाना मल्ला
0: हाँ
1: कभी मल्ला ला दे
0: जी
1: गा
0: हाँ
1: मार खा खा के एक तो पढ़े नहीं रहे अभी
0: हाँ हाँ
1: भी नहीं पढ़ो वो
0: हाँ
1: कैसे कैसे वो मोला
0: हाँ हाँ
1: दे वो समय
0: हाँ
1: उस उल बताऊं तोला
0: हाँ बताओ।
1: वो दे कह देवे संदेश
0: हाँ हाँ
1: फिल्मला।
0: हाँ हाँ बताओ ना दीदी।
1: अब ये ला ये गाना मल्ला
0: हाँ
1: एक एक दूसरा
0: हाँ
1: मोला
0: हाँ
1: गांव ओकर मन के गाना ला। तो दाऊ जी के महासिंघा ओकर पार्टी चला
0: हाँ
1: कम से कम 20-40 ठक प्रोग्राम। वो समय में एक ममता हानी इन्होंने जैसे रही से
0: हाँ 8-10 साल के का।
1: ममता हा
0: हाँ
1: जिला में गात रहे हो
0: हाँ हाँ
1: अरुपा पैरी ये मोर मुंह उसमें सबसे प्रथम गाए हो गाना ला
0: अच्छा
1: ये सबसे। तब बाद में ममता गई देशमुख के गाना गान कौन
0: हाँ
1: कौन गान भाई मैं अकेले जन तो नहीं गाऊं।
0: हाँ
1: एमे रहा निर्मला
0: हाँ
1: निर्मला एमे रहा कौन मैं और साधना ये तीनों जन गायिका हमन छत्तीसगढ़ के फेमस कलाकार हैं। हमर ला सब गा हैं तेला आज दूर सब गाते हैं।
0: जी। आप तीनों हाँ मिल के कौन एक बढ़िया गीत गावा जयंती जी बोला सुनाते हो।
1: वो है अपन गाय
0: हाँ हाँ
1: लेखक मान दे
0: हाँ हाँ
1: अपन अपन ढंग से
0: हाँ हाँ
1: तो बिकल गुरु जी मोला दी से गाना।
0: हाँ हाँ
1: अच्छा मोर आवाज के मोला कभू गाना ऐसे चटक बटक नहीं दिस
0: अच्छा
1: फोहरता गाना में गायच नहीं हो
0: हाँ हाँ
1: बोला ऐसे गाना दिस जिला पब्लिक सुशील गुरु जी
0: हाँ हाँ
1: ये सुशील गुरु जी खत्म।

0: गए बेचारा।
1: हाँ हाँ
0: नीचे रायपुर के
1: हाँ हाँ
0: ससुर गुरु जी
1: हाँ
0: ओ हा हा ओकरो गाना ओ एक ठन गाना केदार ला
1: हाँ हाँ
0: दी सोला
1: हाँ हाँ
0: साधना केदार मल्ला
1: हाँ हाँ
0: ओला फुलुआ कस लागे दारी बगिया झुमरी गी बगिया में ज ये केदार साधना दिस
1: अच्छा
0: अब मोला कौन ला दिस
1: हाँ
0: ससुर गिर गुरुजी हा गाना
1: हाँ
0: गुरुजी मन हम दे गाना
1: हाँ हाँ

रही रही दरुपा नजीउला जरा काला।

0: सुसुर गिरद गुरु जी दीस।
1: अच्छा हाँ,
0: अच्छा आए गुरु जी दीस।
1: हाँ
0: ए हा परमानंद बाबू जी पियूरी।

0: ये सब गाना मतलब कभी मन है परमानंद बाबू जी के गाना है
1: जी जी,
0: बिकल गुरु जी के गाना
1: जी जी,
0: ये मैं बाबू जी के अरपा पैरी के ढार, ये डॉक्टर जी के गाना है मनु नायक है, मनु नायक ला जानते
1: हो? हाँ, कही देवे संदेश फिल्म बनाई,
0: संदेश फिल्म बनाई,
1: हाँ,
0: वो समय में एक लेखक महतारी रहे,
1: हाँ, हाँ,
0: नहीं दो जन हो गए,
1: हाँ, हाँ,
0: अब वो घर ललीपत हो,
1: हाँ, हाँ,
0: मनु नायक,
1: हाँ,
0: अब मलाई चक्रवर्ती खोजात खोजात खोजात खोजात,
1: हाँ,
0: और दीपक गुरु जी मर गए बेचारा पोटिया के गा,
1: दीपक चंद्राकर,
0: चंद्राकर,
1: हाँ, हाँ,
0: ओला धार के आई दीपक घर की सर, कोई छत्तीसगढ़िया छत्तीसगढ़ में खोड डाले, गांव गांव खोड रहे, दुर्ग में चले गए, कहां कहां रायगढ़ चले गए,
1: हाँ,
0: बोला छत्तीसगढ़ गवा मोर पिक्चर में गवा आज बार,
1: हाँ,
0: मो चाहत हो ऐसे छत्तीसगढ़ के गवैया बोला भिड़ा देते थे,
1: हाँ,
0: ये ला हम पुलिस,
1: हाँ,
0: दीपक ला,
1: हाँ,
0: हमें फिर चाहे क्या थे एक जन है, अरे वो कर अब्बड़ नाम सुने, वो लड़का कहाँ रहते,
1: हाँ,

0: खेरागढ़ के
1: हाँ
0: जेला लता मंगेशकर ला वो सिखाए रही से गुरु
1: हाँ
0: जी
1: हाँ
0: ते मोला देखे लाइस ये गाना कौन गा है।
1: अच्छा, तो कहीं देवे संदेश में ये गीत लगाए रहे हो आप? हाँ
0: हाँ
1: अच्छा
0: ईचे गा रही हूँ
1: हाँ अच्छा
0: डोकरा रिहता
1: हाँ हाँ
0: परदेसी डोकरा रिस तक घर में रिकॉर्डिंग करल गेरी से ये
1: अच्छा
0: गाना मल्ला।
1: आकाशवाणी ले?
0: हाँ
1: अच्छा
0: ये लग गिरी से यहाँ
1: हाँ
0: के सब मशीन लगी रही से
1: हाँ हाँ अच्छा
0: मुरली।

0: चंद्राकर घर में,
1: हाँ हाँ
0: पूरा मशीन धर के गेरी से,
1: हाँ
0: वो नाम बता तो जो
1: बरसाती भैया,
0: बरसाती
1: हाँ
0: और एक जनऊ
1: बिसाहू,
0: बिसाहू
1: हाँ
0: और एक जनौरी से,
1: हाँ हाँ
0: तीनों झनगेरी से
1: हाँ
0: मोर गाना ला
1: हाँ हाँ
0: रिकॉर्डिंग करे बर।
1: अच्छा
0: ता वो मन गेरी से
1: हाँ
0: ता ये गाना मन ला सुने तो वो रेडियो में आए,
1: हाँ हाँ
0: तो वो रेडियो ला सुन के
1: हाँ हाँ
0: खेरा करके
1: हाँ
0: पड़ोसर आके मोला के थे बेटी ये गाना कैसे गाए है,
1: हाँ हाँ
0: ये गाना तोला कौन ऐसे
1: हाँ
0: गुरु जी तोला बता है और सिखा है।
1: हाँ हाँ
0: बोलो मोर कोई गुरु नहीं है,
1: हाँ हाँ
0: मोए अपन गाथों छत्तीसगढ़िया गा।

श्रीमती जयंती यादव जी, आप मन ह हमारे स्टूडियो में आए हो, सुघर गोड बात करे हो, हमला समय दे हो, तेकर खातिर आपला बहुत बहुत धन्यवाद।

0: मोर भुइयां कार्यक्रम में अभी आप सुन रहे थे लोक गायिका श्रीमती जयंती यादवले भेंट वार्ता का दूसरा।
1: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित मोर भुइयां कार्यक्रम आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। 9 बजने वाले हैं। अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से।

विविध भारती से आप सुन रहे हैं कार्यक्रम चित्रलोक। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, इस फिल्म का गीत, आवाज और गीत संगीत मित्राज का।

आज वर्ल्ड अस्थमा डे है, एक ऐसा दिन जो हमें अस्थमा जैसी सांस से जुड़ी बीमारी के प्रति जागरूक करता है। अस्थमा में सांस लेने में तकलीफ, सीने में जकड़न और खांसी जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, लेकिन सही देखभाल और नियमित इलाज से इसे नियंत्रित किया जा सकता है। धूल, धुआं और प्रदूषण से बचाव बेहद जरूरी है, तो आइए जागरूक बने, सावधानी अपनाएं और हर सांस को स्वस्थ, सुरक्षित और आसान बनाने की दिशा में कदम बढ़ाएं। और लीजिए अगला गीत आपको सुनवाते हैं विशाल मिश्रा, नेहा भसीन और इरशाद कामिल की आवाजों में। रचना है इरशाद कामिल की, संगीत है विशाल मिश्रा का और इस फिल्म का नाम है बड़े मियां छोटे मियां 2024 वाली।

विशाल शेखर और की आवाजों में अब आपको सुनवाते हैं फाइटर फिल्म का ये गीत। कुमार ने इस गीत को लिखा है, संगीत विशाल शेखर का।

चित्रलोक कार्यक्रम आप सुन रहे हैं विविध भारती से। लीजिए अब आपको सुनवाते हैं हक फिल्म का गीत। मालिनी अवस्थी और ज्योति मोहन की आवाजें हैं। कौशल किशोर ने इसे लिखा है, विशाल मिश्रा का संगीत।

अब आपको सुनवाते हैं भूत बंगला इस फिल्म का गीत, विशाल मिश्रा, नक्श अजीज और अंतरा मित्रा की आवाजों में। कुमार ने लिखा है, धुन बनाई है प्रीतम ने।

चित्रलोक कार्यक्रम का ये अगला गीत सुनिए फिल्म भूल भुलैया 3 से। आवाजें हैं पिटबुल, दिलजीत दोसांझ और नीरज श्रीधर की। गीत को लिखा है ध्रुव योगी, समीर और पिटबुल ने, और इस गीत को सुरों में ढाला है तनिष्क बागची, प्रीतम और पिटबुल ने।

भूल भुलैया 3 इस फिल्म के गीत के साथ ही अब चित्रलोक कार्यक्रम को संपन्न करने की नेहा अगरकर देसाई को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के।
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि।
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, हमने कोधे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

0: काम किया। इसी संदर्भ में संगीतकार नौशाद के उद्गार।
1: हमारे पास बाजा वाजा तो था नहीं। अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरूस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज़ उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है? मैं देखता हूँ कितने दिनों से तू आता है यहाँ, खड़ा रहता क्या देखा करता है? तो मैंने कहा, उस्ताद ये साज सामान जो आपके हैं, हारमोनियम, सितार, पियानो, ये सब देखा करता हूँ। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद। पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई, हाँ कहो बेटा क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, ऐसे फरिश्ता लोग थे वो साहब वहाँ से। अच्छा बेटा, वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने, कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए। तो ये चलता रहा सिलसिला। वही चीज़ें जो रात को वहाँ सुनी मैंने रॉयल सिनेमा में। तो एक रोज़ उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आँख बंद के पसीने पसीने लगा हुआ हूँ प्रैक्टिस कर रहा हूँ। वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आगे उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे हैं, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के। कहने, अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें? आप दुकान साफ करने नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे? मैंने कहा, उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं, माफ़ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आँखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी? मैंने कहा, हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सज़ा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सज़ा के लिए। अब मैं हुजूर माफ़ कर दीजिए, इसके बाद कभी नहीं छूँगा। नहीं सज़ा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा, जी नहीं। आपकी सज़ा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सज़ा। और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा, जहन अच्छा है, हैं? और लड्डन साहब को मैं एक रोज़ बुला के उनको सुनवाऊँगा, उनसे सीखा करो।

25 दिसंबर सन 1919 को लखनऊ में जन्मे संगीतकार नौशाद की गिनती भारतीय सिनेमा के एक सफल और सुरीले संगीतकार के रूप में होती है। मुंबई आने से पहले नौशाद ने लखनऊ में ही वाद्यों की एक दुकान पर

मुंबई में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने के लिए नौशाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी लगन, मेहनत, धैर्य और समर्पण का सकारात्मक परिणाम सामने आया। सन 1940 में नौशाद को स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का अवसर जिस फिल्म के लिए मिला वो थी प्रेम नगर।

संगीतकार नौशाद की धुनों से सजी 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने मनाई डायमंड जुबली।

संगीतकार नौशाद शास्त्रीय संगीत के चितेरे थे, लोक संगीत की शैलियों के भी वो मर्मज्ञ थे। नौशाद के संगीत से सजी फिल्म बैजू बावरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास का उदाहरण है। इस फिल्म के लिए नौशाद ने उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से पार्श्व गायन करवाया था। फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

फिल्म मुगले आजम की भी एक रचना भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत मिसाल है, जिसके लिए नौशाद ने शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का

सन 1952 में आई फिल्म आन। इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। महबूब साहब की इस फिल्म के लिए नौशाद साहब ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था और उसकी रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी।

सन 1955 में फिल्म उड़न खटोला के एक गीत को नौशाद जी ने बिना ऑर्केस्ट्रा के रिकॉर्ड किया था और वाद्यों के स्थान पर समूह स्वरों का प्रयोग किया था।

0: कोई
1: गायक मोहम्मद रफी को पार्श्व गायन का पहला मौका नौशाद साहब ने ही दिया था, पहले एक कोरस में और फिर प्रमुख स्वर के साथ। फिल्म थी पहले आप और वो गीत था ये।

0: होगी।
1: नौशाद साहब के संगीत से सजी प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का नामांकन ऑस्कर के लिए किया गया था। इस फिल्म के सभी गीत आज भी बेहद लोकप्रिय हैं।

नौशा साहब ने डीएन मधोक, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिया सरहदी और खुमार बाराबंकी जैसे चर्चित गीतकारों के साथ काम किया और शायद सबसे ज्यादा गीत संगीतबद्ध किए शकील बदायूनी के।

संगीतकार नौशाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 5 फिल्मों का निर्माण किया गया। उनके संगीत और जीवन पर आधारित जो किताबें प्रकाशित हुईं, उनके नाम हैं दास्ताने नौशाद, आज गावत मन मेरो, नौशाद की कहानी, नौशाद की जुबानी और नोट्स ऑफ नौशाद।

सन 1988 में टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए भी नौशाद साहब ने बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। लंबे अंतराल के बाद नौशाद जी ने माय फ्रेंड और तेरी पायल मेरे गीत नामक फिल्मों के लिए संगीत दिया।

सन 2005 में ताजमहल एंड इटर्नल लव स्टोरी के लिए भी नौशाद साहब ने धुनें तैयार की थी। नौशाद एक उम्दा शायर भी थे। उनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है आठवां सुर। भारतीय सिनेमा और संगीत में नौशाद साहब को उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण के अलंकरण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सिने संगीत के महान कलाकार नौशाद का सुरीला संगीत आज अमूल्य धरोहर है हमारी। उनके कालजय गीत अपने सुरों से यूं ही सम्मोहित करते रहेंगे संगीत प्रेमियों को। 5 मई सन 2006 को संगीत का ये महान साधक इस नश्वर जगत को छोड़कर चला गया, उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता।

0: फनकार। आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

0: FM 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 10 बजने वाले हैं। अगला कार्यक्रम हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: लीजिए सुनिए प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर।
2: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हैं छत्तीसगढ़ संवाद।

तंत्र में लोक कल्याणकारी सरकार का मुख्य उद्देश्य होता है सुशासन, यानी एक ऐसी व्यवस्था जिसमें हर एक नागरिक को समान अधिकार मिले और सबके लिए आगे बढ़ने के समान अवसर हों। इन्हीं लक्ष्यों की पूर्ति के लिए छत्तीसगढ़ शासन 1 मई से 10 जून 2026 तक प्रदेश भर में सुशासन तिहारी मना रहा है। इन दिनों में सुशासन की सरकार पहुंचेगी गांव गांव, द्वार द्वार। छत्तीसगढ़ सरकार चाहती है संवाद से संपूर्ण समाधान। इसके तहत समस्याओं का निराकरण निर्धारित समय में तेज गति से होगा। जन कल्याणकारी योजनाओं का प्रभावी क्रियान्वयन और विकास कार्यों को भी गति मिलेगी।

0: लेगी और पारदर्शिता के साथ जवाबदेही भी सुनिश्चित की जाएगी। इस व्यवस्था के लागू होते ही सभी विभागों ने कमर कस ली है हर उस व्यक्ति तक पहुंचने की जिन्हें जरूरत है अपने जीवन स्तर को ऊंचा उठाने की। धमतरी जिले में सुशासन तिहार का स्वरूप कैसा होगा बता रहे हैं जिलाधीश श्री अभिनाश मिश्रा।
1: अच्छा, सुशासन तिहार माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पे धमतरी जिले के विभिन्न ग्राम पंचायतों और ब्लॉक्स में ऑर्गेनाइज किया जाना है। सुशासन तिहार 15 से 20 पंचायतों को लेके एक किया जाना है और मई 1 से लेके जून 10 तक जैसे शासन का दिशा निर्देश है उसी तरीके से सुशासन तिहार किया जाना है। और सुशासन तिहार में 15 या 20 पंचायत को लेके एक कैंप लगाया जाएगा। सिमिलरली नगरी क्षेत्र में हमारे 10 वार्ड को लेके एक कैंप लगाया जाएगा और उसमें जो लोग आते हैं वहां पे उनके जो बेसिक इश्यूज हैं चाहे नल कनेक्शन हो या पीएम आवास को लेके नरेगा पेमेंट को लेके या आय जाति प्रमाण पत्र को लेके ये सभी जो समस्याएं हैं उसका निराकरण किया जाएगा। उसके साथ साथ जो सामूहिक समस्याएं हैं कहीं पे मान लीजिए रोड का कनेक्शन बिजली कनेक्शन इसी का भी आवेदन लिया जाएगा और एक समयबद्ध तरीके से इसका निराकरण किया जाएगा। इसमें हमारे साथ साथ हमारे सभी हमारे जिले के सभी जिला प्रशासन की तरफ से सभी विभागों का स्टॉल्स लगेगा। लास्ट ईयर भी लगा था जैसे पशुपालन विभाग है कृषि विभाग है लेबर विभाग है हेल्थ स्वास्थ्य विभाग है ये सभी अपने जो जन कल्याणकारी योजना है केंद्र सरकार और राज्य सरकार का उसका स्टॉल्स लगाएंगे और जो योजना है जन कल्याणकारी योजना उसका लोगों तक बातें पहुंचाएंगे स्पेशली। और कोई हितग्राही आता है कोई छूट गया है तो त्वरित वहां पे निराकरण करेंगे और जितने भी जन कल्याणकारी योजना है उसका प्रचार प्रसार होगा। उसके साथ साथ गाँव में और कौन कौन से विकास कार्य किया जा सकता है या शहरों में लिया जा सकता है उस संबंध में चर्चा रहेगी। हेल्थ कैंप वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाना है वहाँ पे लेबर का कैंप ऑर्गेनाइज किया जाने ऑन स्पॉट किया जाने और कुछ प्रोग्राम का हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। आप जैसे देखेंगे लास्ट ईयर हमारे यहाँ पे 2,40,000 आवेदन आए थे उसमें से लगभग 70,000 पीएम आवास संबंधित थे। तो पीएम आवास में इस सभी समस्याओं को हम लोगों ने स्पेशली जो जो पात्र हितग्राही थे उनको हम लोगों ने इंक्लूड किया भारत सरकार ने जो रखा हुआ था। और ऐसे कई सारे जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं कहीं पे नल जल योजना से छूट गए थे कहीं पे राशन कार्ड से वंचित थे तो हम सभी को जैसे जो भी पात्र आवेदन थे उसको हम लोगों ने निराकरण किया। इस साल भी हम लोग अपेक्षा कर रहे हैं 40 डेज का पूरा है 23 हम लोग कैंप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं पूरे हमारे जिले भर में पूरे जिले भर में हम लोग ये कर रहे हैं। नहीं इसमें उसके साथ साथ सीएम साहब का भी कहीं पे भी आ सकते हैं सीएम साहब का और उसके साथ साथ सीएम साहब का जो विजिट रहेगा वहाँ पे मीडिया इंटरेक्शन रहेगा कुछ जगह विजिट भी करी हुई है। उसके साथ साथ जो जिला के जो अलग अलग ये है योजना में जिला की जो स्थिति है उसका समीक्षा किया जाएगा तो इसमें सीएम साहब विजिट भी करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और समीक्षा बैठक भी लेंगे। और इसी तरीके से हमारा सुशासन तिहार रहता है और फाइनली जब रहेगा जैसे कि जून 10 को कंप्लीट होगा तो हम लोग कंपाइल करेंगे कुछ चीजों को ऑन स्पॉट होते जैसे आय जाति निवास प्रमाण पत्र हो गए ये सब चीजें हम लोग तुरंत ही करते हैं ना।

छत्तीसगढ़ सरकार का सुशासन तिहार एक महापर्व है जिसमें प्रदेश के हर एक नागरिक को शामिल किया गया है। शासन की छत्र छाया में सभी जन एक हैं, सभी समान हैं और सभी सम्माननीय हैं। इस त्योहार में ग्राम पंचायतों में शिविर लगाए जाएंगे, ग्रामीणों की मांगों और शिकायतों का समाधान जल्दी से जल्दी किया जाएगा। आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों पर सरकार विशेष ध्यान दे रही है।

0: है। इसी के अंतर्गत सरगुजा जिले में सुशासन तिहार मनाने की व्यापक तैयारियां की गई हैं। इसके बारे में विस्तार से बता रहे हैं सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री विनय कुमार अग्रवाल।
1: विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी छत्तीसगढ़ शासन में हमको निर्देश प्राप्त हुआ है शासन से कि सुशासन तिहार 2026 का आयोजन हमको करना है। ये आयोजन विगत वर्ष की भांति 3 चरणों में होगा। इसमें प्रथम चरण अभी चल रहा है। इसमें प्रथम चरण जो है हमारा 30 अप्रैल तक चल रहा है और 30 अप्रैल तक हमको ये करना है कि जो भी हमारे ग्रामीण क्षेत्र की ऐसी समस्याएं हैं जिसका निराकरण अभी किया जा सकता है, उनका निराकरण हमको अभी करना है। जिसमें मान लीजिए किसी के प्रधानमंत्री आवास की राशि का भुगतान लंबित है और उसमें हमारे स्तर से कोई कार्यवाही लंबित है, या फिर कहीं गाँव में हैंडपम्प आदि खराब है, वो हैंडपम्प टेक्नीशियन को भेज के उसको सुधरवाना है, तो आदि ऐसी जो भी समस्याएं हैं जो हम अपने स्तर पर अभी उसको सुलझा सकते हैं, वैसी समस्याओं को हमको निराकृत करना है। ये काम हम 30 अप्रैल तक करेंगे और उसके बाद जो दूसरा चरण चालू होगा उसमें 1 मई से 10 जून तक 15 से 20 पंचायतों के क्लस्टर बनाए गए हैं पूरे जिले में, और इन क्लस्टर्स में किसी एक प्रमुख ग्राम पंचायत में हम इसमें जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन करेंगे। जन समस्या निवारण शिविर के दिन हम आम जनों से आवेदन प्राप्त करेंगे, उनकी क्या मांगे हैं, क्या शिकायतें हैं, और जो मांग और जो शिकायत उसी दिन हम निराकृत कर सकते हैं शिविर वाले दिन, उस दिन हम निराकरण करके संबंधित हितग्राही को उससे लाभान्वित करेंगे। और साथ ही साथ ऐसे आवेदन जिनके निराकरण में समय सीमा होगी, समय लगेगा, उनको हम आने वाले 1 माह के अंदर निराकरण करके उनको अवगत कराएंगे। इसके लिए हमारे जिले में 439 ग्राम पंचायतों में हमने कुल 24 जन समस्या निवारण शिविर की एक रूपरेखा तैयार करी है और इसका एक आदेश जारी हो गया है। पूरे सुशासन तिहार के लिए नोडल अधिकारी मुझे स्वयं को बनाया गया है और साथ ही साथ अपने अपने अनुभाग में संबंधित SDM इसके सहायक नोडल अधिकारी रहेंगे। शिविर के दिन शुरू में जो पल प्रतिपल जो कार्यक्रम रहेगा वो इस प्रकार रहेगा। प्रातः 10 बजे से हम शिविर प्रारंभ करेंगे और इससे सभी क्षेत्र के सम्मानित जनप्रतिनिधियों को अवगत कराया जा रहा है और ग्राम पंचायतों में आवश्यक प्रचार प्रसार मुनादी आदि की जा रही है। शिविर वाले दिन 10 बजे से पहली हमारे जो कार्यक्रम रहेगा उसमें हम कार्यक्रम का शुभारंभ करके सामान्य जो विभागीय योजनाएं रहती हैं उनकी हम जानकारी देंगे विभागीय जिला स्तरीय विभागीय अधिकारी मंच से, जिससे हितग्राही लाभान्वित हो सकते हैं। और साथ ही साथ पैरेलली एक काउंटर रहेगा जिस पर हितग्राही आके अपनी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। इस आवेदन के लिए भी हमने एक प्रारूप तैयार किया हुआ है और उस प्रारूप में एक यूनिक कोड दिया है हर शिविर को। हर शिविर का एक यूनिक कोड है और जो भी व्यक्ति आवेदन देगा उसको एक पावती भी हम उसी दिन प्रदान करेंगे, तो जिससे उस आवेदन क्रमांक के बाद वो हितग्राही हमारे सुशासन तिहार के पोर्टल में जाकर उसकी वस्तु स्थिति जांच सकता है कि उसके आवेदन का निराकरण क्या हुआ। और इसके अलावा भी व्यक्तिशः 1 माह के अंदर हम संबंधित हितग्राही को उनके द्वारा दिए गए आवेदन के निराकरण की स्थिति से उनको अवगत कराएंगे। तो इस प्रकार ये पूरी प्रक्रिया चलेगी और हमारा प्रयास रहेगा कि सुबह 10 बजे से शिविर प्रारंभ हो जाए और 2 बजे तक, क्योंकि गर्मी का दिन है, धूप में बहुत ज़्यादा हितग्राही रुकना नहीं चाहते, इसीलिए 10 से 2 बजे तक हम ये शिविर समाप्त कर लेंगे। जो तीसरा महत्वपूर्ण घटक है इस सुशासन तिहार का वो है जिसमें माननीय मुख्यमंत्री महोदय, हमारे प्रभारी मंत्री महोदय और अन्य मंत्रीगण और हमारे विभागीय प्रमुख अधिकारीगण, वे सभी अचानक औचक निरीक्षण करेंगे जिला स्तर पे शिविर में। और शिविर के दिन निरीक्षण करने के पश्चात उनके द्वारा हमारी समीक्षा बैठक भी आयोजित की जाएगी। तो विगत वर्ष की भांति इस वर्ष भी संभव है कि सरगुजा संभाग की बैठक हमारे जिले अंबिकापुर में ही आयोजित हो। उसके लिए भी हम व्यापक तैयारियां कर रहे हैं जिसमें महत्वपूर्ण जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उन इंडिकेटर्स में हमारी प्रगति क्या है और रैंकिंग क्या है उस पर समीक्षा की जाती है। तो हमारा सतत प्रयास है कि जो शासन की महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं उससे हम लोगों को निरंतर लाभान्वित करते रहें। और इस प्रकार ये सुशासन तिहार हमारे 1 मई से 10 जून के बीच में संपन्न होगा और इसको सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न कराने के लिए जिला स्तर पर विभिन्न अधिकारी कर्मचारियों की ड्यूटी लगा दी गई है। इस पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना आए, आम जनों को।

0: छत्तीसगढ़ सरकार के लगातार चलाए जा रहे विकास कार्यों और अभियानों के कारण गांवों की तस्वीर एकदम बदल गई है। मौसम की मार को झेलती गांवों की कच्ची सड़कों और कच्चे मकानों का जीर्णोद्धार हो गया है। बिजली पानी की उपलब्धता पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश ये भी है कि गांव के लोगों को गांव में ही जीविकोपार्जन की सुविधाएं प्रदत्त हों। इसके अलावा और भी जो कुछ बुनियादी जरूरतें हैं वो सब इस सुशासन तिहार में पूरी करने की मंशा सरकार की है। धमतरी जिले में स्थित ग्राम पंचायत कपाल फोड़ी की सरपंच श्रीमती हेमिन साहू सुशासन तिहार को लेकर बेहद उत्साहित हैं।
1: 8 माह से मतलब हैदम जही मोर पंचायत के आदमी मन मतलब 10-12 पंचायत के ऊंचे लगे है। 8 तारीख से चालू है। सचिव भैया कल मोल जानकारी दी से सरपंच मतलब बता देवे तो गांव की जनता ला हाँ का डलवा देवे की के हाँ का भी डलो हूँ। अपर साल तो मोर गाँव में ही करी हूँ। मोर पंचायत में ना पिछले साल मतलब अधिकारी आए रही से एक था मतलब ये रखे रही से वोट डाले असन मतलब बक्सा वही में मतलब सब झन ला मतलब जे जे चाहिए ते ते लिख के डाल दू ऐसे की से तब उसने डालत गी से सरपंच तो डाल सकता तो पंचायत के बारे में कुछ कुछ चाहिए था कही के तब महू डाले रही हूँ पंच मन कर भी डलवा रही हूँ। और बाद में ना मेन है मतलब खिसोरम लगे रही से खिसोरम रही से सुशासन त्योहार दिवस है तो खिसोरा गे रहे नए साल है दो दे दी है। अभी ना एक आध ठन हो से अभी पूरा मांग पूर्ति नहीं हो है और दो ठन लो दिन जानकारी दी से कि जनपद में कागजात जमा करो पर बाद में आने वाला है कहीं बोला रही से साहब है तो दिन जनपद में जाग जमा भी करे हो और दो ठनाली नाली में लदे रहे हो तो एक ठनाली साफ सफाई में से एक ठनाली बनवा हो। सरकार है ना सुशासन दिवस त्योहार निकाले है तो अच्छा भी निकाले है। कई जन मन गैस वैस पर फार्म भरी ना मतलब गैस भी मिल गए और जे यह करा थे तेला मिला थे। अब एक जन लड़की बैठे बैठी है अरे 15-20 साल हो गई सोल कुछ नहीं मिला तरी तलाक पेपर के नाम लेके वो गंवा डी से सुशासन दिवस में डाली से ना बोले होता तो कर राशन कार्ड अभी बन गए। अच्छा। मतलब बहुत मतलब अच्छा है सुशासन दिवस त्योहार है। अगर आदमी जनता समझी था भाई जनता नहीं समझी था नहीं है लेड से ही लेकिन अही होकर फायदा मिल ही एला में मानत हूँ। अब काबर एक साल हो गए मॉल बने देखा था कुछ कुछ एला मोला अच्छा लगी से सरकार के नियम अच्छा है। मैं मोर पंचायत में कमी एक है मतलब गली गली मोला नाली की जरूरत है वही चीज ला फिर डालू मैं सुशासन त्योहार में परसा लो डाले रही हूँ ऐसो और डाल हूँ मोला गली में नाली की बहुत जरूरत है अब एक था गली सीसी रोड की जरूरत है तो वही लेना फिर जाके फिर डालू एकदम में अब ये नाला वाला तो आगे दू ठन तो आगे कैसनो नहीं थे और नाली मोला गली गली नाली की जरूरत है। मोर गांव का आदमी मन जंतर रिंगे पर बहुत तकलीफ है मोला खुद तकलीफ लगते रिंग थोती है काबर गली में अब सब घर नल जल योजना है सब घर घर में नहाना शुरू कर दी पानी बहात है तो बोला अंडरग्राउंड नाली की मोला मतलब मांग है भाई अब मैं वही मतलब और डाल हूँ मतलब वही सोचे हूँ और बने हो तब हो बोले हो जनता ला कि मैं अंदर करो नाली बने आके प्रयास करूँ।

0: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार के अंतर्गत ग्राम पंचायत के साथ साथ वार्ड स्तर पर विशेष शिविर लगाए जा रहे हैं। इससे उज्ज्वला योजना, राशन कार्ड, आयुष्मान भारत और सामाजिक सुरक्षा पेंशन जैसी योजनाओं के पात्र लोगों को बड़ी संख्या में लाभ मिलेगा। इसके अलावा नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन, आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र भी समयबद्ध तरीके से बनाए जाएंगे। इस तरह सुशासन तिहार जन समस्याओं का त्वरित समाधान करने और शासन की योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंचाने के लिए शुरू किया गया है। CEO कोरेला पेंड्रा मरवाही श्री मुकेश रावटे।
1: मुख्यमंत्री महोदय, छत्तीसगढ़ शासन के निर्देश पर 1 मई से 10 जून 2026 तक सुशासन त्योहार के रूप में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके माध्यम से जिले में 1 मई से 10 जून के बीच में 13 जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 10 शिविर ग्रामीण स्तर पर कराया जा रहा है और 3 शिविर नगरीय निकाय में कराया जाएगा। इन शिविरों के माध्यम से सबसे अधिक लाभ उन ग्रामीण जनों को होगा जो कि जिला मुख्यालय तक किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, समय पर अपनी बात शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पाते हैं। उनकी समस्याएं जिस प्रकार से, जैसे कि सामाजिक पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, पानी की समस्याएं, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, राजस्व संबंधी मामले जिसमें नामांतरण, फौती नामांतरण, बंटवारा, सीमांकन आदि के लंबित मामलों की समस्याओं के संबंध में अपनी समस्याएं जिला प्रशासन के समक्ष रख सकते हैं। विभिन्न योजनाओं के मजदूरी भुगतान संबंधी, प्रधानमंत्री आवास निर्माण के संबंध पर या शौचालय निर्माण, राशन न मिलने संबंधी, स्कूल आंगनबाड़ी के संबंध में जो शिकायतें हैं उसका भी निराकरण जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर पर किया जाएगा। ऐसे आवेदन जिनका निराकरण त्वरित रूप से किया जा सकता है, उनका निराकरण त्वरित रूप से जिला स्तरीय टीम के माध्यम से या जनपद के अधिकारी कर्मचारियों के माध्यम से किया जाएगा। और ऐसे मांग या शिकायतें जिनका निराकरण में समय लगने की संभावना है, उनका एक निर्धारित समय सीमा में निराकरण किया जाएगा और निराकरण की जानकारी संबंधित आवेदकों को, शिकायतकर्ताओं को दी जाएगी। और यदि उससे संतुष्ट नहीं होते हैं तो उनका आवेदन उनसे उच्च स्तरीय अधिकारी से, उच्च लेवल से कराने का प्रयास किया जाएगा और उनके आवेदनों का 100% निराकरण किया जाएगा।

0: छत्तीसगढ़ में सुशासन को और अधिक सुदृढ़ और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से ही राज्य सरकार ने सुशासन तिहार का आयोजन किया है। इसके तहत इस बार जन शिकायतों के समयबद्ध निराकरण पर विशेष जोर दिया जा रहा है। लोकतंत्र में सुशासन की यही आधारशिला है और आम नागरिकों को पारदर्शी, सरल और त्वरित सेवाएं उपलब्ध कराना राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। CSPDCL के प्रबंध निदेशक श्री भीम सिंह,
1: सुशासन त्यौहार से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि राज्य शासन ने एक अति महत्वपूर्ण योजना मुख्यमंत्री बिजली बिल समाधान योजना लागू की है, जो कि माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देसाई जी द्वारा लॉन्च की गई है। ये इसका उद्देश्य ये था कि जो उपभोक्ता बिजली बिल नहीं पटा पाए और उनका विद्युत देय संचयित होकर इतना ज्यादा हो गया कि वो पटा पाने की स्थिति में नहीं रहे, इसके लिए सरचार्ज में भी छूट प्रदान की गई है और मूल राशि में भी छूट प्रदान की गई है, जिससे कि वे उपभोक्ता जिनका कनेक्शन

आ जा चुका है या अभी भी पट्टा पाने की स्थिति नहीं बन रही है, इस योजना का लाभ लेके वो फिर से कनेक्शन ले सकते हैं और समाज की मुख्य धारा में शामिल हो सकते हैं, क्योंकि बिजली जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है समाज के लिए, क्योंकि आजकल हर घर में बिजली के बिना कोई काम नहीं हो सकता है। सुशासन त्योहार में कई टाइप के आवेदन आते हैं, जैसे लो वोल्टेज के हैं, एक दो खंबा का एक्सटेंशन चाहिए और पोल झुक गया है, तार नीचे हो गए हैं, इस टाइप से कई शिकायतें और मांग भी प्राप्त होती हैं। तो मांग के संबंध में केंद्र शासन की ही योजना वर्तमान में चल रही है, पीएम जगुआ योजना, जो कि धरती आबा जो झारखंड के थे भगवान बिरसा मुंडा के नाम से चालू की गई है। इस योजना में हम ट्राइबल एरिया के अलावा बाकी एरिया को भी शामिल कर रहे हैं, जिसमें कि विद्युत की आवश्यकता है, कुछ पोल लगाए जाने हैं और कुछ आवास छूटे हैं जिनको विद्युतीकृत किया जाना है, उनको इस योजना के अंतर्गत विद्युतीकृत किया जाएगा और अभी वर्तमान में यह योजना प्रगतिशील है। दूसरा, मेंटेनेंस के जो आते हैं शिकायतें, हमारा जो वंडन है ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस का काम वो साल भर चलता रहता है, फिर भी यदि कहीं कोई छूट जाता है तो उसको हम तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे ताकि जनता को निर्बाध विद्युत आपूर्ति हो सके, सुरक्षित विद्युत आपूर्ति।

0: छत्तीसगढ़ में सुशासन तिहार एक जन अभियान भी है और जन आंदोलन भी। इस बार इस तिहार को और अधिक व्यापक स्वरूप में लागू किया गया है। जनहित को केंद्र में रखना इस पहल की सबसे बड़ी विशेषता है। सुशासन तिहार सरकार की उस प्रबल इच्छा शक्ति का प्रतीक है जहां जनता की समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाता है। गोरिल्ला पेंड्रा मरवाही की जिलाधीश श्रीमती कमलेश मंडावी।
1: माननीय मुख्यमंत्री महोदय एवं छत्तीसगढ़ शासन के निर्देशानुसार हमारे जिले में भी 1 मई से 10 जून तक सुशासन तिहार का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत हम जिले में कुल 13 जिला स्तरीय जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन करेंगे, जिसमें से 10 शिविर जो है वो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में होंगे और 3 शिविर जो है वो नगरीय निकाय क्षेत्र में रहेंगे। सुशासन तिहार की प्रशासनिक तैयारी हमारे जिले में पूरी तरह से हो चुकी है। सभी जिला स्तरीय अधिकारियों को हमने 15 दिन पहले ही निर्देश जारी किया हुआ है कि फील्ड स्तर पर अपनी योजनाओं की जमीनी हकीकत जान लें और अगर इस दौरान कुछ आवेदन समस्याओं या मांग से संबंधित मिलते हैं तो उन आवेदनों का समुचित परीक्षण कर आवेदनों का निराकरण करें। इसके अलावा मैं जिले वासियों से अपील करती हूं कि जितने भी स्थानों पर हम जो शिविर आयोजित कर रहे हैं उसमें अपनी अधिक से अधिक उपस्थिति और सहभागिता सुनिश्चित करें और अपनी समस्याओं से अवगत कराएं, ताकि जो समस्याएं हम जिला स्तर पर निराकृत कर सकते हैं बिल्कुल हमारा प्रयास रहेगा और जो समस्याएं या मांग शासन स्तर से होगी वो हम शासन स्तर को अवगत कराएंगे।

अभियान के कारण जनता और प्रशासन के बीच की दूरी निश्चित रूप से कम होगी और ये आम लोगों के लिए एक बड़ी राहत सिद्ध होगी। इससे प्रशासनिक प्रक्रियाएं आसान होगी और लोगों का समय और संसाधन दोनों की ही बचत होगी। ये त्योहार सरकारी सेवाओं को सरल, पारदर्शी और प्रभावी बनाने की दिशा

लंबी एक महत्वपूर्ण कदम है। सुशासन तिहार को लेकर जन साधारण में एक उत्साह है, एक उमंग है, क्योंकि सरकार उनके द्वार जो आ रही है। इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि इस तिहार की मेजबानी खुद सरकार कर रही है और जनता मेहमान की भूमिका में है, यानी आस्था और विश्वास का संदेश लेकर जनता और सरकार एक साथ बढ़ रहे हैं उजाले की।

0: इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता थे छत्तीसगढ़ संवाद।
1: उजाले की ओर ये प्रायोजित कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। थोड़ी देर में हमारा अगला कार्यक्रम होगा।
2: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसाद प्रायोजित कार्यक्रम उजाले की ओर अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर यह प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर का है। 10:30 हुए हैं। पेश है नए तराने। दे दे प्यार दे। आइए इस फिल्म का गीत सुनते हैं अरमान मलिक के संगीत और उन्हीं की आवाज में, जिसे लिखा है कुणाल वर्मा ने।

कभी मैं याद आऊं तो चले आना। ये मीठा सा गीत अरमान मलिक की आवाज़ में, उन्हीं के संगीत निर्देशन में आप सुन रहे थे फिल्म दे प्यार दे से। आइए सुनते हैं कार्यक्रम का अगला गीत। हिमेश रेशमिया की आवाज़, हिमेश रेशमिया का ही संगीत निर्देशन और समीर अनजान का लिखा हुआ गाना अब हम आपको सुनवाने जा रहे हैं। फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम।

0: हिमेश रेशमिया की आवाज़ में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म सनम तेरी कसम से। और कार्यक्रम नए तराने में आगे बढ़ने से पहले आइए सुन लेते हैं आज की यातायात व्यवस्था के बारे में हमारा दैनिक कार्यक्रम ट्रैफिक अपडेट्स।
1: ट्रैफिक अपडेट्स आप बिलासपुर के सभी श्रोता साथियों को उमा शंकर पांडे का स्वीकार करें सादर अभिवादन। कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। आज शहर में विभिन्न समूह या संगठनों के द्वारा अपनी मांगों को लेकर कहीं धरना प्रदर्शन तो कहीं मशाल रैली निकाले जाने की योजना है। इसी क्रम में आज शाम कांग्रेसजनों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में शाम 4 बजे कांग्रेस भवन में एकत्र हो वहां से रैली शुरू नेहरू चौक आकर विरोध प्रदर्शन किए जाने की योजना है। चूंकि नेहरू चौक शहर का सबसे बड़ा सबसे महत्वपूर्ण चौक है, प्रायः सभी शासकीय कार्यालय के समूह का केंद्र बिंदु है। पास ही माननीय जिला न्यायालय है, इसी चौक से होकर माननीय उच्च न्यायालय जाने का प्रमुख मार्ग भी है। धरना प्रदर्शन के प्रस्तावित समय में ही लगभग सभी शासकीय कार्यालय बंद होने का समय होगा। इस समय यहाँ यातायात बहुत अधिक होगा, अतः प्रदर्शनकारी यह सुनिश्चित करें कि आपके इस विरोध प्रदर्शन से आम यातायात बाधित ना हो। इसी प्रकार आज ही इसी समय सहायक एवं समग्र शिक्षक फेडरेशन के द्वारा अपनी मांगों के संबंध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन सौंपे जाने की योजना है। फेडरेशन के सभी सदस्य भी यह ध्यान रखें कि आपके प्रदर्शन से आम यातायात प्रभावित ना हो। इतना ही नहीं, आज ही इसी समय सर्व ईसाई महासभा छत्तीसगढ़ एवं इनके सहयोगियों के द्वारा अपनी मांगों के संदर्भ में शाम 4 बजे संयुक्त संचालक कार्यालय तारबहार स्कूल मैदान से अंबेडकर चौक तक सर्वदलीय सभा मशाल रैली निकाले जाने की योजना है। मशाल रैली के सभी सदस्य रैली के दौरान पूरी सड़क में बिखर कर न चलते हुए कतार में चलें, सड़क के एक किनारे चलें तथा एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड जैसे वाहनों को तत्काल साइड देवें। साथियों, इस प्रकार के प्रदर्शन में सदैव यह ध्यान रखना होगा कि अपने अधिकारों या मांगों के लिए किसी दूसरे के अधिकारों का हनन ना हो, अर्थात आम आवागमन सड़कों में तनिक भी बाधित ना हो, ताकि लोग अपने गंतव्य समय पर पहुंच सकें। मित्रों, हमारा हर संभव प्रयास होना चाहिए कि सड़कों में कोई दुर्घटना ना हो। फिर भी जाने अनजाने किन्हीं कारणों से दुर्घटना हो भी गई और व्यक्ति चोटिल हुआ हो, यदि आर्थिक तंगी से वह अपना इलाज ना करा पावे तो उसे इसी हालत में ना छोड़े। ऐसे प्रकरण में सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त होता है, जिससे जान बच सकती है, व्यक्ति विकलांगता से भी बच सकता है। बस घायल को तत्काल किसी भी अस्पताल ले जाने, वहां से उसे संबंधित अस्पताल भेजा जा सकता है और उसे मिल सकती है एक नई जिंदगी। हमेशा यातायात नियमों का पालन करें, आपकी यात्रा शुभ हो।
0: बहुत बहुत धन्यवाद यातायात पुलिस बिलासपुर का इन अपडेट्स के लिए। और नए तराने कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम संबंधी एक सूचना दे दें। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाए

जाता है। इसी कड़ी में गुरुवार दिनांक 7 मई को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आरकेएस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से 11 बजे तक सवाल पूछने का विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव और नर्सरी प्रबंधन। इसके बाद 11:30 से 11:30 तक आप पूछ सकते हैं खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व और सावधानियां विषय पर सवाल। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 2665922। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाइएगा। 7 और 8 मई को शाम 7:30 से इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग आप सुन सकते हैं।

मुझे। तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में कार्यक्रम नए तराने का अगला गीत हम आपको सुनवाने जा रहे हैं, जिसे हमने लिया है फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। इस गीत को लिखा है गुरप्रीत सैनी और अली सेठी ने, रोचक कोहली ने संगीत निर्देशन दिया है।

ये गीत आप सुन रहे थे तुलसी कुमार और अरिजीत सिंह की आवाज़ों में फिल्म सत्य प्रेम की कथा से। कार्यक्रम का अगला नया सा गीत सुनिए जिसे हमने लिया है फिल्म श्रीकांत से।

ये मीठी सी आवाज़ है जुबीन नौटियाल की। साथ दिया है इस गीत में तुलसी कुमार ने। अशोक श्लोक लाल का लिखा हुआ गाना, तनिष्क बागची का संगीत निर्देशन। आइए सुनते हैं श्रीकांत फिल्म का ये गाना।

0: नई चेतना आई है, बदलाव की बयार लाई है। हिंसा को ना कहें, सम्मान को हाँ कहें। महिलाओं की सुरक्षा सबकी जिम्मेदारी है, जीरो टॉलरेंस यही है हमारी तैयारी। लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ नई चेतना, नया भारत।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।

आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण आप सुन रहे हैं, कार्यक्रम सुन रहे हैं नए तराने। आगे बढ़ने से पहले हम अपने श्रोताओं को याद दिला दें, आज शाम 5:05 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम अमृत धारा। भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से कैसे बचे, कैसे सुरक्षित रहें, इस विषय पर बातचीत होगी डॉक्टर योगेश जैन से। भेंटकर्ता और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। 7:30 आज किसानवाणी कार्यक्रम में स्थल रिकॉर्डिंग पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में प्रसारित किया जाएगा, जिसमें ग्राम बेल टुकड़ी और विकासखंड मस्तूरी के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकन किया गया कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। संयोजन और प्रस्तुति डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की होगी। संपादन और रिकॉर्डिंग महेंद्र साहू का होगा। सुगम संगीत का कार्यक्रम आप सुनेंगे अनुराग शर्मा के गाए कुछ गैर फिल्मी गीत और गजलें रात्रि 8:00। रजनीगंधा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 8:15 से। डंकी, इस फिल्म का गीत आइए सुनते हैं अरिजीत सिंह और साथियों की आवाजों में। प्रीतम का संगीत निर्देशन है।

0: दिल में अटका हो कोई गाना तो सोचिए मत, भेजिए ईमेल और सुनिए अपना फेवरेट गीत।
1: होता है तो ये प्यार है।
0: कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने में रोज शाम 6:20 से 6:45 तक और 7 से 7:20 तक।
1: तुमको खुश देखकर मैं बहुत खुश हुआ।
0: आकाशवाणी बिलासपुर से। ईमेल आईडी है गीत मेल bsp@gmail.com।

जी हाँ, ये है आकाशवाणी बिलासपुर FM 103.2 MHz पर। स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 11 बजे हैं। समय हो चला है प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनने का।

0: उमंग सीआईईटी प्रस्तुत करता है
1: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: स्वागत है श्रोताओं आप सबका, विमलेश का नमस्कार कीजिए स्वीकार
0: और अजीत का भी जोहार और जय जोहार। सुनते हैं आज का सुंदर विचार जिसे हमें भेजा है कस्बा बराड़ा जिला अंबाला हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल और गुरशब्द सिंह जी ने लिखा है।
2: भीड़ में बच्चा जब तक अपनों का हाथ पकड़कर चलता है उसे मेला बहुत सुंदर और खूबसूरत लगता है, पर वही बच्चा अगर अपनों से बिछड़ जाए तो वही मेला उसे डरावना और नीरस लगने लगता है।
0: दुनिया के मेले में भी हम सब की स्थिति भी यही है। जब तक हम अपनों से जुड़े हुए हैं, उनका हाथ थामे हुए हैं, दुनिया हमें सुंदर लगती है। इसीलिए हमेशा अपनों का साथ और हाथ थामे रहिए।
2: जी, बहुत ही सुंदर विचार भेजा है आप लोगों ने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज जब सोशल मीडिया और आधुनिकता की दौड़ में लोग एक साथ रहते हुए भी एक दूसरे से अलग होते जा रहे हैं, बहुत जरूरी है कि हम अपने सामाजिक पारिवारिक ताने बाने को संभाल कर रखें, खासकर बच्चों और बड़े बुजुर्गों को जरूर समय दें।
0: अगला संदेश हमें मिला है मेन रोड तेल्हारा से प्रकाश पोहरकर, नर्मदा पोहरकर, कुमारी सुजाता पोहरकर का। लिखते हैं,
2: आदरणीय अजीत जी एवं विमलेश जी, आपको हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 3 अप्रैल 2026 को प्रसारित हुआ कार्यक्रम हमें बहुत ही ज्ञानवर्धक और प्रभावशाली लगा। आयुर्वेद के इस गौरवशाली इतिहास और उसकी वैज्ञानिकता को साझा करने के लिए आप दोनों का हार्दिक धन्यवाद।
0: आपको भी धन्यवाद।
2: ऐसी जानकारी आसानी से नहीं मिलती। एनसीईआरटी उमंग की पूरी टीम को हमारा प्यार भरा नमस्कार। दिनांक 8 अप्रैल 2026 को प्रस्तुत आसमान गिरा, ये कार्यक्रम हमें बाल कथा के रूप में बेहद पसंद आया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि किसी भी बात पर बिना सोचे समझे विश्वास नहीं करना चाहिए और हर काम सोच समझ कर करना चाहिए, नहीं तो बाद में पछताना पड़ सकता है। बच्चों के लिए इतनी सुंदर और शिक्षाप्रद कहानी प्रस्तुत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आर्यनगर कोहका भिलाई छत्तीसगढ़ से उत्तम सिंह जंघेल, मोरस जंघेल, अनिल कुमार, अजीत कुमार, आयुष जंघेल और नंदिनी जंघेल जी।
2: धमदा ग्राम सुखरी कला से अमित जंघेल, शकुन जंघेल, आरुषि, ओशिका, आदित्य जंघेल और अंजलि जंघेल जी ने लिखा है, 3 अप्रैल को कार्यक्रम उमंग में वैद्यराज जीवक के बारे में जानकारी सुनने को मिली जो बहुत अच्छी लगी। आपका कार्यक्रम जानकारी से भरपूर होता है। उमंग परिवार के साथ लेखक और प्रस्तुतकर्ता को बहुत बहुत बधाई।
0: और अगला संदेश हमें मिला है ग्राम पजौनिया जिला जालौन उत्तर प्रदेश से सत्येंद्र कुमार चंसोलिया और श्रीमती कल्पना चंसोलिया जी का।
2: कृष्णा पार्क दिल्ली से आसमा फकीर, यूसुफ आसमा फकीर, असलम आसमा फकीर, अकरम आसमा फकीर।
0: आपके संदेशों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। आपसे निवेदन है इसी तरह से लिखते रहिए और सुनते रहिए हमारा आपका।

0: सबका चहेता कार्यक्रम उमंग। स्वागत है आप सबका श्रृंखला ये भी जानिए में। आइए करते हैं शुरुआत एक सुंदर सी कविता से।
1: जी अजीत जी, श्रोताओं, जब ये कविता कही जाए तो आपको अंदाजा लगाना है कि ये कविता किस पर है। जल निधि चहुं ओर अपार, प्रकृति का ये कैसा विस्तार, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा अनंत संसार।
0: क्या बात है, दिखता नहीं है आर पार, लहरों में छिपा है अनंत संसार। और आगे लिखा है, गहराई इसकी अति गंभीर, रहस्य भरे इसमें शरीर, जीवों का अद्भुत परिवार, सृष्टि का ये अनुपम उपहार।
1: तो श्रोताओ, लगा कुछ अंदाजा?
0: जरूर लगा लिया होगा। यदि आपका अंदाजा समुद्र है तो श्रोताओ आप बिल्कुल सही हैं। श्रोताओ, इस सप्ताह हम चर्चा करेंगे समुद्र और उसके रहस्यमय दुनिया की। तो आइए जानते हैं समुद्र की कुछ रोचक बातों को।
1: तो अजीत जी, पहला प्रश्न ये उठता है कि समुद्र या सागर क्या है?
0: विमलेश जी, कहा जा सकता है कि समुद्र पृथ्वी पर फैला हुआ विशाल खारे जल का क्षेत्र है।
1: जी,
0: पृथ्वी का लगभग 71% भाग समुद्र से ढका हुआ है।
1: जी,
0: लेकिन विमलेश जी, एक प्रश्न अक्सर पूछा जाता है।
1: वो क्या?
0: वो ये है कि कुछ लोग इसे समुद्र कहते हैं तो कुछ इसे सागर कहते हैं,
1: जी,
0: लेकिन महासागर भी तो हैं। तो मेरा प्रश्न ये है कि सागर और महासागर में क्या अंतर है?
1: बहुत अच्छा प्रश्न है अजीत जी। देखिए, पहली बात है आकार या क्षेत्रफल। सागर आकार में छोटा होता है, जैसे अरब सागर, और महासागर बहुत विशाल होता है, जैसे प्रशांत महासागर।
0: जी, तो मुझे लगता है कि स्थिति या लोकेशन भी मायने रखती है।
1: जी,
0: जैसे महासागर पृथ्वी के बड़े और खुले हिस्सों में फैले होते हैं, जबकि सागर अक्सर महाद्वीपों के बीच होते हैं।
1: जी अजी जी, एक और महत्वपूर्ण बात, और वो है गहराई। महासागर अधिक गहरे होते हैं, जबकि समुद्र या सागर थोड़े कम गहरे होते हैं। वैसे ध्यान से देखा जाए तो सभी सागर अपवादों को छोड़कर महासागरों से जुड़े होते हैं।
0: विमलेश जी, इसे हम एक उदाहरण से भी समझ सकते हैं। जैसे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी का सागर हिंद महासागर से जुड़े हुए हैं।
1: जी बिल्कुल सही कहा आपने। तो अब जानते हैं कि पृथ्वी पर कितने महासागर हैं। आपसे शुरू करें।
0: जी, प्रशांत महासागर, ये सबसे बड़ा और गहरा महासागर है।
1: जी,
0: दूसरा है अटलांटिक महासागर, ये यूरोप और अमेरिका को अलग करता है। अब आपकी बारी है।
1: और तीसरा महासागर है हिंद महासागर, ये एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया से घिरा हुआ है, और ये सभी महासागरों में सबसे गर्म माना जाता है। फिर चौथा है दक्षिणी महासागर, ये अंटार्कटिका के पास है, इसे अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं।
0: और पांचवा महासागर है आर्कटिक महासागर, क्षेत्रफल की दृष्टि से यह सबसे छोटा महासागर है। आपको विशेष रूप से बता दें कि विश्व व्यापार का सबसे बड़ा माध्यम महासागर और समुद्र ही हैं।
1: तो श्रोताओं, ये थी आज की जानकारी श्रृंखला ये भी जानिए मैं। अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से प्रश्न है।
0: तो प्रश्न है, पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए। प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए।
1: पृथ्वी के सबसे छोटे महासागर का नाम बताइए।
0: श्रोताओ, 8800440559 हमारा IVRS नंबर है, और हमारे ईमेल का पता है audio@ciet.nic.in।
1: आप इन पतों पर अपने संदेश और प्रश्नों के उत्तर भेज सकते हैं। और हाँ, इंस्टा, फेसबुक, एक्स और लिंक्डइन पर भी आप CIET NCERT को फॉलो करना मत भूलिएगा।
0: जी,
1: इससे आपको हमारी शैक्षिक गतिविधियों की ताज़ा जानकारी मिलती रहेगी। और अब बारी है हमारे आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम, शीर्षक है माय नेम।
0: ये कार्यक्रम कक्षा 2 की अंग्रेजी की पाठ्य पुस्तक एक पाठ पर आधारित है, जिसमें एक मक्खी अपना नाम भूल जाती है। वो कई पशु पक्षियों के पास जाती है और अंत में बड़े मजेदार ढंग से उसे अपने नाम का पता चलता है। लेकिन कैसे, आइए सुनते हैं।
2: Once there was a little fly. One day he could not remember his name. He tried and tried to remember it, but it was of no use. He had forgotten his name. He asked an ant.
3: Ant, do you know my name? I don't know. You may ask the tree I climb. Dear tree, do you know my name?
4: I don't know. You may ask the cow sleeping in my shade.
2: The fly went near the cow and asked,
3: Dear cow, do you know my name? I don't know. You may ask the grass I ate.
2: The fly went to the grass and asked,
3: Dear grass, do you know my name?
5: I don't know.
3: You may ask the leaves.

0: What do you hear? Can you recognize the sounds? Can you make these sounds? Note to the teacher. Help children find the meanings of their names as it is related to their identity.
1: अभी आपने सुना कार्यक्रम माय नेम और अब सुनते हैं कार्यक्रम
2: मौलाना अबुल कलाम आजाद।
1: ये कार्यक्रम भारत के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी मौलाना अबुल कलाम आजाद के जीवन और देश के स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान की जानकारी देता है।
3: मौलाना अबुल कलाम आजाद।

0: ये गजल है भारत के मशहूर राष्ट्रवादी नेता मौलाना अबुल कलाम आजाद की। सन 1888 में उनका जन्म मक्का में हुआ। उनके बचपन का नाम गुलाम मुहीउद्दीन अहमद था और आजाद बाद में उनका तखल्लुस यानी उपनाम बना।
1: उनके पिता मौलाना खैरुद्दीन बहुत बड़े विद्वान और धर्मशास्त्री थे। उनकी वालिदा आलिया बहुत नेक और रहम दिल थीं। वे मदीना के प्रसिद्ध विद्वान की पुत्री थीं। बालक अबुल कलाम को पढ़ाई का माहौल विरासत में मिला। उनके जन्म के कुछ साल बाद उनके वालिद को एक दुर्घटना में चोट लग गई। वे इलाज के लिए कलकत्ता आ गए और कलकत्ता में ही बस गए। अब सवाल बालक अबुल कलाम की शिक्षा का था, तो उनके पिता ने उन्हें घर पर ही शिक्षा दिलवाई। मजहबी परिवार में पैदा होने की वजह से दीनी तालीम पर सबसे ज्यादा जोर दिया गया।
2: मेरा सपना है मेरा बेटा एक दिन बहुत बड़ा और मजहबी इंसान बने।

0: मुझे यकीन है मेरी परवरिश और उसको मिली तरबियत एक दिन जरूर रंग लाएगी। वो बड़ा होकर मेरे सपने को साकार करेगा।
1: पर बालक अबुल कलाम के बचपन के खेल तो निराले हुआ करते।
2: इसको इधर लगा देता हूँ। अरे ये क्या कर रहे हो अबुल? ये सारे बक्से एक लाइन में क्यों लगा दिए? रुको, मैं अभी अम्मी से तुम्हारी शिकायत करती हूँ। जब मार पड़ेगी ना तब पता चलेगा तुम्हें।
3: ना ना, ऐसा ना करना फातिमा आपा। ये तो रेलगाड़ी बनाई है मैंने,
2: पता है क्यों?
3: क्यों? ताकि अब आप लोग संदूक पर चिल्ला चिल्ला कर कहें, हटो हटो, रास्ता दो, दिल्ली के मौलाना आ रहे हैं।
2: लेकिन भाई यहाँ तो कोई आदमी है ही नहीं, हम किससे कहें रास्ता दो?
3: अरे
2: ये तो खेल है। अरे अरे ये क्या कर रहे हो? नीचे उतरो गिर जाओगे।
3: नहीं गिरूंगा आपा, बस आप लोग मेरे बोलने के बाद तालियां बजाएं।
2: क्यों तालियां क्यों बजाएं हम?
3: भूल गई, मैं भाषण दे रहा हूँ।
2: अच्छा तो ये बात है।
4: उनका बचपन दूसरे बच्चों से अलग था। उनके खेल इस तरह के हुआ करते कि उनके घर वाले भी हैरान रह जाते। शायद वो उन खेलों के जरिए ये बताना चाहते थे कि वे भविष्य में क्या बनेंगे। मासूम बचपन के पास निराले खेलों में एक जिंदगी देखने को मिलती।
1: वक्त बीतने के साथ साथ जैसे जैसे वो बड़े होते गए, उनका पढ़ाई की तरफ रुझान बढ़ता गया। नतीजा ये हुआ कि उनके शौक को देखकर उनके पिता ने कई अध्यापक रख दिए। ये सभी अध्यापक उन्हें अलग अलग विषय पढ़ाया करते। अबुल कलाम बड़े मेहनती छात्र थे। 16 वर्ष की आयु में ही अनेक विषयों का गहन अध्ययन उन्होंने पूरा कर लिया। इसी उम्र में अन्य विद्यार्थियों को दर्शन शास्त्र, गणित और तर्क शास्त्र पढ़ाकर उन्होंने अपनी योग्यता दिखा दी।
4: उनकी शिक्षा धार्मिक वातावरण में पुरानी परंपरा के अनुसार हुई। इस बीच उन्हें कुछ ऐसे लेख पढ़ने को मिले जिन्हें पढ़कर उन्हें यह महसूस हुआ कि आधुनिक विज्ञान और समाज शास्त्र पढ़ना भी बहुत जरूरी है। उन्होंने अंग्रेजी सीखनी शुरू की और जल्द ही विभिन्न विषयों की पुस्तकें पढ़ने लगे। वे 14 साल की उम्र से ही शेर कहने लग गए थे। वे बहुत कम उम्र से ही आजादी के आंदोलन से प्रभावित हो गए थे। परंपरागत रूढ़ियों के विरुद्ध मौलाना के मन में विचारों का संघर्ष आरंभ हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपना रास्ता खुद बनाएंगे। इसी समय उन्होंने अपने नाम के साथ आजाद लगाने का निश्चय किया और वे मौलाना अबुल कलाम आजाद कहलाने लगे। वे बहुत अच्छे लेखक और वक्ता थे, इसलिए उन्होंने अपनी कलम के सहारे देश की जनता को प्रेरित करने का निश्चय किया।
1: उन्होंने तर्जुमानुल कुरान किया। उनके कई लेख लाहौर के पैसा, लखनऊ के अल अवध और अमृतसर के वकील अखबारों में छपे। समय के साथ साथ उनके लेखों से लोगों के बीच उनकी शोहरत बढ़ने लगी।
4: बीसवीं सदी का आरंभ। देश में क्रांतिकारी आंदोलन जोर पकड़ रहा था और बंगाल इसका मुख्य केंद्र था। अंग्रेज हिंदुओं और मुसलमानों के बीच भेदभाव पैदा करके इस आंदोलन को कमजोर करना चाहते थे। 1905 में उन्होंने बंगाल का विभाजन करने का निश्चय किया।

0: पूरे देश में जमकर विरोध हुआ। इसी बीच मौलाना आजाद बंगाल के क्रांतिकारियों के संपर्क में आए और उनकी सहायता की। वे चाहते थे कि मुसलमान स्वतंत्रता संग्राम में हिंदुओं के साथ कदम से कदम मिलाकर चलें और अंग्रेजी शासन समाप्त करने की भरपूर कोशिश करें।
1: मौलाना के मन में ये विचार जमता चला गया। उन्होंने अनुभव किया कि भारतीय मुसलमानों को आजादी के आंदोलन से जोड़ने और जनमत तैयार करने के लिए एक अच्छा उर्दू पत्र निकालना जरूरी है। अल हिलाल पत्र का जन्म इसी निश्चय का सुफल था। अल हिलाल को लोकप्रिय बनाने के लिए उसमें बेहतर से बेहतर पठनीय सामग्री का समावेश किया गया और उसके गेटअप को भी उतना ही खूबसूरत बनाया गया। इसका नतीजा ये हुआ कि अल हिलाल उर्दू पढ़ने वालों का सबसे प्रिय पत्र बन गया। ये थी कुशल पत्रकार के रूप में मौलाना अबुल कलाम आजाद की जोरदार सफलता। अल हिलाल का निकलना था कि उर्दू पत्रकारिता के इतिहास ने एक नया मोड़ ले लिया। लोगों में क्रांति की लहर दौड़ गई। ये अखबार इतना मशहूर हुआ कि 3 महीने में ही सभी पुराने अंक दोबारा छापने पड़े, क्योंकि लोग दोबारा उसे शुरू से पढ़ना चाहते थे। अल हिलाल के जरिए क्रांति की जो आवाज उठी, उससे ब्रिटिश सरकार परेशान हो गई और वो जब्त कर लिया गया। तब अबुल कलाम ने दूसरा पत्र अल बलाक 1915 ईस्वी में प्रकाशित करना शुरू कर दिया।
0: ब्रिटिश सरकार ने समझ लिया कि इसके जादू का जोर प्रेस एक्ट का सहारा लेकर नहीं तोड़ा जा सकता, क्योंकि अल बलाक की भी वही शान थी। अप्रैल 1916 में मौलाना को कलकत्ता छोड़ देने पर मजबूर कर दिया गया। पंजाब, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में मौलाना के प्रवेश पर पहले ही पाबंदी लग चुकी थी। वे कलकत्ता से रांची आ गए। 6 महीने बाद ही वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया और वे 3 साल बाद छूटे। रांची की कैद ने मौलाना को अब राजनीति के क्षेत्र में पूरी तरह उतार दिया और वे कुशल पत्रकार, पूरे देश के चहेते नेता बनकर उभरने लगे थे।
1: जेल से छूटने के बाद मौलाना कुछ दिनों तक तो सारे देश के दौरे में लगे रहे और तभी वे गांधी जी से मिले। गांधी जी तो उनसे पहले से ही मिलना चाहते थे। पूरे देश में असहयोग आंदोलन की एक आग सी फैल रही थी। मौलाना आजाद अब पूरी तरह राजनीति के क्षेत्र में उतर आए थे। भारतीय जनता को जगाने, विशेष रूप से मुसलमानों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध रोष पैदा करने का अब एक विशेष अवसर हाथ लगा था। उन्हें प्रकृति ने लेखन शक्ति और वाक शक्ति दोनों उच्च कोटि की दी थी।
2: स्वराज उस समय तक निरर्थक है जब तक ये गरीब और अमीर के अंतर को नहीं मिटाता, और मेरे विचार से खादी का आम व्यवहार ही ये अनुभूति उत्पन्न कर दे कि हम भी इन लाखों गरीब भाइयों में से हैं जो इस देश में बसते हैं। क्या हमारी इच्छा नहीं कि हमारे बदनसीब भाई हमारे कंधे से कंधा मिलाकर स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और स्वतंत्रता प्राप्ति से आनंद विभोर हों?
1: सितंबर 1923 में कांग्रेस का एक विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसकी अध्यक्षता के लिए मौलाना का नाम आया। मौलाना की उम्र उस समय केवल 35 वर्ष की थी, जो अब तक के अध्यक्षों को देखते हुए काफी कम उम्र थी। 1923 में वे पहली बार कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए और खुशकिस्मती से 1940 में दोबारा यही पद उन्हें हासिल हुआ।

0: इस बार वे 6 साल तक अध्यक्ष रहे। कांग्रेस का एक पार्लियामेंट्री बोर्ड यानी संसदीय समिति बनी। वे उसके सदस्य घोषित किए गए। उनके जिम्मे बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, पंजाब, सिंध और सीमांत प्रांत के संसदीय मामले थे। उन्होंने उन मामलों को बखूबी सुलझाया। कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में ही मौलाना अबुल कलाम आजाद ने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा था,
1: आज भारत में न किसी हिंदू संगठन की जरूरत है न मुस्लिम संगठन की। हमें केवल एक संगठन की जरूरत है और वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस।
0: मौलाना आजाद कांग्रेस अध्यक्ष के रूप में सभी प्रांतीय नेताओं से मिलते रहे। भारत छोड़ो आंदोलन जोरों से शुरू हो गया था। हजारों लोग गिरफ्तार हुए। मौलाना को भी 8 अगस्त 1942 को फिर गिरफ्तार कर लिया गया और वे 1945 तक जेल में रहे।
2: भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनकी पत्नी का देहांत हो गया, मगर वे इस दुख को सब्र के साथ सह गए। उन्होंने उस गम को चेहरे पर जाहिर नहीं होने दिया।
0: उनका चरित्र आदर्श था। एक जगह उन्होंने स्वयं लिखा है,
1: 1918 से जिन बातों का संकल्प लिया है उनमें से एक बात यह भी है कि मेरे खिलाफ चाहे कोई कितना कुछ क्यों न कहे या लिखे, अपने दिल में उसके लिए कोई शिकायत पैदा न होने दूंगा। अपना दामन कांटों से उलझाओ और जरूर उलझाओ, मगर इतनी सख्त बाकी रहे कि जब चाहो निकाल लो।
2: 15 अगस्त 1947, देश आजाद हुआ। आजाद भारत के वे पहले शिक्षा मंत्री बने। उन्होंने पुरुषों से ज्यादा महिला शिक्षा पर अधिक जोर दिया। उनका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य रहा ललित कलाओं को आगे बढ़ाने के लिए अकादमियों की स्थापना। उन्होंने साहित्य अकादमी, संगीत नाटक अकादमी और ललित कला अकादमी की स्थापना की और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग स्थापित करने के लिए साधन उपलब्ध कराए। उन्होंने प्रौढ़ शिक्षा के अनेक कार्यक्रम शुरू किए।
0: मौलाना अबुल कलाम आजाद ने ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन का गठन किया और खड़गपुर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना उनकी इस क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि मानी जाती है। इससे इंजीनियरिंग की उच्च व श्रेष्ठ शिक्षा के काम को बढ़ावा मिला।
2: ऐसी आला शख्सियतें बार बार जन्म नहीं लेती और उनके दुनिया से चले जाने के बाद भी हम उन्हें कभी भूल नहीं पाते। मौलाना अबुल कलाम आजाद महान नेता, महान राजनीतिज्ञ, महान लेखक, महान वक्ता, सभी कुछ थे। उनमें एक साथ अनेक गुणों का समावेश था।
0: 22 फरवरी 1958 को इस महान देशभक्त का देहांत हुआ। वे अंतिम क्षणों तक शिक्षा मंत्री के रूप में कार्यरत रहे। महात्मा गांधी ने कहा था,
1: मुझे मौलाना अब्दुल कलाम आजाद के साथ देशी और कौमी सेवा करने का गौरव प्राप्त है। इनकी राष्ट्रीयता उतनी ही दृढ़ है जितना उनका इस्लाम पर ईमान और

0: मौलाना अबुल कलाम आजाद, अभी आपने सुना ये कार्यक्रम। और श्रोताओ, अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम समाप्त होता है। तो अपने मित्र अजीत
1: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
0: नमस्कार।
2: उमंग उमंग उमंग उमंग।
3: प्रायोजित कार्यक्रम NCERT का प्रसारण अभी किया जा रहा था। FM 103.2 MHz पर आप सुन रहे हैं आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण। 11:30 होने वाले हैं। अब हम जुड़ेंगे विविध भारती प्रसारण सेवा से।

द लेटेस्ट ऑफ जगजीत सिंह चित्रा सिंह गजल्स हम सुन रहे थे। ये गजल जगजीत सिंह की आवाज़ में, जिसे लिखा सुदर्शन फकीर ने। आइए सुनते हैं अगली खूबसूरत सी गजल को, जो सोज एल्बम से है, जिसे पंकज उदास ने बनाया है जगजीत सिंह की आवाज़ में, जावेद अख्तर के बोल और जगजीत सिंह के संगीत के साथ।

जावेद अख्तर के द्वारा लिखी गई ये खूबसूरत पंक्तियाँ जगजीत सिंह ने अपने नगमे में सजाई और उन्हें आवाज़ दी। सिलसिले एल्बम से सुन रहे थे हम ये प्यारा सा नगमा, और आइए सुनते हैं अगला नगमा। बड़ा खूबसूरत सा है और इसे भी गाया है जगजीत सिंह ने, शाहिद कबीर ने इसे बोल दिए हैं और जगजीत सिंह ने इसे अपनी आवाज़ लता मंगेशकर के साथ में दी है। जगजीत सिंह ने इसे संगीतबद्ध किया है, सजदा एल्बम से है ये नगमा।

विविध भारती प्रसारण सेवा से अनुप्रसारित कार्यक्रमों को आप सुन रहे थे। ये आकाशवाणी बिलासपुर का प्रसारण है। 11:55 होने वाले हैं। कुछ ही पलों में प्रादेशिक समाचार हम अपने रायपुर केंद्र से रिले करेंगे।

0: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार प्रसारित किए जाएंगे।
1: ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक विजय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में मनाया जश्न। सीएसएमसीएल ओवरटाइम घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में तेज हवा चलने, वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना जताई। और अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिली ऐतिहासिक जीत पर रायपुर सहित प्रदेश के विभिन्न शहरों और कस्बों में जश्न मनाया गया। राजधानी रायपुर के छत्तीसगढ़ क्लब चौक पर कल शाम विधायक पुरंदर मिश्रा के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को माला पहनाकर और मुंह मीठा कराकर अपनी खुशी जाहिर की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह विजय पश्चिम बंगाल की जनता के आशीर्वाद और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम का परिणाम है। उन्होंने पूर्ण विश्वास के साथ कहा कि अब पश्चिम बंगाल में सुशासन की सरकार स्थापित होगी। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सीएसएमसीएल ओवरटाइम घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ने बड़ी कार्रवाई की है। इस मामले में मैनपावर एजेंसियों के 7 संचालकों और प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया, जहां से 7 दिनों की रिमांड मंजूर की गई है। आरोप है कि ओवरटाइम भुगतान में अनियमितता कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और लोगों की जानकारी जुटा रही है। केंद्रीय अतिरिक्त सचिव और जल जीवन मिशन के संचालक कमल किशोर सोन ने सुकमा और दंतेवाड़ा जिले का दौरा कर जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने सुकमा जिले के डोटपाल और फायदागुड़ा तथा दंतेवाड़ा जिले के भूसारास पहुंचकर हर घर नल से जल की आपूर्ति देखी। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर पेयजल की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। इससे पहले श्री सोन ने सुकमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। अनुदान पर कृषि यंत्रों और सिंचाई पंपों के लिए किसान चैम्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। आवेदन के लिए किसानों के पास आधार कार्ड, बैंक पासबुक, जाति प्रमाण पत्र और भूमि दस्तावेज होना जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य बीज और कृषि विकास निगम लिमिटेड की ओर से योजना के तहत किसानों को ड्रिप स्प्रिंकलर, शक्ति चलित कृषि यंत्र और सिंचाई पंप रियायती दरों पर उपलब्ध कराए जाएंगे। जनगणना कार्य में लगे प्रगणकों और सुपरवाइजर की सुरक्षा के लिए जिला जनगणना अधिकारी ने पुलिस कमिश्नर रायपुर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण को पत्र लिखा है। पत्र में जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत 1 मई से मकान सूचीकरण और गणना के कार्य का उल्लेख करते हुए कहा गया है कि प्रगणकों द्वारा जनगणना कार्य के दौरान कुछ स्थानों पर मारपीट की घटनाओं की जानकारी सामने आई है, इसलिए पुलिस सुरक्षा बल उपलब्ध कराया जाए। गौरतलब है कि जनगणना के दौरान एक कर्मचारी के साथ मारपीट की घटना हुई थी, जिसके बाद शिक्षकों के संगठन ने शिकायत कर कार्रवाई की मांग की थी। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ संबंधित थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। मौसम विभाग ने प्रदेश के उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में तेज हवा चलने, वज्रपात होने और हल्की बारिश होने की संभावना जताई है। पूर्वी मध्य प्रदेश और उसके आसपास 1.5 किलोमीटर तक ऊपरी हवा का चक्रवाती परिसंचरण बना हुआ है। इसके अलावा ओडिशा में एक अन्य परिसंचरण सक्रिय है। इन दोनों प्रणालियों के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आएगा। आज और कल तापमान में करीब 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट होगी। वहीं मौसम विभाग ने सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा संभाग और उससे लगे कुछ जिलों में अंधड़ चलने, आकाशीय बिजली गिरने और बारिश होने की संभावना जताई है। इसके साथ ही दक्षिणी बस्तर के कुछ जिलों में भी बारिश हो सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल में मिली ऐतिहासिक विजय पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने प्रदेश भर में मनाया जश्न। सीएसएमसीएल ओवरटाइम घोटाले में एसीबी और ईओडब्ल्यू ने 7 आरोपियों को किया गिरफ्तार। और मौसम विभाग ने प्रदेश

0: उत्तरी और दक्षिणी हिस्से में तेज हवा चलने, वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना जताई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन छत्तीसगढ़ी में होगा, जिसे शाम 6:10 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी रायपुर से अनुप्रसारित प्रादेशिक समाचार अभी आप सुन रहे थे। FM 103.2 MHz पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। 12 बजने वाले हैं। अब से शाम 5 बजे तक हम विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम रिले करेंगे, तो चलिए जुड़ते हैं विविध भारती से।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉक्टर जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। विदेश मंत्री ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की, ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सकें। विदेश राज्य मंत्री कीर्ति वर्धन सिंह ने फिलीपींस के प्रवासी कामगार विभाग के मंत्री हंस ल्यूक कैगडेक से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट में श्री सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान उन्होंने प्रवासियों के आवागमन और पलायन से जुड़े साझा मुद्दों पर सहयोग के बारे में चर्चा की। भारत ने संयुक्त अरब अमीरात में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में हुए हमले में 3 भारतीय नागरिकों के घायल होने की घटना को अस्वीकार्य बताया है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने इस शत्रुता को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया है और इस संघर्ष में नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुकूल होर्मुज जलडमरों मध्य में मुक्त और निर्बाध आवाजाही की भी अपील की। मंत्रालय ने कहा है कि भारत मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान में सभी प्रयासों में सहयोग देने के लिए तैयार है। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉक्टर भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। ओवरसीज फ्रेंड्स ऑफ भाजपा के अध्यक्ष डॉक्टर अदापा प्रसाद ने भाजपा की इस अभूतपूर्व ऐतिहासिक जीत पर बंगाल और असम की जनता को बधाई दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा की जीत को ऐतिहासिक और अभूतपूर्व बताया है। कल शाम नई दिल्ली में भाजपा मुख्यालय में चुनाव परिणामों के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने ये बात कही। प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल, असम, पुदुचेरी, तमिलनाडु और केरलम की जनता तथा पार्टी कार्यकर्ताओं के प्रति आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि 20 से अधिक राज्यों में भाजपा एनडीए सरकारें सत्ता में हैं।
3: 5 प्रदेशों की जनता ने पूरे विश्व को दिखाया है ये हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। लोकतंत्र, डेमोक्रेसी हमारे लिए सिर्फ एक तंत्र नहीं है, ये हमारी रगों में दौड़ता हुआ संस्कार है। और आज सिर्फ भारत का लोकतंत्र ही नहीं जीता है, आज भारत का संविधान भी जीता है।
2: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सिया पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा और पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने भी कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार

0: पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम यादों की महफिल में।

हम सुन रहे थे ये गीत बैजू बावरा फिल्म से मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आज नौशाद का स्मृति दिवस है, तो चलिए आज की यादों की महफिल में हम उन्हें ही याद करते हैं और सुनते हैं उनका ही एक और गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफ़ी ने। शकील बदायूनी के ही बोल हैं और फिल्म है उड़न खटोला।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल, और आज की यादों की महफिल हमने सजाई है नौशाद की गीतों के साथ। आज नौशाद का स्मृति दिवस है, तो हम सुन रहे हैं संगीतकार नौशाद के संगीत से निकले हुए गीतों को। आज लेते हैं अगला गीत उड़न खटोला फिल्म से, मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल।
1: चले आज तुम

0: अरे सुनो, आजकल ये क्या हर रोज तुम रेडियो सुनती रहती हो, पढ़ाई लिखाई नहीं करती क्या? घड़ी देखो जरा, 3 बज रहे हैं 3।
1: वो क्या है ना कि आजकल मैं हर रोज दिन में 3 बजे सुनती हूँ सखी सहेली।
0: सखी सहेली?
1: हाँ, हर रोज 2 सखियाँ 3 बजे बड़ी मजेदार बातें करती हैं। और तो और, पढ़ाई, करियर, इंटरनेट, सोशल मीडिया और दुनिया भर की दिलचस्प जानकारियाँ भी देती हैं।
0: अच्छा, तो मुझे भी बताना जरा, मैं भी सुनूंगा सखी सहेली।
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, सखियाँ ही नहीं सखा भी सुनते हैं सोमवार से शुक्रवार दोपहर 3 बजे सखी सहेली। आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
2: देखो जी बहार आई, बाहों में
1: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
3: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
1: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास, भूले बिसरे गीत।
2: तुम्हारी याद सताती है
1: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है यादों की महफिल और हमने सजाई है नौशाद के नगमों के साथ।

हम सुन रहे थे अनमोल घड़ी फिल्म का यह गीत, नूर जहां ने जिसे गाया तनवीर नकवी के बोल और नौशाद के संगीत से सजा हुआ यह सुंदर सा गीत। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल में अगला गीत, जो कि है फिल्म अमर से, लता मंगेशकर ने गाया है, शकील बदायूं ने बोल दिए हैं और नौशाद ने दिया है संगीत।

हम सुन रहे थे ये गीत कोहिनूर फिल्म से लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में शकील बदायूनी के बोल और संगीतकार नौशाद के संगीत से निकले हुए खूबसूरत से नगमों को। आइए सुनते हैं अगला नगमा नौशाद के ही संगीत से सजा हुआ, गंगा जमुना फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज है, शकील बदायूनी के हैं बोल।

साज और आवाज फिल्म के इस गीत को सुन रहे थे लता मंगेशकर की आवाज में, नौशाद के खूबसूरत से संगीत के साथ।

0: धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से कार्यक्रम में नौशाद के संगीत से सजे हुए इस गीत को।

हम सुन रहे थे ये गीत मदर इंडिया फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं कार्यक्रम यादों की महफिल का अंतिम गीत मेरी महबूब फिल्म से मोहम्मद रफी की आवाज में शकील बदायूनी के बोल और संगीतकार नौशाद के संगीत से सजी हुई सुमधुर सी तरन्नुम को।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन कार्यक्रम सुरीला सफर सुनेंगे बस थोड़ी ही देर के बाद।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है आप सभी का कार्यक्रम सुरीला सफर में। ये सुरीला सफर शुरू होता है अब जब हम एक इबारत के साथ आपके बीच में आते हैं, और वो इबारत, वो बात, वो जज्बात हमने जो आपके साथ साझा किए वह यह थे कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है। वैसे ही जीवन संगीत बहाव का नाम है, तो चलिए चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ विविध भारती को चाहने वाले, जब उसे सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो अपना बचपन जी लेते हैं। कई स्मृतियां और मन के भाव जाग उठते हैं जो स्वप्न की लीला में सो गए थे कहीं जाकर। यही से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती जाती है और हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत, नदी, वन, उपवन होते हुए यात्रा यात्रा गीत संगीत पर ही समाप्त हो जाती है। और आज हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छी अच्छी बातें पहले ही लिखकर भेज दी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे श्रोता हमसे ज्यादा होशियार हैं, समझदार हैं, और उनकी समझदारी को हम प्रणाम करते हैं। और उसी समझदारी के साथ हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीजें दी हैं। जैसे हमारे श्रोताओं में से एक श्रोता ने बड़े अच्छे से उत्तर दिया है कि पर्वत, नदियां, वन, उपवन, प्रकृति का यह पावन नंदनवन, कल कल बहती नदियां गाएं, पहाड़ शीश झुकाएं, धरती का यह सजल रूप मन को भाए, हर पल पर्वत, नदियां, वन और उपवन। कितना बढ़िया लिखा है ना आपने। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि जो शब्द मुझे समझ में आ रहे हैं वो निम्नलिखित हैं कि सरिता, सागर, संगीत, बहाव, सुबह, सांझ, रात्रि, स्वप्न, स्मृतियां, बचपन, प्रेम कहानी, यात्रा, हौले हौले, पर्वत, नदी, वन, उपवन, यही सांझ सवेरा, यही है वो सांझ सवेरा, ताल मिले नदी के जल में, नदी मिले सागर में, बचपन की मोहब्बत को जाने। कितने सारे गीत इन्होंने बता दिए। हमारे एक श्रोता ने लिखा है यही वो सांझ हो सवेरा, बचपन के दिन भी क्या दिन थे। पर बढ़िया, बहुत खूबसूरत बातें आप लिख रहे हैं, और आपके जो भी जज्बात हैं उन्हें और पढ़ना चाहती हूँ। लेकिन पढ़ते पढ़ते ख्याल आया कि जब यह इबारत मैं लिख रही थी और सोच रही थी इसके बारे में, तो मैं मेरे बचपन को जी रही थी। मेरा वो बचपन जहाँ एक कमरा है, उस कमरे में एक झूला है, झूले के बगल में एक बड़ा खूबसूरत सा आईना

लगा है और उसके बगल में रखा है एक रेडियो, जिसके साथ मैं मेरी विविध भारती की यात्रा को तय कर रही हूँ। और ऐसी ही यात्रा आपने भी तय की होगी। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, गीत संगीत की बात करूं तो मेरे बचपन से ही साथ है। नदिया की धारा की तरह कलकल करता हुआ संगीत के सुरों में कुछ ऐसा जादू है कि हर गीत के पीछे कोई ना कोई याद जुड़ी है। अब जब एक साथ 1 बजे सुरीला सफर शुरू होगा तो हर गीत के साथ एक याद, एक न एक याद जीवंत तो हो उठेगी। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा बड़ा बड़ा प्यारा सा संदेश कि पार हुआ वो रहा जो सफर में, जो भी रुका गया फिर गया वो भंवर। मैं नाव बह जाए किनारा, बड़ी तेज समय की है धारा। बहुत खूबसूरत सा लिखा है, तुझको चलना होगा, इसके बड़े प्यारे बोल लिखे हैं। प्रकृति एक स्वतंत्र सत्ता है, पर्वत वन उपवन वाटिका नदियां आपस में एक दूसरे के सहचर और परस्पर पूरक है। यहाँ प्रकृति उदात्त और दिव्य है। प्रकृति मानव के प्रेम और विरह के उद्दीपन रूप को परिभाषित करती है। एक ओर पर्वत ऊंचाई या गौरव का प्रतीक है तो वन पर्वतों का श्रृंगार करते हैं और नदियां एवं झरने इनको जीवन प्रदान करते हैं। ये हमारे एक श्रोता लिखते हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं, वन उपवन में बड़े सवेरे तात भ्रमण करते थे तेरे जहां सुरभि मनमानी, नानी की एक कहानी याद आ गई। उपवन से कविता की ये लाइन याद आ गई, बहुत बढ़िया कविता है, बहुत सुंदर यादें हैं आपकी। और ऐसे ही हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से लिखा है कि एक जिस तरह नदी लगातार बहती है वैसे ही जीवन भी समय के साथ साथ आगे बढ़ता है। नदी अपना रास्ता बदलती है, उसमें मोड़ आते हैं, उसी तरह जीवन की परिस्थितियां समय और पड़ाव बदलते हैं। नदी के रास्ते में पत्थर चट्टाने और पर्वत आते हैं लेकिन वह रुकती नहीं बल्कि रास्ता ढूंढकर आगे बढ़ती जाती है। वैसे ही जीवन की मुश्किलें आती हैं लेकिन वे अंत नहीं है। नदी अपने लिए पानी नहीं रखती, दूसरों की प्यास बुझाती है। जीवन का भी उद्देश्य यही है, दूसरों के काम आना। नदी अंत में सागर में मिल जाती है जो उसके अस्तित्व का मिलन बिंदु है। नदी के इस बहाव में संगीत में लय होता है, नदी इस लय में निरंतर बहती जाती है। कितनी अच्छी बात कही है ना। और यही नदी का बहाव अगर हमारे जीवन में हो जाए तो क्या कहना है। और ऐसी ही एक नदी है विविध भारती, जिस नदी के बहाव में हम बहते आ रहे हैं। तो आप भी साझा कीजिए अपनी विविध भारती के साथ वो किस्से, वो पहला किस्सा जब आपने पहली बार, सबसे पहली बार विविध भारती को सुना था, कैसा लगा था बताइएगा जरूर। और तब तक सुनिए ये गीत जिसे गाया है मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर और साथियों ने।

हाँ, तो ये जो मिलन आपका और हमारा है, ये तो सदा ही रहेगा। चाहे विविध भारती परिवार का कोई भी सदस्य कहीं रहे, पर वह विविध भारती से किसी ना किसी तरह से जुड़ा ही रहेगा। तो आज हम बात कर रहे हैं आपकी और हमारी यात्रा की, बड़ी सुंदर सी यात्रा है। और हमारे श्रोताओं से हमने पूछा कि आपने कब विविध भारती को पहली बार सुना था, तो मन में मत रखिए, जरूर बताइए। हालांकि हमारे एक श्रोता ने लिखा कि उन्हें याद ही नहीं है कि वो कब से विविध भारती सुन रहे हैं। ऐसा मैं भी कह सकती हूँ कि मैं शायद पालने में थी तब से विविध भारती सुन रही हूँ, ऐसा आप भी कह सकते हैं। पर हमारे श्रोताओं ने उत्तर दिया है कि 1968 में फर्नीचर से बने रेडियो पर विविध भारती राष्ट्रीय सेवा पर गीतमाला सुनने का मौका मिलता था। क्या बात है। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि बचपन बहुत नटखट था, पूरा दिन धूप में घूमना, फल तोड़ना, फिर मार का डर कोई घर आकर बता ना दे, फिर नदी में पूरा दिन नहाना, और पापा विविध भारती सुनते थे तो मुझे विविध भारती सुनना पापा ने सिखाया। पिता ही हमारे जीवन में सही दिशा हमें देते हैं, और आपके लिए भी बहुत अच्छी दिशा दी है। हमारे श्रोता ने इसके बारे में लिखा है कि हमने जो उन्हें संदेश दिया है, उस संदेश को उन्होंने संक्षिप्त में बताया है कि इंसानी जीवन बहता रूप, सरिता, नदी, सागर, जीवन की उम्र बढ़ती धारा जो बचपन से जीवन की संध्या तक बहती रहती है, कभी दुख की रात, कभी कभी खुशी के दिन, मन में कई स्वप्न संजोए आखिरी तक प्रयत्नशील रहता है जीवन, हर तरह के संकटों के पहाड़ों से उभरते, समस्याओं के जंगल में घेरे हुए अगर डटकर जीवन के प्रवाह में बहते रहें तो फूलों के बाग किनारों तक पहुंच जाते हैं। कितनी बढ़िया बात लिखी है। हमारे एक श्रोता ने बहुत अच्छी कविता भी लिखी है, लेकिन कविता सुनाने के पहले जान लें कि जो गीत हम सुन रहे थे तू गंगा की मौज में, वो गीत बैजू बावरा फिल्म से हमने लिया था। मोहम्मद रफ़ी, लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ें, शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ बहुत सुंदर सा गीत हम सुन रहे थे। चलिए हम चलते हैं उस कविता की तरफ जो हमारे श्रोता ने लिखी है कि सरिता बहती रहती रही चुपचाप अपने ही सागर की तलाश में, हर मोड़ पर कुछ खोती गई, कुछ यादें बसी रही सांस में, जीवन भी कोई राग ही तो है जिसमें सुर कम सिसकियां ज्यादा हैं, हम मुस्कुराते जरूर हैं बाहर से पर अंदर कहीं बारिश आधी आधी है। विविध भारती उन लहरों में जब कोई पुराना गीत उतरता है तो लगता है जैसे बचपन फिर से मेरे आंगन में चुपके से ठहरा है, वो दोपहर है, वो शाम है, वो रात है, जब रेडियो ही अपना यार था, हर धुन में अपना कोई मिलता, हर दिल बेकरार था, कुछ सपने थे जो सो गए थे, वक्त की चादर ओढ़कर कहीं आज वही जाग उठे हैं फिर से इन सुरों में, हल्की रोशनी में यहीं, ये प्रेम कहानी भी अजीब है, ना पूरी हुई ना खत्म हुई, बस एक धुन बनकर रह गई जो हर दिल में चुपके से नम हुई, पर्वत भी रोई, नदियां भी बोली, वन उपवन में दर्द सुनाया है, ये सफर नहीं एक एहसास है जिसने जीना सिखाया है, तो चलिए बहते हैं आज भी उन अधूरे गीतों की राहों में, जहां हर सुर में दर्द छुपा है, हर दर्द में प्यार है चाहों में। क्या बढ़िया लिखा है आपने, बहुत खूबसूरत सा लिखा है। और हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं बड़े प्यार से कि आपने विविध भारती को सबसे पहले कब सुना और सुनकर कैसा लगा था। तो हमारे कई श्रोताओं ने उत्तर दिया कि हमारे लिखते हैं श्रोता कि 1980 में मौसम का तकाजा है ये गीत VBS चित्रलोक में सुना, और वो वाल्व वाला रेडियो शॉर्ट के साथ सुना था। जी बिल्कुल। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि उन्होंने 1957 में अक्टूबर में सुना था सबसे पहली बार, और हमारे श्रोता कह रहे हैं कि हमारे गीतों को शामिल करें, बिल्कुल प्रयास करेंगे, अब आपके और हमारे गीत पसंद के हों तो बहुत अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने भी लिखा कि पिताजी के रेडियो सुनते आ रहे थे तब से हम सुन रहे हैं। कोई लिखता है 55 वर्षों से विविध भारती से जुड़ा

का बना है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि बचपन में उन्होंने 10 बैंड का रेडियो लिया था, इसमें मेगावाट, शॉर्ट वेव, एफएम, टीवी, टीवी वन सब कुछ था, और इसमें विविध भारती के गाने सुनते थे और पढ़ाई भी करते थे। हेलो फरमाइश फौजी भाइयों के लिए, प्रोग्राम लकड़ी से बनी रेडियो देखा बचपन में, जब बच्चे थे तो कोसते थे कि इसमें कौन आदमी कहाँ से बोलता है, इस चक्कर में रेडियो तक खोल देते थे। आपको सच बताऊँ मैंने भी खोल दिया। हमारे एक श्रोता लिखते हैं कि माँ सुनती थी इसलिए विविध भारती हम की अनायास आदत हम में भी पड़ गई। हमारे श्रोता लिखते हैं विविध भारती कब पहली बार सुना है तो नहीं पता, लेकिन जब भी सुना यहाँ तक सभी कुछ है भाई, संगीत, नाटक, कहानियां, समाचार, दुर्लभ जानकारियां, सखी सहेलियां, आप तो फेसबुक पर यार मित्र भी मिल जाते हैं। बिल्कुल सही बात है। हमारे श्रोता ने लिखा कि विविध भारती से गाने तो सुनाई देते पर ध्यान से अगर कुछ सुनने की बात होती तो वह था हवा महल, और हमारे घर के खाने का टाइम हुआ करता था, हम सभी थाली लेकर रेडियो के आसपास बैठ जाते, करौंदे की चटनी, उदयपुर की ट्रेन, कौन से बाबूजी, शनिवार के दिन जयमाला, महमूद साहब का जयमाला, चलो ख्वाबों की दुनिया में। क्या बात है आपकी, कितनी सुंदर यादें हैं विविध भारती के साथ में। और हमारे श्रोता ने लिखा है कि विविध भारती को हमने शॉर्ट वेव बैंड पर खरखराती आवाज में सुना था, उसके बाद विविध भारती दिल्ली विज्ञापन प्रसारण सेवा को सुना, फिर हमें मालूम पड़ा कि विविध भारती के और भी स्टेशन हैं, तो सर्च किया तो रेडियो पर बड़ी मुश्किल से पकड़ में आते थे सिर्फ रात के समय पति पकड़ में आते थे। विविध भारती मुंबई के कार्यक्रम बेला के फूल एक मशहूर कार्यक्रम है। जी बिल्कुल, उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये मेरे मन की बात है, मनपसंद विषय, मुझे याद नहीं विविध भारती पहली बार कब सुना, मैं अपने शब्दों में कहूं तो विविध भारती के साथ ही बड़ी हुई हूं, होश भी संभाला है, पैदा ही हुई हूं विविध भारती के साथ, यह मेरी हमजोली है, ये कुछ ही दिनों बड़ी है मुझसे। अच्छा, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब मैं अकेला आंख बंद करके थोड़ा रिलैक्स होता हूं तो बचपन याद आ जाता है, गांव की नदी में नहाने जाते थे, दोपहर के बरगदों के पेड़ों के झूला झूलते थे, फल खाते थे, वो भी क्या बचपन था, 100% प्रकृति से जुड़ाव था जो छूट गया है मुझे, गांव का वो पत्थर, वो ओटले, सब कुछ याद है, जहाँ हम सब दौड़ते थे और बैठ जाते थे, कितनी बढ़िया अच्छी बातें हैं। पर अभी मन कर रहा है कि हम आपको उस समंदर के किनारे ले जाएं, क्योंकि हमने आपके सामने जो इबारत रखी थी उस इबारत में हमने इस बात की भी चर्चा की थी कि जो जीवन संगीत है उसमें सरिता बहती है और सागर में जाकर मिलती है।

दर्द लिया, इस फिल्म से ये गीत हम सुन रहे थे मोहम्मद रफी की आवाज में, शकील बदायूनी के बोल। और हमने आपसे पूछा था कि इस गीत के संगीतकार कौन हैं, तो हमारे श्रोताओं ने तो खिलखिलाकर मुस्कुराकर इस प्रश्न का उत्तर दिया। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरी चॉइस आ गई और आपकी पसंद का गीत हमने आपको सौंपा, हमें बड़ी प्रसन्नता हुई। और जी बिल्कुल सही, नौशाद अली इस गीत के संगीतकार हैं और आज उनकी पुण्यतिथि यानी उनका स्मृति दिवस है, तो हम उन्हें याद करते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिलीप कुमार पर फिल्माया गया ये बेहद खूबसूरत गीत है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब हमने प्रश्न पूछा था आपसे कि आपने विविध भारती सबसे पहली बार कब सुना, तो हमारे श्रोता लिखते हैं कि हमारी विविध भारती सबसे ज्यादा सुना लता जी के गीतों को, और जिसके साथ पढ़ाई भी की और रेडियो को कई बार खोला भी, बिगाड़ा भी, और बन गया गीत लिखना जितना, फिर जितना रह जाए वो अगली बार आने पर पूरा करना, कितना अच्छा था। सो टाइम से अपना काम करना और समय का पता भी ना चले, गीतों से प्यार तो था ही, तो जब हमारी पसंद का गीत आता तो खुशी से नाचना। बिल्कुल, हमारे श्रोता लिखता है हमारे पास लकड़ी का बना वॉल्व वाला रेडियो था जिसको गर्म होने में भी समय लगता था, फिर चलता था। 1978 के आसपास से रेडियो सुनना शुरू किया, तब मात्र 8 साल के थे। क्या बात है, इतनी छोटी उम्र से ही। हमारे एक श्रोता ने विविध भारती के लिए बहुत अच्छी बात लिखी कि आपने आपने विविध भारती से जुड़ी यादें और संगीतों के बहाव को बहुत ही काव्यात्मक तरीके से पिरोया है। यह सच है कि विविध भारती के गीत केवल मनोरंजन नहीं बल्कि एहसास है जो हमें बचपन की गलियों और सुनहरी यादों तक ले जाते हैं। सरिता सागर, जीवन का बहाव और बचपन की स्मृतियां, ये शब्द सुनते ही मन में एक रोमानी, शांत और पुरानी यादों वाली प्लेलिस्ट बन जाती है। और हमारे एक और श्रोता ने उत्तर दिया, बचपन में जब शाम होती थी घर में रेडियो की आवाज गूंजती थी, बीबीसी की खबरें, विविध भारती के मधुर गीत, हवा महल की कहानियां। विविध भारती सिर्फ मनोरंजन नहीं है, धागा है जिसने पूरे समाज को एक साथ जोड़ रखा है। बारिश की रातों में बिजली गुल होने पर भी ट्रांजिस्टर से गूंजता कोई पुराना नगमा माहौल को जीवंत कर देता था। एक वक्त था जब सुबह जयमाला की से दिन की शुरुआत करते थे और रात को छाया गीत सुनते हुए सो जाते थे। रेडियो में कोई चेहरा नहीं दिखता था लेकिन आवाजों के साथ आत्मीय रिश्ते बन जाते थे। बिल्कुल सही बात है, और इन्हीं रिश्तों के लिए आज हम आपके साथ में यहाँ पर बैठे हैं और बातें कर रहे हैं। देखिए, हम बात कर रहे थे और हमने जो इबारत लिखी उस इबारत में हमने बात की थी कि जीवन जो है ना वो संगीत जो है उसका बहाव का नाम है, बस संगीत बहते जाना चाहिए। तो बह चलते हैं सुमधुर गीतों के साथ। अब ये सुमधुर गीतों में ये वाला जो गीत मैं आपको सुनवाने जा रही हूँ ना, ये गीत मुझे ये नहीं पता कि ये रेडियो का पहला गीत है जो मैंने सुना था, लेकिन ये मेरी याद का पहला गीत है जो मेरे कानों में पड़ा था। तो चलिए सुनते हैं ये मेरी याद का पहला गीत, और आप बताइएगा कि इस गीत की गायिका कौन है।

हम सुन रहे थे नाचे मयूरी फिल्म का यह गीत आनंद बख्शी के बोल लक्ष्मीकांत प्यारे लाल के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था बस इतना ही कि इसके गायिका कौन है, तो आपने बहुत अच्छे से उत्तर दिया कि एस जानकी ने इसे गाया है, सुधा चंद्रन ने बड़ा खूबसूरत सा नृत्य इस पर किया है। अब हम वापस आ जाते हैं हमारे श्रोताओं की बातों पर। और ये जो बचपन की बात है ना, ये बड़ा खूबसूरत सा दौर होता है और इसी दौर में हम अपने जीवन को बहुत अच्छे से जी लेते हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि मेरे नाना नानी मामा मामी मौसी हैं सब हमारे यहाँ रेडियो सुनते थे, तो उनके साथ हम भी रेडियो सुनने लगे, इसलिए मेरी मम्मी को भी रेडियो की आदत है, गाना सोने के पहले बेहद शौक है, वह सुनती हैं। और अब हम आपका प्रोग्राम रेडियो पर चलाकर सुनते हैं, मेरी मम्मी भी चला लेती हैं और वह बड़े प्यार से विविध भारती तो सबके दिल की धड़कन है, ऐसा वह लिखती हैं। और वह यह भी लिखती हैं कि आई लव रेडियो, ऐसा प्यार बना रहे तो कितनी अच्छी बात है। हमारे श्रोता ने लिखा है कि मैं और मेरे भाई बहन पढ़ते वक्त विविध भारती सुनते थे और अब वह रोज सुनती हैं। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि विविध भारती 2003 में आज के फनकार का कार्यक्रम सबसे पहला सुना था, ऐसा उन्हें थोड़ा थोड़ा याद है। क्या बात है, आज के फनकार कार्यक्रम में हम याद भी हमारे बड़े सुरीले या बड़े अच्छे कलाकारों को याद करते हैं। उसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि दिल दिया दर्द लिया फिल्म में जो बड़ा खूबसूरत सा गीत है उसके बारे में लिखते हैं कि ये रचना बड़ी प्यारी है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि उनका 60 साल की उम्र उनकी उम्र हो गई है और बचपन से ही विविध भारती सुनती हैं और अब 60+ हो चुकी हैं। धन्यवाद, ऐसे ही सुनते रहिए। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि जब से होश संभाला है तब से सुनते आ रहे हैं। विविध भारती की पहचान कमल शर्मा जी से है, ऐसा हमारे एक श्रोता लिखते हैं। बिल्कुल, आपको उनका अंदाज पसंद है, सभी को पसंद आता है किसी ना किसी का बोलना सुनना और अद्भुत उद्घोषक इस मंच से आप सबके बीच में आए हैं। हमारे एक और श्रोता लिखते हैं कि इस दुनिया में आई थी तो एक आवाज भी आई थी, विविध भारती की धुनें और पापा की परछाई, आज भी जब बजता है वो पुराना सा तराना लगता है जैसे फिर उनकी गोद में लौट आई हूं। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। हमारे श्रोताओं ने लिखा कि मैं जो गीत वो सुन रहे हैं, जो रेडियो वो सुन रहे हैं, उसके बारे में लिखते हैं कि एक बड़ा सा एंटीना लगा था और जब भी स्टेशन नहीं पकड़ता था तो बिजली के किसी तार को उसमें टच कर देते थे और वो तुरंत सही हो जाता था। हाँ, ये हम लोग भी करते थे। तो ये बचपन की बड़ी अच्छी बातें हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि वह 60 के आसपास आ गए हैं और ये सफर का जादू जो है वो उनके साथ लगातार चलता जा रहा है। बिल्कुल, ऐसे ही आप सजे रहिए, विविध भारती के साथ बने रहिए, क्योंकि हम सब साथ में मिलकर एक बहुत सुंदर सा परिवार बनाते हैं और ये परिवार एक दूसरे को साथ में जोड़े रहता है। अब मैं

अगला गीत आपको सौंपूं तो उसके पहले एक प्रश्न आपको देना चाहती हूं। हालांकि हमारे श्रोता ने एक और लिखा है, शोले फिल्म का डायलॉग था, यह काम तुम लोग कब से करते हो? जवाब था, बस होश संभालते ही शुरू कर दिया था। बस यही हाल है अपना भी कि हम भी तो विविध भारती तब से ही सुनते आ रहे हैं। चलिए बढ़िया बात है। हमारे श्रोता लिखते हैं, खाना और गाना दोनों चीज मन को सुकून देती हैं। बचपन से ही मुझे रेडियो का शौक है, मेरी माँ भी रेडियो सुनती है, बैटरी वाले रेडियो से लेकर इन्वर्टर वाले रेडियो तक, और फोन पर भी रेडियो सुन रहे हैं। किचन में फ्रिज पर रेडियो रखा हुआ है, 5 बजे शुरू हो जाता है, रात को 11:30 बजे बंद होता है। जब जो भी घर में आता है कहता है, अरे आप रेडियो सुनते हैं, खुश हो जाता है। मेरे बच्चों को भी यही आदत है, क्योंकि बच्चे छोटे थे तो मैं उनके पास ट्रांजिस्टर रख देती थी छोटा वाला, जिससे उन्हें लगता था कि उनसे बात कर रहा है। मैं अपना काम भी कर लेती थी और संगीत इतना पसंद है कि मैंने विशारद किया है, और 5,000 से अधिक गाने तो इन्हें मुंह जवानी याद है। क्या बात है, रेडियो का साथ आपके साथ ऐसा ही बना रहे, बहुत बढ़िया बात है, बने रही ऐसे ही साथ में। और हमारी श्रोता लिखती है, 7 साल की थी तब से संगीत में डुबकी लगाई है और अब तक वह रेडियो से लोन पर गाने सुनने की आदत हो गई है। विविध भारती शुरू होने के बाद वह भी सुनने लगी। मैं 7 साल की उम्र से संगीत का लगाव आज तक 75 साल से बरकरार है, और ये प्रेम आपका ऐसे ही बना रहे हम तो कामना करते हैं। अब हम चलते हैं अगले गीत की तरफ। बस इतना सा बता दीजिए, इसमें लता मंगेशकर के साथ में दूसरी गायिका कौन है, जल्दी से बताइएगा। और एक और बात आपसे पूछनी है कि रेडियो घर पर तो सुना है, घर के बाहर ले जाकर कहीं सुना है क्या रेडियो, जरूर बताइएगा।

गोलो नौशाद के संगीत के साथ। और हमने आपसे पूछा था कि बताइएगा जरूर कि इस गीत में इन लता मंगेशकर के साथ में और कौन सी गायिका हैं जो गा रही हैं, और आप सब ने बिल्कुल सही उत्तर दिया कि ये गाना फिल्म दीदार का है, लता मंगेशकर के साथ शमशाद बेगम है। शायद प्रेम त्रिकोण पर यह फिल्म थी जिसमें दिलीप कुमार, नरगिस और अशोक कुमार हैं। देखिए क्या है, देखते हैं, जानते हैं। और चलिए, हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया कि बीच में विविध भारती से संपर्क टूट गया था, न्यूज़ ऑन एयर एप्लीकेशन पर फिर से सुनना शुरू किया, गीतमाला प्रोग्राम में वापस शुरू कर दिया, अब आदत पड़ गई है। हमारे श्रोता लिखते हैं, पहले तो बाहर ले जाने का सवाल ही नहीं था, गर्मियों के दिनों में छत पर ले जाकर सुनते थे रेडियो जब टेस्ट मैच चलता था, और छोटी ट्रांजिस्टर का जमाना आ गया तो घर के जेंट्स लोग जो थे वो पॉकेट में ट्रांजिस्टर लेकर चलते थे, कई बार तो लोग हाथ में भी कंधे पर ट्रांजिस्टर लेकर लटका कर चलते थे। बाहर निकलती हूँ, कोई प्रोग्राम सुनना होता है तो छोटे वाले मोबाइल पर FM विविध भारती सुनते हैं। जी बिल्कुल सही बात है, हमारे श्रोता बहुत अच्छे से बताते हैं कि ये जो गीत हैं, ये जो संगीत है, ये इन्होंने सुनना शुरू किया बहुत पहले से। और हमारे श्रोता ने 5 मई, अच्छा इनकी इनका विवाह वर्षगांठ है तो उन्हें हम शुभकामनाएं दे देते हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि सांस लेना कब से शुरू की, वैसे ही रेडियो भी जन्म से सुन रहे हैं, ऐसा प्रश्न आपने कर दिया है। एक बस बश का वॉल्व रेडियो था जो टैप आज तक 60 वर्षों से वह लगातार सुनते आ रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है। और ऐसे ही हमारे श्रोता ने बहुत अच्छी बात लिखी, बचपन हर गम से बेगामा ना होता है, और उसी समय कोई भी शरारत अगर हम सोचते हैं तो हमने क्या किया था वो आज कर नहीं सकते, वैसे करके देखें क्या, बड़ा मजा आएगा। हमारे श्रोता ने लिखा है, बहुत बचपन से ही लखनऊ के आकाशवाणी में प्रसारित आओ बच्चों बाल संग आदि प्रोग्राम सुनती थी। हमारे सगे फूफा जी रज्जन लाल उस समय प्रोग्राम को प्रसारित करते थे, रेडियो पर पहली बार चुन चुन करती आई चिड़िया, नानी तेरी मोनी को ले गए, ये आदि बच्चों के गीत सुने थे। आज भी रेडियो सबसे ज्यादा जरूरी है और आपके साथ भी जरूरी। हमारे श्रोता लिखते हैं कि सुबह दोपहर शाम सभी सेवाएं चालू रहती हैं और वो लगातार सुनते हैं। अच्छा, ये जो सब कुछ चलता रहता है आपके जीवन में, जो रेडियो चलता रहता है, उस रेडियो के साथ में आपने कई सारी यात्राएं भी की होंगी। जैसे एक बार हम पर्वतों पर यात्रा करने के लिए गए थे और वहां पर हमें कुछ मिला नहीं मिला, हमारे मोबाइल पर नेटवर्क मिला नहीं मिला, लेकिन विविध भारती जरूर सुनने को मिला। तो ऐसी कोई याद अगर आपकी है तो जरूर बताइएगा। और अगला गीत हम आपको सुनवा रहे हैं, बताइएगा इसके गीतकार कौन है, गीतकार का नाम बताइए, और ये बताइए कि कोई ऐसी जगह जहां पर आपको कुछ नहीं मिला पर विविध भारती मिला।

और इस खूबसूरत से साथी के साथ में हम बात कर रहे थे उस इबारत की कि सरिता बहती है सागर में जाकर मिलती है, वैसे ही जीवन संगीत का बहाव का नाम है। तो चलिए बहते हैं सुमधुर गीतों के साथ विविध भारती को चाहने वाले, जब सुबह से लेकर सांझ तक और रात्रि तक चाहते हैं और सुनते हैं तो जी लेते हैं अपना बचपन और कई स्मृतियां और मन के भाव उठ जाग उठते हैं और स्वप्न की लीला में जाकर कहीं सो गए थे। यहीं से आरंभ होता है एक ऐसी प्रेम कहानी का जो शिखर यात्रा की ओर बढ़ती है और जो हौले हौले बढ़ती जाती है। पर्वत नदी वन उपवन होते हुए ये यात्रा गीत संगीत पर समाप्त होती है और इसके साथ ही हमने आपसे बहुत सारे प्रश्न किए हैं और उनका उत्तर आप बड़ी मोहब्बत से देते जा रहे हैं। हमारे श्रोताओं ने पूछा हमने उनसे कि आपने कहाँ कहाँ जाकर इस रेडियो को सुना है, यानी विविध भारती को सुना है। तो विदेश में रहकर विविध भारती को सुनने का मजा कुछ और है, विदेश में विविध भारती मिली इस बात के लिए उन्होंने हृदय यानी दिल का चिन्ह हमारे लिए भेजा है। हमने एक और प्रश्न आपसे पूछा था कि ये जो गीत है इसके गीतकार कौन है। हमारे श्रोता ने उत्तर दिया मजरूह सुल्तानपुरी, बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। और हमारे श्रोता ने एक बड़े प्यार से लिखा है कि जब बचपन में परिवार के साथ घूमने जाते थे तो रेडियो साथ में ले जाते थे, क्योंकि उस समय 7:05 पर सैनिकों के लिए प्रस्तुत जयमाला प्रोग्राम जो आता था, सबकी अपने अपनी पसंद है, अलग अलग पसंद है और वह सुनते थे। आज के मोबाइल में अनेक तरह की एक्टिविटी होती हैं मगर आज भी हम रेडियो से जुड़े हैं। विविध भारती रेडियो ऐप्स पर कमेंट करते हैं और जिससे अंदाजा लगा सकते हैं कि हम कितने दीवाने हैं। और हमारे श्रोता देखते हैं, मैं आज तक ऐसी जगह नहीं गई जहाँ कुछ भी ना मिले, जहाँ कुछ भी ना मिला हो, कुछ ना कुछ तो मिल ही गया है। मैं मसूरी गई थी तो दूर शॉप की दुकान पर दुकानदार अंकल लोग गाना लगाकर सुना करते थे, जहाँ से मैं गुजरी गाना चल रहा था तो अच्छा लगा। बहुत बढ़िया, ये गीत ही तो है जो हमें जोड़ते हैं। और हमारे श्रोता लिखते हैं नॉर्थ ईस्ट पर पहाड़ियों पर घूमने भी गई थी, उन्हें शायद रात में वहाँ रुकना अच्छा नहीं लगा। देखिए सबको अपना अपना बिस्तर अपनी अपनी जगह अच्छी लगती है। हमारे श्रोता लिखते हैं कि छोटे थे तो पापा 15 रुपये देकर बोलते थे दुकान से रेडियो की बैटरी के लिए ले आओ, तो जब तब शेल बोलते थे। हाँ तो शेल लेने कौन कौन जाता था ऐसा इनका प्रश्न है। मेरे जीवन में कुछ ऐसा समय आया दोस्तों ने रिश्तेदारों ने साथ नहीं दिया, तब साथ दिया विविध भारती ने, और धन्यवाद विविध भारती, हम सब एक साथ हैं हमेशा। ये विविध भारती केवल रेडियो नहीं, एक बड़ा परिवार है और हम उस परिवार के साथ हैं। बिहार की पहचान साइकिल और रेडियो हुआ करता था, सुना है बिहार में शादी से पहले रेडियो साइकिल ही दिया जाता था लड़कों को। क्या बात है। हमारे यहाँ हमारे श्रोता बड़े प्यार से लिखते हैं, घर के बाहर ले जाकर तो नहीं सुना पर छत पर ले जाकर उन्होंने जरूर कई बार विविध भारती को सुना है। तो आप विविध भारती को ऐसे ही सुनते रहिए। हमारे कुछ श्रोता ये शिकायत भी कर रहे हैं कि इस पर हम बात ज्यादा कर रहे हैं, गीत कम सुना रहे हैं, बात नहीं कर रहे, हम इस पर वही सुना रहे हैं जो हमारे श्रोता लिख रहे हैं, तो उनके मन की भी सुनना थोड़ी सी जरूरत लगती है। विविध भारती बने से एक सुख दुख का साथी है। एक बार डिप्रेशन में चली गई थी, कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करूं, तब विविध भारती पर गीत बजने लगा, तेरा राम जी करेंगे बेड़ा पार उदासी मन काहे को डरे, लगा कि यह गाना मेरे लिए ही है। और उस समय मैं फिर से जीवन से भर गई, मैं संभल गई, विविध भारती ने मुझे संभाला है। कितनी बड़ी बात है ये हमारे लिए। हमारे श्रोता ने लिखा कि ऊंचे बर्फीलों की यात्रा कर रही थी, कार में की विंडो से पहाड़ों का नैसर्गिक सौंदर्य निहार रही थी, साथ में यशुदास के बजे हुए गीतों के ने उनके मन को बड़ा सुकून दे दिया। तो चलिए ऐसे ही बातें हमारे पास बहुत सारी हैं, लेकिन आपके पास भी बहुत सारी हैं विविध भारती से जुड़ी ही बहुत सारी बातें। बस इतना बता दीजिए कि कभी विविध भारती को सुनने के लिए अपने भाइयों से या बहनों से लड़ाई की है, हमने तो की है, आप जरूर बताइएगा। तब तक सुनिएगा ये प्यारा सा नगमा और बताइएगा इस गीत के संगीतकार कौन है।

हम सुन रहे थे रुला के गया सपना मेरा, ये गी ज्वेल थी फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज में सचिन देव बर्मन के संगीत के साथ मजरूह सुल्तानपुरी ने इसे बोल दिए। बिल्कुल, हमने आपसे कहा था संगीतकार पहचानिए और आप सबने बिल्कुल सही पहचाना, बड़े वर्मन दा यानी सचिन देव बर्मन, ऐसा करके आपने उत्तर दिया है, उसके लिए आपको धन्यवाद। और हमारे श्रोताओं से हम बहुत सारी बातें कर रहे हैं विविध भारती के को लेकर, जो उनकी यादें हैं उसको लेकर, और उसी उन्हीं यादों को लेकर हमारे श्रोताओं ने बड़े अच्छे से बताया है कि पहले जो 1997 में उनकी शादी हुई थी तो उन्हें रेडियो, पंखा, आयरन, सोने की अंगूठी ये सब मिला था, पर रेडियो उनके दिल से लग गया था, यानी सोने की अंगूठी से अधिक उन्हें रेडियो पसंद आया था। अब हमारे श्रोता बताते हैं कि हमारे घर हो या पड़ोस का घर हो, पूरा दिन विविध भारती बजती रहती है, इसलिए लड़ाई कहा सुनी करने की जरूरत नहीं होती, या संस्कार विरासत में मिले। हमारे एक श्रोता लिखते हैं, जी बिल्कुल, लड़ाई झगड़ा होता था जब 72 में विविध भारती के कमर्शियल प्रोग्राम शुरू हुआ था, बीके अंताक्षरी जैसे शिव कुमार जी पेश करते थे, उस समय अगर टेस्ट मैच आता होता तो भैया से झगड़ा होता था, ना रहेगा बांस ना बजरेगी बांसुरी, यह कहते हुए बड़े ट्रांजिस्टर की बैटरी निकाल देते थे। ये लड़ाइयां बड़ी अच्छी होती हैं, आज भी याद आती हैं। हमारे श्रोता लिखते हैं कि विविध भारती के लिए कभी लड़ाई नहीं हुई, मेरी बहन है नहीं तो हाँ मेरे मिस्टर से जरूर लड़ाई करती हूँ।

के लिए जब विविध भारती चालू हो तो आप उसे कम जो बोलना हो है वो पहले बोल दिया कीजिए। बिल्कुल सही बात है, विविध भारती एक ऐसा एहसास है, कोई भी व्यक्ति कितना भी अकेला हो, कितना भी दूर हो, विविध भारती एक ऐसा चैनल है जो कहूँ परिवार है, जो व्यक्ति के अकेले का एहसास हो नहीं सकता, रेडियो से जुड़ा है जो वो अकेले हो नहीं सकता। हमारे श्रोता लिखकर कहते हैं कि आपको भी याद होगा कि पहले जब कोई रेडियो खरीद कर लाता था तो सबसे पहले कितने बैंड का है ये पूछा जाता था, बाद में ब्रांड का। बिल्कुल सही है, रेडियो पर कमेंट्री आती थी, कान लगाकर कमेंट्री सुनते थे, उसके लिए कई बार घर वालों से डांट भी खाई है। पढ़नी ही चाहिए, जब पढ़ाई नहीं करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है। हमारे एक श्रोता कह रहे हैं कि उन्हें एफएम रेडियो चाहिए जो मिल नहीं रहा है, अगर कोई मदद कर सके तो अवश्य अवश्य कीजिएगा। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें इस विषय पर लिखी हैं। हम आपको अगला गीत पेश करना चाहते हैं, और हम आज की जो इबारत हमने लिखी उस इबारत में हमने आपसे एक और जिक्र किया, एक जिक्र किया हमने प्रेम कहानी का, और ये प्रेम कहानी आपकी और हमारी है, यानी उस विविध भारती के साथ आपकी हमारी जो प्रेम है, उस प्रेम कहानी में शायद कोई और आज तक आ ही नहीं पाया। जलन की बात ही नहीं थी और किसी के होने का जज्बात ही नहीं था। तो चलिए सुनते हैं ये प्यारा सा प्रेम कहानी का गीत, और आपकी विविध भारती के साथ आपके प्रेम को जांचते हैं, आंकते हैं, बताइएगा कि इस गीत के गायक कौन है, और सुनिए ये प्यारा सा नगमा।

हम सुन रहे थे लता मंगेशकर किशोर कुमार की आवाजों में ये गीत, बिल्कुल सही पहचाना आप सभी ने, आनंद बख्श के बोल लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत के साथ।

प्रेम कहानी फिल्म का यह प्यारा सा नगमा। और हम चल रहे हैं अंतिम पड़ाव की ओर। हमारे श्रोताओं ने बहुत सारे संदेश भेजे हैं, मैं थोड़ा थोड़ा करके आपका पढ़ देती हूँ। कि हमारे श्रोता ने बताया कि उन्होंने किस तरह से 2002 में रेडियो सुनना शुरू किया था, और किसी का कहना है कि वो दुबई आना जाना था तो वहाँ पर भी उन्होंने लोगों के बीच में विविध भारती फेमस कर दिया लोगों को सुना सुना कर। इसके साथ ही हमारे श्रोता लिखते हैं कि 1967 में मर्फी का विज्ञापन जो आया था वह उन्होंने उसकी डिमांड काफ़ी होती थी। वह बता रहे हैं, हमारे श्रोता ने बताया कि वह एक श्रोता ने तो बड़ी अच्छी बात कही कि उनके लिए कहा जाता है कि उनके घर वाले कहते हैं कि जब ये अगर इस दुनिया से जाए तो इनके बगल में रेडियो ज़रूर रख दीजिएगा, क्योंकि वह रेडियो रसोई में भी सुनती हैं, बेडरूम में भी सुनती हैं, हर जगह सुनती हैं। और इसके साथ ही हमारे श्रोताओं ने बहुत अच्छे से बताया है कि वह रेडियो को किस किस जगह पर सुनते हैं, मार्केट जाते हैं तब भी सुनते हैं और बहुत अच्छे से सारी बातों को सुन लेते हैं। और ऐसा हमारे श्रोता ने बताया कि एक बुरा काल आया था इस धरती पर, उस काल में भी रेडियो ने इनका बहुत साथ दिया, बहुत अच्छी बात है। और हमारे श्रोता लिखते हैं कि अपने भाई के साथ लड़ाई भी उन्होंने बहुत अच्छी करी, क्योंकि रेडियो नहीं सुनने देता, एक बार रेडियो तोड़ दिया था, फिर बाद में सुधरवा के वापस सुनने लगे। ऐसे ही आप विविध भारती के साथ में प्यार करते रहिए, क्योंकि बचपन से आप रेडियो सुनते आ रहे हैं और आगे तक सुनते रहेंगे, जीवन पर्यंत हम सुनते रहेंगे। रेडियो का साथ, विविध भारती का साथ हमारा और आपका कभी ना छूटे। और आज की भारत में बहुत सारे गीत थे जो आपको सुनवाने थे, पर ये वाला गीत आपको सौंपती हूं और इसके बाद आपसे आज्ञा लेना चाहूंगी।

वन, उपवन, पर्वत, नदियाँ, कहीं पर भी चले जाएं, पर हम हमारे प्रेम को, हमारे साथ को नहीं छोड़ सकते। विविध भारती का परिवार यूं ही बना रहे। आप सबके मंगल की कामना करती हूं। आज्ञा दीजिए। नमस्कार। सुरीला सफर यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।

0: नमस्कार श्रोताओं, किसी ने कहा था कि मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती, लहरों से डर कर नैया पार नहीं होती। आज का जमाना कई जगह ऐसा देखा जाता है कि हर कोई सोचता है कि ये जो काम है वो बड़ी सरलता से, बड़ी आसानी से हो जाए, हमें उसके लिए मेहनत ना करना पड़े। एक जमाना था जब इस देश की स्वतंत्रता के लिए मेहनत की गई, और जब मेहनत की गई तभी राष्ट्र स्वतंत्र हुआ, वरना बैठे बैठे सोचने से कुछ हो नहीं सकता था। मुंगेरी लाल के सपने तो सभी देखते हैं, पर उन्हें पूरा करने के लिए भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी जैसे रण युद्ध में कूदना पड़ता है और जीतना पड़ता है उस विजय को।
1: जी

ये बड़ी बड़ी ऊंची इमारतें, ये चौड़ी सड़कें, ये चलता हुआ कारखाना, ये सब इसके पीछे कोई ना कोई मेहनतकश व्यक्तित्व है, उनका समर्पण है। कोई इंजीनियर दिन रात मेहनत करके इनकी डिजाइन बना रहा होगा, कोई श्रमिक पूरी मेहनत और पूरी श्रद्धा के साथ इन्हें सजा रहा होगा, तभी आज हम बड़ी बड़ी कारखानों को चलते हुए देख रहे हैं और अपनी सुविधाओं की प्रत्येक वस्तु को अपने पास तक आते प्राप्त कर रहे हैं। यह सब आसान नहीं है, इसके लिए मेहनत करना

ना जरूरी है। आज के जमाने में कई जगह ऐसा पाया जाता है कि कई बच्चे कई बड़े ये सोच कर बैठ जाते हैं कि हमें तो वो एक छोटी सी एसी कमरे में बड़े सामान्य सी कुर्सी के साथ में बैठ जाना है और काम करना है। यहाँ पर वही काम किया जा सकता है जो सरल है, परंतु कुछ नया करने के लिए जंगे मैदान में उतरना पड़ता है। तो चलिए आज विचार करते हैं कि वो मैदान कौन सा है जिस युद्ध को लड़कर हमें अपने आप को विजित करना है।

ये जो लोग हमारे लिए दुनिया बना रहे हैं, ये जो लोग हमारे लिए दुनिया सजा रहे हैं, ये दुनिया बनाते समय, इसे सजाते समय उनके सपने होंगे, उनके ख्वाब होंगे कि कोई तो होगा जो आएगा हमसे और अच्छा करेगा। मेहनत करने वाला वही अच्छा करने का गुरूर रखता है और मन में एक आशा रखता है कि अभी तक जो हुआ है उससे अच्छा हम कर जाएंगे। आज हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन पूरी दुनिया में अलग जगाता हुआ खड़ा है। उसके पहले उस पर की गई मेहनत, आज हमारा देश सारी दुनिया में गर्व से खड़ा है। उसे बनाने के लिए उस पर की गई मेहनत, प्रत्येक वैज्ञानिक, प्रत्येक व्यक्तित्व, प्रत्येक श्रमिक, प्रत्येक उस इंसान को प्रणाम करते हैं जिसने अपनी जंजीरों को तोड़ा, जिसने अपने आलस्य को छोड़ा और जिसने मेहनत को अपनाया और मेहनत को अपनाकर आज इतना सुंदर राष्ट्र का निर्माण कर दिया। हम उन्हें बहुत धन्यवाद देते हैं और आशा करते हैं कि हमारी आगामी पीढ़ी, अभी की पीढ़ी और प्रत्येक व्यक्तित्व अपने और अपने राष्ट्र के निर्माण के लिए सतत मेहनत करते रहेंगे। आज हम उन सभी को प्रणाम करते हैं जिन्होंने अपने जीवन में मेहनत की, कुछ कर गुजरे और इस दुनिया में अलग जगाई अपने और अपने देश के नाम की।

आगे बढ़ा हिम्मत कदम एक बार मर्द बनके तेरे पांव पड़ेंगी चट्टाने ठोकर की गर्द बनके ठोकर की गर्द बन

चले कल की किसे खबर है। ढलता सूरज कहता है ये जिंदगी सफर है, जो कल करना है

0: पता है, अब हम आपकी चिट्ठियों के इंतजार में हैं। क्योंकि वो जमाना वापस आ रहा है जब आपकी फरमाइशी चिट्ठियां आती थी विविध भारती में।
1: चिट्ठी आई है चिट्ठी आई है,
0: और हम सुनवाते थे आपके मनचाहे गीत।
1: पल पल दिल के
0: विविध भारती पर वापस आ रहा है आपका पसंदीदा कार्यक्रम मनचाहे गीत। 2 मई से हर शनिवार और रविवार दोपहर 3 बजे।

आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। दोपहर के 2:15 होने वाले हैं, थोड़ी ही देर में हम समाचार प्रसारित करेंगे।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरलम में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का नवाचार आधारित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान तंत्र को बदलने की आवश्यकता पर जोर। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए अपना समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
1: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जलडमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति, स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कल ईरान के ड्रोन हमले में फुजैरा पेट्रोलियम उद्योग क्षेत्र में आग लगने से 3 भारतीय नागरिक घायल हो गए थे। विदेश मंत्रालय ने भी इस हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। मंत्रालय ने कहा है कि पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
0: मध्य पूर्व के देशों और क्षेत्रीय संगठनों ने संयुक्त अरब अमीरात पर ईरान के हमलों की कड़ी निंदा की है। उन्होंने इसे क्षेत्रीय सुरक्षा और स्थिरता के लिए खतरा बताया है। उधर खाड़ी क्षेत्र में अमेरिका और ईरान के बीच नए सिरे से हमले शुरू हुए हैं। इससे होर्मुज जलडमरू मध्य के नियंत्रण को लेकर तनाव और बढ़ गया है तथा पहले से ही नाजुक युद्ध विराम और कमजोर हो गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नई पहल प्रोजेक्ट फ्रीडम की घोषणा के बाद मिसाइलें और ड्रोन दागे गए। इस पहल का उद्देश्य फंसे टैंकरों और वाणिज्यिक जहाजों को होर्मुज जलडमरू मध्य के जरिए गुजरने में मदद करना है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने कहा है कि विकास सहयोग भारत और जमैका के बीच साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ बना हुआ है। डॉ जयशंकर जमैका के विदेश मंत्री कामिना जॉनसन स्मिथ और अन्य कैबिनेट सदस्यों के साथ अपनी बैठक के बाद मीडिया को संबोधित कर रहे थे। एक रिपोर्ट।
2: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि वार्ता व्यापक और सार्थक रही, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों के सभी पहलुओं को शामिल किया गया और सहयोग को और मजबूत करने के नए रास्ते तलाशे गए। उन्होंने कहा कि दोनों देशों ने कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए और डिजिटल परिवर्तन, सांस्कृतिक आदान प्रदान, खेल और डिजिटल भुगतान जैसे क्षेत्रों में हाल ही में संपन्न हुए समझौता ज्ञापनों के प्रभावी कार्यान्वयन पर चर्चा की ताकि जमीनी स्तर पर ठोस परिणाम सुनिश्चित किए जा सके। डॉक्टर जयशंकर ने आज जमैका के किंगस्टन में वेस्टइंडीज विश्वविद्यालय में परिवर्तनशील दुनिया और भारत की प्रतिक्रिया विषय पर लोगों को संबोधित किया। सोशल मीडिया पोस्ट में डॉक्टर जयशंकर ने बताया कि उन्होंने वैश्विक दक्षिण, सुधारित बहुपक्षवाद और बहुध्रुवीयता से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की। समाचार कक्ष से फरहत नाज।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम भारत की 3 दिन की यात्रा के पहले चरण में आज बिहार के बोधगया पहुंचे। हवाई अड्डे पर बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने उनका स्वागत किया। यात्रा के दौरान राष्ट्रपति तो लाम यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। वे बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा करेंगे। राष्ट्रपति तो लाम के साथ वियतनाम सरकार के कई मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ साथ एक व्यापारिक प्रतिनिधिमंडल भी आया है। राष्ट्रपति आज दोपहर बाद नई दिल्ली पहुंचेंगे। कल राष्ट्रपति भवन के प्रांगण में राष्ट्रपति तो लाम का औपचारिक स्वागत किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsoneir.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु

0: तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद राज्य में नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। नए मंत्रिमंडल के सदस्यों का शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इसी दिन गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के समारोह में शामिल होने की उम्मीद है। भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बंगाल में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को राज्य में केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा को केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। इन नामों को भाजपा संसदीय पर्यवेक्षक बोर्ड ने मंजूरी दी। तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलका विक्ट्री कड़गम 108 सीटें लेकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। पार्टी के शानदार चुनावी प्रदर्शन के बाद नवनिर्वाचित टीवी के विधायकों ने आज चेन्नई के पास पन्नयूर स्थित पार्टी मुख्यालय में आयोजित विधायक दल की बैठक में श्री विजय को औपचारिक रूप से अपना नेता चुना। एक रिपोर्ट।
1: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
0: केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा कर रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
2: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस पार्टी में अनौपचारिक चर्चाएं जारी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ विधायक दल की बैठक के बाद राज्यपाल से सरकार गठन के लिए संपर्क करेगा। यूडीएफ सूत्रों ने संकेत दिया है कि विधायक दल की बैठक दिल्ली से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। नव निर्वाचित विधायकों में वर्तमान विपक्ष के नेता वी डी सीताशान, पूर्व विपक्ष के नेता और पूर्व केपीसीसी अध्यक्ष रमेश चेन्नितिल्ला और वर्तमान केपीसीसी अध्यक्ष सनी जोसेफ प्रमुख वरिष्ठ कांग्रेस नेता हैं। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पलुलुथी की रिपोर्ट के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार।
0: भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन ने दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ आज नई दिल्ली के सीआर पार्क स्थित कालीबाड़ी मंदिर में पूजा अर्चना की। बाद में संवाददाताओं से बातचीत में श्री नवीन ने विधानसभा चुनाव के परिणाम पर सभी को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संस्कृति और विरासत का संरक्षण करते हुए देश को विकास के पथ पर अग्रसर कर रहे हैं। अमेरिका में भारतीय अमेरिकी नेताओं ने पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत का स्वागत किया है और इसे ऐतिहासिक जनादेश तथा राज्य में सुशासन, सुरक्षा और विकास के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ बताया है। प्रख्यात भारतीय अमेरिकी नेता डॉ. भरत बराई ने इस परिणाम को राज्य की जनता की विजय बताया और पिछली सरकार पर राज्य के सभी संसाधनों का दुरुपयोग करके माफिया साम्राज्य को बढ़ावा देने का आरोप लगाया। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने देश में एक मजबूत अनुसंधान और नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के प्रति भारत की सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया है। नई दिल्ली में आज आईआईटी मद्रास तकनीकी शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री प्रधान ने नवाचार संचालित परिणाम देने के लिए भारत के अनुसंधान पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने की आवश्यकता पर बल दिया।
3: आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार अनुसंधान क्षेत्र में एक नया इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। वो दिन बीत गए जब संस्थान केवल शिक्षा तक ही सीमित रहते थे। अब प्राथमिकताएं बदल गई हैं। अनुसंधान केवल पीएचडी थीसिस, साइटेशन पेपर या प्रकाशन तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि अनुसंधान से नवाचार यानी इनोवेशन होना चाहिए।
0: रिसर्च मस्ट लीड टू इनोवेशन। भाजपा सांसद राघव चड्ढा, अशोक मित्तल, संदीप पाठक और राजेंद्र गुप्ता ने आज राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात कर पंजाब में आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार द्वारा कथित तौर पर राज्यतंत्र के दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए

0: राघव चड्ढा ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार पर आरोप लगाया कि वो हाल ही में पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सांसदों को निशाना बनाने के लिए राजतंत्र का इस्तेमाल कर रही है।
1: मैं सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को कहना चाहता हूं कि आप ये विजिलेंस, ये पॉल्यूशन बोर्ड, ये पंजाब पुलिस का सहारा लेकर जो बदले की भावना से कार्रवाई कर रहे हैं, एक डेंजरस खेल है जिसकी शुरुआत तो आपने कर दी है, लेकिन इसका अंत बहुत खराब होने जा रहा है। जब तक हम आपके साथ थे, हम तमाम लोग बहुत अच्छे थे, बड़े संस्कारी थे, आज्ञाकारी थे, और जैसे ही आपका साथ हमने छोड़ा, हम सब लोग भ्रष्टाचारी हो गए।
0: इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भी आम आदमी पार्टी के 7 राज्यसभा सांसदों के भाजपा में शामिल होने के संबंध में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद पत्रकारों से बात करते हुए श्री मान ने कहा कि आम आदमी पार्टी सांसदों का भाजपा में विलय असंवैधानिक है और उन्होंने राज्यसभा से उनकी अयोग्यता की मांग की। दिल्ली पुलिस ने एक अंतर्राज्यीय साइबर धोखाधड़ी रैकेट का भंडाफोड़ करते हुए उत्तराखंड से 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि आरोपी ऑनलाइन निवेश घोटालों में शामिल थे। उन्होंने कहा कि वो साइबर जालसाजों के लिए फर्जी बैंक खाते बनाने और वित्तीय लेनदेन में सहायता करने में सक्रिय रूप से शामिल थे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत के 2 पत्रकारों ने देश में साइबर अपराध का पर्दाफाश करने वाली चित्र आधारित रिपोर्टिंग परियोजना के लिए प्रतिष्ठित पुरस्कार जीता है। आनंद आरके और सुपर्णा शर्मा तथा नताली ओबिको पियर्सन को इलस्ट्रेटेड रिपोर्टिंग और कमेंट्री श्रेणी में विजेता घोषित किया गया। उन्होंने ये रिपोर्ट ब्लूमबर्ग के लिए तैयार की थी। एक रिपोर्ट।
2: हनोई के रिपोर्टर अनिरुद्ध घोषाल को अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टिंग वर्ग में विजयी घोषित किया गया है। उन्होंने अमेरिका की बॉर्डर पेट्रोल द्वारा गुप्त रूप से इस्तेमाल किए जा रहे व्यापक निगरानी उपकरणों की जांच की, जिन्हें मूल रूप से सिलिकॉन वैली में विकसित किया गया था और बाद में चीन में उन्नत रूप से विकसित किया गया। इस श्रृंखला ने चीन और अन्य देशों द्वारा इनके उपयोग को भी उजागर किया। पुलित्जर पुरस्कार पत्रकारिता के क्षेत्र में एक प्रतिष्ठित पुरस्कार है। इसे अमेरिका में कोलंबिया यूनिवर्सिटी द्वारा दिया जाता है। समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
0: भारत सूडान विदेश कार्यालय परामर्श का 9वां दौर कल पोर्ट सूडान में आयोजित किया गया। परामर्श की अध्यक्षता विदेश मंत्रालय के पश्चिम एशिया और उत्तरी अफ्रीका मामलों के संयुक्त सचिव और सूडान के विदेश मामलों तथा अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के अवर सचिव ने की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि दोनों देशों ने पारस्परिक हित के क्षेत्रीय मुद्दों पर भी विचार विमर्श किया। मध्य चीन के हुनान प्रांत में आतिशबाजी के कारखाने में हुए विस्फोट में 21 लोग मारे गए और 61 अन्य घायल हो गए। चीन के राष्ट्रपति शी जिनफिंग ने दुर्घटना की जांच के आदेश दिए हैं। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज लगभग 0.3% की गिरावट दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 246 अंक गिरकर 77,024 पर, जबकि निफ्टी 73 अंक लुढ़ककर 24,047 पर था। आईपीएल क्रिकेट में आज दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से होगा। ये मैच दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। कल रात मुंबई इंडियंस ने लखनऊ सुपर जायंट्स को 6 विकेट से हरा दिया। मौसम विभाग ने अगले 2 दिन के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में तेज हवाओं के साथ हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र के कुछ हिस्सों में आज भी ऐसी स्थिति रह सकती है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात ने फुजैरा हमले की कड़ी निंदा की। हमले में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी का पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान। होर्मुज जलडमरू मध्य पर नियंत्रण के लिए संघर्ष के बीच अमरीका और ईरान ने खाड़ी में नए सिरे से हमले किए। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जमैका के विदेश मंत्री कामिना जे स्मिथ से बातचीत की। दोनों देशों के बीच मजबूत आर्थिक संबंधों का आह्वान। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज। और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। स्वागत है।

हम सुन रहे थे उड़न खटोला फिल्म से यह गीत लता मंगेशकर और साथियों की आवाज़ में शकील बदायूनी के बोल और नौशाद के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत सदाबहार नगमे में जिंदगी और हम फिल्म से लता मंगेशकर की आवाज़ में पंडित शिव कुमार के बोल और रोशन के संगीत के साथ सजा हुआ।

0: हिंदी फिल्म संगीत के स्वर्णिम युग की एक संगीतमय यात्रा।
1: मेरे सपने अब
0: पुराने दिनों की मनमोहक धुनों में गोता लगाएं, सुरों के पंख लगाकर आसमां में उड़ उड़ जाएं।
1: भीगी भीगी रातों में, मीठी मीठी बातों में।
0: याद रहे, ये वो कैप्सूल है जो धुनों को, आवाज को और यादों को जीवंत रखता है।

0: आलस भरी सुबह जैसे चाय में घुल जाए चीनी।
1: देखो जी बहार आई, बाहों में खिली गलियां।
0: आपके जीवन में घोलते हैं संगीत, भूले बिसरे गीत।
2: मैं तेरा राग, तू मेरी रागनी।
0: गुजरे दौर की आवाजें, धुनों की अनूठी परवाज, सुनहरे गानों का अंदाज, आपकी सुबह को बनाए खास। भूले बिसरे गीत
3: याद सताती है।
0: हर रोज सुबह 7 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: आप सुन रहे हैं विविध भारती, राष्ट्रीय सेवा, देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे।

हम सुन रहे थे ये गीत आशिक फिल्म से मुकेश की आवाज में, शैलेंद्र के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत के साथ। आइए सुनते हैं अगला गीत असली नकली फिल्म से, लता मंगेशकर मोहम्मद रफी की आवाजों में, हसरत जयपुरी के बोल और शंकर जयकिशन के संगीत से सजा हुआ ये खूबसूरत सा नगमा।

0: धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी,
1: तुम आ गए हो, नूर आ गया है।
0: सुबह 8:15 और दिन में 2:15 सिर्फ विविध भारती पर।
2: आप सुन रहे हैं विविध भारती राष्ट्रीय सेवा देश की सुरीली धड़कन। कार्यक्रम है सदाबहार नगमे। आइए सुनते हैं अगला नगमा, बात एक रात की फिल्म से, सुमन कल्याणपुर की आवाज, मजरू सुल्तानपुरी के बोल और सचिन देव वर्मन के संगीत से सजा हुआ।

हम सुन रहे थे बम्बई का चोर फिल्म से यह गीत किशोर कुमार की आवाज में राजेंद्र कृष्ण के बोल रवि के संगीत के साथ। आज्ञा दीजिए कार्यक्रम सदाबहार नगमे से। नमस्कार।

0: सखी सहेली
1: सभी सखियों सहेलियों को श्रोताओं को सोनाली पाठक का सप्रेम नमस्कार। नेहा आपको भी मेरा नमस्कार।
2: नमस्कार सोनाली जी और सभी श्रोताओं को भी मेरा नमस्कार।
1: और क्या हालचाल है
2: भाई? हालचाल तो देखिए गर्मी सब जगह है तो गर्मी से हाल बेहाल है। तो हमने एक तरीका निकाला है।
1: कैसा तरीका?
2: हमने सोचा है कि देखिए अगर हम गर्मी में गर्मी की बात ना करें तो गर्मी कम लगती है।
1: अच्छा
2: क्योंकि गर्मी में गर्मी की ही बात करते रहेंगे तो अगर हम अंदर भी बैठे तो ऐसा लगेगा बाहर तो गर्मी है, अब अगर बाहर गए तो गर्मी लगेगी, अब धूप लगेगी, अब लू लगेगी। उसकी बात मत कीजिए, उसके बारे में मत सोचिए, परेशानियों के बारे में मत सोचिए।
1: परेशानियों को हमें बाय बाय कहना है, अलविदा कहना है और अच्छी अच्छी बातें करना है ताकि ये गर्मी से हमें राहत मिल जाए और ठंडक एहसास हो जाए ना।
2: तो ठंडे एहसास के लिए भी हम सखी सहेली भी सुनते हैं क्योंकि ठंडी ठंडी ऐसे मतलब एक ताजगी का अनुभव मिलता है क्योंकि बहुत सी बातें हमारे साथी भी करते हैं इसमें और हम भी करते हैं, अलग अलग विषय लेकर आते हैं
1: और हमारे साथी इतने सुंदर विचार लिखकर हमें भेजते हैं ना कि सचमुच दिल बाग बाग हो जाता है।
2: हाँ, और इसकी खुशबू से हम महक उठते हैं और ऐसा लगता है कि बस ठंड तो कहाँ है, ठंड ही यहाँ है ऐसा लगता है, गर्मी तो कहाँ है,
1: गर्मी है ही नहीं, है ना
2: जी।
1: वैसे आज के जो विषय है घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड, यानी आज के जो युवा है, युवा वर्ग है, उनका ऐसा मानना होता है कि वे घर का खाना है उस वक्त मम्मी ने अगर घी भी दे दिया या कुछ अच्छी से मिठाई खिला दी तो कहें कि नहीं नहीं नहीं मैं तो अभी डाइट पे हूँ, और जैसे ही घर के बाहर जाते हैं तो पिज्जा बर्गर और सब नूडल्स वगैरह खाते हैं। तो घर में डाइट फूड और बाहर जंक फूड वाला ये फंडा उन्होंने अपना लिया है।
2: तो इस पर इनकी क्या विचार है हमारे श्रोता वो बातें तो कहेंगे, साथ ही बातें हल्की फुल्की में आज हमारे श्रोता अपने विचार बता सकते हैं। पुराने जमाने के जन्मदिन किस तरह से मनाए जाते थे, उनका कोई जन्मदिन अगर उन्हें याद हो या उन्होंने मनाया हो, तैयारी की हो, तो ये सारी बातें हमसे साझा कर सकते हैं।
1: क्योंकि आजकल जो जन्मदिन मनाते हैं ना नेहा, वो बहुत ही अलग होते हैं। आजकल तो यानी शिशुओं के हर महीने के भी जन्मदिन मनाते हैं।
2: हाँ,
1: साल भर जन्म और उसमें अलग, भले ही वो शिशु को पता ना हो पर केक लाई जाती है, उसे कुछ समझ में आए ना आए पर हम सेलिब्रेट करते हैं। पर वो जो सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे वो कैसे थे, आपके कैसे होते थे जन्मदिन, इस विषय पर आप हमें लिखकर भेजिए
2: जी। और उद्यमी महिला में हम आज याद करने वाले हैं शहनाज हुसैन को, जो हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट्स की उनकी कंपनी रही, उन्हें हम याद करने वाले हैं। और मुहावरों की दुनिया में हम कौन से मुहावरे की बात करेंगे आज?
1: घर की मुर्गी दाल बराबर।
2: तो ये वही जंक फूड वाले मामला ही हो गया।
1: हाँ,
2: ऐसा
1: बिल्कुल वैसे ही हो गया है। और जैसे हर्बल प्रोडक्ट्स की भी बात चलती है तो हम जो चंदन है, तुलसी है, एलोवेरा है, इन्हें हम इग्नोर करके हम जो है ना केमिकल वाले प्रोडक्ट्स को अपनाते हैं।
2: केमिकल तो वाला चंदन लेके आते हैं जिसमें सिर्फ चंदन की खुशबू हो
1: और पाउडर ही होता है बस। और साथ ही आज एक खास दिन है, विश्व अस्थमा दिवस है
2: जी,
1: तो उस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे। पर अब क्या करना है, हमें
2: गाने सुनेंगे और क्या करेंगे,
1: तो सुनते हैं गीत।

0: ये गाना सुनते सुनते ऐसे ठंडी ठंडी वादियों का आनंद आने लगता है, क्योंकि वहां याद आ जाती है ना, जब सीन भी याद आने लगता है कभी कभी गाने का।
1: सचमुच हम नेपाल पहुंच गए
0: हाँ, तो ठंडी
1: थे।
0: ठंडी हवा ऐसे लगने लगी, ऐसा बड़ा अच्छा लगता है, आनंद आ रहा
1: पर जो जो ठंडी होती है ना नेहा,
0: था।
1: ये जो जिन्हें अस्थमा होता है उन्हें परेशान करती है।
0: जी बिल्कुल,
1: क्योंकि उन्हें सांस लेने में तकलीफ होती है। वैसे आज विश्व अस्थमा दिवस है, तो पूरे विश्व में अस्थमा रोग के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से ये दिन मनाया जाता है। और ये जो है ये दिवस प्रत्येक वर्ष मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। और इस दिन का मुख्य उद्देश्य लोगों को अस्थमा के कारण, लक्षण और बचाव और उपचार के बारे में जानकारी देना है, ताकि लोग समय रहते इस बीमारी को पहचान सके और उचित इलाज करा सके।

0: जी सोनाली जी, और आज के समय में अगर हम देखते हैं तो प्रदूषण बढ़ता हुआ, धूल धुआं और जीवन शैली भी जिस तरह से हमारी बदल रही है, उसके कारण भी अस्थमा एक गंभीर समस्या बन जा रहा है, क्योंकि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक हर उम्र के लोगों में ये रोग दिख रहा है और उसे प्रभावित कर रहा है उन्हें। और देखा जाए तो श्वसन तंत्र से जुड़ी एक बीमारी है अस्थमा, और व्यक्ति की श्वास नलिका में इसमें सूजन आ जाती है जिसके कारण सांस लेने में उन्हें कठिनाई होती है। और अस्थमा के रोगी को आमतौर पर बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न सी महसूस होना और सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज आती है, इस तरह के लक्षण दिखाई देते हैं।
1: और कई बार ऐसा होता है कि नेहा मौसम परिवर्तन है, फिर धूल है, फिर धुआं है, तेज गंध, ठंडी हवा या किसी प्रकार के एलर्जी के कारण भी अस्थमा का दौरा पड़ सकता है।
0: हाँ
1: यदि समय पर उपचार ना मिले तो ये स्थिति गंभीर भी हो सकती है। और विश्व स्वास्थ्य संगठन और विभिन्न स्वास्थ्य संस्थाओं के अनुसार दुनिया में करोड़ों लोग अस्थमा से पीड़ित हैं। भारत में भी ये बीमारी तेजी से बढ़ रही है, विशेष रूप से महानगरों और औद्योगिक क्षेत्रों में रहने वाले लोगों में इसका प्रभाव अधिक देखने को मिलता है।
0: हाँ, क्योंकि वाहन से जुड़े प्रदूषण, फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं या तंबाकू का सेवन, घरों में जो धूल जमा होती है, ये सब इसके मुख्य कारण है जो इसको ट्रिगर करते हैं, एक तरह से हम कह सकते हैं। और इसके अलावा अनुवांशिक कारण भी हो सकते हैं जिसके कारण अस्थमा की संभावना बढ़ जाती होने की। और अगर आज के दिन की हम बात करें, विश्व अस्थमा दिवस, तो इस दिन पर विभिन्न अस्पतालों, विद्यालयों, सामाजिक संस्थानों और स्वास्थ्य संगठनों द्वारा जागरूकता अभियान तो चलाए जाते हैं, कई शिविर लगाए जाते हैं, स्वास्थ्य शिविर जहां मुफ्त जांच की जाती है और अस्थमा से किस तरह से बच सकते हैं ये सारी चीजें उन्हें बताई जाती है।
1: और इन शिविरों में इनहेलर से कैसे सांस ली जाती है
0: हाँ
1: उसका भी उपयोग हमें सिखाया जाता है। और कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो धूम्रपान करते हैं उन्हें ही अस्थमा होता है, यानी सांस संबंधी बीमारियां होती है, पर ऐसा नहीं है। अगर आपके घर में कोई धूम्रपान कर रहा है तो उसके घर में जो मौजूद लोग
0: हाँ
1: हैं, बच्चे हैं, फिर बुजुर्ग हैं, उन्हें भी ये बीमारी हो सकती है। तो
0: बिल्कुल
1: जरूरी नहीं है कि अगर आप सिर्फ धूम्रपान करते तो आप ही को होगा, आपके पूरे परिवार को भी अस्थमा हो सकता है।
0: अप्रत्यक्ष रूप से धूम्रपान ये भी हो रहा है, क्योंकि वो जो धुआं है वो उनके शरीर में भी जा रहा है और वो ज्यादा खतरनाक भी होता कहते हैं। और इनहेलर वगैरह की जानकारी तो उन्हें दी जाती है, साथ ही अस्थमा से बचाव के लिए क्या महत्वपूर्ण सावधानियां कर सकते हैं, रख सकते हैं, ये भी बताया जाता है। जैसे कि धूल और धुएं से हमें थोड़ा दूर रहना चाहिए जिन्हें इस तरह से बीमारी है, घर और आसपास की सफाई का ध्यान रखना चाहिए ताकि धूल ना ज्यादा हो, धूम्रपान से बच सकते हैं, और कोई दूसरा अगर धूम्रपान कर रहा है जैसे कि आपने बताया तो उससे थोड़ा दूर रह सकते हैं। पर इसके अलावा नियमित व्यायाम कर सकते हैं, योग प्राणायाम जब करते हैं तो फेफड़े मजबूत होते हैं और इससे हमारा जो अस्थमा की जो रोकथाम है उसमें काफी मदद मिलती है, क्योंकि सांस लेने की क्षमता हमारी बढ़ जाती है। पौष्टिक भोजन अगर हम करते हैं और स्वच्छ वातावरण में हम रहते हैं तो भी बीमारी से बचाव में ये सहायता करते हैं हमारी।
1: और एक जरूरी बात है नेहा, कि कभी कभी ऐसा होता है ना कि सांस लेने में तकलीफ हो रही पर हम बस ऐसे कि अरे ठीक हो जाएगा, कुछ
0: हाँ
1: नहीं है, भाप ले लो, पर ऐसे नहीं है, उसे तुरंत हमें डॉक्टर के पास भी जाना चाहिए कि एक दो बार ठीक है घरेलू इलाज कर लिया तो ठीक है,
0: जी
1: पर इसे इस बीमारी को बढ़ने नहीं देना है कि बुखार भी आ रहा है, सांस लेने में तकलीफ भी हो रही है, तो ऐसा ना हो कि निमोनिया वगैरह हो सकता है या और भी गंभीर रूप की बीमारी हो सकती है, तो तुरंत हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और कई लोग उचित सावधानी और उपचार के साथ सामान्य जीवन भी जीते हैं, अगर
0: जी
1: उन्होंने टाइम पे उपचार ले लिया ना तो बहुत जल्दी ठीक भी हो जाती है। इसलिए अस्थमा जो है डरने की जरूरत नहीं बल्कि जागरूक होने की जरूरत है।
0: की तो आज के दिन का यही तो संदेश भी है सोनाली जी, कि स्वास्थ्य के प्रति सजग रहना अत्यंत आवश्यक है, और अगर हम स्वच्छ वातावरण बनाए रखें, प्रदूषण कम करें और अपनी सही जीवन शैली को अपनाएंगे तो अस्थमा जैसी बीमारी पर काफी हद तक हम नियंत्रण पा सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जागरूकता ही इस बीमारी का सबसे बड़ा उपाय है। और अगर जो जी चीजें अगर डॉक्टर हमें बताते हैं कि किन चीजों का ख्याल रखना चाहिए, अगर उनका ध्यान रखेंगे तो हम इससे बिल्कुल अच्छी तरह से बच सकते हैं और आराम से रह सकते हैं उसके साथ भी।
1: एक हमारे साथी ने भी लिखा है इस विषय में कि अस्थमा जो है वो सांस लेने में दिक्कत होती है। इसी तरह के सभी श्रोताओं ने कमेंट्स लिखे हैं कि इसके अन्य कारण भी हो सकते हैं, कुछ लोगों में पीढ़ी दर पीढ़ी असर देखने को आता है। इसके रोकथाम, उपचार और सचेत रहने के लिए आज का दिन अर्थात ये दिन मनाया जाता है। तो यानी कि अगर हमें जान लेना चाहिए कि अगर आपके घर में दादाजी वगैरह को, दादी को, नाना नानी को अगर किसी को अस्थमा है तो हमें समय रहते उपचार लेना चाहिए, ज्यादा वक्त जाया नहीं करना चाहिए, और अभी हमें वक्त जाया नहीं करना है क्योंकि वक्त हो चुका है एक
0: अंतराल का।

0: तो जब अच्छे अच्छे गीत सब सुनाई देते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि बस खो जाओ थोड़ी देर तक. लेकिन खो जाएंगे अगर, तो अपना लक्ष्य कैसे पाएंगे, सुना लीजिए हम.
1: हमें अपने लक्ष्य की ओर जागरूक होकर ध्यान रखना चाहिए नेहा. अब ये गाने जो है ना, ये घर में सुनते हैं तो मजा आता है कि भाई बैठे बैठे आग लग गई तो ठीक है. पर यहाँ हमारा लक्ष्य बिल्कुल
0: आंखों पर आपने अपना लक्ष्य बिल्कुल, नक्श पे हमारी नजर होनी चाहिए, ऐसा कह सकते हैं हम.
1: और ऐसी कुछ महिलाएं भी हुई जिन्होंने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और उस लक्ष्य में उन्हें अपार सफलता भी मिली. और
0: जी
1: आज उनकी मेहनत के कारण इतना उसका फल इतना अच्छा है कि हम भी उनके प्रोडक्ट्स को अपना रहे हैं.
0: हाँ, और उन्हें याद करते हैं उनके काम के लिए. हो सकता है इसकी इसमें कितनी स्ट्रगल रहती है, कितना कुछ उन्हें करना पड़ता है इस सफलता को पाने के लिए, और इसके लिए ही हम उनके याद करते हैं और जानते हैं कि वो सिर्फ ऐसे ही सफल नहीं हो गई हैं, उसके पीछे कितना कुछ उन्हें करना पड़ा. तो आज हम याद करें शहनाज हुसैन को.
1: और भारत में उद्योग जगत में महिलाओं की सफलता की जब भी चर्चा होती है तब शहनाज हुसैन का नाम बड़े ही सम्मान के साथ लिया जाता है. उन्होंने सौंदर्य और हर्बल उद्योग में

0: ऐसी पहचान बनाई जिससे भारत को विश्व स्तर पर गौरवान्वित किया था। और उनका जन्म एक शिक्षित और प्रतिष्ठित परिवार में हुआ था। बचपन से ही वे प्रतिभाशाली और रचनात्मक स्वभाव की थी। उनकी शिक्षा अच्छे वातावरण में हुई, कम आयु में उनका विवाह हो गया था, लेकिन उन्होंने अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ा। उस समय महिलाओं का व्यवसाय के क्षेत्र में आगे आना आसान नहीं था, फिर भी उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना करते हुए अपनी अलग पहचान बनाई।
1: और उन्हें सौंदर्य और त्वचा की देखभाल में विशेष रुचि थी और इसी रुचि ने उन्हें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा दी। उन्होंने भारत के साथ साथ विदेशों में भी कॉस्मेटोलॉजी और ब्यूटी थेरेपी का प्रशिक्षण प्राप्त किया। लंदन, पेरिस, न्यूयॉर्क, कोपेनहेगन जैसे शहरों में सौंदर्य विज्ञान का उन्होंने अध्ययन किया। और जब शहनाज हुसैन ने अपने कार्य की शुरुआत की थी तो उस समय बाजार में ज्यादातर रासायनिक सौंदर्य उत्पादों का बहुत प्रयोग होता था और इनसे त्वचा को तो जाहिर सी बात है नुकसान तो होता ही था। तो उन्होंने आयुर्वेद और प्राकृतिक जड़ी बूटियों की शक्ति को पहचाना और हर्बल उत्पादों को अपनाने का उन्होंने निर्णय लिया। और ऐसे उत्पाद उन्होंने तैयार किए जिनमें प्राकृतिक तत्वों का उपयोग किया जाता था, जैसे चंदन, हल्दी, गुलाब, एलोवेरा, केसर और विभिन्न जड़ी बूटियां इसमें शामिल थी, जिससे ये जो उत्पाद थे, क्योंकि ऐसी चीजों को इस्तेमाल करती थी, त्वचा और बालों के लिए काफी अच्छे माने जाते थे। और धीरे धीरे लोगों का विश्वास उनके उत्पादों पर बढ़ने लगा और उन्होंने शहनाज हर्बल्स की स्थापना की।
0: और शहनाज हुसैन ने अपने घर से छोटे स्तर पर काम करना शुरू किया था। धीरे धीरे उनका कार्य बढ़ता गया और उन्होंने शहनाज हर्बल्स नामक कंपनी की स्थापना की। ये कंपनी आज विश्व प्रसिद्ध ब्रांड बन चुकी है। उनकी कंपनी ने भारत के साथ साथ अमेरिका, ब्रिटेन, खाड़ी देशों और एशिया के अनेक देशों में भी अपनी पहचान बनाई है और उनके सौंदर्य केंद्र और उत्पाद विश्व भर में लोकप्रिय हुए हैं। ये भारत के लिए गर्व की बात है। एक भारतीय महिला ने आयुर्वेदिक सौंदर्य को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध किया, ये महिलाओं के लिए बड़ी ही प्रेरणादायक बात है। और शहनाज हुसैन ने केवल अपना व्यवसाय ही नहीं बढ़ाया बल्कि हजारों महिलाओं को रोजगार और आत्मनिर्भर बनाने का अवसर भी दिया।
1: बिल्कुल, तो कई बार ऐसा हम कहते हैं ना कि एक महिला अगर शिक्षित हुई तो पूरा परिवार शिक्षित होता है, उसी तरह से अगर एक महिला सफल हुई तो अपने साथ कई महिलाओं को सफल होने का मौका भी देती है और साथ ही उनकी ओर देखकर भी बहुत सी महिलाएं अपना काम करना चाहती हैं। तो उन्होंने महिलाओं को ब्यूटी और वेलनेस प्रशिक्षण दिया, आत्मनिर्भर होने की प्रेरणा दी और बहुत सी महिलाएं आज भी उनके प्रशिक्षण संस्थानों से शिक्षा लेकर सफल व्यवसाय चला रही हैं। और महिलाओं को उन्होंने यही संदेश दिया कि घर तक सीमित ना रहो और अपनी जो भी प्रतिभा है, जो भी क्षमता है आपकी, उसको पहचानो। लेकिन क्योंकि वो सिर्फ सफल हो गई और ये सारी चीजें कर रही हम कह रहे हैं, लेकिन उसके पीछे कई संघर्ष तो होता ही है, तो उन्होंने भी कई कठिनाइयों का सामना किया। शुरुआत में लोगों को हर्बल उत्पादों पे उतना भरोसा नहीं हुआ करता था, कहते थे कि भाई पता नहीं कैसा रहेगा। आर्थिक चुनौतियां भी उनके सामने थी लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर हर चुनौती को उन्होंने पार किया। फिर धीरे धीरे उनका नाम सफल महिला उद्यमी की ओर बढ़ता गया, प्रसिद्ध होती गई। और कई महत्वपूर्ण गुण थे उनके, जैसे कि आत्मविश्वास
0: और कठिन परिश्रम, नई सोच, आयुर्वेद पर विश्वास, ग्राहकों की जरूरत को समझने की क्षमता, सकारात्मक दृष्टिकोण। पुरस्कार और सम्मान की बात की जाए तो उन्हें अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हुए। भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। इसके अतिरिक्त तो उन्हें विश्व के कई मंचों पर भी सम्मानित किया गया।
1: बिल्कुल, उनकी उपलब्धियों की अगर हम बात करें, उनकी उपलब्धियां जब हम देखते हैं तो हम ये समझ सकते हैं कि भारतीय महिलाएं भी विश्व स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकती हैं। साथ ही उन्होंने ही भारतीय आयुर्वेद और प्राकृतिक चिकित्सा को नई पहचान दी और रासायनिक उत्पादों की बजाय इन उत्पादों को अपनाएं और इसके लिए प्रेरित भी किया। और अब देखा जाए तो हर्बल और ऑर्गेनिक उत्पाद कितने बढ़ रहे हैं और लोकप्रियता बढ़ाने वाली कौन है?
0: शहनाज हुसैन जी, तो उन्हें हम याद करते हैं और हम भी अपनी सखियों सहेलियों को कहेंगे कि इन सब जो महिलाओं की जब हम बातें करते हैं तो उनके जीवन से हमें प्रेरणा लेना चाहिए कि हमें भी अगर मन में कुछ इच्छा है तो उसे जरूर पूरा करना चाहिए।
1: बिल्कुल,
0: और अब गाना सुनना चाहिए।
1: हाँ, मन में इच्छा तो हो गई है,
0: सुनते हैं गीत।

0: तो ऐसे गोरे गोरी बातें कर रहे थे हम।
1: गोरे होने की
0: हाँ,
1: बातें।
0: लेकिन कभी कभी ये भी कहते हैं ना कि देखिए, रंग जिसको जैसे जो मिलता है उस रंग को अगर अपनाया जाए तो कितना अच्छा होता है, क्योंकि कभी कभी हम ऐसा होता है कि अपने रंग को लेकर बहुत ज्यादा मन में सोचने लगते हैं, विचार कर लेते हैं। जो ब्यूटी प्रोडक्ट्स की जब हम बात करते हैं, तो कुछ ऐसे ही प्रोडक्ट अपनाए जाए जो त्वचा की जैसे नमी बनाए रखने के लिए जरूरी होते हैं,
1: यानी कि अगर
0: या
1: सर्दियों का मौसम है तो हमारी
0: हाँ
1: मॉइस्चराइजर ये घर के भी इस्तेमाल कर सकते
0: हाँ
1: हैं कि हम अगर दूध की मलाई को थोड़ा सा लगा लें, और कुछ लोग रात को अपना घी लगा लेते हैं, उससे भी
0: जी
1: सॉफ्ट हो जाती है स्किन। और बहुत सारी महिलाओं को है ना, जो हमें नहीं मिला होता उसका गम होता है कि भाई
0: हाँ
1: हमारा रंग तो सांवला है, तो क्या हुआ, सांवले रंग के लोग भी बहुत सुंदर दिखते हैं। एक अगर हम अच्छे से रहे, एक आकर्षक व्यक्तित्व हो, तो कोई भी रंग रंग कोई मायने ही नहीं रखता है, हमारा व्यक्तित्व मायने रखता है।
0: अगर ये कह सकते हैं कि जिस तरह से हम हैं उस तरह से अगर हम खुद को अपना लें, कि जैसा जो चीजें नहीं बदली जा सकती उसको अगर उस तरह से अपना लिया जाए, और उसके बाद अपने व्यक्तित्व में हम काफी काफी बदलाव ला सकते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव ला सकते हैं, व्यवहार में बदलाव ला सकते हैं, तो वहां तो हम अच्छे की ओर जाते जाएं। लेकिन जो जैसे त्वचा है, त्वचा का कोई रंग हो या कुछ, मान लीजिए कि कभी किसी के मुहासे ज्यादा निकलते हैं, किसी के नहीं निकलते हैं, तो वो अब उसकी त्वचा तो अच्छी है, वो क्यों नहीं निकल रहे हैं इसके मुहासे, तो इस तरह की चीजें ना सोचकर अपने आप को अपना लेना चाहिए ना,
1: और अब हमें ब्रेक
0: कुछ देख
1: लेना है,
0: लेना चाहिए।
1: तो लेते हैं।

0: तो ब्रेक के बाद हम फिर हाजिर है, कार्यक्रम है सखी सहेली,
1: सहेली।
0: और हमारे श्रोताओं के हैं बहुत सारे कमेंट्स। तो जो मुहावरों की दुनिया, इसमें जो हमने लिया है मुहावरा, घर की मुर्गी
1: दाल
0: दाल
1: बराबर।
0: बराबर।
1: तो इसका सीधा सा अर्थ क्या है, ये हमारे साथियों ने भी लिख भेजा है, बहुत से कमेंट्स उन्होंने भेजे हैं और सारी चीजें बता दी हैं उन्होंने कि क्या क्या अर्थ होता है।
0: हमारे एक साथी लिखते हैं नेहा कि घर की मुर्गी दाल बराबर, बाहर आपको कितना भी मान सम्मान मिले पर घर में कोई इज्जत नहीं मिले तब ये कहावत कही जा सकती है। अक्सर
1: हाँ
0: सबके घर में पति देव का यही हाल होता है मुझको छोड़कर। आपने देखिए कितना सेफ गेम खेला है
1: हाँ
0: ना।
1: क्योंकि कमेंट्स है ना, बाहर ही कमेंट सारा।
0: हाँ तो अगर
1: हमारे
0: ऐसा
1: एक और साथी कह रहे हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर एक प्रसिद्ध हिंदी लोकोक्ति है जिसका अर्थ है आसानी से उपलब्ध वस्तु या अपने ही आदमी की कद्र ना होना। जब कोई मूल्यवान चीज या व्यक्ति हमारे बहुत करीब होता है तो हम उसे साधारण या कम महत्व का समझने लगते हैं।
0: एक हमारे साथी लिखते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जो चीज हमेशा पास में होती है उसकी कीमत कम समझी जाती है, नजरअंदाज कर दिया जाता है। घर में कितना भी अच्छा हो खाना, तो हमारे जो बच्चे हैं उन्हें जंक
1: हाँ
0: फूड ही पसंद आता है, ये भी उन्होंने घर की मुर्गी दाल बराबर के लिए कहा है। तो बहुत
1: हाँ
0: सारी ऐसी बातें होती है नेहा की, घर की मुर्गी दाल बराबर में ऐसा होता है कि हमारे घर में अगर हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं,
1: हाँ
0: उन्हें बहुत ज्यादा ज्ञान है, तो भी बच्चों को कह लीजिए उनके परिवार वालों को उतनी वैल्यू नहीं होती है उनकी।
1: हाँ
0: बाहर के लोग कहते हैं कि अरे कितना ज्ञान है इन्हें और इनके ज्ञान से हमें फायदा होगा, पर घर वालों को ऐसा लगता है कि अरे इनके पास क्या है। तो ये कहावत हमारे सभी के लिए ये
1: हाँ
0: लागू होती है, तो हमें अपनों को भी महत्व देना चाहिए।
1: बिल्कुल
0: अब जैसे हमने प्रोडक्ट्स की बात की थी, तो हमारे पास में घर में इतना खजाना है, आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स हमारे घर में मौजूद होते हैं, पर भी हम जो है ना बाहर के प्रोडक्ट्स, केमिकल वाले प्रोडक्ट्स जो होते हैं, क्योंकि उसमें कलर और फिर पैकिंग उनकी जबरदस्त होती है और उसमें खुशबू जो अलग सी आती
1: लकी
0: है,
1: वाले।
0: तो उसमें हम आकर्षित हो जाते हैं और हम अपनी चीजें जो अपने पास में है उन्हें
1: हाँ
0: हम इग्नोर कर बैठते हैं।
1: वही
0: तो
1: चीज जैसे हमने अभी भी कहा था कि हम अपने पास जो चीजें हैं उसको नहीं देखते हैं, हमें ऐसा लगता है कि हमारे पास हम ऐसे दिख रहे हैं वैसे दिख रहे हैं, सामने वाला ज्यादा अच्छा दिख रहा है, और हो सकता है वही सामने वाला हमारी उन चीजों को देखकर वैसा ही सोच रहा हो कि इसके पास कितनी अच्छी चीजें हैं, कि इसके चेहरे की बनावट अच्छी है। जैसे हम किसी का रंग देखकर सोच रहे हैं, कोई ये सोच रहा हो देखकर हमें कि इसके चेहरे की बनावट कितनी अच्छी है। तो इस तरह से क्या एक दूसरे की चीजों को देखते रहना और अपने पास जो चीजें हैं उसका महत्व ना समझना ही इस मुहावरे को बिल्कुल सार्थक कहता करता है कह सकते हैं। हमारे एक और साथी कह रहे हैं कि वो उन्होंने बताया कि घर की मुर्गी दाल बराबर, भाई इस मुहावरे का मूल मतलब है कि घर के लोगों की कोई कीमत नहीं, इस कारण ही से ही लोक में इस मुहावरे का चलन है। ये सच भी है क्योंकि घर के लोगों से लोग सुपरिचित होते हैं जबकि बाहर के लोगों की कद्र करते हुए अच्छा खासा भाव देते हैं। इस दृष्टिकोण से घर के लोगों में स्वयं के प्रति हीन भावना भी पनप सकती है, इसके ज्ञान से अनभिज्ञ लोग ही ऐसा करते हैं।
0: तो कई बार ऐसे होता है ना कि नेहा के अपने घर में जो बच्चे हैं उनमें अगर कुछ कला है, उनमें अगर कुछ
1: हाँ
0: प्रतिभा है, तो हम उनकी तरफ अनदेखा कर देते हैं, और सामने हम टीवी में बैठे हैं कोई बच्चे गा रहे हैं तो हम उनकी इतनी तारीफ करते हैं, देखो कितना अच्छा गा रहा है। तो अगर
1: हाँ
0: हमारे बच्चे जो हैं उनमें अगर वो कला है, वो अच्छे से गा रहे हैं या बहुत अच्छी पेंटिंग कर रहे हैं, बहुत अच्छे नृत्य कर रहे हैं, तो उन्हें अगर हम सजाएं संवारें, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, तो वो
1: हाँ
0: भी उन्हीं की तरह नाम कमा सकते हैं,
1: तो
0: है ना।
1: कई बार ऐसा होता है कि जब उन्होंने कहा होता है कि हम ये सीख लें या हम ये करना चाहते हैं तो हम उन्हें डांट देते हैं, और फिर सामने जब टीवी पे आप जैसे कह रहे हैं कुछ चलता रहता है तो हम कह रहे हैं देखो ये छोटा सा बच्चा तुम्हारी
0: कितना
1: उम्र का है
0: अच्छा गा
1: कितना अच्छा गा रहा है। तो
0: रहा।
1: अब उसने बच्चे ने भी शायद कभी बोला हो कि मुझे गाना सीखना है, तो हमने उसे डांट के कह दिया कि तुम पढ़ाई करो।
0: चुपचाप
1: तो
0: बैठ जाओ
1: हाँ लेकिन हम
0: पढ़ने।
1: तारीफ उसकी कर रहे हैं तो वो भी हीन

0: भावना होती कि हमें तो सपोर्ट नहीं मिल रहा, साथ में नहीं बढ़ने मिल रहा है। हमारे एक
1: यानी
0: साथी ने भी तो ऐसे ही कुछ कहा है, वो
1: हाँ
0: कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते, दुखती रग पर हमारे हाथ रख दिया, ऐसा वो कह रहे हैं कि कई ऐसे किस्से होते हैं जो मैं धर्मपत्नी और बच्चों को बताकर सावधान करता हूँ, जैसे कि साइबर क्राइम और साइबर फ्रॉड के विषय में हो, उस समय तो एक कान से सुनकर दूसरे कान से वो निकाल देते हैं। वहीं साइबर क्राइम की कोई घटना किसी न्यूज़पेपर में छपी हो या सखी सहेली प्रोग्राम में बताई जाए तो सखी सहेली की सखी यानी कि मेरी धर्मपत्नी बड़े ध्यान से बच्चों को समझाती है, फिर मैं उनसे कहता हूँ कि इसके विषय में तो मैंने पहले ही सबको सावधान किया था पर तुमने ध्यान नहीं दिया, अर्थात घर की मुर्गी दाल बराबर। तो बताइए हमारी शिकायत हमसे ही हो रही है यहाँ तो
1: हमें ही घर की मुर्गी दाल बराबर बना
0: हाँ,
1: दिया
0: हम तो रोज आते भी, हम लोग घर के ही हैं,
1: हाँ
0: हम तो कोई ऐसा आप हमसे मतलब कहना नहीं चाहिए हम लोगों को
1: एक साथी ने लिखा है, घर का बना भोजन चाहे कितना स्वादिष्ट हो, कम पैसों में बना हो, तो भी घर का ही है। वही बाहर का भोजन बहुत अच्छा होता है, 10 या 20 रुपए की रोटी जो है वो, और 250 का सूप, महंगी सब्जी हमें अच्छी लगती
0: हाँ,
1: है
0: स्वाद बढ़ जाता है
1: ना
0: और हमारे को साथी लिख रहे हैं कि जब मेहमान आते हैं तो नए नए बर्तन बाहर आते हैं, नई थालियां, नई चमकते चम्मच, कांच के गिलास, जब मेहमान आते हैं तभी ये सब देखने को मिलता है, बाकी तो घर की मुर्गी दाल बराबर। ये तो इससे तो हम भी सहमत हैं कि वो सारी चीजें तो बस रखी ही मेहमानों के लिए जाती
1: हाँ,
0: हैं
1: तो फिर इंतजार करती है गृहिणिया कि कब मेहमान आएंगे, तब ये नई वाली क्रॉकरी निकालेंगे
0: अब ऐसा लगा गृहिणियों से ज्यादा तो घर के लोग उसका
1: सखा
0: ध्यान रखते हैं कि कब ऐसा हो कि कोई तो आए तो ये थाली, इन थालियों में हमें भी खाने मिले, है ना।
1: पर अब गाना सुन ले,
0: बिल्कुल
1: सुनते हैं गीत।

0: और घर की मुर्गी दाल बराबर जब बात हो रही है तो क्यों ना बात हो जाए घर पर डाइट फूड और बाहर के जंक फूड की।
1: ऐसा ही होता है ना, जब
0: हाँ
1: मम्मी कहती है कि भाई लड्डू खा के जाओ या फिर कुछ अच्छी मिठाई बनाई खा के जाओ तो

0: देखते हैं कि फोटो आ रहे हैं कि दोस्तों के संग बैठ के पिज्जा खा रहे हैं, बर्गर खा रहे हैं, तो ये
1: ड्रिंक पी
0: घर
1: रहे
0: की कहानी
1: हैं। हाँ, घर की कहानी तो होगी, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम बाहर ही खा लेंगे, अभी हमारे पास टाइम नहीं है। अगर वो आपने टिफिन दे दिया तो फिर बहुत ही बड़ा ऐसा मजाल आपके टिफिन को लेके जाता हाथ से। तो स्वास्थ्य के प्रति तो बहुत जागरूक हो गए हैं वैसे तो हम लोग, और कहते हैं कि कम तेल घी का घर में जो भोजन बनता है, हल्का भोजन बनता है, ऐसे ही बनाना चाहिए। अरे आप कितना तेल डालती हैं, कितना घी डालते हैं घर में खाने में, ऐसा हम बोलते हैं, जबकि घी अच्छा होता है खाने के लिए।
0: पर वो बच्चों को ऐसा
1: हाँ,
0: लगता है ना कि घी से हमारा वजन बढ़
1: मोटे हो जाएंगे। हाँ, बर्गर
0: जाएगा।
1: से वो पतले होते जाते हैं। तो वो कहते हैं कि फिटनेस करना है, हेल्दी लाइफस्टाइल, अब आज से हम एक ही रोटी खाएंगे, दूसरी रोटी नहीं होगी, इस तरह की बहुत सी बातें होती हैं। लेकिन फिर बाहर जाते हैं तो फिर वो सारी बातें कहते हैं कि एक दिन पिज्जा
0: हाँ,
1: खाने वाले, जो
0: यानी
1: कि वो
0: उस
1: पूरा
0: दिन,
1: एक हफ्ते का सब
0: हाँ
1: निक्की निक्की हो जाता
0: यानी
1: साइकिल
0: हम
1: में।
0: एक दिन सिर्फ वो चीटिंग करते हैं
1: हाँ
0: कि एक दिन हम बाहर का खा लेंगे पर फिर बाकी दिन हम घर का नहीं खाएंगे, जबकि मम्मी का प्यार दुलार भी होता है उसमें,
1: हाँ
0: आत्मीयता होती है, और जो पराठे बनाती है तो मम्मी के हाथ के, उसमें साफ सफाई का ध्यान रखा जाता है
1: हाँ
0: कि उसे ढककर रखा जाता है, साफ हाथ धोकर बनाया जाता है, पर वही फिर से घर की
1: और
0: मुर्गी दाल।
1: पसंद का भी तो ख्याल रखा जाता है कि भाई
0: हाँ
1: जिसको जो पसंद है वो
0: हाँ
1: सब्जी बनती है, जिसको जो पसंद है वैसी रोटी बनती है, किसी को तिकोना पराठा पसंद है, किसी को चौकोर पराठा पसंद है, तो उसके हिसाब से। अच्छा, ये साइज भी बदलते हैं, शेप भी बदलते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन बस वही है कि नहीं, आकर्षक पैकिंग में जब बाहर का खाना मिलता है, स्वाद अच्छा लग रहा है, फैशन भी होता है ये सब चीजें, कि अगर अरे तुम तो घर का ही खाना खाते हो, इस तरह से अगर बोल दिया जाता है, तो वो एक फैशन के साथ में जाने के लिए भी बाहर का खाना खाना बहुत जरूरी हो जाता है।
0: और है ना, क्या होता है कि घर का खाना जब हम डब्बे में डाल के देते हैं तो कुछ समय ठंडा हो जाता है, स्वाभाविक सी बात है ठंडा हो
1: हाँ
0: जाता है, पर बच्चों को ये लगता है कि वो गरम गरम खाना है तो स्वाद में थोड़ा सा अच्छा रहेगा,
1: हाँ
0: पर उसके पीछे जो है कितनी सारी माओं की मेहनत होती है, और फिर उसमें ये बात है ना कि हमारे स्वास्थ्य का ध्यान रखा जाता है, तो बाहर
1: हाँ
0: घर में हम कहेंगे कि हमें मैदा नहीं खाना है और बाहर जाके हम मैदा मैदे की बनी रोटी खा लेते हैं, और ना
1: हाँ
0: जाने ऐसी कितनी चीजें खा लेते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी जरूरी नहीं है।
1: बिल्कुल। और आमतौर पर अगर हम देखें तो घर में जो खाने बनते हैं सिर्फ एक ही तरह का नहीं बनता, पारंपरिक भोजन बनता है, और कई बार ऐसा होता है अलग अलग मौसम के हिसाब से, त्योहार होते हैं अलग अलग मौसम के हिसाब से, भी गर्मी है तो ये चीज तो बनेगी ही बनेगी, आम पना बनेगा, आम का रस बनेगा, या ठंडी हो गई तो ये गुड़ वाली चीजें बनेंगी,
0: गोंद के लड्डू
1: हाँ
0: बनेंगे।
1: लड्डू बनेंगे। तो इस तरह से जो वो होता है ना, क्योंकि वो मौसम को ध्यान में रखकर परंपरा हमारी इस तरह की रही है,
0: यानी हमारे
1: तो हाँ
0: शरीर को जितनी जैसी जरूरत है उस
1: हाँ
0: हिसाब से वो डिजाइन किए गए हैं,
1: हाँ
0: है ना, कि उस त्योहार से जुड़ी हुई कितनी सारी, यानी सांस्कृतिक महत्व भी है उसका, कि वो फसल उगती है नहीं, तो
1: हाँ
0: हमारे शरीर के लिए कितनी जरूरी है, तो उससे बनाए हुए व्यंजन हमें खिलाए जाते
1: खाने
0: हैं,
1: चाहिए।
0: बनाए जाते हैं।
1: हाँ, तो अगर हम घर का भोजन खाएं तो ये सारी चीजें भी मिलती, बाहर तो सारी चीजें एक ही मिल रही है, हमेशा वो मिल रही है, आप जब चाहें वहां जाके लड्डू खा सकते हैं, आप जब चाहें वहां जाके कुछ भी खा सकते हैं, गर्मियों का भोजन आप सर्दी में खा सकते हैं, सर्दी का गर्मी में खा सकते हैं, क्योंकि पैकेट बंद आपको आम का रस 12 महीने मिल सकता है, लेकिन वो
0: हाँ,
1: रस तो नहीं है ना
0: फ्रोजन होता
1: उसमें।
0: है वो। हाँ,
1: हाँ
0: और फिर उसमें जो विटामिन जो है वो तो नष्ट हो ही जाते हैं,
1: हाँ
0: साथ में उसमें इतने सारे प्रिजर्वेटिव डाले होते हैं जो हमारे हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते,
1: जी
0: पर हम ये हाथ कह के हाथ ऊपर कर देते कि नहीं भाई, हम बहुत तेल घी वाला खाना नहीं खाएंगे, हम तला हुआ खाना नहीं खाएंगे,
1: सिर्फ
0: पर हम बाहर
1: समोसे खाएंगे बाहर। वो कई बार बेक्ड समोसा बोल के भी खाते हैं कई बार, बट रहता वो मैदा ही बेक्ड होता है।
0: और उसमें इतना सारा मोयन डला होता है, क्योंकि मैदे को अगर बेक भी करेंगे तो उसको जो कुरकुरा बनाने के लिए उसमें अगर मोयन ना डला होगा
1: जी
0: तो वो ऐसा कुरकुरा या स्वादिष्ट बनेगा ही नहीं।
1: तो ये कह सकते हैं कि भाई जो बच्चे हैं उन्हें भी, बच्चे या बड़े जो भी हैं जिन्हें भी ये शौक है कि घर पे डाइट करते हैं और बाहर जाते ही साथ वो तुरंत वो अपनी सारी डाइट को भूल जाते हैं, एक दिन के लिए बोलते हैं, लेकिन वो पूरा एक दिन आपका पूरा एक हफ्ता की डाइट जो है बराबर कर देता है, तो उसको थोड़ा ध्यान रखें। और घर में भी जो खाना दे रहे हैं उन्हें भी ये सोचना चाहिए कि क्यों ये बाहर का खाना ज्यादा खाना चाह रहे हैं, तो थोड़ा उसको आकर्षक ढंग से परोस सकते हैं, ऐसे ही नहीं कि बस ये कटोरी में दाल डाली और ये, तो अगर थोड़ा सा सजा कर दे दें तो उन्हें अच्छा लगेगा शायद, हो सकता है इस वजह से। और अगर साथ में बैठकर हम खाते हैं तो भी एक अलग सा एहसास होता है। तो इस तरह से कुछ चीजों में हम भी बदलाव कर सकते हैं, घर की चीजों में, देने के तरीके में, या उनकी पसंद की चीजें तो खैर बनती ही है, तो वो सारी चीजें अगर
0: यानी
1: हम
0: उसे भी
1: बदलेंगे।
0: आकर्षक बना के अगर
1: हाँ
0: परोसे ना तो बच्चे वो भी शौक से खा लेते
1: बिल्कुल,
0: हैं।
1: तो दोनों तरफ ही सुधार की जरूरत है।
0: और अब गाना सुन ले।
1: हाँ सुनते हैं गीत।

0: और हमें इंतजार रहता है अपने जन्मदिन का, ताकि कितनी अच्छी तरह से हम अपने जन्मदिन को मनाएं और बड़े आराम से रहें अपने जन्मदिन में, कुछ ना कुछ करते ही हैं सब।
1: पर पुराने जमाने का जन्मदिन वो बिल्कुल भी ऐसा एकदम यानी आज की चकाचौंध वाला नहीं हुआ करता था,
0: हाँ
1: बिल्कुल सादगी से मनाते थे। और मुझे तो याद है नया कि मैंने जब मेरी मम्मी से पूछा तो कि सभी लोगों के जन्मदिन ऐसे त्योहार के दिन कैसे आते, किसी का
0: हाँ
1: होली पे, किसी का दिवाली पे, किसी का राखी पे, तो हमारी मम्मी कहती थी कि जब उस त्योहार के आसपास जब आते थे तो उसी दिन सेलिब्रेट कर
0: तो एक साथ हो जाती है, मिठाइयां बन जाती हैं एक साथ,
1: देते
0: ज्यादा मिठाइयां बन जाती होंगी।
1: तो इस तरह से सादगी भरे जन्मदिन हुआ करते थे। और हमारे श्रोताओं ने भी बहुत सारे कमेंट्स लिखकर भेजे हैं। तो हमारे एक साथी ने लिखा है कि पुराने जमाने के जन्मदिन हल्की फुल्की बातें, पुराने जमाने के जन्मदिन पर अक्सर क्या हुआ कर रहा था, आज जब हम अक्सर केक लाते थे उस समय लोगों को प्लेट में रखकर खिलाया करते थे, कोई समोसा खिला दिया तो किसी ने ढोकला खिला दिया,
0: हाँ
1: पार्टी की जगह ऐसे अपने दोस्तों को बुलाकर पार्टी दिया करते थे। उसका जो मजा होता था बहुत अच्छा होता था, क्योंकि बहुत बड़ी बात नहीं होती थी, कुछ दोस्त आधा आ जाते थे, हमें कुछ 5 5 10 रुपए वाले जो गेम या टॉयज आते थे वे
0: हाँ
1: दिया करते थे, बहुत मजा आता था, सब मिलकर एक साथ बैठा करते थे, बातें किया करते थे। खास जो बच्चे होते हैं वे, यानी उन्होंने वही लिखा है कि उपहार 5 10 रुपए के उपहार में भी हम खुश हो जाते थे
0: बिल्कुल। हमारे
1: छोटे।
0: एक और साथी लिखते हैं कि पुराने जमाने में जन्मदिन मनाने का उद्देश्य

0: ही था कि बुजुर्ग व्यक्तियों को परिवार में आदर सम्मान मान प्रतिष्ठा हमेशा ऊंची रहे। इस कारण पिताजी या दादाजी का जन्मदिन बेटे पोते मनाया करते थे। खाना भी अच्छा होता था, खीर हलवा बनाकर उन्हें खिलाया जाता था, दान दक्षिणा दी जाती थी। पर आजकल का जमाना बदल गया है, आजकल तो छोटे छोटे बच्चों का जन्मदिन मनाया जाता है। खान पान भोजन भी अच्छा नहीं होता, लेकिन केक जरूर आते हैं, पर मैं खुद कभी भी नहीं खाता हूँ, ऐसा उन्होंने कहा है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि आजकल के हाईटेक और भव्य समारोहों से बिल्कुल अलग सादगी और अपनत्व से भरे होते थे। उन दिनों जन्मदिन मनाना एक सादगीपूर्ण उत्सव था, जहां महंगे गिफ्ट से ज्यादा भावनाओं को महत्व दिया जाता था। यहां पुराने दिनों के जन्मदिनों की हल्की फुल्की यादें कि नया कपड़ा, सादगी से सुबह सुबह नहा धोकर नए कपड़े पहन लिए, फिर उसके बाद में फिर मंदिर या गुरुद्वारे में माथे टेकना। जन्मदिन की शुरुआत भगवान के आशीर्वाद से होती थी, उसके बाद आस पड़ोस में मिठाई बांटी जाती थी, स्कूल में टॉफी देने का दौर था, फ्रॉक या शर्ट पहनकर जाना, पूरी कक्षा में जो है उन्होंने टॉफियों के नाम लिखे थे, टॉफियां देते थे, और घर का बना केक माँ अपने हाथ से बनाई जाती थी, जिसमें बहुत सारी टूटी फ्रूटी डालकर सजाकर बनाई जाती थी, और फिर गुब्बारे में फुलाकर गुब्बारे से फुलाए जाते थे और गेम खिलाए जाते। शोर शराबा, म्यूजिकल चेयर, पासिंग द पार्सल जैसे पारंपरिक खेल, जहां बच्चों की हंसी और शोर पूरे घर से गूंजता था। और गिफ्ट की सादगी उपहार में किताबें, कलर बॉक्स और हाथ से बने ग्रीटिंग कार्ड मिलते थे, जिन्हें बहुत संभाल कर रखा जाता था।
0: और एक और साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन की भारतीय संस्कृति में कोई परंपरा नहीं, क्योंकि जन्मदिन देवों के मनाए जाते हैं, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी, और स्वयं के अहंकार के चलते पाश्चात्य संस्कृति के अनुकरण में ये मनाया जाता है, ऐसा कह रहे हैं। इसके चलते कई उद्योग पनप गए। एक और साथी कहते हैं कि हमारे जमाने में लड़कियों का जन्मदिन नहीं मनाया जाता था, लड़कों का खूब जन्मदिन मनता था। विधि विधान पूजा पाठ करते थे, गुलगुले बनते थे, पड़ोसी महिलाएं और परिवार के लोगों को बुलाकर खान पान होता था, गुलगुले बांटे जाते थे। हमारे एक और साथी हैं, वो कह रहे हैं कि पुराने जमाने में केक काटने का चलन नहीं था, सादगी और अपनेपन से मनाते थे। माता पिता बच्चों को सुबह सुबह आशीर्वाद देते, माथे पे तिलक लगाते, मिठाई खिलाकर शुभकामना देते, और जिसका जन्मदिन होता सबसे पहले सभी बड़े लोगों को शीश नवाकर प्रणाम करता और नए कपड़े पहनता। घर में खीर पूड़ी या बच्चे के पसंद का कुछ भोजन बनता, अन्य सभी छोटे बच्चों को भोजन करवाया जाता और हंसी खुशी का माहौल परिवार में रहता है। समय दिखावा कम और संस्कार अधिक होते थे। बड़ों का आशीर्वाद, परिवार का प्यार और छोटे छोटे पलों की खुशी ही जन्मदिन की सबसे बड़ी सौगात मानी जाती है।
1: एक हमारे साथी लिखते हैं कि हम अपने बच्चों के जन्मदिन पर भी घर पर ही उनके पसंद का खाना बनाकर उनके दोस्तों के साथ मनाते थे, उनके मित्र भी वैसे ही थे। आज अब बड़े होने पर भी हमारे घर यही क्रम है, वे इसी बहाने हमारे शहर में आते हैं तो फोन पर बातचीत नहीं आते हैं तो फोन पर बातचीत करके बधाई तो हम दे ही देते हैं।
0: हमारे एक साथी कह रहे हैं कि जन्मदिन में अच्छे कपड़े पहन के बड़ों के पैर छूते थे, आशीर्वाद लेते थे, मंदिर जाते थे, स्कूल में सभी को छोटी चॉकलेट बांटते थे, लेकिन इनका जन्मदिन आता था 31 मई को वेकेशन में, तो ये सबकी चॉकलेट खा जाते किसी को नहीं देते थे, तो इनका जन्मदिन खास हो जाता है।
1: एक हमारे साथी ने लिखा है कि माँ जो है ना खीर पूरी बनाई जाती थी, उसका मुख्य आकर्षण रहता था, मेहमानों का तांता लग जाता था, पड़ोस के बच्चे रिश्तेदार सुबह से ही बधाई देने आते थे, बिना किसी गिफ्ट के मासूमियत भरी थी। दोस्तों से मिलने वाले रिटर्न गिफ्ट में चॉकलेट, लिपस्टिक, चॉकलेट या इडली स्टिक की खुशबू होती थी, और बहुत सारे पार्टी गेम्स भी खेलते थे, म्यूजिकल चेयर वगैरह, इन्होंने बहुत सारे नाम लिखे हैं।
0: और एक साथी कह रहे हैं कि फोटो खींचने के लिए रील वाला कैमरा होता था, जिसकी फोटो डेवलपर के कई दिन के बाद आती थी, लेकिन वो पल अनमोल होते थे। ड्रेस कोड तो कुछ होता नहीं था, नई ड्रेस पहनने का उत्साह होता था, जो अक्सर पूरे साल के लिए खास होती थी। पुराने दिनों के जन्मदिन में दिखावा कम, अपनापन ज्यादा था। आज के स्मार्टफोन और सोशल मीडिया के दौर में भले ही सेलिब्रेशन शानदार हो गए हों, लेकिन वो पुरानी सादगी और दिल से दी गई दुआएं अब कम ही मिलती है।
1: तो पुराने वो दिन हमें याद करके बहुत सुकून मिलता है, और एक गाना सुन के भी हमें सुकून मिलता है।
0: बिल्कुल,
1: सुनते हैं गीत।

0: तो आधी रात तो नहीं हुई है, लेकिन जाने का समय जरूर हो गया है।
1: तो लेते हैं इजाजत आप सभी को, सोनाली पाठक
0: और नेहा शर्मा का
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: सखी सहेली कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता अनुश्री पाठक।

0: नमस्कार, सेल्यूलॉइड के सितारे।
1: इस कार्यक्रम में आज के सितारे हैं जाने माने अभिनेता, निर्देशक, निर्माता और इन सबसे पीछे छिपे हुए एक बहुत ही भोरी और बहुत ही समझदार शख्सियत के मालिक मनोज कुमार।

0: जिनका फिल्मी करियर लगभग 4.5 दशक पुराना है और आज भी मनोज कुमार जी के विचार, उनकी सोच इस समाज के प्रति, इस देश के प्रति और इस आज के युवा के प्रति उतनी ही मायने रखती है जितने की उनकी फिल्में। उन्होंने हमेशा ही एक सोच समझ के एक दायरे को बांधते हुए फिल्में तैयार की हैं और एक अलग ही सोच उनकी फिल्मों से झलकती रही है। मनोज कुमार जी का सफर कैसा रहा, उनका बचपन कैसा रहा, उनकी फिल्मी इनिंग कैसी रही और आज वो किस तरीके से फिल्मी दुनिया को लेते हैं, देश को लेते हैं, समाज को लेते हैं और इंसानियत को लेते हैं, सारा कुछ हम उनकी जबानी जानना चाहेंगे। मनोज कुमार जी, सेलुलॉइड के सितारे में आपका स्वागत है।
1: रविराज जी, आपने मेरी कुछ जरूरत से ज्यादा प्रशंसा कर दी है।
0: मैं तो प्रशंसा ही नहीं कर सका, जिस तरीके का दौर आपने जिया है, जिस तरीके की सोच आपने दी है, जिस तरीके की समझ आपने समाज को दी है,
1: उसमें भूतकाल की तरफ मैं देखना ही नहीं चाहता। क्या किया उसको नहीं देखना चाहता, मैं आज में जीना चाहता हूँ।
0: क्या बात है,
1: खास कोई बात शुरू करनी हो
0: तो हमारे श्रोता एक वाक्य से समझ गए होंगे कि आज उनकी जिंदगी का फलसफा क्या है और क्या देने वाले हैं इस हमारे प्रोग्राम के माध्यम से। मनोज जी, हम तो शुरुआत करते हैं उस हरि को ढूंढने की कोशिश करते हैं जो मनोज कुमार में घूम गया है।
1: उस हरि कृष्ण को मैं भी मिस करता हूँ, मैं भी ढूंढता हूँ। आपने कहा कि बचपन से लेके अब तक का सफर, तो ये जो सफर है ये एक गठड़ी है, एक पोटली है जिसमें दुख सुख हैं, उसको ना ही खोला जाए तो अच्छा है।
0: आज आपको खोलना होगा हमारे श्रोताओं के खातिर और हम आपके चाहने वालों के खातिर जो कि जानना चाहते हैं मनोज कुमार को और ज्यादा और ज्यादा।
1: उस व्यक्ति का बचपन क्या होगा जिसकी उम्र में 10 साल में पार्टीशन हो गई, लाहौर से दिल्ली रिफ्यूजी कैंप में आ गए, तो 10 साल की उम्र में जिस पे ये बात बीत जाए आप समझ सकते हैं, क्योंकि हमारे देश में लोग ज्यादा भावुक हैं कि उस व्यक्ति के अंदर क्या दुख दर्द होंगे। तो उस पोटली को के दुख ना याद करते हुए मैं कहता हूँ कि जिंदगी का ये सफर अब तक बहुत अच्छा गुजरा। कभी सोचा नहीं था कि प्रभु इतनी कृपा करेंगे। मुझे बचपन में फिल्में देखना का शौक था, सभी को है और सभी हीरो बनना चाहते हैं। मैं ग्रेजुएशन कर रहा था कि मुझे न्योता आया, मैं बम्बई आ गया। फिर उसके बाद काफ़ी स्ट्रगल हुई। मेरी पहली अपीयरेंस जो है पर्दे पे वो एक 19 साल की उम्र में एक बुड्ढे की थी। मैंने एक एक्स्ट्रा से शुरू किया, वो फिल्म फैशन थी। तो हरि कृष्ण से मनोज कुमार बनने में बहुत सी सीढ़ियां चढ़नी पड़ी।
0: जैसे बचपन कैसा रहा बताइए, कि वो जो 9 साल 10 साल के जो पहले के दिन थे, जब पार्टीशन के पहले के उन दिनों, आप किस तरीके से अपनी शरारतें वगैरह, अगर हरि के पास थी तो किस तरीके की शरारतें हुआ करती थी, या कितना संजीदा था हरि?
1: संजीदा इतना लाहौर में नहीं था जितना दिल्ली आके हो गया था। मैं जो हालात गुजरे उस वक्त परिवार पे, तो उससे कुछ ज्यादा संजीदा हो गया। तो जिसका आउटलेट मुझे मिला स्पोर्ट्स में, मैं हॉकी और क्रिकेट अच्छे लेवल पे दिल्ली में खेल लेता था। जब शौक आया कि एक्टर बनना है, बम्बई जाना है, तो 1956 में मैं जब बम्बई आया तो 2 सपने लेके आया था। एक तो हीरो बनूंगा और दूसरा सपना था कि 3 लाख रुपया कमाऊंगा। 1 लाख रुपया माता पिता के लिए, 1 लाख रुपया भाई बहनों के लिए और 1 लाख अपने लिए। उसके बाद प्रभु ने इतना दिया, मैं उसको बोनस समझता हूँ। इसीलिए मैंने, जबकि मेरी उम्र नहीं थी, लोग डराते थे कि डायरेक्शन में मत जाओ, देखो राज कपूर सभी नहीं बन सकते, प्रेमनाथ जी का क्या हाल हुआ, लोगों ने बहुत रोकने की कोशिश की, मगर मेरे अंदर का जो हरि कृष्ण था वो उसमें बड़े वलवले थे। उसने कहा कि मेरा जो लक्ष्य था वो पूरा हो गया, अब इस माध्यम से मैं देश के प्रति, समाज के प्रति, संसार के प्रति, धर्म के प्रति जो दे सकूं फिल्मों के द्वारा वो दूं। तो इसलिए मैं प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, राइटर, एडिटर, पता नहीं कौन कौन सा टर बन गया, मुझे तो इतना ही याद है। बाकी मेरी फिल्में शुरू में चली नहीं थी। मेरी पत्नी, मेरी धर्म पत्नी शशि, इसको मैं शादी से पहले जानता था, हमारा लव मैरिज भी कह सकते हैं आप, से 3 लाख रुपए हो गए तो शादी भी कर ली और शादी के बाद मेरी फिल्म रिलीज हुई हरियाली और रास्ता, और ये मेरे जीवन की पहली सफल फिल्म और सिल्वर जुबली फिल्म थी।

मनोज जी, आज हम चाहते हैं कि आप हर चीज़ को विस्तार पूर्वक बताएं, खास तौर से एक हरी में एक कलाकार या फिल्म अभिनेता

0: बनने का एक सपना कब उठा और कब वो पहला दिन था जब आपने तय किया कि हाँ मुझे फिल्मों में ही अपना भविष्य ढूंढना है?
1: देखिए, मैंने 10 साल की उम्र में पहली फिल्म देखी थी जुगनू। उसमें नूरजहां और दिलीप कुमार साहब थे। दिलीप कुमार साहब का नाम उसमें शायद सूरज था। उनकी डेथ हो जाती है, ठीक है, घर आ गए। फिर कुछ 20-25 दिन या महीने बाद मेरे मामू मुझे मैजिस्टिक टॉकीज दिल्ली में फिल्मिस्तान की शहीद फिल्म देखने ले गए। तो जब बाहर पोस्टर देख रहा हूँ तो मैं कह रहा हूँ, मामा ये सूरज है। वो कहते ना ये दिलीप कुमार है। मैं कहूँ ये सूरज है वो वाला जो मर गया था। वो बोले नहीं देख, पढ़, उर्दू में लिखा हुआ था दिलीप कुमार फिल्म शहीद में। मैंने फिल्म देखी, वो आदमी फिर मर जाता है। तो मैं हैरान परेशान कि एक आदमी दो दो बार कैसे मरता है। वो मेरे चचा का कत्ल हो गया था, तो कुछ मैं कुछ दिन ये सोचता रहा कि शायद वो जिंदा आ जाए ताकि वो भी दूसरी बार मरेगा। तो इस प्रकार से धीरे धीरे धीरे धीरे धीरे फिल्मों से लगाव जुड़ा। फिर लगा कि माध्यम बहुत अच्छा है।
0: अच्छा, पारिवारिक व्यवसाय था?
1: रिफ्यूजी कैंप में भी हम जब थे तो सेल्फ सपोर्टिंग कैंप में थे, जिसमें खाना पीना आदमी अपने खुद खरीदता है। एक्चुअली अगर सब कुछ आप कारखाने फैक्ट्रियां जमीनें छोड़ के आ जाएं तो दिल्ली में आपको कुछ लाल किले का या रामलीला ग्राउंड थोड़ी दे देगा।
0: बिल्कुल सही बात है।
1: भूखे नंगे भी नहीं थे, गुजर अच्छी थी।
0: जिस दौर में हम बात कर रहे हैं उसको लेकर कोई गीत याद करें?
1: गीत तो जी पहले ही वो गीत हम गाया करते थे जुगनू देखने से पहले, यहाँ बदला वफा का बेवफाई के सिवा क्या है।

0: मनोज जी, आपने बताया आपने बचपन के बारे में, अब हम जानना चाहेंगे कि आपकी स्कूलिंग कैसी रही और स्कूल में जब आप जिस तरीके से आपने वो सपना देखा था और दिलीप कुमार को पर्दे पर मरते हुए देखा और उसके बाद आप में एक कलाकार तैयार होना शुरू हुआ कि ये बड़ा अच्छा माध्यम है।
1: क्योंकि रिफ्यूजी कैंप में स्कूल कॉलेजेस नहीं थे तो मेरे पिताजी ने साथ में ही दिल्ली के गांव पड़ता था नांगलोई वहां डाल दिया। वहां हिंदी माध्यम था तो लाहौर तो मैं उर्दू पढ़ता था तो कुछ चार एक महीने वहां पढ़ पाया। फिर पिताजी मुझे पिलानी ले गए, वो तूफान आ गया, पिताजी वापस नहीं जा सके तो उन्होंने देखा यहाँ तो सब्जी भी अमरूद की बनती है। उन्होंने कहा जहाँ खाना पीना ही अच्छा नहीं वहाँ पढ़ाई क्या अच्छी होगी, चलो वापस। वो चाहते थे कि मैं बहुत पढ़ी लिखूं, लेकिन मैं कब फेल हुआ कब पास हुआ कौन सी स्कूल में पढ़ता हूँ ये मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा। ये मेरे पे उनका इतना विश्वास कैसे था मैं समझ नहीं पाया। मेरे पिताजी ने आज तक नहीं पूछा क्यों भाई क्या मार्क्स आए पेपर कैसा हुआ ना। उनकी शख्सियत ही कुछ ऐसी थी कि मैं जब दिल्ली से बंबई के लिए रवाना हुआ तो उन्होंने कहा कि ये एक चिट्ठी है ट्रेन चले तो पढ़ लेना। बाकी जो एक पिता लिख सकता है खत में वो लिखा हुआ था, लेकिन चार लास्ट की लाइनें जो है मुझे याद हैं। सन आई हैव फुल फेथ इन माई ब्लड कैन कमिट मिस्टेक्स बट नॉट ब्लंडर्स एंड रिमेंबर सन दोज हु आर डेस्टिन्ड टू बी हैंग्ड कैन नॉट बी ड्राउन्ड।
0: क्या बात है।
1: तो यही विश्वास मेरा मेरे संतान के प्रति है कि मेरा खून गलती कर सकता है ब्लंडर नहीं कर सकता, बाकी किस्मत में अगर टू बी हैंग्ड है तो ड्रोन नहीं हो सकते, अगर ड्रोन होकर मरना है तो हैंग नहीं हो सकते।
0: अच्छी बात कही आपने। आपके ऊपर जिम्मेदारी का एहसास आपको रहा है और आपने जैसे कि बताया कि 1,00,000 रुपए आप अपने भाई बहनों के लिए करना चाहते थे, अपने भाई बहनों के बारे में भी थोड़ा सा बताएं हमारे श्रोताओं को।
1: जिन दिनों मुझे बम्बई आना था पिताजी ने अपनी फैक्ट्री दोस्त को दी थी चलाने के लिए और वो लीज के पैसे नहीं देता था। घरेलू हालत काफी खस्ता थी, मुझसे एक छोटी बहन थी, दो बहनें और एक भाई, वो भी स्कूल में ही थे कि पंजाब से बटाला शहर से पिताजी के दोस्त आए मिस्टर टकसाली साहब, वो स्विंग मशीन की जो बॉडी होती है वो उन्होंने बनाई थी और दिल्ली में उन्हें मार्केट क्रिएट करनी थी। मैंने उनको कहा चुपके से कि अंकल आप बताइए मत ये मैं ट्राई करूं। उन्होंने कहा भाई हाँ कर ले। पहले तो डांटा कि गोस्वामी जी का बेटा हो के ये काम करेगा, ये तो एजेंटों वाला काम है। मैंने कहा जी क्या डिग्निटी ऑफ लेबर है, काम करने में क्या शर्म है, मैं चोरी तो नहीं कर रहा। तो उन्होंने बताया कि दिल्ली चांदनी चौक नई सड़क पे ये मशीन के खोल बिकते हैं। तो मैं साइकिल पे बांध के कुछ 7-8 मील दूर है वो जगह घर से, तो वहाँ गया तो 3 चक्कर मैंने पहले सारी सड़क के लगाए और एक दुकान अच्छी थी उस पर बहुत भीड़ थी। मैं

0: वहीं खड़ा हो गया। तो लंच टाइम हुआ तो लोग चले गए, तो सरदार साहब ने मुझे देखा कि नया चेहरा है, शक्ल से भी ठीक ठाक लग रहा है, कपड़े भी ठीक हैं, क्या है भाई। मैंने उनसे कुछ छुपाया नहीं जी, मैंने कहा ऐसी ऐसी बात है और मैं ये ट्राई करने आया हूँ। उन्होंने खोल की बॉडी देखी, पसंद किया और 2 महीने मैंने काम किया और बटाला से टकसाली साहब ने खत लिख दिया कि और ऑर्डर नहीं लो, मैं इतने ऑर्डर नहीं भुगतान कर सकता। तो 2 महीने में मैंने 29,000 रुपया कमीशन कमाई थी। फिर पिताजी कहते थे कि साइकिल पे क्यों जाते हो, 4-व्हीलर पे जाओ, मेरा शौक फिल्में देखना, फोटो भी खिंचवाओ, कमीज भी अच्छी पहनो। तो वो मैं साइकिल पे जाता था, वो जो पैसे थे वो बच जाते थे और मैं शशि के साथ पिक्चर भी देख लेता था। तो साइकिल चला के जो पैसे बचते थे उनसे मेरा ये मनोरंजन का काम हो जाता था।
1: जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आपकी शशि जी से मुलाकात रही।
0: मुलाकात ये है कि मेरे एक दोस्त हैं रवि करके, मैं उनके यहाँ मैथमेटिक्स पढ़ने जाया करता था, वो मेरे क्लास फेलो थे। आंखों ही आंखों में कहते हैं ना बात हो गई, जैसे पंचोली साहब का एक गीत है, नैनों के बांध की रीत अनोखी, रीत अनोखी, बांध चले और नैन ना देखें। कब क्या हो गया ये पता नहीं, हुआ जरूर है।
1: बड़ी रोचक कहानी है। तो ये क्या उम्र रही होगी आपकी उस समय जब आपने शशि जी को पहली बार देखा?
0: 15-16।
1: वाह, और पहली नजर का प्यार।
0: हाँ, लेकिन बातचीत करने में 1 साल लग गया था, हेलो भी नहीं कर सकते थे।
1: वाह, और उसके बाद तो पूरी दुनिया ही बदल गई, फिर आप इतने बड़े कलाकार बने, इतने बड़े सितारे बन गए।
0: फिर मैंने पिताजी को यहाँ से इशारतन एक इशारा दिया था, तो वो जानते हैं, पिता तो जानते हैं सब कुछ, वो उनके यहाँ चले गए तो 1 मिनट में बात तय हो गई। माता पिता ने भी नहीं कहा, लेकिन मेरी पत्नी ने 22 साल फिल्म इंडस्ट्री में होते हुए मेरे पिताजी से घूंघट निकाला।
1: क्या बात है, वाह।
0: फिर वो बीमार थे तो उन्होंने खुद उठवाया कि तू मेरी बेटी है। हमने कभी चाहे ना था कि घूंघट निकालो, मगर उसने परंपरा के अनुसार ये काम किया।
1: और आप अपने प्यार को जब एक सितारे के रूप में स्थापित हो जाने के बाद जब आपने उनसे विवाह किया, तो उस समय का अनुभव कैसा रहा? और उस समय तक तो आप जाना माना नाम बन चुके थे। और
0: ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेरे पांव हमेशा धरती पे रहे, ना मैं गर्दन उठा के चला हूँ। ये फैक्ट है, मैं चलता भी हूँ तो गर्दन मेरी नीचे होती है। मुझे कोई अंतर नहीं लगा कि मैं स्टार बन गया हूँ, ना मैं स्टार की तरह रहा कभी, ना मैंने कभी सेक्रेटरी रखा, ना स्टार वाली पार्टियां की। अपना अपना मेंटल एटीट्यूड भी होता है।
1: कोई अच्छा सा गीत याद आ रहा हो आपको?
0: आपने कहा तो मुझे एकदम अपने एक गाने का ध्यान आया, जीवन चलने का नाम। जीवन

0: मनोज जी, बचपन में जो सबसे ज़बरदस्त प्रभाव पड़ता है और वो पूरी ज़िंदगी भर रिफ्लेक्ट करता है, कभी माता का प्रभाव होता है, पिता का प्रभाव होता है, या कोई ऐसी शख्सियत होती है आपके आसपास की जिसको आप आगे लेकर चलते हैं पूरी ज़िंदगी ता ज़िंदगी, अपनी माँ के बारे में भी कुछ बताएंगे?
1: बात ये कि मैं ज़्यादातर अपने ननिहाल में रहा, माँ मेरी कुछ बीमार रहती थी ज़्यादा। जो धार्मिक भावनाएँ हैं या जो रुचि पड़ी वो अपनी माँ और अपनी नानी से ली मैंने। बाकी जहाँ तक एक कंट्रोलिंग, एक यूनाइटेड फैमिली रहना, एक डिसिप्लिन पर्सन रहना, वो मैंने अपने पिताजी से बहुत सीखा। क्योंकि 13 अगस्त 1947 के करीब खबर मिली थी कि मेरे चाचा जी का कत्ल कर दिया गया। 25 साल भी एज नहीं थी उनकी।
0: ये विभाजन की त्रासदी
1: जी, और पिताजी नढ़ाल थे, दीवारों से सर मार रहे थे। दूसरे दिन सुबह उठे, मुझे 6 बजे उठाया, चलो तैयार हो जाओ नहा के। कहाँ, 15 अगस्त 1947 में मुझे मेरे पिताजी लाल किला ले गए और मैंने झंडा दे देखा, मैंने लाल किला भी देखा। मुझे उस वक्त लगा, एक थोड़ी सी सोच ऐसी लगी कि कल तक रात तक मेरे पिताजी का ये हाल था, आज सुबह ये भावना है, ये झंडा, ये आज़ादी, ये इतना कीमती है कि एक आदमी अपने दुख दर्द भूल गया, ये कहीं मेरे दिल में बस गया। मेरे माता पिता ने कभी ये नहीं कहा कि सुनो बैठो, ये संस्कार सीखो, ये बात सीखो, कभी नहीं कहा। इनडायरेक्टली बातों बातों में कह जाते थे।
0: देश प्रेम का जो जज्बा था वो मेरे ख्याल से वो बीज था,
1: वो बीज था। हालांकि लाहौर में जुलूस निकलते थे, जब INA का केस चल रहा था लाल किले में, तो जुलूस में शामिल हो जाता था कि लाल किले से आई आवाज़, सैगल ढिल्लो शाहनवाज, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं थी, वो एक बच्चे सारे हैं तो मैं भी शामिल हो जाऊं। लेकिन जो असली बीज पड़ा एक सोच का, वो 15 अगस्त को पड़ा।
0: देश की आज़ादी के दिन ही तकरीबन 13 साल के रहे आप।
1: उस दिन एक और घटना घटी कि पानी पिया मैंने तो उसने मुझे टक्का मांगा। मेरे को तो लगा पहाड़ गिर गया मेरे सर पे, हम तो पानी पिलाने को पुण्य समझते हैं। मैंने पिताजी से शिकायत की कि ये आदमी पानी के पैसे मांग रहा है। कहते यार पानी, हम तो दरिया के दरिया छोड़ आए हैं आज़ादी के लिए, तो पानी के 2 पैसों को रो रहा है, हम तो दरिया छोड़ आए।
2: विविध भारती पर आपने ट्यून किया है कार्यक्रम सेल्युलॉयड के सितारे, और आज के इस प्रोग्राम में हमारे मेहमान हैं फिल्म जगत के जाने माने अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार।
0: मनोज जी, हम चलते हैं आपके फिल्मी सफर की तरफ, और आपने पहले छोटी छोटी भूमिकाओं के से शुरुआत की अपने अभिनय की
1: जी।
0: तब क्या आपने सोचा था कि आपका जो कलाकार है वो एक मनोज कुमार के रूप में विशाल एक वृक्ष का अख्तियार कर लेगा?
1: जितना हुआ उतना नहीं सोचा था, इतना कॉन्फिडेंस था, इतना विश्वास था कि मैं बन जाऊंगा, लेकिन परमात्मा इस स्टेज पे ले आएगा। हो सकता है ये जगह, ये मकाम जहाँ मैं पहुंचा हूँ आपके लिए कुछ ना हो, लेकिन मेरे लिए बहुत कुछ है कि जिंदगी में पहली फिल्म देखी दिलीप कुमार की, कि ये दिलीप कुमार है, ये सूरज है, ये मर जाता है। तो वो 10 साल के बच्चे के कोरा दिमाग, कोरा दिल, उस पे दिलीप कुमार का नाम लिखा गया। एक वक्त वो आया कि दिलीप कुमार साहब फिल्म बना रहे थे, बना कर रहे थे, काम कर रहे थे, लेकिन कहा हमेशा यही जाता है कि दिलीप साहब की फिल्म है, तो उन्होंने मुझे अपनी फिल्म आदमी में लिया। तो ये कभी सोचा नहीं था कि मैं दिलीप कुमार साहब के साथ काम करूंगा, ये तो हुआ, लेकिन ये ख्वाबो ख्याल में भी नहीं आया था कि मैं एज ए राइटर, एज ए प्रोड्यूसर, एज ए डायरेक्टर जाके दिलीप कुमार साहब को साइन करूंगा और वो सेट पे मेरे लिखे हुए डायलॉग बोलेंगे, वो मेरी डायरेक्शन के अंडर काम करेंगे, इतना नहीं सोचा था। इतना कुछ हो गया, इसके आगे मैं भगवान से मांगू तो इतने मांग सकता हूँ कि भाई अब तक अच्छा जीवन कटा, आगे भी कृपा रखना, और तो कुछ मांगने को है नहीं।
0: जबरदस्त बात कही आपने। आदमी फिल्म का कोई अगर गीत आपको याद आ रहा हो?
1: उस फिल्म में एक गीत था, दिलीप साहब और मुझ पे फिल्म आया गया था।

0: श्रोता हूँ, इससे पहले कि मनोज कुमार से भारत कुमार बनने के सफर के बारे में हम आगे बढ़े, हम जानना चाहेंगे मनोज जी कि आपने मनोज कुमार नाम कैसे रखा अपना।
1: ये जिस हरि या हरि कृष्ण गोस्वामी की बात करते हैं, जब वो 11 साल का था या 12 साल का था, उसने फिल्म देखी, उस फिल्म में भी दिलीप कुमार साहब थे और उसमें उनका नाम मनोज था। ये मैं शाबाश देता हूँ अपने बचपन को कि उसी वक्त ठान लिया था कि अगर फिल्म में आया तो ये ही नाम रखूंगा।
0: जिस तरीके से दिलीप साहब की बातचीत हो रही है, आप जाहिर है हमारे श्रोता समझ गए होंगे कि मनोज जी की जो शख्सियत है उस पर दिलीप साहब का जबरदस्त प्रभाव रहा है, आपके अभिनय में भी वो कहीं कहीं झलकता रहा है। तो ये डेलिबरेटली था कि मतलब आपने

0: अंत करके इसको लिया या
1: नहीं,
0: फिर सबकॉन्शियस
1: ये मैं थोड़ा क्लियर कर दूं, मैं कोई मतलब कोई ये नहीं कहना चाहता कि मैं बेगुनाह हूं। एक तो जो आपका आइडियल रहा हो तो शायद वो टेम्परामेंट कहीं आ जाता है। दिलीप साहब का जो टेम्परामेंट है वो अंडर प्ले का था। कुछ मेरी जाती जिंदगी भी ऐसी थी जो इंट्रोवर्ट और टिमिड स्लो ऐसे, तो क्योंकि आपने फिल्म आदमी देखी होगी, आदमी में दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था, उसमें दो दिलीप कुमार नहीं थे।
0: बिल्कुल सही।
1: क्रांति में आपने देखा दिलीप कुमार थे, मनोज कुमार था। मेरा बार बार ये कहना कि दिलीप साहब की फिल्म देखी, दिलीप साहब से मुतासर हुआ, दिलीप साहब से ये हुआ, वो शायद इस रोशनी में लिया जाता है कि मैं दिलीप साहब की कॉपी करता हूँ। हो सकता है कोई मैनरिज्म किस वक्त मिल जाए।
0: तो इसमें फिर किसी की एक्टिंग की बात नहीं आ जाती है कि ये किसी से कॉपीड है या किसी को ध्यान में रखते हुए, किसी को प्रेरणा बनाते हुए की गई एक्टिंग है, बल्कि मनोज कुमार तो अपने आप में एक अलग संस्थान भी है। और आज तो हम बात करते हैं जब अलग अलग मैनरिज्म की, अलग अलग स्टाइल की एक्टिंग के, तो एक स्कूल मनोज कुमार का भी रहा है जिन्होंने की एक अलग तरीके का एक शेड दिया है अभिनय को, एक उसके बारे में भी हम बातचीत करेंगे। शायद शहीद से और उपकार के दौर से आपका जो वो आधा चेहरा वाला जो वो सिस्टम रहा है और आंखें बंद करने वाला जो हिसाब किताब रहा है, इसके बारे में भी हमें खुलासा करके कुछ बताएं।
1: जहां तक आंखें बंद करने का सवाल है, ये मैंने डेलिब्रेट कभी नहीं किया, मैंने बिल्कुल सीन को नेचुरल सीन समझ के किया। शायद अगर कोई सोचने वाली बात आ जाए तो शायद आंखें बंद हो जाती हैं, जैसे कि आप बगैर आंखें बंद किए छींक नहीं सकते, तो अगर सोच वाली बात आ जाए तो या तो आदमी आसमान की तरफ देखेगा, नीचे देखेगा, या आंखें बंद करके कुछ सोचने की कोशिश करेगा, समझने की कोशिश करेगा। मैं ऐसा मैनरिज्म करूंगा, मैं हाथ ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, नहीं। एक टेक होती थी तो उसमें मैं कुछ करता था, दूसरी टेक होती थी उसमें मैं कुछ करता था। मैंने करेक्टर को निभाया है, सीन को निभाया है, मैंने कतई ध्यान नहीं दिया कि तू मनोज कुमार है, तूने ये करना है, तूने ये करना नहीं। मेरी तो चिंता रहती थी कि दूसरे ठीक कर रहे हैं कि नहीं कर रहे।
0: मनोज कुमार के भीतर एक अभिनेता रहा है शुरू से, ये निर्देशक के रूप में कब परिवर्तित होता चला गया या निर्देशकीय रास्ते पर कब चलने लगा, और फिर लेखक ने कब जन्म लेना शुरू कर दिया?
1: लेखक तो मैं आपसे पहले बता चुका हूँ,
0: शुरुआती दौर में आपने बताया था।
1: बाकी मैंने कहानी लिखी हुई थी शहीद, जो भगत सिंह जी, राजगुरु और सुखदेव इनके कॉमरेड्स के ऊपर थी। तो मेरे एक दोस्त हैं केवल बी कश्यप साहब, वो पीआरओ का काम करते थे, तो उन्होंने मुझसे कहा यार मैं थक गया हूँ फोटोज खींच खींच के और ऑफिसेज में जाके कि इसकी फोटो छापो उसकी फोटो छापो, मैं प्रोड्यूसर बनना चाहता हूँ। उस वक्त मैं सेलेबल हीरो जो कहते हैं कि जिसकी पिक्चर बिक जाए, उस पदवी तक आ गया था। हाँ, मैंने कहा बनाओ फिल्म। मैंने कहा साधना जी हैं, सायरा जी हैं, आशा पारेख है, किसी को लेके बना। कहता नहीं, मुझे बनानी वही फिल्म है जो तूने सुनाई थी कहानी। मैंने कहा केवल पहली फिल्म बना रहा है, इससे पहले दो फिल्में भगत सिंह जी पे बन चुकी हैं जो चली नहीं है, ये तो जोखिम लेगा। कहता यार कुछ नहीं। मैंने कहा लेना है तो फिर बना लो। तो ये तय हुआ कि वो शहीद बनाएंगे। फिर हमारे सहयोगी थे मेरे एस राम शर्मा, वो मंझे हुए थे, उनको बोला भाई आप डायरेक्शन में आ जाओ। तो केवल साहब उन दिनों शंकर जयकिशन साहब, ओपी नैयर साहब और रवि साहब इन म्यूजिक डायरेक्टर्स की पब्लिसिटी किया करते थे। तो केवल जी के लिए ये था कि यार ये नहीं होगा, तो शंकर जयकिशन का म्यूजिक बिकता है, शंकर जयकिशन बिकते हैं, ओपी नैयर साहब बिकते हैं, रवि साहब बिकते हैं। मैंने कहा केवल बात बहुत सिंपल है, अगर ये फिल्म बनानी है तो इस फिल्म के लिए मुझे म्यूजिक डायरेक्टर प्रेम धवन चाहिए। कहने लगे वो कौन है? मैंने कहा वो गाने लिखते हैं। कहने लगे यार एक दो गाने ले लेंगे उनसे। मैंने कहा नहीं, ये फिल्म अगर बनानी है तो इसमें, कहता उन्होंने कभी म्यूजिक नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, तू कैसे जानता? मैं कहा मैं जानता हूँ, ये बड़ापन है केवल का कि उसने मेरी बात मान ली। हम प्रेम धवन साहब के घर गए, उनको यकीन नहीं आया, उन्होंने दो दिन मांगे। मैंने कहा नहीं, अगर आपने म्यूजिक नहीं देना तो ये फिल्म नहीं बनेगी। उन्होंने हाँ की और शहीद सब नए लड़कों के साथ बनी और प्रेम धवन साहब ने म्यूजिक दिया, म्यूजिक जो आज भी चलता है। और डायरेक्शन का क्या हुआ, चूंकि लिखे हुए सीन मेरे थे, कहानी सब कुछ मेरे पास थी, तो पैसे की बहुत दिक्कत थी। हमको अक्सर दो यूनिट बनाने पड़ते कि इधर ये कर लो, तो एक तरफ मुझे जाना पड़ा, मैं गया नहीं उस रास्ते पे, मुझे जाना पड़ा। जब वो मैं डायरेक्शन करने लग गया तो फिर मेरे अंदर डायरेक्टर ही आ गया।
2: ए वतन,

उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान फूटी जो कहर की नजर

फिर शहीद बनने के बाद जब दिल्ली में इसका प्रीमियर हुआ तो हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी आए थे और 3 घंटे उन्होंने फिल्म देखी, तालियां बजाई, उसके बाद स्पीच भी दी। फिर मुझे बोला कि सुबह सबको घर पे लेके आओ। बाकी तो कुछ लोग जा चुके थे तो मैं उनकी कोठी पे पहुंचा तो जो किचन गार्डन सा होता है उसमें खड़े थे, तो बहुत शाबाश दी, बहुत कलेजे से लगाया। उन्होंने कहा कि तुम मुझे बचपन में ले गए, मैं उसके बाद सोया नहीं सारी रात, वही जीवन में चला गया था। तो ऐसे ही उन्होंने मासूम नजरों से देखते हुए कहा कि सुनो, मैंने नारा दिया जय जवान जय किसान, क्या इस पे फिल्म बन सकती है? मैंने उनकी आंखों में एक चमक देखी, मैंने कहा जी बन जाएगी। मैंने सीताराम साहब से कहा कि मुझे डायरी और 2-3 बाल पेन ले दो, मैं डीलक्स से चला और सोया नहीं, 24 घंटे में वो कार लिखी गई थी।

0: मैंने स्क्रिप्ट में मेरी पत्नी सामने बैठी है, मैंने स्क्रिप्ट पूरा लिखने में कभी 3 से 4 दिन से नहीं लिए।
1: हम चाहेंगे कि शशि जी भी हमारे साथ ज्वाइन करें और मनोज जी के बारे में, जो एक घर में एक अभिनेता और निर्देशक और लेखक और निर्माता के इतने सारे जो आयाम हैं उनको छोड़कर किस तरीके से मनोज जी पेश आते हैं।
0: नहीं, इससे पहले कि आप उनसे बुलवाएं, मैं आपको बता दूं कि मेरे सीन पुख्ता क्यों होते हैं कि पहले ये सेंसर करती है, पास करती है, अगर इसको कोई चीज नहीं अच्छी लगेगी तो अटक जाएगी। जब मैं समझूंगा कि ठीक इतना अटक गई है, मेरे को समझाने में कामयाब हो जाए तो मैं इसकी मान लेता हूँ, और अगर गलत है चीज जो इसका सजेशन है वो ठीक नहीं है, अगर मैं समझाने में कामयाब हो जाऊँ तो ये मान लेती है। बाकी मैं क्या करता हूँ, क्या नहीं करता, क्या काम किया है, इसका मेरे साथ पूरा सहयोग रहा है।
1: यानी जो कहा जाए कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक औरत का हाथ होता है, तो वो औरत शशि जी हैं आपके पीछे।
2: घर में तो ये बिल्कुल घरेलू ही रहते हैं और दिनचर्या भी इनकी जैसे सुबह आम आदमियों की तरह होती है, वैसे ही सुबह उठते हैं तो योगा करते हैं, सैर करने जाते हैं, सादा भोजन लेते हैं। भोजन में भी ज़्यादातर इनका यही होता है, मूंग की दाल और दूधी की सब्जी, दो चीज़ें इनकी फेवरेट है।
1: और स्वभाव किस तरीके का है, कि जिस तरीके से बोला जाता है कि एक सफल कलाकार अगर खास तौर से होता है तो बहुत टेम्पर्ड होते हैं, टेम्परामेंट उनका बहुत हाई होता है, तो घर में भी ये सब चीज़ें झलकती हैं या फिर बहुत शांति से पेश आते हैं और पारिवारिक तरीके से रहते हैं?
2: शांति से पेश आते हैं, लेकिन कभी कभी मूड गर्म भी हो जाता है।
0: कोई सुविधा जिंदगी की ना मिले ये गुजर कर लेगी, लेकिन म्यूजिक, रेडियो, टेप रिकॉर्डर, ये इसकी जान है।
1: शशि जी, आप अपने जमाने में जबरदस्त खूबसूरत भी रही हैं और एक सफल कलाकार की पत्नी भी रही हैं, कभी आपको खुद को नहीं लगा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखा जाए? खासतौर से आप, हम जानते हैं कि पूरब और पश्चिम की जो कहानी है उसके बेसिक आपके ही हैं और आपका ही एक ये महल था जो सक्सेसफुल रहा है।
2: काम करने का सवाल तो कभी दिल में नहीं आया, क्योंकि पिक्चरों में तो आर्टिफिशियल एक्टिंग होती है, घर में तो हम नेचुरल करते हैं, वो एक्टिंग ज्यादा अच्छी लगती है हमें।
1: दूसरी चीज ये जानना चाहते थे कि पूरब और पश्चिम का ख्याल आपके दिमाग में कैसे आया और किस तरीके से इसको आपने विजुलाइज किया, फिर उसको कागज पर उतारा?
2: मेरी सिस्टर है, उनके हस्बैंड वो बाहर रहते थे हमेशा, अब्रॉड में ट्रांसफर हो गई थी उनकी, तो हम हमेशा कहते थे कि यहाँ पे मुझे अच्छा नहीं लगता, यहाँ की कल्चर डिफरेंट है, यहाँ पे ऐसे है, बच्चे होंगे तो कैसा होगा, क्या होगा, उस पॉइंट को देख के सोच के कैसा वातावरण वहाँ का है, यहाँ का कैसा है, तो उसके ऊपर ऐसा ब्रेन ड्रेन के ऊपर कुछ आइडिया आया।

0: जी, एक निर्देशक जीवित हुआ आपके भीतर, जब आपको जिम्मेदारी का एहसास हुआ फिल्म में, जिस तरीके से आपके शहीद के दौरान आपने बताया, और फिर लाल बहादुर शास्त्री जी की प्रेरणा के बाद जब आपने उपकार शुरुआत की और जय जवान जय किसान का जो नारा है उसको इनकॉर्पोरेट किया फिल्म में, तो वो अपने अनुभव बताइए। उसमें आपने एक और चेंज किया था कि एक जबरदस्त, या जिसके पर्दे पर आते ही लोग दहल उठते थे, ऐसे खलनायक को एक शानदार और एक बड़ी जीवंत भूमिका दी थी मलंग बाबा की। वो प्राण साहब थे जिनकी इमेज आपने तोड़ी थी और बदली थी।
1: प्राण साहब का एज ए विलन इतना भयानक रूप था कि अगर आप उनके साल देख लें और उन वर्षों में देख लीजिए, घर वालों ने किसी बच्चे का नाम प्राण नहीं रखा होगा।
0: ये बिल्कुल हकीकत है।
1: लेकिन मेरी कन्विक्शन ये थी कि एक अच्छा कलाकार, उस पे स्टैंप लग जाती है, मैं इनको, ये इंसान अच्छे हैं, ये कलाकार अच्छे हैं, तो क्या वजह है कि ये अच्छा रोल नहीं करेंगे। तो मेरी कन्विक्शन थी। थोड़ा सा प्राण साहब भी हेजिटेंट थे कि यार ये कैसा रोल है। और फिर उस फिल्म में एक गीत था उनके ऊपर, कस्मे वादे प्यार वफा, तो मुझे स्वर्गीय कल्याण जी भाई भी, राज खोसला साहब, ये सब कहते थे अरे क्या पागल हो गए यार, बैकग्राउंड में रख दो ये गाना, प्राण जी के मुंह से मत गवाओ। प्राण साहब जो थे, वो जो रोल था उनके अंदर रच गया था।
0: वाकई उपकार का ये उपकार था प्राण साहब के ऊपर, और हम चाहेंगे कि इस फिल्म का भी एक कोई गीत सुन लिया जाए।
1: बात प्राण साहब की हो रही है और मलंग बाबा की हो रही है, तो बात उस गीत की भी हुई, तो क्यों ना उसी गीत को सुनाया जाए। कस्मे वादे प्यार वफा, सब बातें हैं बातों का क्या।

सेल्यूलॉइड के सितारे, अभी आप फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध अभिनेता, निर्माता, लेखक और निर्देशक मनोज कुमार से रविराज प्रणामी की बातचीत सुन रहे थे। आज के इस कार्यक्रम के निर्माण में तकनीकी सहयोग दिया रीटा रवेलो और साइमन परेरा ने। प्रस्तुति सहयोग वीणा राय सिंघानी का था। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया शकुंतला पंडित ने।

0: चलती हैं धाराएं तीन, विचार, स्वर और संगीत।
1: तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा।
0: बातें जो देती हैं हौसला, शब्द जो देते हैं सुकून।
1: ये ना सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है।
0: हालात से लहूलुहान दिल को मिलता है ठिकाना, विचार और संदेश थाम लेते हैं आपका हाथ।
1: देना साथ मेरा, ओ हम नवा।
0: जब आप सुनते हैं त्रिवेणी।
2: अभी आप विविध भारती प्रसारण सेवा के कार्यक्रम सुन रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय संध्या के 5 बजे हैं। पेश है प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोट। कार्यक्रम के प्रायोजक हैं CF1 विभाग सरगुजा।

0: साथी बने गजराज
1: नमस्कार, स्वागत है हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम में। मैं अमलेंदु मिश्र। साथियों, हाथियों का दल भोजन और पानी की तलाश में गांव की ओर आने लगा है। आइए जानते हैं हाथियों के आज के विचरण क्षेत्रों के बारे में। एलिफेंट रिजर्व सरगुजा के तमोर पिंगला में हाथियों की कुल संख्या 75 है। ये धूरिया, अरचोका, भेलकक्ष, पेंडारी, बोदरई, शाही डांड के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सूरजपुर वन मंडल के प्रतापपुर में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये सरहरी, केवरा, करंजवार, बोझा, चंदरपुर, मोहनपुर, हरिपुर, सुंदरगंज, बंसीपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलरामपुर वन मंडल के रामानुजगंज, वाड्रफ नगर और राजपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये इंदरपुर

0: नीलकंठपुर, महावीरगंज, कनकपुर, रामपुर, प्रेमनगर, कोटराही, नवापारा, रेवतपुर, कुंदीकला, जामदोहर, अखोरा, बदौली के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सरगुजा वनमंडल के मैन पार्ट में हाथियों की कुल संख्या 5 है। ये कंडराजा, बरडांड, दांती ढाब, घटगांव, बोड़ा घाट के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। जसपुर वनमंडल के कुनकुरी, कांसाबेल और पत्थल गांव में हाथियों की कुल संख्या 34 है। ये नारायणपुर, पुटुकेला, बनकोम्बो, रानी कोम्बो, डीपा टोली, कुदरा झरिया, साजा पानी, तीता पाकेर, खड़ा माचा, हरदी झरिया, राजा आमा, महेशपुर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। धर्मजयगढ़ वन मंडल के छाल, धर्मजयगढ़, कापू, बोरो और बाकारुमा में हाथियों की कुल संख्या 113 है। ये आमगांव, पोटिया, चैनपुर, रुपुंगा, बनहर, औरानारा, कुड़ुमकेला, डूंगा भवना, गलीमार, सारस मार के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कोरबा वनमंडल के कुदमुरा में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये लबेद और गीत कुंवारी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। कटघोरा वनमंडल के जडगा और केंदई में हाथियों की कुल संख्या 50 है। ये बांधापारा, लालडी, झुनकीडी, मुकुआ, जुनवानी, कुकरी कादर, डंग बोरा, कोदवारी, खड़पड़ी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। रायगढ़ वनमंडल के रायगढ़ और घरघोड़ा में हाथियों की कुल संख्या 18 है। ये बंगूरसिया, जुनवानी, नवागांव, चक्रधरपुर, सामारूमा, छर्रा, टांगर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। अचानक मार टाइगर रिजर्व के अचानक मार में हाथियों की कुल संख्या 4 है। ये सरई पानी के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। सारंगढ़, बिलाईगढ़ वनमंडल के गोमरडा अभ्यारण्य में एक हाथी विचरण कर रहा है। ये खम्हार पाली, पथरी पाली, दबगांव के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। बलौदा बाजार वनमंडल के कोठारी में हाथियों की कुल संख्या 29 है। ये कोठारी, पकरीत, ताल, दादर के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। उदंती सीता नदी टाइगर रिजर्व के कुल्हाड़ी घाट में हाथियों की कुल संख्या 12 है। ये ताराझर, डडई पानी, बोतलधारा, खोला पारा, जिडार, सिंहार, छिंदौला, पायलीखंड, लूठा पारा के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। गरियाबंद वन मंडल के धवलपुर में हाथियों की कुल संख्या 25 है। ये जारंडी, बोडापाल, बेगरपाला, हरदीबाय, पंडरी पानी, नगरार, ओड़ के वन क्षेत्रों में विचरण कर रहे हैं। दोस्तों, गांव के बाहर या वन क्षेत्रों से लगे एकल कच्चे मिट्टी के मकानों में रात्रि विश्राम बिल्कुल ना करें। आइए सुनते हैं प्रसिद्ध क्रिकेटर और ब्रांड एम्बेसडर अनिल कुंबले जी का ये संदेश।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल कुंबले बोल रहा हूँ। यदि हाथी गांव के आसपास दिखे तो तत्काल वन विभाग को सूचना दे। जंगल के किनारे एकांत घरों में रहने वाले लोग पक्के स्कूल या पक्के घरों में चले जाएं। हाथियों के लिए जंगल का रास्ता खुला छोड़ दे। हाथियों की जानकारी के लिए सुनते रहे हमर हाथी हमर गोठ।

प्रायोजित कार्यक्रम हमर हाथी हमर गोठ अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम अमृत धारा। विषय है भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचें और सुरक्षित रहें। इस विषय पर आइए सुने डॉक्टर योगेश जैन से बातचीत। भेंटकर्ता और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता हैं डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन।

0: जिस तरह से गर्मी बेतहाशा पड़ रही है और हम सभी का हाल बेहाल है, और हमारे श्रोता लगातार इस बात पर जोर दे रहे थे कि जब गर्मी बढ़ती है तो जो स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां होती हैं उसके संदर्भ में एक विशेष कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी बिलासपुर से होना चाहिए। उस जरूरत को देखते हुए आज हमने भी सोचा कि क्यों ना इस विषय पर काफी विस्तार से हम बात करें, ताकि कारणों को हम समझ सकें, बचाव के उपाय कर सकें और इस गंभीर समस्या से अपने आप को सुरक्षित रख सकें। इन सभी बातों पर विस्तार से चर्चा करने के लिए आज हमारे बीच हैं इस अंचल के जाने माने विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर योगेश जैन। कार्यक्रम में आपका स्वागत है डॉक्टर साहब।
1: शुक्रिया
0: डॉक्टर साहब। गर्मी जिस ढंग से अभी चारों तरफ बढ़ गई है और पड़ रही है, उसमें हम सब बेहाल हैं, तो ये जो परेशानी है इसको समझने के लिए सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो गर्मी है ये हमारे शरीर पर किस प्रकार प्रभाव डालती है, या शरीर इसको किस ढंग से सहन कर पाता है या रिएक्ट करता है।
1: तो हमारे शरीर के लिए जो बाहर का तापमान है, यदि 20 और 30 डिग्री सेल्सियस के बीच हो तो वो उचित होता है। हमारे शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री होता है, यदि उससे ऊपर चढ़ता है तो शरीर के लिए ये परेशानी आती है कि कैसे अतिरिक्त जो गर्मी है वो निकाली जाए, क्योंकि जो शरीर में गर्मी बनती रहती है कि हमारे शरीर की भट्टी से
0: जी,
1: वो 37 डिग्री तापमान जब वातावरण का होगा उससे बढ़ेगी तो दिक्कत आती है। उसको निकालने के लिए प्राकृतिक रूप से एक ये तो तरीका है, यदि बाहर का तापमान कम हो और अंदर का तापमान 37 से ज्यादा हो तो चमड़ी से वो गर्मी निकल जाती है
0: जी।
1: उसी तरीके से जैसे आप देखिए, यदि आप ठंडा पानी लगाते हैं अपने शरीर पे तो उससे हमको ठीक लगता है, क्योंकि थोड़ी गर्मी निकल जाती है,
0: बुखार की जो स्थितियां रहती
1: है होती हैं।
0: बिल्कुल।
1: उसके अलावा जो सबसे कारगर तरीका है जिससे गर्मी हमारे शरीर से निकलती है, वो होता है जब हमारा पसीना बनता है, जब वो गर्मी की स्थिति में बनता है, और वो पसीना जब सूखता है, कोई भी तरल पदार्थ के सूखने से जो ठंडक होती है तो वही पसीने के सूखने में आती है, और वही हमारा सबसे कारगर तरीका है शरीर के पास अपनी गर्मी को बाहर फेंकने के लिए।
0: हमारे मस्तिष्क में क्या ऐसी संरचनाएं होती हैं जो पूरे शरीर के तापक्रम को एक समान रूप से बनाए रखती हैं, तो क्या इस गर्मी से उसमें कोई फर्क पड़ता है कि हमारे शरीर के तापक्रम को हम बाहर के वातावरण से एडजस्ट नहीं कर पाते हैं?
1: अगर बाहर का तापमान बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो शरीर की जो तरीके हैं तापमान को नियंत्रित करने के लिए वो फिर फेल होने की संभावना होती है, और वो प्रायः जब होता है जब बाहर का तापमान 44 डिग्री तापमान से ज्यादा हो, और वो जो भी आप जानते हैं कि तापमान सब ये शेड में नापे जाते हैं, छांव में नापे जाते हैं, यदि आप धूप में चल रहे हो तो धूप में तो तापमान नियमित रूप से हर मिनट बढ़ रहा होता है,
0: बिल्कुल,
1: तो 44 डिग्री से ऊपर काफी समय होता है तापमान, और जो लोग उस समय काम कर रहे हैं धूप में तो उनको तो ये खतरा है ही कि उनका जो नियंत्रण करने का तरीका है वो फेल हो जाए और उनको नुकसान हो जाए।
0: हीट वेव की कंडीशन जिसको हम बोलते हैं कि लू चलना शुरू हो गई है और उस समय हमें ज्यादा सतर्क रहना है, तो हीट वेव की कंडीशन क्या होती है और उस समय की परेशानियां किस ढंग की होती हैं, शरीर के लिए क्या हमें सोचना चाहिए?
1: तो हीट वेव या ग्रीष्म लहर हम बोले, वो जब उसकी स्थिति जब बनती है जब बाहर का तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर हो, जब कम आर्द्रता वाली स्थिति में, जैसे कि अभी बिलासपुर में तकरीबन 19 या 20 डिग्री ह्यूमिडिटी या आर्द्रता है, लेकिन अगर आर्द्रता 50 डिग्री से ऊपर होने लगती है तो हमारा पसीना सूखने की जो प्रक्रिया है वो कम हो जाती है। 70% आर्द्रता पे तो हमारा पसीने के सूखने की स्थिति बंद हो जाती है
0: जी।
1: तो उस स्थिति में तो अगर आपका 37 डिग्री तापमान भी वातावरण का है तो वो भी एक बहुत मुश्किल परिस्थिति बन जाती है, जैसे कि हमारे तटीय क्षेत्रों में होती है।
0: बिल्कुल।
1: लेकिन बिलासपुर जैसी जगह पर और छत्तीसगढ़ के बाकी, क्योंकि छत्तीसगढ़ में तो समुद्र का तट है नहीं
0: जी जी,
1: तो आर्द्रता के सामान्य चलते हुए भी अगर तापमान 44 डिग्री के ऊपर चले जाएगा तो उसको हम भयंकर या सीवियर हीट वेव की श्रेणी में लाएंगे, और यदि वो दो दिन भी चल जाती है तो सरकार की तरफ से उसमें एक रेड अलर्ट बन जाता है कि इससे जान और माल का, इंसान और जानवरों का, सबका नुकसान होने का डर बन जाएगा।
0: बहुत सही कहा डॉक्टर साहब आपने। और जैसे आपने पसीने के बारे में बताया, हमारे शरीर को ठंडा करने की प्रक्रिया में पसीना बड़ा महत्वपूर्ण है। अब हमें समझ में आ रहा है कि 35 डिग्री, 40 डिग्री, 45 डिग्री, ये सब एक अलग अलग मापदंड है जिसमें हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए किस किस ढंग से काम करना पड़ता है। तो अब हम मैं जानना चाहूंगी कि ये जो गर्मी है इसका क्या क्या असर शरीर में किस ढंग से होता है जैसे जैसे तापक्रम बढ़ता है।
1: गर्मी के कारण असर जो साधारण इंसान को

0: चाहे वो बच्चा हो चाहे वो बड़ा हो, अगर तापमान 37 डिग्री वातावरण का या उससे ज़्यादा होता है इस समय की ह्यूमिडिटी के मुताबिक भी, तो उसको बढ़ते क्रम में देखा जाए तो चार किस्म की परेशानियां प्रायः देखने में आती हैं
1: जी।
0: चलिए उनको एक एक करके करते हैं। ये जो तापमान मैं बात कर रहा हूँ ये वातावरण के तापमान की बात कर रहा हूँ, इंसान के तापमान की बात नहीं कर रहा हूँ।
1: जी जी जी।
0: अगर सबसे पहला है जो सिर्फ चमड़ी में ही उसका असर दिखे, जैसे घमौरी बन जाना, घमौरी बच्चों में या बड़ों में, बच्चों में थोड़ा ज्यादा होने की संभावना होती है लेकिन बड़ों में भी होती है, और ये जिनको गर्मी की कम आदत होती है उनमें शुरुआत में ज्यादा होती है, और वो घमौरी के कारण खुजली होना या उससे परेशानी होना, उसको वो हो सकती है परेशानी, और उसके इलाज के बारे में हम फिर आगे बात करते हैं। दूसरी परेशानी जो देखने में आती है कि गर्मी की स्थिति में जब बाहर का तापमान ज्यादा होता है तो अचानक क्रैम्प्स या मोच टाइप का आना मांसपेशियों में, चाहे वो छाती की मांसपेशियों में हो, चाहे वो पांव की मांसपेशियों में हो या हाथ की मांसपेशियों में खिंचाव या क्रैम्प्स आना, जो कुछ मिनटों तक काफी दर्द दे सकते हैं लेकिन उसके बाद फिर ठीक हो जाते हैं। ये आमतौर पर नमक की कमी साथ में पानी की कमी होने के अलावा उसकी वजह से होते हैं। और तीसरा जो बहुत ज्यादा संख्या में आजकल देखने में भी आ रहा है वो होता है कि यदि आपको लू लगना टाइप का, जिसको हम बोलते हैं या अंग्रेजी में उसको हीट एग्जॉशन, जिसके अगर आप देखें तो मुख्य लक्षण ये होते हैं कि आपको उसमें सर दर्द चालू हो जाता है, जो कि सिर दर्द होना या साथ में मतासी लगना, उल्टी होने की स्थिति बनना, और साथ में एक अजीब किस्म की भयंकर कमजोरी शरीर में, आपका हाथ उठाने का मन नहीं कर रहा, या ये सिर्फ चिड़चिड़ापन नहीं कमजोरी होना, इन तीनों लक्षणों में से कोई भी हो या तीनों हो, ये तीनों चीजें मिलकर हम कहेंगे कि वो लू लगने के लक्षण हैं, इसका इलाज बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये चौथी श्रेणी में बदल सकता है जिसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं, या गर्मी के कारण कोई व्यक्ति जब बेहोश हो जाता है या उसको झटके आने लग जाए या उसका पसीना आना बंद हो जाए और शरीर का तापमान भी, वातावरण का नहीं शरीर का तापमान भी 40 डिग्री सेल्सियस या 104 के ऊपर चले जाए, उसको हम हीट स्ट्रोक बोलते हैं। खतरे की बात यह है कि उसमें 50% से ज्यादा संभावना है मृत्यु का
1: जी।
0: अगर किसी को हीट स्ट्रोक हो जाए तो, और ये परिस्थिति किसी को भी हो सकती है, ऐसा नहीं कि जिसको आदत नहीं है, जिसको सिर्फ पहली बार ही गर्मी में आ रहा हो, कोई बाहर से आया है उसको हो जाए, ऐसा नहीं है, ये किसी को भी हो सकता है। और इसके अतिरिक्त कुछ विशेष समूह होते हैं जिनमें ये परेशानी, ये जो लक्षण मैंने बताए, ये जो परेशानी बताई, ये ज्यादा होने की स्थिति है, खासतौर पर हीट स्ट्रोक की, वृद्ध लोग जो हैं, जो उम्र के 70 साल के ऊपर वाले हैं, या वो किसी और किस्म की दवाइयां ले रहे हैं, जैसे बीपी की दवाइयां ले रहे हैं या शक्कर की बीमारी की दवाइयां, शुगर की दवा ले रहे हैं, या उनको कोई गठिया रोग की दवा है चल रही है, उन लोगों में ये हीट स्ट्रोक या लू लगने की खतरा कहीं ज्यादा होता है। उसी तरीके से हम देखते हैं कि जो नवजात बच्चे होते हैं जिनका शरीर तो बिल्कुल ना जैसे रेत की तरह होता है, तो जरा सा भी गर्मी होती है तो उनको शरीर गर्म हो सकता है, जिसके कारण उनको झटके लगना और मृत्यु हो जाना भी हो सकता है। उसके लिए तो रोकथाम की बातें जरूरी होंगी ही।
1: बिल्कुल बिल्कुल।
0: और साथ में मैं कहूंगा गर्भवती महिलाओं को ये भी विशेष रूप से इसका खतरा बनता है।
1: तो ये तो आपने बहुत विस्तार से बताया कि कौन कौन लोग इस संदर्भ में ज्यादा संवेदनशील हैं, जिनको हमें इस स्थितियों से बचाना है। अब जैसे आपने पहले कहा कि त्वचा पर जो प्रभाव पड़ता है घमौरी का, उसके लिए सामान्य रूप से किस तरह का उपचार करना चाहिए, या लू लगने तक की बात हम अभी कर सकते हैं, प्राथमिक उपचार की यदि हम बात करते हैं, तो इन सब स्थितियों में कुछ तो है जहां पर हम उसे लक्षणों के बाद जो नियंत्रण करने के उपाय हैं जो घर पे किए जा सकते हैं, तो उनके बारे में हम छोटी सी एक चर्चा आपसे चाहेंगे।
0: तो सबसे अच्छा तरीका है कि शरीर की चमड़ी को ठंडा रखा जाए
1: जी।
0: चाहे पानी से धोकर त्वचा को थोड़ा ठंडक लगे
1: जी।
0: तो कुछ समय के साथ वो ठीक हो जाएगी। कई बार थोड़ा सा खुजली की दवा भी लेनी पड़ जाती है। ये जो घमौरी के लक्षण तो कुछ दिनों में निबट जाएंगे
1: जी।
0: क्रैम्प्स के लिए, खिंचाव की परेशानी, उसके लिए तो आप जो खाना पूरा खाएं कोई काम करने के लिए, या साथ में उसमें खाने में नमक, खासतौर पे जो पोटेशियम वाला नमक है उसके युक्त जो फल हैं, जैसे बेल है, आम है, आम पना, केला है, ये चीजों से हमें नमक मिलेगा, जिसके कारण क्रैम्प्स की परेशानी कम होगी। जो सबसे ज्यादा देखने में संख्या में आते हैं, जैसे लू लगने की जो परेशानी है उसको दूर करने के लिए तो सबसे जरूरी चीज होगी कि व्यक्ति को उस समय जिस परिस्थिति में उसको लू लग रही है, गर्मी की स्थिति में, उससे दूर करके धूप में है तो छांव में आना, छांव है तो, और ठंडक जगह वाली जगह पे जहां पंखा या कूलर की व्यवस्था हो, और पानी की कमी जो है उसको दूर किया जाए, ठंडा पानी या और किस्म के तरल पदार्थ लेने से, बहुत शक्कर वाले ना लें, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेंगे जी, जी. तो वो नुकसान करेंगे क्योंकि उसमें नमक नहीं है, उसमें सिर्फ शुगर है जिससे पानी की कमी बल्कि बढ़ जाएगी.
1: जी जी.
0: तो नमक और शक्कर के जो घोल हैं, जैसे ORS कहिए या आम पन्ना, या खाना खाइए और सादा पानी पीजिए, भात दाल की खिचड़ी हो उस टाइप की चीजें खाएं इसके मदद के लिए. और साथ में ठंडक की व्यवस्था चमड़ी पे करना और साथ में आराम करना हवादार जगह पर, ये जरूरी होगा. और कपड़े अगर गर्म किस्म के पहने हुए हैं या तो उसको हटाना और पसीने को सुखाना की व्यवस्था करना.
1: जी, तो बहुत ही सही ढंग से ये बात हमारे श्रोताओं तक पहुंच रही है कि पहले तो आपको गर्मी से बचना है किसी भी तरीके से, लेकिन मजबूरी होती है, गर्मी में बाहर निकलना पड़ता है. और उस समय यदि स्थिति आती है कि आपको लगने लगे कि चक्कर आ रहा है, लू, सिर दर्द हो रहा है, जैसे जो लक्षण आपने बताए उसमें से कोई भी लक्षण आए, तो हमें इन सब चीजों का तुरंत छाया में जाना है, अपने शरीर को ठंडा करना है. और ऐसे पेय पदार्थ जिनमें नमक हमें मिल सके, चाहे नींबू की शिकंजी हो, आम का पन्ना हो, मठा हो, जो भी हो, ये सारी चीजें में फायदा करेंगी. तो उसका उपयोग करके सामान्य प्राथमिक उपचार में हम ये सारी बातें कर सकते हैं. अब जो हीट स्ट्रोक, जिसके बारे में आपने बड़ी गंभीरता से बताया कि जानलेवा एक स्थिति बन जाती है लू लगने के बाद, यदि हीट स्ट्रोक वाली स्थिति आती है, तो मैं समझना चाहूंगी कि क्या होता है उस समय शरीर में.
0: जब हमारे शरीर का की गर्मी को बाहर फेंकने का जो नियंत्रण जो जो तकनीक होती है, जब वो विफल हो जाए
1: जी
0: या फेल हो जाए, तो उस समय शरीर के अंदर गर्मी जो है वो सीधा मस्तिष्क और हमारे गुर्दों पर असर डालती है. मस्तिष्क पर असर डालती है तो उसके कारण बेहोश हो जाना या मिर्गी के टाइप के झटके आना, सांस लेने में परेशानी हो जाना, ये तीनों चीजें मस्तिष्क के असर के कारण होते हैं. गुर्दे में असर पड़ता है तो पेशाब ना होना
1: जी,
0: ये हो जाएगा. और इसके कारण तीसरा, कई बार उसमें ज्यादा शरीर से खून बह जाना, जैसे नाक से खून बह जाना, मुंह से खून बह जाना, ये ऐसा भी हो सकता है. और ये इस कारण होता है क्योंकि जो सबसे हमारा कारगर तरीका, जिसमें हमने पहले बात करी कि पसीना ना आना और पसीना ना सूख पाना, इसके कारण होता है. तो उसके लिए ये बात हमको ध्यान में करना है कि यदि कोई भी व्यक्ति अगर उसकी बेहोशी की तरफ जा रहा है तो उसको तुरंत पहचान करना, ताकि ऐसे तरीके जिससे अचानक तापमान को नीचे लाया जाए.
1: जी.
0: इस हीट स्ट्रोक में बाकी परेशानियों के अतिरिक्त ये होता है कि साथ में शरीर का तापमान भी 40 डिग्री या उससे ऊपर हो जाता है. उसमें पैरासिटामोल जैसी दवाइयां वो नहीं काम करेंगी.
1: अच्छा.
0: सिर्फ एक ही तरीका है, जो फिजिकल तरीका, जिससे शरीर में ठंडा पानी लगाया जाए या बर्फ लगाई जाए और साथ में पंखा चलाया जाए, ताकि वो पानी सूखे तो उससे फिर वो ठंडक होगी. क्योंकि ये व्यक्ति बेहोश है तो इसमें आप इसको कोई ठंडा पानी पिला भी नहीं सकते हैं. तो कई बार हम ऐसे अस्पतालों में इसको भर्ती करना पड़ेगा जिसमें ठंडा सलाइन IV ग्लूकोज की तरह उसको लगाया जाए, जिससे शरीर के अंदर की जो गर्मी है उसको मारा जाए और ये उम्मीद की जाए कि वो बेहोशी से और वो झटकों से वो व्यक्ति कुछ घंटों में, जब तापमान गिर जाए बर्फ की लगाने से या ठंडक पानी की छिड़काव से और साथ में पंखा चल रहा हो तो, और सूखने से तापमान गिर जाए, नहीं तो 50% लोग मर सकते हैं इससे.
1: बाप रे, जागरूकता और ये जानकारी बहुत जरूरी है कि हम इस चीज को समझ सकें. अभी तक हमको लगता है कि शरीर गर्म हो रहा है, बुखार है, तो हम पैरासिटामोल दे देंगे, वो ठीक हो जाएगा. लेकिन यदि हीट स्ट्रोक से हमारे शरीर में गर्मी चढ़ रही है तो उसके लिए कोई उपाय काम नहीं करेंगे. डॉक्टर साहब, बहुत ही सही और जरूरी जानकारी आज आपके माध्यम से हमारे श्रोताओं को मिल रही है. ये स्थिति में आने के बाद भी एक रिवर्सिबल कंडीशन है, जैसा आप बता रहे हैं कि हम यदि सही समय पर चिकित्सकीय सलाह ले लें या ऐसी जगह पहुंच जाएं जहां पर कि उस व्यक्ति को सही उपचार मिल सके, तो उसकी जान को बचाया जा सकता, अन्यथा ये बहुत ही कठिन है. और छोटे बच्चों के लिए, जैसे आपने बताया कि इनका शरीर रेत के जैसे होता है, तो मैं उन माताओं के लिए आपकी तरफ से, उन्हें कैसे अपने छोटे बच्चों का ध्यान रखना चाहिए जो बच्चे इस गर्मी में, इस भीषण गर्मी में पैदा हो रहे हैं?
0: प्रायः हम सबसे ज्यादा चिंता करते हैं कि बच्चे ठंडे ना हो जाएं.
1: जी,
0: आजकल के दिनों में जो बच्चे जन्म ले रहे हैं उसमें जो बच्चे कमजोर भी हैं या पूरे वजन के साथ भी आए हैं, उनको ये खतरा है कि उनका जो शरीर है दिन के तापमान बढ़ने से, और ख़ास तौर पे यदि ठंडक की व्यवस्था उनके रहने की जगह पे नहीं है तो उनका शरीर तप सकता है, जैसे रेत वैसे तप सकता है. और इस समय अगर कोई भी बच्चे का शरीर गर्म महसूस होता है छूने से भी, तो उसका सिर्फ एक ही कारण हो सकता है कि वो आजकल के वातावरण के गर्मी के कारण ही है, ना कि कोई बीमारी. यदि घर में कोई एक कूलर भी है, तो अगर कोई नया बच्चा है तो माँ और बच्चा को उस कूलर में प्राथमिकता मिलनी चाहिए. और यदि आपके पास व्यवस्था कूलर की नहीं है तो दोनों तरफ गीली चादरें बच्चे के बिस्तरे के लगा दी जाएं ताकि हवा जो जाए वो ठंडक की

0: स्थिति पैदा करे
1: जी जी
0: ताकि
1: जी.
0: बच्चों को इस समय ठंडा रखा जाए, और यदि बच्चा फिर भी गर्म रहता है आपकी पूरी मेहनत के बाद, तो उसके बाद आपको बच्चे को तुरंत अस्पताल, वो भी इसमें भी करना पड़ेगा,
1: क्योंकि आने वाली स्थितियां थोड़ी सी कठिन होने जा रही हैं. पिछले 100 सालों में जो कुछ नहीं हुआ है, ऐसी कुछ जलवायु से संबंधित घटनाएं अभी हो रही हैं, इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो गर्मी इस साल पड़ने वाली है वो थोड़ी और भयावह होने वाली है, जिसमें जिन लोगों के पास रिसोर्सेस नहीं है, संसाधन नहीं है, उनके लिए तो बहुत कठिन समय है. तो क्या है वो स्थितियां और क्या समाधान हम अपने स्तर पर कर सकते हैं?
0: तो मई और जून जो कि कम आर्द्रता वाले महीने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, और उसके बाद भी जो अगले 2 महीने जुलाई और अगस्त गर्मी तो शायद रहे, थोड़ा सा कम तापमान रहे, लेकिन उस समय ह्यूमिडिटी तो ज्यादा होगी, तो उस समय कम तापमान पर भी नुकसान गर्मी का होगा. इसके लिए मैं रोकथाम के 3 या 4 तरीके बताना चाहूंगा. यदि आपको ये सोचें कि सिर्फ प्यास हो तभी पानी पिए, तो ये मुझे लगता है कि ये एक अच्छा तरीका नहीं है. आपको पानी नियमित रूप से, मेरा सुझाव है कि हर घंटे अगर हर वयस्क एक गिलास पी पाए, ताकि आप नापो कैसे कि आपका पेशाब पानी की तरह आए. यदि आपका पीला पेशाब कोई भी समय आता है, इसका मतलब आपके शरीर में पानी जितना होना चाहिए उससे कम है. दूसरा साथ में है कि आप जो भी कोई काम पे निकलें, चाहे वो खेती का काम हो, चाहे मजदूरी का काम हो, चाहे वो दफ्तर वाला काम हो या और कोई बाजार वाला काम हो, तो उसमें खा पी के निकलें. खाली पेट निकलने से आपके शरीर में नमक की कमी होने की संभावना है, साथ में पानी जो खाने के साथ लेते हैं वो भी कम होगा, और उसमें ऐसी पदार्थों का ज्यादा सेवन करें जिसमें नमक और शक्कर दोनों ज्यादा हो, जैसे आम पना या छाछ जो है. पानी कम से कम हम सब लोग, वयस्क लोग, कम से कम 3 से 4 लीटर प्रतिदिन व्यक्ति तो ले ही. जब भी कोई काम से घर के बाहर निकलें, चाहे खेती के लिए निकलें, चाहे मजदूरी के लिए निकलें, चाहे कोई और काम के लिए, तो साथ में पानी की एक बोतल ही लेके साथ चलें. इसके अतिरिक्त ये जरूरी होगा कि आप कुछ अपना शरीर को ढकें और सीधी गर्मी, सीधी धूप में ना रहें, जैसे गमछा या छतरी उपयोग तो करना ही चाहिए. बाकी व्यवस्था जो सरकार को, समाज को करनी है, वो तो हम आगे सोचते हैं.
1: हाँ बिल्कुल, और वो रोकथाम के बहुत सारे उपाय प्रशासन की ओर से भी होने चाहिए. ये जो प्रशासनिक उपायों की बात है जो हो रहे हैं, अभी कुछ तो है कि हमने स्कूल बंद कर दिए, हम बहुत सारे उपाय करने की कोशिश कर रहे हैं, आपको क्या लगता है कि और सार्थक रूप से इस गर्मी से बचने के लिए क्या उपाय प्रशासन के द्वारा होने चाहिए?
0: गर्मी की परिस्थिति में जो लोग काम करते हैं उनके जीवन की सुरक्षा की जाए, और साथ में पानी की किल्लत है उसको कम किया जाए. कई सारे प्रशासनिक अमलों में ऐसे काम जो रोक सकते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम, निर्माण का काम होता है, उसको रोका जाता है, ताकि जो लोग उसमें जुड़े हैं उनको भी नुकसान ना हो, और साथ में पानी की जो ज़्यादा उपयोग होता है निर्माण के काम में, उससे भी बचाव मिल सके. लेकिन उसमें ये ज़रूरी है कि जिन लोगों की रोजी काम पर निर्भर है, वो उसकी भी भरपाई सामाजिक रूप से सरकार करे. बहुत सारे लोग हमारे बाजार पर निर्भर हैं, उनकी आजीविका बाजार पर निर्भर है, तो उनके लिए भी आपको बाजार का समय भी और दफ्तरों का समय भी आपको बदलने की ज़रूरत होगी. जो हमारे किसान भाई हैं, बहनें हैं, वो तो खेती का काम भी सुबह सूरज ऊपर चढ़ने से पहले ही खत्म कर लेते हैं, और उसके बाद कुछ आराम के बाद फिर वो बाकी काम दिन के अंत में करते हैं. जो बस स्टैंड हैं, रेलवे के स्टेशन हैं, और कई प्रतीक्षालय जगह हैं, या लाइब्रेरियां हैं, या शैक्षणिक संस्थाएं हैं, या अस्पताल भी हैं, वहां कितनी व्यवस्थाएं हैं.
1: इस स्थिति में परिस्थितियां जब ऐसी बदल रही हैं और हम एक बड़ी समस्या की तरफ अग्रसर हैं, उस समय इस कार्यक्रम के माध्यम से हम भी प्रशासन से यही अनुरोध करेंगे कि ये तैयारियां हमें पहले से कर लेनी चाहिए. अभी से ही हम सबको व्यक्तिगत रूप से, सामाजिक रूप से, प्रशासनिक रूप से इस समस्या के लिए तैयार होना चाहिए, और यदि हम पीड़ित हैं तो उसके संदर्भ में भी जागरूक होना चाहिए. बहुत ही जागरूकता लाने वाली जानकारी आज अपने हमारे श्रोताओं को इस कार्यक्रम के माध्यम से दी है. और चलते चलते आप हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे इन सब बातों को समेटते हुए?
0: मुझे लगता है कि अभी हमारे लिए ये काफ़ी मुश्किल का दौर है. 2026 में एक और नई आपदा भी है जिसकी संभावना आने की तकरीबन 50% तो है. एक एल नीनो टाइप का जलवायु का एक परिवर्तन का एक रूप है, जिसकी वजह से अगले कुछ महीनों में, शायद 1 साल तक भी, ये हो सकता है कि गर्मी अप्रत्याशित रूप से बढ़े. ये संभावना काफ़ी प्रबल है, 100% नहीं लेकिन अभी 50% के करीब इसकी संभावना है, जिसकी वजह से जो ये पर्यावरण का जो नुकसान हम पिछले कई सालों से देख रहे हैं हर गर्मी में, वो शायद और विकराल रूप ले ले. तो उसके लिए हमको व्यवस्था बनानी ही पड़ेगी, इसमें रोकथाम के तरीके से जो आज हमने कुछ बातें करी वो, लेकिन अगर स्थिति बिगड़ती है, किसी को बीमारी

0: होती है गर्मी के कारण, तो उसके लिए हमारी तैयारी रहे अस्पताल के स्तर पे और अपने घरों के स्तर पे, ताकि उसको हम निपट पाएं। ये उम्मीद करते हैं कि इस गर्मी को और अगली गर्मियों को हम
1: झेल पाएंगे और स्वस्थ रहेंगे। बहुत ही सही, और मैं भी यही अपेक्षा करती हूँ कि आज की ये जानकारी बड़ी सार्थक रही। इस भेंटवार्ता के माध्यम से जो भी जानकारी हम तक पहुँची है, उसका हमें आने वाले समय में बड़ा उपयोग रहेगा, और हम निश्चित तौर पर उन बातों पर व्यक्तिगत स्तर पर तो अमल करेंगे, और जहाँ तक ये जानकारी जा रही है, हमारे श्रोताओं से भी ये अनुरोध रहेगा कि अपने आप को सुरक्षित रखिए, बचा के रखिए। कोई भी ऐसे कोई लक्षण दिखते हों गर्मी के, हीट स्ट्रोक के या लू के, तो तुरंत उससे बचने का उपाय करिए, उसमें बिल्कुल भी विलंब न करिए, और घर के बच्चों को, बुजुर्गों को, पशु पक्षियों को, सबको जितना हो सके हर संभव इस तकलीफ से बचा के रखें, और इस गर्मी को कुछ आसान बनाने की कोशिश हम सब करें। डॉक्टर साहब यहाँ आए, आपने इतनी अच्छी जानकारी हमारे श्रोताओं को दी, उसके लिए शुक्रिया, धन्यवाद।
0: शुक्रिया।

0: भीषण गर्मी में लू और हीट स्ट्रोक से बचें और सुरक्षित रहें। इस विषय पर आपने सुनी जानकारी डॉक्टर योगेश जैन से अमृत धारा कार्यक्रम में। भेंटकर्ता और कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: कृपया कार्यक्रम संबंधी एक सूचना सुनिए। प्रत्येक गुरुवार और शुक्रवार को शाम 7:30 से फोन इन पर आधारित कार्यक्रम प्रसारित किया जाता है। इसमें किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपने स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के समाधान पाने के लिए विशेषज्ञों से फोन पर सवाल पूछकर समाधान पाते हैं। इसी कड़ी में गुरुवार 7 मई 2026 को स्टूडियो में कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी उपस्थित रहेंगे। इनसे सुबह 10:30 से

0: 11 बजे तक सवाल पूछने के लिए विषय होगा धान फसलों में रोग प्रतिरोधक किस्मों का चुनाव और नर्सरी प्रबंधन। और सुबह 11 बजे से 11:30 तक का विषय होगा खरीफ फसलों में बीजोपचार की विधियां, महत्व और सावधानियां। इन विषयों से संबंधित समस्याओं और जिज्ञासाओं का समाधान पाने के लिए हमारा फोन नंबर है 266-592। फोन लगाने से पहले बिलासपुर का एसटीडी कोड 07752 अवश्य लगाएं। इन कार्यक्रमों की रिकॉर्डिंग का प्रसारण 7 मई और 8 मई 2026 को शाम 7:30 से रात्रि 8 बजे तक आप सुन सकते हैं। सूचना समाप्त हुई।
1: ऑडियो विजुअल और मीडिया में रुचि रखने वालों के लिए एक अच्छी खबर, अब मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप। मुंबई में विगत दिनों संपन्न वर्ल्ड ऑडियो एंड विजुअल समिट वेव्स के बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा 26 भाषाओं में जारी किया गया है वेव्स ऐप, जिसमें उपलब्ध हैं फिल्में, भारतीय संस्कृति की जानकारी, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, सोप ओपेरास, सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रम उपलब्ध हैं वेव्स ऐप। आज ही डाउनलोड करें वेव्स ऐप और बढ़ाइए मीडिया से संबंधित अपना ज्ञान। ज्ञान का भंडार है, संभावनाएं अपार हैं। मोबाइल और टीवी में डाउनलोड करें वेव्स ऐप।
0: एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से बोल रहे हैं। इस समय संध्या के 5:35 होने को हैं। कुछ ही पलों में हम प्रस्तुत करेंगे महिला बहनों का पसंदीदा कार्यक्रम महिला सभा। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। संध्या के 5:35 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम महिला सभा।

कार्यक्रम महिला सभा सुनने वाली सभी श्रोता सखियों को आपकी रेडियो सखी प्रभा कश्यप का प्यार भरा नमस्कार, जय जोहार। सखियों, आप सभी कैसी हैं? हमारी आशा तो यही है कि हमारी सभी सखियां स्वस्थ और मनमस्त होंगी, और अभी शाम के वक्त दिनचर्या के कार्यों से थोड़ा रिलैक्स होकर आकाशवाणी के कार्यक्रमों का आनंद ले रही होंगी। सखियों, आकाशवाणी के कार्यक्रमों के माध्यम से हम आपके लिए ढेर सारी जानकारियां मनोरंजन लेकर आते हैं और समय समय पर स्वास्थ्य से जुड़ी बातें भी लेकर आते हैं स्वास्थ्य की जागरूकता के लिए। और सखियों, अगर हम अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहेंगे तो हम कई प्रकार के रोगों से बच सकते हैं। और सखियों, हम आपको बताना चाहेंगे कि मई माह के प्रथम मंगलवार को प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मनाया जाता है, और इस वर्ष यह दिवस आज यानी 5 मई को मनाया जा रहा है। और सखियों, इस दिवस को मनाने का यही उद्देश्य है कि हम सभी अस्थमा के बारे में जानें और जागरूक रहें और दूसरों को भी जागरूक करें। सखियों, अस्थमा एक सांस की बीमारी है जिसमें सांस की नलियां सक्रिय हो जाती हैं, जिससे सांस लेने में कठिनाई होती है। सखियों, अस्थमा के मुख्य लक्षण होते हैं बार बार खांसी आना, सांस फूलना, सीने में जकड़न, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज। अगर ये लक्षण बार बार दिखे तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें और सलाह में देर बिल्कुल ना करें। सखियों, अस्थमा होने के कारण हैं

0: धूल प्रदूषण, धुआं, ठंडी हवा, ज्यादा तनाव, एलर्जी और कभी कभी यह अनुवांशिक भी होता है। सेक्यू अस्थमा पूरी तरह से खत्म नहीं होता, लेकिन सही इलाज और सावधानी से इसे कंट्रोल किया जा सकता है और व्यक्ति सामान्य जीवन जी सकता है। अस्थमा से बचाव के लिए बहुत आवश्यक है धूल और प्रदूषण से बचे, धूम्रपान से दूर रहें, घर को और घर के आसपास साफ सफाई रखें, नियमित व्यायाम और योग करें, ठंडी चीजों से बचें और डॉक्टर द्वारा दी गई सलाह और दवाइयों का समय अनुसार सेवन करें। सखियों, अस्थमा बीमारी से डरना नहीं है बल्कि इसे समझकर सही तरीके से संभालना है। स्वस्थ जीवन शैली अपनाकर हम इसे नियंत्रण में रख सकते हैं। सखियों, समय पर इलाज और सही जानकारी सबसे बड़ा बचाव है और यह तभी हो सकता है जब हम जागरूक होंगे।
1: किसान साथियों, इफको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत।
0: सखियो, सखियो, अब आइए चलते हैं आज के क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति की ओर। और आज के क्रम का विषय है बढ़ते तापमान का पर्यावरण पर हो रहा असर और उसके समाधान। और इस विषय की जानकारी दे रही हैं गुरु घासीदास विश्वविद्यालय की अतिथि शिक्षिका डॉक्टर पूनम खेस।
2: आप सभी बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मेरा नाम डॉक्टर पूनम खेस है। मैं अतिथि शिक्षक के रूप में गुरु घासीदास विश्वविद्यालय के वानिकी एवं पर्यावरण विभाग में पदस्थ हूँ। और बहनों, आज मैं एक बहुत ही अहम बिंदु पर आप सभी के साथ अपने विचार साझा करने जा रही हूँ, जिसका विषय है बढ़ते तापमान का पर्यावरण पर हो रहा असर और उसके समाधान। बदलते मौसम और बढ़ती गर्मी हमारे जीवन और प्रकृति दोनों को प्रभावित कर रही हैं। औद्योगिकरण, वाहनों से निकलने वाला धुआं, जंगलों की कटाई और ऊर्जा का अत्यधिक उपयोग, ये सब ग्रीन हाउस गैसों को बढ़ाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी गैसें वातावरण में गर्मी को रोक लेती हैं, जिससे धरती का टेम्परेचर लगातार बढ़ रहा है। आइए इन्हें विस्तार से समझते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट एक नेचुरल प्रोसेस है जिसमें सूर्य की किरणें धरती पर आती हैं, कुछ जो हैं एब्जॉर्ब हो जाती हैं और कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती हैं, जिससे वायुमंडल और सतह का तापमान बना रहता है। आइए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। जब घर की कांच वाली खिड़की बंद रहती है और सूरज की रोशनी अंदर आती है तो गर्मी बाहर नहीं निकल पाती। ठीक इसी तरह ग्रीन हाउस गैसें अर्थ के चारों ओर गर्मी को फंसाती है। इस प्रक्रिया के मुख्य घटक हैं वाटर वेपर्स, कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड और कुछ मानव निर्मित गैसें। वर्तमान में कार्बन डाइऑक्साइड को तापमान वृद्धि का प्रमुख चालक माना जाता है। मानव गतिविधियों जैसे फॉसिल फ्यूल खनन और वनों की कटाई से इन गैसों की मात्रा बढ़ने पर यह प्रभाव तीव्र हो गया है और वैश्विक तापमान बढ़ रहा है। अब ग्रीन हाउस गैसों के कारण टेम्परेचर पहले से और अधिक बढ़ चुका है, जिसके कारण इल नीनो जैसी घटनाएं अधिक तेज हो रही हैं और बार बार हो सकती हैं। अब ये इल नीनो क्या है? यह एक प्राकृतिक इंसिडेंट है जो दुनिया भर के मौसम को प्रभावित करती है। आमतौर पर प्रशांत महासागर के ऊपर चलने वाली हवाएं यानी कि ट्रेड विंड्स दक्षिण अमेरिका से ऑस्ट्रेलिया की ओर चलती है। ये हवाएं समुद्र की सतह पर मौजूद गर्म पानी को साथ बहाकर पश्चिम की तरफ ले जाती है। इस वजह से दक्षिण अमेरिका के तट के पास नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाता है। इसे हम इल नीनो इफेक्ट कहते हैं। ग्रीन हाउस इफेक्ट और इल नीनो इफेक्ट दोनों मिलकर हीट वेव, असामान्य वर्षा पैटर्न, फसल तनाव और जल संकट जैसे चरम घटनाओं की संभावना बढ़ा देते हैं, जिससे शहरों, गांव और कृषि क्षेत्रों में व्यापक प्रभाव पड़ रहा है। आइए जानते हैं बढ़ते तापमान का पर्यावरण पर क्या असर हो रहा है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण गर्मी की लहरें न केवल अधिक बार आ रही हैं, बल्कि उनकी तीव्रता और अवधि में भी बढ़ाव देखा गया है। इसका अर्थ यह है कि तापमान कुछ घंटों या दिनों के लिए नहीं, बल्कि कई दिनों से हफ्तों तक खतरनाक स्तर पर बना रह सकता है। ऐसे हालात में वृद्ध, बच्चे और पहले

से बीमार लोग हीट स्ट्रोक, डिहाइड्रेशन और हृदय संबंधी समस्याओं के अधिक शिकार होते हैं। कृषि पर भी इसका सीधा प्रभाव पड़ता है। फसलें फूलने और फलने के संवेदनशील चरणों में अत्यधिक गर्मी सहन नहीं कर पाती, जिसके कारण पैदावार घटती है और किसानों की आय प्रभावित होती है। शहरी क्षेत्रों में कंस्ट्रक्शन की वजह से भी तापमान और बढ़ रहा है। इसे शहरी हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं, जिससे बिजली की मांग बढ़ती है।

वजह से भी तापमान और बढ़ रहा है। इसे शहरी हीट आइलैंड प्रभाव कहते हैं, जिससे बिजली की मांग बढ़ती है और बिजली कटौती का जोखिम बढ़ता है। हिमालय और अन्य पर्वतीय क्षेत्रों में ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं, जिससे नदियों के प्रवाह में अस्थिरता आ रही है। प्रारंभिक वर्षों में देखा गया है कि ग्लेशियर्स पिघलने से नदियों में प्रवाह बढ़ सकता है, पर दीर्घकाल में ग्लेशियर भंडार घटने से शीतकाल और गर्मियां दोनों में पानी की उपलब्धता कम हो सकती है। इसका असर सिंचाई, पेयजल आपूर्ति और जल विद्युत प्रोजेक्ट्स पर पड़ेगा। साथ ही ग्लेशियरों के पास बने तालों का अचानक फटना बाढ़ और भूखस्खलन जैसे आपदाओं का कारण बन सकता है, जो पहाड़ी और तलहटी दोनों क्षेत्रों के लिए खतरनाक है। बढ़ता तापमान और अस्थिरता मौसम कृषि को कई तरह से प्रभावित करते हैं। सूखा और अनियमित वर्षा के कारण खेतों में नमी की कमी या अचानक जल भराव दोनों समस्याएं देखने को मिलती हैं। उच्च तापमान से मिट्टी की नमी जल्दी उड़ जाती है, कीट रोगों का प्रसार बढ़ता है और फसल के विकास चक्र प्रभावित होते हैं। नतीजा यह होता है कि पैदावार घटती है और खाद सुरक्षा पर दबाव बढ़ता है। छोटे और सीमित संसाधन वाले किसान सबसे अधिक प्रभावित होते हैं, क्योंकि उनके पास सिंचाई, बीमा या वैकल्पिक फसल विकल्प सीमित होते हैं। तापमान में वृद्धि से जैव विविधता की गंभीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं। कई प्रजातियां अपने पारंपरिक आवासों में टिक नहीं पाती, कुछ ऊंचाई की ओर पलायन करती हैं, कुछ समुद्री जीवन के लिए अनुकूल क्षेत्रों की ओर बढ़ती हैं और कई ऐसी प्रजातियां हैं जो अनुकूल नहीं कर पाती और संकटग्रस्त हो जाती हैं। जलीय पारिस्थितिक तंत्र में समुद्री हीट वेव्स, कोरल ब्लीचिंग और मछली संसाधनों में गिरावट का कारण बन सकती हैं। भूमि पर पेड़ पौधों के फूलने और फलने के समय में बदलाव से परागण चक्र प्रभावित होते हैं, जिसे परागण करने वाले कीट और पक्षियों के साथ पारस्परिक संबंध टूट सकते हैं। इन सभी परिवर्तनों का समग्र प्रभाव पारिस्थितिक संतुलन और मानव जीवन पर दीर्घकालिक दबाव के रूप में सामने आता है। वैश्विक तापमान हाल फिलहाल गत वर्षों में तेजी से बढ़ रहा है। 2015 से 2024 दशक अब तक सबसे गर्म दशक रहा है और 2024-25 में वैश्विक औसत तापमान प्री इंडस्ट्रियल सतह से लगभग 1.3 से 1.5 डिग्री सेल्सियस ऊपर आ गया है। यह हीट भारत में हीट वेव और असामान्य वर्षा पैटर्न को तीव्र कर रहा है, जिससे सभी स्थानों पर गर्मी, फसल तनाव और जल दबाव का जोखिम बढ़ता जा रहा है। बढ़ते तापमान का असर सिर्फ मौसम पर नहीं, हमारे स्वास्थ्य और समाज पर भी गहरा पड़ रहा है। आइए समझते हैं क्या बदल रहा है और इसका सीधा असर लोगों की जिंदगी पर कैसे दिखता है। गर्मी की लहरें अब अधिक तीव्र और लंबी हो रही हैं। इसका सीधा असर लोगों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। डिहाइड्रेशन, हीट स्ट्रोक, हृदय रोग और श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। उदाहरण के तौर पर पिछले साल बिलासपुर तहसील में कई दिनों तक तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर रहा, जिससे अस्पताल में हीट स्ट्रोक के मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। ग्लेशियर के पिघलने और अनियमित वर्षा के कारण पानी की उपलब्धता घट रही है। गांव में कुएं और तालाब सूखने लगे हैं, जिससे पेयजल संकट गहराता जा रहा है। उदाहरण के लिए गर्मियों में कई गांवों में टैंकरों से पानी सप्लाई करना पड़ता है, खेती कठिन होती जा रही है, सूखा और असामान्य वर्षा के कारण फसलें प्रभावित हो रही हैं। किसान जब लगातार नुकसान झेलते हैं तो वे गांव छोड़कर शहरों की ओर पलायन करने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर छत्तीसगढ़ के कई छोटे किसान ने हाल फिलहाल में कई वर्षों से काम की तलाश में रायपुर और बिलासपुर शहर का रुख किया है। पलायन से शहरों में जनसंख्या दबाव बढ़ता है, रोजगार और आवास की समस्या गहराती है, वहीं गाँव में श्रमिकों की कमी से खेती और ग्रामीण अर्थव्यवस्था कमजोर होती है। यह एक चक्र है जो समाज के हर हिस्से को प्रभावित करता है। इस तरह बढ़ते तापमान का असर केवल प्रकृति तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे स्वास्थ्य, आजीविका और सामाजिक ढांचे पर भी सीधा दबाव डाल रहा है। आइए जानते हैं बढ़ते तापमान और जलवायु संकट का समाधान क्या है। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को बढ़ावा देना सबसे प्रभावी कदम है। उदाहरण के लिए गाँव में सामुदायिक सोलर ग्रिड लगाने से बिजली कटौती कम होती है और किसान सिंचाई के लिए सौर पंप चला सकते हैं। वृक्षारोपण केवल पेड़ लगाने तक सीमित नहीं है, यह एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सही स्थान का चयन

उपयुक्त प्रजातियों का चुनाव, यही रोपण प्रणाली और दीर्घकालिक देखभाल शामिल है। पेड़ कार्बन को अवशोषित करते हैं, स्थानीय तापमान घटाते हैं, मिट्टी और जल संरक्षण में मदद करते हैं तथा जैव विविधता के लिए आवास प्रदान करते हैं। इसलिए केवल संख्या बढ़ाना ही पर्याप्त नहीं, सही तरीके से और सामुदायिक की भागीदारी से वृक्षारोपण करना आवश्यक है। पेड़ लगाने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है खेतों के किनारे, नदियों और नालों के तट, सड़क किनारे, खाली भूखंड और सामुदायिक भूमि शामिल है। खेतों के चारों ओर एग्रोफॉरेस्ट्री अपनाने से मिट्टी की उर्वरता बनी रहती है और कटाव कम होता है। नदी किनारे बफर पट्टियां बनाकर जल गुणवत्ता और तट सुरक्षा सुधारी जा सकती है। शहरी क्षेत्रों में छांव देने वाले पेड़ और हरित गलियां शहरी हीट आइलैंड प्रभाव घटाने में मदद करती हैं और धूल व प्रदूषण कम करती हैं। प्रजातियों के चुनाव में स्थानीय या देसी पेड़ों को प्राथमिकता दें, क्योंकि वे स्थानीय जलवायु, मिट्टी और कीट रोगों के अनुकूल होते हैं। मिश्रित रोपण करें, पर्णपाती, सदाबहार और फलदार प्रजाति वाला संतुलन रखें ताकि पारिस्थितिक विविधता बनी रहे और शुरुआती छांव के लिए तेज बढ़ाने वाली प्रजातियां तथा दीर्घकालिक कार्बन भंडारण के लिए धीमी परंतु मजबूत प्रजातियां साथ हो। उपयोगी प्रजातियां जैसे नीम, पीपल, आम और जामुन स्थानीय समुदाय के लिए आय और खाद का स्रोत बन सकती हैं। रोपण की विधि सरल पर प्रभावी होनी चाहिए। साइट की तैयारी करने के लिए 60 से 90 सेंटीमीटर चौड़ा और गहरा गड्ढा खोदें। उपजाऊ मिट्टी और कंपोस्ट मिलाएं। पौधों की जड़ों को फैलाकर रखें और मिट्टी से भरकर हल्का दबाएं। रोपण के तुरंत बाद अच्छी मात्रा में पानी दें और जड़ के चारों ओर मल्चिंग की परत रखें ताकि नमी बनी रहे और खरपतवार कम उगे। शुरुआती वर्षों में नियमित पानी, प्रूनिंग और रोग नियंत्रण आवश्यक है। मृत पौधों को तुरंत बदलना चाहिए ताकि कवरेज बनी रहे। दीर्घकालिक सफलता के लिए सामुदायिक भागीदारी और संस्थागत समर्थन जरूरी है। गांव स्तर पर नर्सरी बनाकर देसी पौधों की उपलब्धता सुनिश्चित करें। स्कूलों और पंचायतों को रोपण अभियानों में शामिल करें। सामुदायिक निगरानी समूह बनाकर देखभाल की जिम्मेदारी बांटें। अंततः उद्देश्य केवल पेड़ लगाना नहीं बल्कि एक स्थायी हरित आवरण बनाना है जो जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करे, स्थानीय आजीविका को सुदृढ़ करे और आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वास्थ्य पारिस्थितिकी सुनिश्चित करे। छोटे छोटे कदम, एक दो फलदार और कुछ देसी छांव देने वाले पेड़ लगाकर उनकी देखभाल का जिम्मा समुदाय के साथ बांटकर दीर्घकाल में बढ़ावा ला सकते हैं। कचरा कम करना, पुनः उपयोग और रीसाइक्लिंग का उद्देश्य संसाधनों की बचत और प्रदूषण घटाना है। जब हम कचरा कम करते हैं और कच्चे माल और ऊर्जा की खपत घटती है, पुनः उपयोग से वस्तुओं की उपयोग आयु बढ़ती है और नई वस्तु बनाने की आवश्यकता कम होती है। रीसाइक्लिंग से कचरे को फिर से कच्चे माल में बदलकर हीट की बचत और लैंडफिल का दबाव घटता है। इन तीनों कदमों का संयोजन पर्यावरणीय प्रभाव को काफी हद तक कम कर सकता है। व्यावहारिक उदाहरण सरल और प्रभावी हैं। प्लास्टिक की थैलियों की जगह कपड़े या जूट के थैले अपनाने से प्लास्टिक कचरे में भारी कमी आती है। एक कपड़े का थैला कई सालों तक उपयोग में आ सकता है। रसोई और बगीचे के जैविक कचरे को अलग करके कंपोस्टिंग करने से न केवल कचरा घटता है बल्कि घर और खेत के लिए पोषक तत्वों से भरपूर खाद भी बनती है। प्लास्टिक, कागज, कांच और धातु को अलग अलग संग्रहित करके स्थानीय स्तर पर रीसाइक्लिंग केंद्र या सामुदायिक बिन बनाए जाने चाहिए ताकि पुनर्चक्रण की प्रक्रिया सुगम और किफायती हो। इन्हें लागू करने के लिए आसान तरीके यह हैं कि घर में कचरे को तीन हिस्सों में बांटें। सूखा कचरा जैसे कि प्लास्टिक, कागज, धातु, गीला कचरा जैसे कि रसोई का कचरा, पत्तियाँ और खतरनाक कचरा जैसे कि बैटरियाँ, दवाइयाँ। सूखे कचरे में से उपयोगी वस्तुएं पुनः उपयोग करें। पुराने कपड़ों से बैग बनाना, कांच की बोतलों को स्टोरेज के लिए रखना, जैविक कचरों का कंपोस्ट पिट या बिन बनाकर उपयोगी खाद तैयार करें। प्लास्टिक की छोटी छोटी वस्तुएं कम खरीदें और खरीदते समय पुनः रिसाइकलिंग विकल्प चुनें। सामुदायिक स्तर पर भी कई सरल कदम उठाए जा सकते हैं। पंचायत या मोहल्ले में सामूहिक रीसाइक्लिंग केंद्र स्थापित करें, स्कूलों में 3R प्रिंसिपल की शिक्षा दें और स्थानीय बाजारों में प्लास्टिक मुक्त

0: दिवस आयोजित करें। छोटे व्यवसायों को भी प्रेरित करें कि वे पैकेजिंग में पुनः प्रयोग सामग्री अपनाएं और अनावश्यक पैकेजिंग घटाएं। प्रशासनिक समर्थन से कचरा संग्रह नियम, कंपोस्टिंग सहायता और रीसाइक्लिंग लॉजिस्टिक को मजबूत किया जा सकता है। ड्रिप इरिगेशन, मल्चिंग, वर्षा जल संरक्षण और फसल विविधीकरण से पानी की बचत होती है और फसलें सुरक्षित रहती हैं। स्कूलों में जलवायु शिक्षा, पंचायतों में जागरूकता अभियान और रेडियो टीवी पर सरल संदेश लोगों तक पहुँचाना जरूरी है। जब समुदाय समझता है तो व्यवहार बदलता है। ऊर्जा बचत, पेड़ लगाना और जल संरक्षण स्वाभाविक बन जाते हैं। इन उपायों को व्यक्तिगत, सामुदायिक और नीतिगत स्तर पर अपनाकर हम जलवायु संकट का सामना कर सकते हैं। छोटे छोटे कदम मिलकर बड़ा बदलाव लाते हैं। आज से ही अपने घर, खेत और गाँव में इन उपायों को लागू करना शुरू करें। बढ़ते तापमान का असर हम सब महसूस कर सकते हैं। गर्मी की लहरें, पानी की कमी और फसलों पर दबाव हमारे रोजमर्रा के जीवन को छू रहे हैं। फिर भी उम्मीद है, यदि हम मिलकर छोटे छोटे कदम उठाएं, ऊर्जा बचाएं, पेड़ लगाएं, पानी का संरक्षण करें और नवीकरणीय ऊर्जा अपनाएं, तो हम धरती को बचाने में बड़ा योगदान दे सकते हैं। यही समय है हम व्यक्तिगत और सामुदायिक दोनों स्तरों पर जिम्मेदारी निभाएं, ताकि आने वाली पीढ़ियाँ एक सुरक्षित और समृद्ध पर्यावरण पा सकें। इसी के साथ बहनों, मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। नमस्कार।
1: सखियों, अभी आप सुन रहे थे क्रम पर्यावरण अभिव्यक्ति में डॉक्टर पूनम खेस को। विषय था बढ़ते तापमान का पर्यावरण पर असर और उसके समाधान।
2: किसान साथियों, इफको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत।
1: सखियों, अब आइए आपको ले चलते हैं संगीत की मधुर बेला में और सुनवाते हैं मैंने प्यार क्यों किया फिल्म का गीत। गीत लिखा है समीर ने, संगीत है हिमेश रेशमिया का और स्वर हैं उदित नारायण और अलका याग्निक के।

0: सखियो, तेज धूप गर्मी के मौसम में हम अपनी बगिया टेरिस गार्डन का कैसे ख्याल रखें, इस विषय पर जानकारी दे रही हैं शिक्षिका डॉक्टर रश्मि तिवारी जी।
1: नमस्कार, मैं डॉक्टर श्रीमती रश्मि तिवारी। सखियों, मई का महीना आ गया है। सूरज की तपिश न केवल हमारे लिए बल्कि हमारे उन बेजुबान पौधों के लिए भी चुनौतीपूर्ण है। हम तो घर के अंदर एसी या कूलर में रहकर इस भीषण गर्मी से राहत पा सकते हैं, लेकिन उन पौधों का क्या जो भरी दोपहर तेज धूप में हमारी बालकनी या छत पर खड़े रहते हैं। पौधे बोल नहीं सकते, लेकिन उनकी झुलसी हुई पत्तियां और मुरझाए हुए फूल ऐसे लगते हैं मानो हमसे मदद मांग रहे हो। आज मैं आपको बताऊंगी कि कैसे इस भीषण गर्मी में हम अपने पौधों को सुरक्षित और हरा भरा रख सकते हैं। तेज धूप और गर्मी से पौधों को बचाने के लिए हमें कुछ आसान लेकिन जरूरी कदम उठाने होंगे। सबसे पहले पानी देने का तरीका एवं समय याद रखें। दोपहर की कड़ी धूप में पौधों में पानी भूलकर भी न दें। पानी देने का सबसे अच्छा समय सुबह सूर्योदय के पहले और शाम सूर्यास्त के बाद का होता है। कोशिश करें कि पौधों को पानी की फुहार से नहलाएं, आपके पौधे बहुत खुश होंगे। दूसरा, अगर आपके पास टेरेस में या छत में पौधे हैं, तो कम से कम 50-75% डेंसिटी वाला ग्रीन नेट जरूर लगाएं। ऐसा करने से आपके बगीचे का तापमान 5-7 डिग्री तक कम हो जाएगा और पौधे सूर्य की सीधी धूप से सुरक्षित हो जाएंगे। ये पौधों के लिए छतरी का काम करेगा। तीसरा जरूरी काम है मल्चिंग। शब्द बहुत भारी लगता है, लेकिन बहुत ही आसान काम है। गमले की ऊपरी मिट्टी को सूखे पत्तों, नारियल के छिलकों, धान की भूसी या फिर पुआल से ढक दें। ऐसा करने से गमले की मिट्टी ठंडी रहेगी और नमी बनी रहेगी। पौधों की ग्रुपिंग या क्लस्टरिंग करें। पौधों को अलग अलग रखने के बजाय झुंड में रखें। जब पौधे झुंड में होते हैं तो वे अपना एक माइक्रो क्लाइमेट बनाते हैं, जिससे नमी बनी रहती है और गर्म हवाओं का असर कम होता है। आखिरी और बहुत जरूरी बात, तेज गर्मी में पौधे में केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग बिल्कुल न करें। पौधों को लू से बचाने के लिए लिक्विड फर्टिलाइजर का उपयोग करें। लिक्विड फर्टिलाइजर पौधों के लिए सलाइन वाटर या हम कहें ORS का काम करता है। बस थोड़ा सा प्यार, सही समय में पानी और छाया, इतना ही काफी है आपके बगीचे को मुस्कुराते रहने के लिए। याद रखिए, अगर पौधे सुरक्षित रहेंगे तो हमारा वातावरण भी ठंडा रहेगा। अंत में इतना ही कहूंगी कि एक पौधा बचाना एक जीवन बचाने जैसा है। आइए इस भीषण गर्मी में हम सब मिलकर अपने इन हरे भरे दोस्तों का ख्याल रखें। धन्यवाद।
0: सखियो, अभी आप सुन रहे थे रश्मि तिवारी जी से कि गर्मी के मौसम में हम अपनी बगिया और गार्डन का ख्याल कैसे रखें। सखियो, अब आइए आनंद लेते हैं इस गीत का, जिसे हमने लिया है खूबसूरत फिल्म से। गीत लिखा है संजय छैल ने, संगीत है जतिन ललित का और स्वर हैं अलका याग्निक और कुमार सानू के।

सखियो, अभी आप सुन रहे थे कविता कृष्णमूर्ति और कुमार सानू की आवाज में खूबसूरत फिल्म का ये गीत। और सखियो, अब इसी के साथ अनुमति दीजिए अपनी रेडियो सखी प्रभा कश्यप को। नमस्कार।

महिला सभा, ये कार्यक्रम अभी आपने सुना। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:05 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम विवरण।

ईमेल करें गीत सुने। ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम सुनिएगा संध्या 6:20 पर और फिर 7 से। ग्राम सभा कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा 7:20 पर। इसमें बेरा के गोठ का विषय होगा बूंद बूंद पानी हमर जिंदगानी। किसानवाणी कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:30 पर। खेत तालाब योजना और जल संरक्षण विषय पर आज की बात होगी। साथ ही होगा आज का प्रश्न और स्थल ध्वन्यांकन पर आधारित कार्यक्रम किसानवाणी गांव में के तहत आप सुनेंगे। ग्राम बेलटुकरी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के कृषकों के मध्य ध्वन्यांकित ये कार्यक्रम। संयोजन और प्रस्तुति होगी डॉक्टर सुप्रिया भारतीयन की। संपादन महेंद्र साहू का होगा। साथ ही सुनिएगा मंडी और मौसम पर जानकारी और सामयिक सुझाव। सुगम संगीत का प्रसारण समय है 8:00। कलाकार होंगे अनुराग शर्मा। रजनीगंधा कार्यक्रम प्रसारित होगा 8:15 पर। कल प्रातः 6:05 पर भक्ति संगीत का कार्यक्रम आराधना प्रसारित किया जाएगा। 6:30 पर खेती की बात कार्यक्रम में सुनिएगा ट्रैक्टर की सर्विसिंग कैसे करें इस विषय पर जानकारी। आज सुबह कार्यक्रम प्रसारित होगा 7:05 पर और पुराने फिल्मी नगमों का कार्यक्रम यादों के झरोखे से सुनिएगा 7:30 पर। छत्तीसगढ़ी लोकगीतों का कार्यक्रम अमराई

प्रसारित होगा सुबह 8:30 पर। इसमें कलाकार होंगे छाया शर्मा, द्वारिका यादव और साथ ही सुबह 10 बजे फरमाइशी फिल्मी नगमों का फोन इन कार्यक्रम हेलो आपकी पसंद प्रसारित किया जाएगा। प्रस्तुति होगी सुनील चिपड़े की। प्रायोजित कार्यक्रम NCERT सुनिएगा दिन के 11 बजे से। विविध भारती के कार्यक्रम रिले किए जाएंगे दिन के 11 बजे और फिर दोपहर 12:30 से शाम 5 बजे तक। कल संध्या 5 बजे हमर हाथी हमर गोठ कार्यक्रम प्रसारित किया जाएगा। चित्रपट संगीत का आनंद लीजिएगा शाम 5:05 पर। युवा जगत कार्यक्रम प्रसारित होगा शाम 5:35 पर। और ईमेल पर आधारित फरमाइशी फिल्मी गीतों का कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने सुनिएगा 6:20 पर और फिर 7 बजे से। ग्राम सभा कार्यक्रम प्रसारित होगा कल संध्या 7:20 पर। इसमें बेरा के गोट का विषय होगा जंगल ला जरे और उजरे ले बचावा। साथ ही सफल कृषक से भेंट क्रम सुनवाया जाएगा और मंडी और मौसम पर जानकारी प्रसारित की जाएगी। रात्रि 8 बजे सुगम संगीत प्रसारित होगा। कलाकार होंगी पिनाज मिसानी। रजनीगंधा कार्यक्रम सुनिएगा रात्रि 8:15 पर और विविध भारती के कार्यक्रम का आनंद लीजिएगा रात्रि 9:15 पर। कार्यक्रम विवरण समाप्त हुआ।

कार्यक्रम विवरण अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। संध्या के 6:10 होने को हैं। कुछ ही पलों में छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

राजनांदगांव पुलिस हा दू झन माई लोगिन संघरा तीन झन ला करें गिरफ्तार और छत्तीसगढ़ पुलिस हा गुमशुदा लोगन के पता लगाए बर 1 ले 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश चलाइस जेमा 4,000 ले ज्यादा मनखे मन ला खोजेगीस। अब समाचार विस्तार ले। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के कबीरधाम जिला के दौरा के दूसर दिन रहीस। ओमन हा पंडरिया के लोखान पंचायत के दैगा बहुल गांव कमार खोलमा चौपाल लगा के ग्रामीण मन के समस्या सुनिन, संगे संग पीएम जनमन योजना मा हुए काम के निरीक्षण घलो करिन। ग्रामीण मन के मांगवा मुख्यमंत्री हा कमार खोलमा सामुदायिक भवन, देवसरा तक 6 किलोमीटर सड़क निर्माण, मुक्तिधाम शेड और महतारी सदन बनाए के घोषणा करिन। सुशासन तिहार के तहत धमतरी जिला के कुकरेल गांव में समाधान शिविर के आयोजन करेगीस, जेमा मिले 314 आवेदन में 250 ले ज्यादा आवेदन के मौकाच मा निपटारा करेगीस। राज्यपाल रमेन डेका हा आज कोंडागांव मा जिला और विकास खंड स्तर के अधिकारी मन के बैठका लेन। बैठका मा ओमन हा जल और पर्यावरण संरक्षण मा विशेष जोर दिन, संगे संग अधिकारी मन ला आम लोगन के समस्या के गंभीरता ले समाधान करे के निर्देश दिन। बैठका मा राज्यपाल हा प्रधानमंत्री आवास योजना मा बनैया मकान मन मा रेन हार्वेस्टिंग संरचना ला शामिल करे बर कहिन। जगदलपुर के शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में चलत दू दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ के आज संझा समापन हुई। कार्यक्रम के दूसर दिन आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी एमा

0: शामिल हुए। ये मौकमा ओमन किहीन की बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास पर केंद्र और राज्य सरकार सरलग प्रयास करत है। ओमन बतैन की राज्य सरकार हा बजट मा बस्तर के विकास पर कतकुन जरूरी प्रावधान करे है, जेखर ले युवा मन ला रोजगार के नवा मौका मिलही। केंद्रीय अतिरिक्त सचिव और जल जीवन मिशन के संचालक कमल किशोर सोनहा सुकमा और दंतेवाड़ा जिला के दौरा करके जल जीवन मिशन के कामकाज के जानकारी लीन। ओमनहा सुकमा जिला के डोडपाल और फायदागुड़ा और दंतेवाड़ा जिला के भूसा रास पहुँच के हर एक घर के नल ले पानी की आपूर्ति ला देखीन। ओमन ग्रामीण मन ले गोठ बात करके पिए के पानी के बारे में घलो जानकारी लीन। एकर पहली श्री सोनहा सुकमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम ले प्रदेश के सबो जिला के कलेक्टर मन के बैठका लेके जल जीवन मिशन के काम के समीक्षा करें। ओमन कहिन की गांव मन में हर घर में साफ पिए के पानी पहुंचाना जल जीवन मिशन के पहली लक्ष्य है। जनगणना काम में लगे प्रगणक और सुपरवाइजर के सुरक्षा पर जिला जनगणना अधिकारी हा पुलिस कमिश्नर रायपुर और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ला चिट्ठी लिखीन है, जेमा प्रगणक और सुपरवाइजर मन पर पुलिस सुरक्षा के मांग करे गए है। खबर के मुताबिक जनगणना के पहली चरण के तहत प्रदेश में 1 मई ले मकान सूचीकरण और गणना के काम चलत है। ये दौरान प्रगणक मन संग कुछ एक जगह मां मारपीट के घटना हुए है। पाछू दिन एक जन कर्मचारी संग हुए मारपीट के बाद शिक्षक मन के संगठन हा शिकायत करके कार्रवाई करे के मांग करे रहिन, जेखर आधार मा आरोपी के खिलाफ संबंधित थाना मा FIR दर्ज करे गे है। छत्तीसगढ़ पुलिस हा गुमशुदा लोगन के पता लगाए बर 1 ले 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश चलाइस। ये अभियान मा पुलिस हा 4,000 ले ज्यादा घूमे मनखे मन ला खोज डरे है। एमा 545 लड़का मन घलो शामिल हैं। ऑपरेशन तलाश के दौरान विशेष रूप ले बने पुलिस टीम डहार ले संभावित जगह मा तलाशी अभियान चलाएगी। ये अभियान मा 182 गुमशुदा लोगन ला महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश ले खोज के वापिस लाएगी। उन्हें बिलासपुर और रायपुर ले 1500 ले ज्यादा लोगन के पता लगाए गए हवे। छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन आपन आकाशवाणी रायपुर ले सुनत हो।
1: छत्तीसगढ़ के खबर ले है आपकी वास्ता और खबर के विश्वसनीयता ले है हमार वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के संगे संग हमार समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के संग अपन मोबाइल में घलो सुन सकत हो। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब में घलो हावय। हमार फेसबुक पेज हरे छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमार यूट्यूब चैनल हरे छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के संगे संग आपके मोबाइल के माध्यम ले हम आप तक पहुँचत हन। छत्तीसगढ़ के हर खबर पर सुनत रहो आकाशवाणी समाचार।
0: औ अब आगू बढ़वो माचे समाचार कोती। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी CSMCL ओवरटाइम घोटाला में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो EOW हा कार्रवाई करे है। ए मामला में मैन पावर एजेंसी के 7 जन संचालक और प्रतिनिधि मनला गिरफ्तार करे गए है। जांच एजेंसी हा आरोपी मनला विशेष अदालत में पेश करे जिहां ले 7 दिन के रिमांड मंजूर करे गए है। आरोप है कि ओवरटाइम भुगतान में अनियमितता करके सरकारी राशि के दुरुपयोग करेगी। जांच एजेंसी हा अब आरोपी मन ले पूछताछ करके मामला ले जुड़े दूसर जानकारी जुटावत है। पद्मश्री फूलबासन भाई यादव के अपहरण के प्रयास के मामला में राजनांदगांव पुलिस हा 2 जन माई लोग इन संघरा 3 जन ला गिरफ्तार करे है। मिले जानकारी के अनुसार आज बिहनिया करीबन 10 बजे बेमेतरा के खुशबू साहू नाव के माई लोग इन और ओखर 2 जन साथी मन हा फूलबासन भाई ला कोनो बहाना ले घर के बाहर बुला के कार मा बैठा लेन। एकर बाद ओमन हा फूलबासन भाई ला जबरन अपन संग ले जाए के प्रयास करिन। बताया जात हवे कि कार मा बैठे यमन जैसने खैरागढ़ रद्धा मा चिखली पुलिस चौकी के आगू पहुंचिन ता उहां पहलीच ले गाड़ी मन के जांच करत पुलिस के टीम हा कार ला रुकवाइस। आज के बखत पुलिस हा फूलबासन भाई ला चीन लीस और शक होय मा आरोपी मन ला हिरासत मा ले लेगीस। राजनांदगांव जिला के हाले कोसा गांव में आज तेंदू पत्ता तोड़े वर्गे ग्रामीण मन ऊपर जंगली सुअर हमला कर दीस। एक घटना में 8 जन घायल हो गए हैं, जेमाले एक जन माई लोग इनके हालत गंभीर बताए जावत है। बने इलाज पर घायल मनला मेडिकल कॉलेज अस्पताल संघरा छुरिया और पाथरी के स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कर

0: कराए गए हैं। घटना के सूचना मिलते साथ वन मंडल अधिकारी आयुष जैनहा अस्पताल पहुंची नौ घायल मन के हालचाल जानेन। वन विभाग हा लोगनला जंगल कोती जाए के बेरा सावधानी बरते के अपील करे है। सकती जिला के छपोरा गांव में भारतीय स्टेट बैंक SBI के फर्जी शाखा खोल के धोखाधड़ी के मामला में माल खरौदा पुलिस आ एक जन दूसर आरोपी ला गिरफ्तार करे है। ये मामला में पहली चले बैंक मैनेजर संग्रह छह जन के गिरफ्तारी हुए हवा। आरोपी मन हा बैंक में नौकरी लगाए के नाव में लोगन ला फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दे रहीन। ये दौरान उखर मंत्री ले 30-30 हजार रूपया घलो ले रहीन। पुलिस हा आरोपी मंत्री ले कंप्यूटर प्रिंटर संग्रह दूसर कागज और सामान जब्त करे रहीन। अब पेश है मौसम के हाल। अवैया 24 घंटा के दौरान प्रदेश के कुछ एक जगह में हल्का ले मध्यम वर्षा होए के या गरज चमक के संग छींटा पड़े के संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक ठंड्रोणिका दक्षिण मध्य प्रदेश ले छत्तीसगढ़ होवत बिहार तक बने हैं। एक संग एक ठन उत्तर दक्षिण द्रोणिका दक्षिण मध्य प्रदेश ले मन्नार के खाड़ी तक फैले है। एकर अलावा और कोनो प्रणाली के सक्रिय होए के सेती प्रदेश के मौसम में फर्क पड़त है। अधिकतम तापमान में 3 डिग्री सेल्सियस तक कमी होए के संभावना जताई गई है। अब थोरकुन समाचार सार मा। वन मंत्री केदार कश्यप आज कोंडागांव जिला में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 38 करोड़ रुपया ले ज्यादा के कतकुन सड़क निर्माण काम के भूमि पूजन करें। अंबिकापुर के PG कॉलेज ऑडिटोरियम में आज जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन के आयोजन करेगी। एक कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चिंतामणि महाराज शामिल हुईन। कृषि यंत्र और सिंचाई पंप में अनुदान बंद किसान मनहा चैम्स पोर्टल के माध्यम ले ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई ले शुरू होगी। और धमतरी में रेत के अवैध परिवहन और अनियमितता के स्थिति या छोटा गांव के ग्रामीण मनहा आज नगरी धमतरी रद्दा में चक्का जाम करें। आखिर में प्रमुख समाचार एक गांव फिर। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री कबीरधाम जिला के लुखान पंचायत के बैगा बहुल गांव कमारखोल में चौपाल लगा के ग्रामीण मन के सुनीन समस्या। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के अपहरण के प्रयास के मामला में राजनांदगांव पुलिस हा दू झन माई लोगिन संग्रह 3 जन ला करें गिरफ्तार। और छत्तीसगढ़ पुलिस हा गुमशुदा लोगन के पता लगाए पर 1 ले 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश चले जिमा 4000 ले ज्यादा मनखे मन ला खोजेगी। एक संग छत्तीसगढ़ी समाचार बुलेटिन यहीं से रावत है। जय जोहार।
1: आकाशवाणी का ये रायपुर केंद्र है। अगला कार्यक्रम थोड़ी देर में। हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से बोल रहे हैं। समाचार अब हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले करते हैं।
2: आकाशवाणी संप्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। विधानसभा निर्वाचनस्य परिणामानां घोषणानन्तरं पश्चिम बंग तमिलनाडु केरल
3: छत्तीसगढ़ी में प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। FM बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है ईमेल करें गीत सुने ये कार्यक्रम। कार्यक्रम में हमें ईमेल भेजा है नरगोड़ा से कीर्तनपुरी गोस्वामी लक्ष्मी देवी जोगेश ट्विंकल डिंपल मीनाक्षी निशा तुलसी और दिशा गोस्वामी। शंभाजी नगर से राजेश पाटिल राजदीप राजेश और शीतल राशि राजेश। मोहाली चंडीगढ़ से ऋतिक प्रतीक अनिल शर्मा जयवीर सिंह और अमनदीप सिंह। राजकोट वीरमगांव से रुचि ट्विंकल और उमा गुप्ता। खीकराम देवांगन रेणु रजनी प्रियंका देवांगन आप सभी बिलाईगढ़ से। राष्ट्रपाल गजबीये राधिका निष्का और तन्मय डोंगरगांव से। मजनू कटीला से कमल मधु सागर बालूजा। सौंगा मगरलोड से फनेश कुमार सावित्री देवी मोहित देविका रानी गजेंद्र हेयांश कुमार चंदन। और पोड़ी भाटा कलतरा से दिलीप चंदन चुवाराम यदु निखिल वसुंधरा और प्रांजल चंदन। श्रवण कुमार साहू योगेश राहुल साहू आप मदनपुर से। पांडुचंदन, उषा, प्रतीक्षा चंदन, कुम्हार गली, कोलगांव।

से राजस्थान जोधपुर से रमेश चंद्र चौहान, मोहिनी कल्पित, गर्व और हिमाक्ष, पांडर कावड़ा से अनिल, उषा, अनुश्री, धनश्री बुरांडे, बटिंडा पंजाब से प्रेम सिंह, मनजीत कौर, करणवीर, दपिंदर, वरिंदर, कुलदीप, सीमू, एकम और अभिजोत, डबरीपारा तीव्रता से महेंद्र प्रताप, जया जागेंद्र, गजेंद्र जयंती, ममता, मनीषा, मंजू, मानसी, सुरेंद्र, मोहन सिंह, सहोदरी बाई, मनमोहन सिंह, गिरजाबाई, चंद्रपाल और लक्ष्मी थदवानी, दिल्ली से तुलसी, वीना, चैतन्य और मेघा मस्कीन, नांदेड़ महाराष्ट्र से संतोष, सुनैना, सुकन्या और सविता भाकरे, सीतामढ़ी बिहार से मुसर्रत जहानाज, तलअत फरहत, रिफत नुजहत, साजिया शाहीन, नाजिया नूरी नाज, कुरासिया कालरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद और कालिंद्री लहरे, तेलंगाना से बुरहानुद्दीन मोहम्मद यूसुफुद्दीन, श्रीगंगानगर राजस्थान से लालगिरी गोस्वामी, हेमलता, हीना, हर्षित और खुशी गोस्वामी, पटियाला से मुकेश और नीलम बत्ता, जगराओं से सुनील पाठक, कमल, दीपिका, गव्या, सुच्चा सिंह पाठक, बिहार से मुजफ्फरपुर से आर्यन, पीयूष कुमार और रोहित राज, नथाना पंजाब से हरजिंदर, जसवीर, जस्सी, सीता और गीता, मेरठ कैंट से दिग्दर्शन, कविता, कर्ण, शक्ति, रिया, जया और दर्शन भाई, रूपेश, महेश, प्रज्ञेश, पित्रेश, संघई, आप सभी महाराष्ट्र से, राहुल मनवर, सरला, विशाल, चेतन, रोशनी, प्रियांशी मनवर यावतमाल से, प्रेमलाल साहू, भूपेंद्र, दुष्यंत, राघवेंद्र साहू, आप सभी भाटापारा से, यावतमाल से लक्ष्मण राव, कल्पनाताई, शैलेश, स्वप्निल रक्षता और प्रतीक्षा लोखंडे, सोपान तायडे, वसंतराव भोजने, निवृत्ति आडोडकर, आडोकार, मामूलवाड़ी महाराष्ट्र से, नेपानगर से सुदर्शन शाह, पल्लवी प्रखर, कुशल, नीति, सुरभि, अश्विन, मंगलाबेन, राजेंद्र शाह, धरदेई सरगांव से चंदूलाल, सुनीता, हर्ष, विनीत, क्रिस्टी पटवा, आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वरों में, समीर का लिखा, आनंद मिलिंद का संगीतबद्ध किया, वंश फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने। आप हैं बरका काना से अफजाल ताज, शाहिन सुल्ताना, सोनू तस्नीम, निपी साहनी, अफजल मलिक, हिंगोली महाराष्ट्र से शाहजी बोडके, नंदा हनुमान बोडके, टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से ब्रजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी, सोनाली, सोनम, आशीष विश्वकर्मा, लच्छनपुर से विश्वनाथ, पंकज और तिरुपति साहू, लक्सर हरिद्वार से ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर, राही मेहराज जहां,

मंडी डबवाली से राजेंद्र अंजू मोहित और तानिया नारंग, दुर्राबांधा बांटापारा से प्रमोद कुमार साहू, देव नवीन युवराज साहू, मोहम्मद सईद अब्बासी, निघत परवीन, शाहनवाज सरफराज, फरदीन सुहान, अरजान अब्बासी और अबान अब्बासी, आप सभी बुलंदशहर उत्तर प्रदेश से, कमरिया से साबित खान, धर्मेंद्र, सावित्री देवी और प्रतीक कुमार, दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से मुकेश, सोनू, सुरेश, रजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, मोहिनी, ऋतिक और बलबीर सिंह, पानीपत से नरेश मल्होत्रा, लक्ष्य कोयल और नानक चंद मल्होत्रा, तेलंगाना निजामाबाद से अल्लाह बख्श, राबिया शेख, शेख रहीम मुन्ना, जमशेदपुर से हरजिंदर सिंह भाटिया, एंजल सोनू और पप्पी भाटिया, राजकोट से राजेश कृष्णा, स्वाति और ख्याति कुमारी, वडशिंगी बुल्ढाना से अमोल, शोभाताई, दीपाली और श्लोक कुमार मानकर, जमशेदपुर से अपूर्व, अनुपम और राकेश कुमार सिंह, लगान पंढरिया से उत्तम कुमार, रुक्मिणी, साहिल और भारती बघेल, राजस्थान भोपालगढ़ से धर्मेंद्र, कपिल और पूजा परिहार, गणेश कार्तिक, नारायण खर्चे, ललिता, स्वाति, प्रयाग चौधरी, कुमारी देवी और मालती चौधरी इंदौर मध्य प्रदेश से, भाटापारा से बचकामल, मोतीलाल यादव, सियाराम, चोवाराम वर्मा, सूरज बोरकर, नारायण यदु, भुवन कामरी, रसेड़ा से मुरलीधर साहू, लक्ष्मी देवी, योगेश, संध्या, कीर्ति, डीकेश, वासु, डाली और पूर्वेश साहू, नारवेल महाराष्ट्र से पी एस नवानकर, निर्मला विशाल नवानकर, फजिलका पंजाब से सुभाष गोदारा, विमला, इंदु, पार्वती और हिमांशु गोदारा। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है अनुराधा पौडवाल और कुमार शानू की आवाज़ों में, समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीतबद्ध किया, आशिकी फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है रायपुर से नीलू मेघ, वंदना कुमार, बिट्टू कुमार, राजकोट से जूली जगदीश, गुजराती प्राची और प्रवीण पुजारी, तखतपुर से मिश्री लाल विश्वकर्मा, मीरा देवी, विशाल मानस और गंगा देवी विश्वकर्मा, श्रीरामपुर महाराष्ट्र से नासिर शेख, नाजिया नासिर, शाहिद साजिद शाहिद, सादुल शहर राजस्थान से रामकुमार रेवाड़, चंद्रकला रेवाड़, मलोट पंजाब से राज, मीना, योगेश, निवान, सौरव, शाइना और मैंडी शर्मा, दुल्लापुर मुरादाबाद से मोहम्मद इरफान, मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, इसरार, नरगिस खातून, गुमला झारखंड से नजमुल होदा, एस एम जावेद, शगुफ्ता अंजुम, किशनगंज बिहार से रविन्द्र मोहन दास, आशा देवी, राघव भानु, प्रिया, माधुरी और किरण, झज्जर हरियाणा से बिट्टू, रीटा, रजत, मंजू भाटिया और मयंक भाटिया, कुरासिया कालरी चिरमिरी से इंद्रभान सिंह, अनुभव ऋषभ, राम सहोदर, नारायण प्रसाद, दिनेश प्रसाद, कलिंद्री लहरे, जिंद हरियाणा से जसबीर सिंह अरोड़ा, जतिंदर कौर, गुरप्रीत, लवप्रीत, करमजीत कौर, वैशाली, शैलेश गवाणकर, टुक टुक गवाणकर, प्रिंस एकांत, सुमित, ध्वनि गवाणकर, बहादुरा नागपुर से, पटियाला पंजाब से सोमदत्त कैरव, ज्योति रानी, गुरमंत कौर, मनु, जनकपुरी सहारनपुर से जोन, रोजी, पर्ल और विलिस डिकेस्ट्रो, तेलहारा से प्रकाश, नर्मदा, सुजाता पोहारकर, भानबेड़ा मुंगवाल से भरतराम पडोटी, जयंती, हेमंत, उमंग और मोक्ष पडोटी। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है लता मंगेशकर और एसपी बाला सुब्रमण्यम के स्वर में देव कोहली का लिखा, राम लक्ष्मण का संगीतबद्ध किया, मैंने प्यार किया फिल्म का ये गीत।

0: ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम का ये अंक यहीं समाप्त हुआ। इसका दूसरा भाग आप सुनेंगे शाम 7 बजे से। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। प्रादेशिक समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।
1: क्या बात है उमेश, आजकल खूब छाए हो अखबार में नई नई रिपोर्टिंग के साथ।
2: हाँ यार, पत्रकार जो हूँ।
1: तो अब अगली रिपोर्टिंग किस पर कर रहे हो?
2: सुधीर, मुझे एक ऐसी 11 साल की लड़की के बारे में पता चला है जिससे एक परिवार वाले घर का सारा काम करवाते हैं और ऊपर से उस पर ज्यादती करते हैं। उसी पर एक स्टोरी बना रहा हूँ।
1: उमेश, स्टोरी बनाते समय इस बात का ध्यान रखना कि पीड़ित बालिका का नाम, पता, फोटो या स्कूल का पता या ऐसी कोई भी जानकारी सामने न आए जिससे उसकी पहचान होती हो।
2: क्यों?
1: क्योंकि ऐसा करना बाल न्याय तथा बच्चों की देखभाल और उनके संरक्षण संबंधी संवैधानिक अधिनियम 21A का उल्लंघन है। और इस बात का ध्यान हमारे सभी प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकारों को भी रखना है।
3: बाल अधिकार हनन से पीड़ित बच्चों की पहचान उजागर करने वाली जानकारी का प्रकाशन या प्रसारण न करें, क्योंकि इससे पीड़ित बच्चों के सामाजिक और मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ सकता है।
4: अरे गोपाल, जा तो सब्जी बाजार से नींबू और मिर्ची लेकर आना।
5: क्या बात है मालिक, आज आप नींबू और मिर्ची क्यों खा रहे हैं?
4: अरे पगले, खाने के लिए नहीं, दुकान में लगाने के लिए मंगवा रहा हूँ। तू तो देख रहा है, दिन भर बैठकर मक्खी मारता हूँ, 10 ग्राहक भी दुकान में नहीं आते।
5: आएंगे कैसे मालिक, हमारी दुकान का ठीक से प्रचार भी तो नहीं हो रहा है। मेरी मानिए तो आप भी अपनी दुकान का प्रचार आकाशवाणी से करवाइए, फिर देखिए हमारी दुकान में भी ग्राहकों की भीड़ लगेगी।
4: गोपाल, आज पहली बार तूने अक्लमंदी की बात की है रे।
5: क्यों नहीं मालिक, रेडियो जो सुनता हूँ।
3: अपनी दुकान, व्यापार या सेवा का प्रचार रेडियो से करवाइए। विज्ञापन बुक करने आकाशवाणी आइए।
6: बधाई हो सेठ जी, आपकी कंपनी की इस नई अगरबत्ती की खुशबू तो लाजवाब है।
5: अरे भाई साहब, आप देखते जाइए, अब तो ये अगरबत्ती घर घर में महकेगी। मैंने पूरे शहर में इसके विज्ञापन बंटवाए हैं।
6: क्यों भाई, सिर्फ शहर में? अरे गांव में नहीं महकेगी क्या?
5: महकना तो गांव में भी चाहिए, मगर गांव के लोगों को हमारी नई अगरबत्ती के बारे में पता कैसे चलेगा?
6: आकाशवाणी से।
3: गांव हो या शहर, अपनी दुकान या उत्पाद की जानकारी पहुंचाइए घर घर। आकाशवाणी आइए और विज्ञापन बुक करवाइए।
5: भाई साहब, आपके यहाँ कपड़ों में 25% छूट अभी भी चल रही है ना?
6: हाँ हाँ जरूर, आपको किसने बताया?
5: मेरे

0: रेडियो ने, वरना मैं तो इस डिस्काउंट से वंचित रह जाता।
1: विज्ञापन बुक करवाने आकाशवाणी आइए।
2: ये आकाशवाणी रायपुर है, प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं राहुल सिन्हा। और अब पेश आज के मुख्य समाचार। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज वनांचल ग्राम कमार खोल में लगाई चौपाल, ग्रामीणों से किया संवाद। ऑपरेशन तलाश के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस ने बीते एक महीने में 4000 से अधिक गुमशुदा लोगों को खोज निकाला। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के अपहरण की कोशिश के मामले में राजनांदगांव पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने बदली करवट, राजधानी रायपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हो रही है बारिश। अब समाचार विस्तार से। सुशासन तिहार के तहत आज मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का कबीरधाम जिले के प्रवास का दूसरा दिन रहा। उन्होंने पंडरिया स्थित लोखान पंचायत के बैगा बहुल कमार खोल गांव में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी, साथ ही पीएम जनमन योजना के तहत हुए कार्यों का निरीक्षण भी किया। ग्रामीणों की मांग पर मुख्यमंत्री ने कमार खोल में सामुदायिक भवन, कमार खोल में देवसरा तक 6 किलोमीटर सड़क निर्माण, मुक्तिधाम शेड और महतारी सदन बनाने की घोषणा की। मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सुशासन तिहार के दौरान प्रदेश की जनता का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है।
3: बहुत अच्छा रिस्पांस है। 2 दिन में हम 6 जिले का प्रवास कर चुके हैं और ग्रामीण क्षेत्र में अचानक जा रहे हैं, पेड़ के नीचे जन चौपाल लगा रहे हैं और सबसे पूछ रहे हैं कि सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से जो उनकी सेवा करना चाहती है वो कहाँ तक योजना पहुंच रही है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग खुश हैं, उनको राशन भी मिल रहा है, पानी भी मिल रहा है, बिजली भी मिल रही है और महतारी बंधन का पैसा भी मिल रहा है और सरकार के कामों से लोग खुश हैं।
2: सुशासन तिहार के तहत धमतरी जिले के कुकरेल गांव में भी समाधान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में प्राप्त 314 में से 250 से अधिक आवेदनों का मौके पर ही निराकरण किया गया। राज्यपाल रमन डेका ने आज कोंडागांव में जिला और विकासखंड स्तरीय अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में उन्होंने जल और पर्यावरण संरक्षण पर विशेष जोर दिया, साथ ही अधिकारियों को आम लोगों की समस्याओं का गंभीरता से समाधान करने के निर्देश दिए। बैठक में राज्यपाल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनने वाले मकानों में रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचना को शामिल करने को कहा। उन्होंने कहा कि जिले के विशेष पिछड़ी जनजाति तक प्रधानमंत्री जनवन योजना के माध्यम से शासन की योजनाओं का अधिक से अधिक लाभ पहुंचाया जाए। बैठक में राज्यपाल ने बालिकाओं और महिलाओं के स्वास्थ्य पर जोर देते हुए 8 मई को शिविर आयोजित कर स्तन कैंसर की स्क्रीनिंग के निर्देश दिए। अपने कोंडागांव प्रवास के दौरान राज्यपाल ने जिला कार्यालय परिसर में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत आम का पौधा लगाया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाने के लिए 1 से 30 अप्रैल तक ऑपरेशन तलाश चलाया। इस अभियान के तहत पुलिस ने 4000 से अधिक गुमशुदा व्यक्तियों को खोज निकाला है। इनमें 545 बच्चे भी शामिल हैं। ऑपरेशन तलाश के दौरान विशेष रूप से गठित पुलिस टीमों द्वारा संभावित स्थानों पर तलाशी अभियान चलाया गया। इस अभियान के तहत 182 गुमशुदा व्यक्तियों को महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, झारखंड, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश से खोजकर वापस लाया गया। वहीं दुर्ग, बिलासपुर और रायपुर से 1500 से अधिक गुमशुदा व्यक्तियों का पता लगाया गया है। जगदलपुर स्थित शहीद महेंद्र कर्मा विश्वविद्यालय में आयोजित 2 दिवसीय इनोवेशन महाकुंभ का आज शाम समापन होगा। इस कार्यक्रम के दूसरे दिन आज प्रदेश के वित्त मंत्री ओपी चौधरी शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बस्तर क्षेत्र के समग्र विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। केंद्रीय अतिरिक्त सचिव और जल जीवन मिशन के संचालक कमल किशोर सोन ने सुकमा और दंतेवाड़ा जिले का दौरा कर जल जीवन मिशन के कार्यों की जानकारी ली। उन्होंने सुकमा जिले के डोडपाल और फायदागुड़ा तथा दंतेवाड़ा जिले के भूसारास पहुंचकर हर घर नल से जल की आपूर्ति देखी। उन्होंने ग्रामीणों से बातचीत कर पेयजल की गुणवत्ता की जानकारी भी ली। इससे पहले श्री सोन ने सुकमा में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए प्रदेश के सभी जिलों के कलेक्टरों की बैठक लेकर जल जीवन मिशन के कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि गांवों और दूरस्थ अंचलों में हर घर स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल पहुंचाना जल जीवन मिशन का प्राथमिक लक्ष्य है। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी सी एमसीएल ओवरटाइम घोटाले में आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो ईओडब्ल्यू ने कार्रवाई की है।

0: इस मामले में मैनपावर एजेंसियों के सात संचालकों और प्रतिनिधियों को गिरफ्तार किया गया है। जांच एजेंसी ने आरोपियों को विशेष अदालत में पेश किया, जहां से 7 दिनों की रिमांड मंजूर की गई है। आरोप है कि ओवरटाइम भुगतान में अनियमितता कर सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया। जांच एजेंसी अब आरोपियों से पूछताछ कर मामले से जुड़े अन्य तथ्यों और लोगों की जानकारी जुटा रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं।
1: छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार।
0: और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। पद्मश्री फूलबासन बाई यादव के अपहरण की कोशिश के मामले में राजनांदगांव पुलिस ने 2 महिलाओं सहित 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार आज सुबह लगभग 10 बजे बेमेतरा की खुशबू साहू नामक महिला और उसके 2 साथियों ने फूलबासन बाई को किसी बहाने से घर के बाहर बुलाकर कार में बिठा लिया। इसके बाद उन्होंने फूलबासन बाई को जबरदस्ती अपने साथ ले जाने की कोशिश की। बताया जाता है कि कार में सवार ये लोग जैसे ही खैरागढ़ मार्ग पर चिखली पुलिस चौकी के सामने पहुंचे, वहां पहले से वाहनों की जांच कर रही पुलिस की टीम ने कार को रुकवाया। इसी दौरान पुलिस ने फूलबासन बाई को पहचान लिया और संदेह होने पर आरोपियों को हिरासत में ले लिया। सुकुल देहान पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है। राजनांदगांव जिले के हाले कोसा गांव में तेंदुपत्ता तोड़ने गए ग्रामीणों पर आज जंगली सुअर ने हमला कर दिया। इस घटना में 8 लोग घायल हो गए हैं, जिनमें से एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। बेहतर उपचार के लिए घायलों को मेडिकल कॉलेज अस्पताल सहित छुरिया और पाथरी के स्वास्थ्य केंद्रों में भर्ती कराया गया है। घटना की सूचना मिलते ही वन मंडल अधिकारी आयुष जैन अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना। वन विभाग ने लोगों से जंगल में जाते समय सावधानी बरतने की अपील की है। सक्ती जिले के छपोरा गांव में भारतीय स्टेट बैंक SBI की फर्जी शाखा खोलकर धोखाधड़ी के मामले में माल खरौदा पुलिस ने एक अन्य आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस मामले में पहले ही कथित बैंक मैनेजर सहित 6 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। आरोपियों ने बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर साक्षात्कार लेकर 6 लोगों को फर्जी नियुक्ति प्रमाण पत्र दिया था। इस दौरान उनसे 30,000 रूपये भी लिए थे। रायपुर रेलमंडल के निपनिया भाटापारा सेक्शन में रोड अंडरब्रिज निर्माण के तहत रिलीविंग गर्डर लॉन्चिंग कार्य के कारण निरस्त या आंशिक रूप से प्रभावित यात्री ट्रेनों को रिस्टोर कर दिया गया है। इसके अनुसार अब 6 मई को रायपुर से बिलासपुर और बिलासपुर से गेवरा रोड के बीच चलने वाली दोनों ओर की मेमू अपने निर्धारित समय अनुसार चलेगी। इसी तरह गोंदिया से झारसुगुड़ा मेमू भी पहले के अनुसार ही चलाई जाएगी। धमतरी में रेत के अवैध परिवहन और अनियमितताओं को लेकर अछोटा गांव के ग्रामीणों ने आज नगरी धमतरी मार्ग पर चक्का जाम कर प्रदर्शन किया। इसके चलते इस मार्ग पर वाहनों की आवाजाही प्रभावित रही। चक्का जाम की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने ग्रामीणों से चर्चा करते हुए उन्हें आश्वासन दिया कि दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद ग्रामीणों ने चक्का जाम समाप्त किया। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। वन मंत्री केदार कश्यप ने आज कोंडागांव जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 38 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले विभिन्न सड़क निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। अंबिकापुर के PG कॉलेज ऑडिटोरियम में आज जिला स्तरीय श्रमिक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में सांसद चिंतामणि महाराज शामिल हुए। पेंशन निधि विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा कल 6 मई को रायपुर में संगोष्ठी का आयोजन किया जाएगा। बीज NPS का फसल पेंशन की थीम पर आयोजित होने जा रहे संगोष्ठी का उद्देश्य किसानों को सेवानिवृत्ति के बाद वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करना है और कृषि यंत्रों और सिंचाई पंपों पर अनुदान के लिए किसान चैम्प्स पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन की प्रक्रिया 7 मई से शुरू होगी। और अब पेश है मौसम का हाल। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कुछ स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पड़ने की संभावना है। मौसम विभाग के अनुसार एक द्रोणिका दक्षिण मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ होते हुए बिहार तक बनी हुई है। इसके साथ ही एक उत्तर दक्षिण द्रोणिका दक्षिण मध्य प्रदेश से मन्नार की खाड़ी तक विस्तारित है। इसके अलावा कुछ और प्रणालियों के सक्रिय होने के कारण प्रदेश के मौसम में बदलाव आ रहा है। अधिकतम तापमान में 3 डिग्री

0: सेल्सियस तक कमी आने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने कल प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी है। इस बीच अब से कुछ देर पहले राजधानी रायपुर में तेज हवाओं के साथ बारिश शुरू हो गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सुशासन तिहार के तहत मुख्यमंत्री ने आज वनांचल ग्राम कमारखोल में लगाई चौपाल, ग्रामीणों से किया संवाद। ऑपरेशन तलाश के तहत छत्तीसगढ़ पुलिस ने बीते एक महीने में 4000 से अधिक गुमशुदा लोगों को खोज निकाला। पद्मश्री फूलबासन भाई यादव के अपहरण की कोशिश के मामले में राजनांदगांव पुलिस ने 3 लोगों को किया गिरफ्तार। और प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने बदली करवट, राजधानी रायपुर में तेज हवाओं और गरज चमक के साथ हो रही है बारिश। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन हिंदी में कल सुबह 9:55 पर सुना जा सकता है। नमस्कार।
1: आकाशवाणी का ये
2: प्रादेशिक समाचार हम आकाशवाणी के रायपुर केंद्र से अनुप्रसारित कर रहे थे। ये आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। पेश है कार्यक्रम ईमेल करें गीत सुने का शेष भाग। ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम के इस अंक में आपका स्वागत है। ईमेल किया है हमारे इन श्रोता साथियों ने गीत सुनने के लिए। आप हैं करनाल से सुधीर नूतन, संदीप, जगमोहन प्रजापति, प्रतिभा, इशप्रीत शर्मा, जाफराबाद से सुधाकर राजे, प्रशांत, संचित, प्रथमेश, प्रणाली, सर्वद, सानवी देशमुख, अजीम वकार, माहिरा अजीम और नगमा अजीम दिल्ली से, गंडई टिकरी पारा से जागेश्वर, कचरीबाई, दीपक, जयश्री, ऋषभ और ऋचा देवांगन, कैदीमुड़ा रायगढ़ से पुरुषोत्तम सिंह, उषा, ऋषभ सिंह, अकोला से रमेश, वैशाली और धनंजय कटनकर, दिल्ली से सोनम, सना और अदीबा, रमेश कुमार जाजोरिया, गीता रानी, गगनदीप, आरजू, गुड्डू जाजोरिया आप सभी मालोट से, दुर्ग से आरसी कामड़े, करुणा, मीना, अश्विनी और विपुल कामड़े, जालंधर से रोशन जहां, मन्नत जहां, इशरत और मक्कार जहां, रामगढ़ कैंट से महेंद्र मोदी, कतियापारा जूना बिलासपुर से सुशील देवांगन, अखिलेश, लोकेश, आशीष, रवि, शनि, रेयांश, कान्हा, आदित्य देवांगन, रामदुलारी प्रजापति, रामशरण, चंद्रेश, चंद्रकला और शशिकांता प्रजापति ग्राम बोड़गहन से, अंबाला हरियाणा से रवि कुमार, राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश, प्रियंका, मन्नत, गुरकीरत, गुरुशब्द सिंह, वडिंगखेड़ा पंजाब से मिंटू, पिंकी, लवली, आरती अरोड़ा, अड़ार नांदघाट से माखन वर्मा, चांदनी, भूपेश, दीपेश वर्मा, उमरखेड़ महाराष्ट्र से अभिजीत, सरिता, प्रिंस, एकांश गवहणकर, पैठण से सुरेश, अनीता, आरती, पूजा प्रसाद, सोनल और सिया जाधव, नारायणपुर बलिया से ओम प्रकाश, उषा, अमित कुमार और हैप्पी राय, हीरामणि वर्मा, पारसमणि, पुष्पेंद्र मणि और नोखेलाल वर्मा आप सभी दतरेंगी भाटापारा से, सनावत से मोहम्मद सादिक, मुश्ताक अहमद, मोहम्मद शाकिर, अल्तमा खत्री, अल्तमश खत्री, रमेश गोड़ और शादाब खत्री, कमलकांत गुप्ता, दीपा रिमझिम गुप्ता पिपरिया से, जालौन से सत्येंद्र, आदर्श, सार्थक, अलौकिक चंसोलिया, राजगढ़ मध्य प्रदेश से गोविंद, दिव्या, सुमन, कोमल, परी, कृतिका, रमेश चंद्र डांगी, यावतमाल से पंजाब, यशोधरा और श्रव्या रामटेके, बठेना पाटन से परमेश्वर, राजबत्ती, काजल पूर्वी, हेजल, राजेश, रेशमा साहू, छोटी बलिया करजत मुंबई से अब्दुल कलाम, अब्दुल सलाम राइन, रामजी साहू, जीवनलाल रजक, निम्मी, शिवम, सतीश, मुकेश कुमार साहू लच्छनपुर से, राजनांदगांव नागर कोहरा से बबलू साहू, जामुन देवी, प्रेम, पूजा, दुष्यंत, प्रांजल, समीक्षा, आराध्या साहू, भोपालगढ़ से धर्मेंद्र, कपिल, पूजा परिहार, रिंगनी से दिनेश और करुणा वर्मा, श्रीरामपुर से अशोक, सविता, अनिकेत, रोहिणी, ऋषिकेश, जीविका दले, जूली जगदीश, गुजराती, प्राची और प्रवीण पुजारी आप सभी राजकोट से, गाजीपुर उत्तर प्रदेश से सुरेश, उर्मिला, दीपक और स्वाति जायसवाल, सैयद मशरूर, शाइना हसन, नाजिया इब्राहिम सहारनपुर से, गुजरात से प्रवीण सोनी, पूजा पायल और जगदीश जौहरी, अशोक प्रमिला आश

चश्मा श्याम कुंवर भिलई नगर से, लूत्रा खमरिया से नकुल श्याम, मोहम्मद अकरम और मोहम्मद अजीज, आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है कुमार शानू के स्वर में समीर का लिखा, नदीम श्रवण का संगीत बद्ध किया, सड़क फिल्म का ये गीत।

ईमेल करें गीत सुने, ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है लोहगढ़ ठकुरावाला से स्वर्णदीप, स्वर्ण सिंह गिल, दलजीत सिंह, राजदीप, गुरनूर, गुरलाल और अविराज सिंह। कवर्धा लोहारेडी से अशोक कुमार, लीलेश्वरी, खुशांत और निशांत साहू। गिरिडीह झारखंड से मोहम्मद यासीन अंजान, साइमा नवाज, हसन नवाज, अहद मिफ्रा नवाज और चाहत। पलारी से नितेश कुमार देवांगन, दुर्गा प्रसाद, पराग, पूना राम, कृष्णा देवांगन। लुत्रा खमरिया से अकरम अमीन, अर्श, अतिका। डोंडी लोहारा बालोद से देवशंकर तामुरिया, अजय देव और अल कबीर। सरगांव बाजार से नसीब मोहम्मद, हबीब मोहम्मद, इरफान मोहम्मद। बागबहरा भद्रसी से पन्नालाल सेन, खुशबू, तारा और कौशल सेन। दिल्ली शहर से आसमा परवीन, आमना और वली भाई अंसारी। सावतपुर से ऋषि सेन, रितेश, कंचन और माही सेन। गंडई पंडरिया से पवन कुमार सेन, प्रभा देवी, लक्की विक्की, नानू, रविंद्र सेन, सुरेश नारंग, आशु और सोनाली नारंग आप सहारनपुर से। आप सभी श्रोता साथियों ने सुनना चाहा है मोहम्मद रफी और आशा भोसले के स्वर में राजेंद्र कृष्ण का लिखा, मदन मोहन का संगीतबद्ध किया, नींद हमारी ख्वाब तुम्हारे फिल्म का ये गीत।

0: ईमेल करें गीत सुने। ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। कार्यक्रम का अगला गीत पसंद किया है बरेली कैंट उत्तर प्रदेश से विनेश कुमार रागिनी मुस्कान, सरगांव से राजेश हिरोमन पल्लवी और राजेश्वरी वर्मा, जीवधन सिंह घुरनी करिश्मा सोमारसाय कलेश्वर सिंह सुखराम हीरामणि ऐश्वर्या पैकरा खोंदला उदयपुर से, भिलई तीन से नौशाद अहमद हमीदुन जीशान शाहनवाज अहमद सिद्दीकी, बोरसरा नैला से प्रमोद कुमार बीमा वैभवी विनोद विभूति अंशु बबली और प्रियांशु साहू, बिलासपुर से छन्नूलाल श्रीवास अनीता पुष्पा अंजू योगिता रजन साहू हेमंत नामदेव धर्मदास वाधवानी, भाटापारा से दान सिंह रावत पद्मिनी नीरज शुभम और सौरभ रावत, ग्वालियर से सुरेश किरण लव्या आरव और एस के पापी, करजत मुंबई से अहमद भाई दुखनी सदफ जूही इकबाल इमरान अहमद आमना नसरीन आसमा परी राबिया मंतशा आशु अहमद फुलवाले प्रमीला हेमा और अंतरा सिंह दिल्ली से, डुमराव से वलीउल्लाह अंसारी सोनम वली और असमा वली। आप सभी श्रोताओं को हम सुनवा रहे हैं आप ही की पसंद पर मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के स्वर में इंदिवर का लिखा कल्याण जी आनंद जी का संगीतबद्ध किया सच्चा झूठा फिल्म का ये गीत।
1: यूं ही तुम मुझसे बात

सच्चा झूठा फिल्म के इस गीत के साथ ही ईमेल करें गीत सुने कार्यक्रम समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। इस समय रात्रि के 7:20 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम ग्राम सभा।

ग्राम सभा कार्यक्रम के सुनैया जम्मू संगवारी मल्ला महंगू भैया के राम राम जय जोहार। संगवारी हो कथे ना बूंद बूंद मा पानी हमर जिंदगानी, तो यह कहावत भर नो है एक बहुत गहरा और प्रेरणादायक यह संदेश है। एकर अर्थ ये है कि पानी के हर एक बूंद हर हमर जीवन भर अनमोल है। एकरे ले हमर खेती पशु और पूरा हमर जीवन है चलते। एला आप ऐसे घला समझ सकत हो जैसे बूंद ले बूंद कथेना घड़ा हा भरते यानी मरकी हा भरते, वैसने पानी के छोटे छोटे बचत ले भविष्य सुरक्षित हो सकत हवे। पानी नहीं है तो जीवन नहीं है। तभी तो कथेना कि पानी ले ही जिंदगानी है और जल ही जीवन है। यह सिर्फ कहावत नो है, सच्चाई है। पानी के बात चलत हवे तो अगर सूत उठ के देखे जाए तो पानी के आवश्यकता पड़ते मुंह धोए बर, शौच आदि करे बर और ऐसने स्नाने बर। सबले जरूरी होते पिए बर, फिर उन्हा कपड़ा ला धोए बर कांचे बर। कुछ भी बात आते तो देखे जाए तो पानी की जरूरत पड़ते, चाहे उन्हा कपड़ा ला धोए बर होए, चाहे फिर बर्तन के सफाई करना होए, कपड़ा बर्तन गंदगी ला हटाए बर होए, पानी के जरूरत है पड़ते। अब पानी छा

0: काम आथे। निस्तार खातिर घला पानी के जरूरत पड़थे। मवेशी बर पानी डबरी डबरा तरिया सब काम आथे। हमर गांव म मुख्य रूप ले खेती म निर्भर है और फसल ला घला पानी चाहिए। पेड़ पौधा ला घला पानी चाहिए अगर नानी आने पेड़ पौधा लगाए हो तो, और फसल ला तो पानी जरूरी छोथे। पेड़ पौधा सबे जतका भी हैं सब बर पानी की आवश्यकता पड़ते। कतको बच्छर ले देखे जाए तो देखो तो समस्या बढ़ जात हवे, जबकि जल स्तर लगातार नीचे गिरत जात हवे। हैंड पंप बोरिंग है सबके पानी सूखे लगे हवे और बारिश के पानी घला सही तरीका ले सिंचित नहीं हो पात हवे। अगर कहूँ यही स्थिति बने रही तो आने वाला समय में हमला पानी के गंभीर कमी की सामना करना पड़ सकत हवे। ये कहत हनुमान कि संगवारी हो, हमला समझना चाहिए, समझना हो ही। अब पानी के जौन बूंद बूंद है यह कीमती हुए जिला बचाना हो ही। आवाओ ना पहली गुड बात करबेज करबो, संदेश आला सुन ले जाए।
1: किसान साथियों, इफको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत। We'll be right back.

0: वेबसाइट www.daily-law.in या टोल फ्री नंबर 14454 से प्राप्त की जा सकती है।
1: किसान साथियों, इफको नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस का इस्तेमाल आसान और लाभकारी है। फसल की बुआई के 30-35 दिन और रोपाई के 20-25 दिन बाद 4 मिलीलीटर नैनो यूरिया और नैनो डीएपी 1 लीटर पानी में मिलाकर पत्तियों पर छिड़काव करें। बालियां या फूल आने के ठीक पहले नैनो यूरिया प्लस का छिड़काव अवश्य करें। नैनो डीएपी और नैनो यूरिया प्लस मिलाकर छिड़काव करने से फसल को मिलती है भरपूर ताकत।
2: हम अपन छोटे छोटे आदत ला बदल के बहुत बड़े फरक ला सकत हमन। जैसे नल्ला खुल्ला नहीं छोड़ना है, खेत मन में जरूरत के अनुसार ही सिंचाई करना और बोरिंग के पानी ला व्यर्थ में बहाए ले रोकना। और सबले बड़े बात ये है कि ग्रीष्मकालीन रबी फसल में धान के फसल घला पानी ज्यादा लगते हो मा तो तिहुला रोकना है। उनचे धान के बदला में कतको दूसर फसल ला लगाना हवे, आप लगा सकते हो और कम पानियों में लग सकते। तो एकर जमे बात के ध्यान हमार किसान भाई मला रखना हुई। अगर पानी के बचत करना हवे तो ये सब बात ला अपनाना पड़ी। और ये बात ला करे हम सकत हन कि जरूरी है कुछ न कुछ महत्वपूर्ण अगर बात करबो तो जौन हमर किसान भाई मन है ओमन ये कदम ला उठा सकत हवे। वर्षा के जल संचयन ला बढ़ावा देना ये काम कर सकत हवे। तालाब कुआं नल बोरिंग में साफ सफाई और गहरीकरण करना जरूरी हवे। पेड़ पौधा लगा के जल संरक्षण ला मजबूत करना और एकरा अलावा हमर किसान भाई मल्ला जरूरी है कि सबला सूक्ष्म सिंचाई जौन है इला अपनाना चाहिए। ड्रिप है, स्प्रिंकलर है, इला आजकल आधुनिक जौन सिंचाई के पद्धति हवे सूक्ष्म सिंचाई ओला हमर किसान भाई मल्ला अपनाना चाहिए। तो एक प्रकार ले देखे जाए तो हमर किसान

किसान भाई मन, ये जम्मे बात ला अगर बढ़िया ढंग से करी तो अच्छा है। बात यह है कि भाई सरकार और पंचायत भर की जिम्मेदारी नो है, बल्कि हम तो एक कहबो के सामूहिक रूप ले, अगर जब तक हम हर व्यक्ति हर मनखे हा ये दिशा में जागरूक नहीं हो ही, तब तक के हम पानी के समस्या ला स्थायी समाधान नहीं पा सकन। ये तो हो आज के ग्राम सभा के गोट बात। और आवा सूचना बता दे जाए कार्यक्रम संबंधी, गुरुवार और शुक्रवार के संझा जुवार 7:30 बजे ले फोन इन कार्यक्रम आधारित प्रसारित करे जाते, जेमा किसान भाई कृषि उत्पादन, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान पाए खातिर विशेषज्ञ मनो सो फोन के माध्यम ले समाधान पूछते हैं। यही कड़ी में गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 के हमारे स्टूडियो में महाविद्यालय कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी जी मन उपस्थित रही। इनकर मनसो बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक आप सवाल पूछ सकते हो। विषय हवाए धान फसल में रोग प्रतिरोधक किस्म के चुनाव और नर्सरी प्रबंधन। और 11 बजे ले 11:30 तक के दूसरा विषय हवाए खरीफ फसल में बीज उपचार की विधि और महत्व सावधानी। ये विषय से संबंधित जो भी समस्या है, जिज्ञासा है, जगह समाधान पाए खातिर हमारे फोन नंबर हवाए 2665 92। फोन लगाए ले पहली हमारे स्टडी कोड 07752 जरूर लगा हो। ये कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 7 मई 2026 और 8 मई 2026 के संझा जुवार 7:30 बजे से 8 बजे तक आप सुन सकते हो। ये तो सूचना और ग्राम सभा कार्यक्रम बेरा हुआ था हमारे मयारू कार्यक्रम किसानवाड़ी में जाए के, तो आवा चली किसानवाड़ी कार्यक्रम सुन ले जाए।

फिर ले झोंको हमार किसानवाड़ी कार्यक्रम में महंगू भैया के राम राम जय जोहार। जम्मू संगवारी मन के स्वागत हवे। किसान भाई हो, भारत मा पानी के कमी ला देखत हुए खेत तालाब योजना हर बहुत महत्वपूर्ण पहल है। एक हर मुख्य उद्देश्य की अगर बात करबो तो खेत मा वर्षा के पानी ला रोक के सिंचाई बर सुरक्षित रखना है, जेखर ले किसान सूखा समय मा घला खेती के काम ला कर सके। अब आप कहिया कि ये खेत तालाब योजना का है, तो किसान भाई हो, ये योजना मा किसान मल्ला अपन खेत मा ही छोटे तालाब डबरी डबरा जिमा पानी ला संग्रहण करे जा सके। एला ये योजना प्रोत्साहित करे बर करे गए। एमा सरकार द्वारा आर्थिक सहायता यानी सब्सिडी घला दे जाते। ये योजना ला कतको राज्य मा प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंतर्गत घला जोड़े गए हवे। ये तो हुई इस योजना के बाद जल संरक्षण मा अगर बात करबो तो खेत तालाब के का भूमिका है। तो किसान भाई हो, खेत तालाब जौन सिर्फ पानी जमा करे के ही बात नहीं है, साधन नो है, बल्कि पूरा जल प्रबंधन के आधार यह है। जैसे वर्षा जल संचयन, भू जल स्तर ला बढ़ावा देना, सूखा ले बचाव, फसल उत्पादन ला बढ़ावा देना, संगे संग मछली पालन ले अतिरिक्त आय ला बढ़ाए जा सकत हवे। अब बात करबो खेत तालाब बनाए के फायदा की, तो एकर ले सिंचाई लागत कम होते, डीजल बिजली के बचत घला होत है, बछर भर में दो ले तीन फसल लेना आसान हो जाते, औ जल संकट में घला खेती जारी रहते और पर्यावरण संतुलन घला बने रहते। ये तो हुई खेत तालाब योजना और जल संरक्षण के गुड बात आज के बाद। अब अगोरा जैसे जल के बात करते छन, संकट के बात करते छन, तो सुगर सन गीत तो हम सुनवाबे करबो। फिर पहले आज फोनिंग कार्यक्रम में तो अगोरा रहते हमारे किसान भाई मन के, आज फोनिंग कार्यक्रम के आज संगवारी हो स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वाली गांव में। आप कौन गांव में ले जाते हमें

0: अपन जब प्राकृतिक खेती करथन घुरुआ के खातू माटी डालबो जेन में है ना भाई तो ओकर फायदा हमला ज्यादा है
1: और इला करना बहुत जरूरी है जेन हमर पूर्वज मन करी तेन खेती है निश्चित ले हमरा पर वरदान बनी
0: बिल्कुल बिल्कुल वह वरदान है ओला हमन सजो के रखबो और धन्यवाद राजू भाई आप बहुत अच्छा बात ला लेके हमर गांव में आए हैं ऐसे आत रही है और गांव वाला मतलब अच्छा अच्छा सुझाव
1: धन्यवाद आप ला हम ये करना चाहथन कि आप मन प्राकृतिक खेती के संगे संग पारंपरिक खेती संभाल के रखे हा हमर कार्यक्रम के सुनिया किसान भाई मतलब बता दे जिन सरसों आप लगा रहा उखर उत्पादन कतका लहे है
0: ढाई क्विंटल के आसपास होते ही कड़ में
1: अच्छा
0: हाँ
1: तो इकल्ले आप संतुष्ट हो
0: हाँ बिल्कुल बिल्कुल हाँ
1: तो इकर भंडारण करे के तरीका का है आपके
0: नहीं हम भंडारण नहीं करन हमारे तो मार्केट में तुरंत निकाल देते हैं या फिर अपन हाँ। उपयोग करेला
1: वो आप मन के क्षेत्र में तो कृषि उपज मंडी जयरामनगर
0: है बस बस हाँ उकर उपयोग नहीं करे ना सामान्य बाजार हमारे उपलब्ध हो जाते बाजार में बेच देते हैं और खाए पिए ला अपन उपयोग करेला अपन के पूर्ता यहाँ पेरवा लेते हैं हाँ तेलघानी में
1: हाँ सर जी आपके हमारे कार्यक्रम में स्वागत है जय जोहार
2: जय जोहार जय जोहार
1: आपके
2: रजनीकांत पटेल
1: पटेल जी आपके नाम ही काफी है और आपके बात करबो समाज के लोगन मन खास करके किसानी के तकनीक ला जितका करीबी ले समझते ओहर निश्चित रूप ले हर समाज के लोगन मन में प्रेरणा सिद्ध होते का कहना चाहता हो
2: सही बात है कि किसान बहुत ही मेहनत करते और जमीन से जुड़े रहते और आज की स्थिति ला हमन देखा था कि किसान पैदावार तो करा थे लेकिन लोकल ज़्यादा खर्च कर चुका थे दवाई में पानी में और अपन जोताई फंदाई वो हिसाब से किसान ला बहुत प्रॉफिट नहीं है हाँ सब ला अगर दवाई में लगा खर्चा हो जाते
1: हाँ खेती हम ला नीम आधारित खेती के डर जाना है जैविक खेती के डर जाना है ये कहना चाहते
2: हैं हम ला जैविक खेती की तरफ जाना है जमा मनुष्य के स्वास्थ्य भी ठीक रहे और पैदावार
1: धरती माता घरों के सुरक्षित रहे तो ये बता देवा आप मन बहुत सुघर बात ला बता था पशुपालन करता हो कि नहीं आप
2: हाँ मैं दो ठो गाय रखे हैं
1: अच्छा
2: कम से कम घर के लिए सात्विक शुद्ध दूध मिल जाए
1: हाँ हाँ और उमा के गोमूत्र हो गए और अपन गोबर है वह वरदान हो कि ऐसा वैज्ञानिक मन कहते जी कि एक ठीक गाय है तीन एकड़ के खेती लगभग पर्याप्त है
2: पर्याप्त है
1: क्या कहना चाहता
2: हाँ गोबर है एक गाय के वास्तविक में तीन एकड़ के लिए पर्याप्त है दो रखा तो छह एकड़ के लिए पर्याप्त है तो जितना खेती हो उसने हमन गाय रखे हैं और जितका हमारे जनसंख्या है घर के वो हिसाब से दूध के पैदावार करते हैं।
1: की बात करबो तो गोबर के बात करबो गोमूत्र के बात कर बीजामृत है अन भाई जीवामृत है घन अमृत है एला बना के हमारे किसान भाई मन कम खर्च माने शून्य बजट का सीधा सीधा अपन कतको एकड़ ला बढ़िया पलो सकते हैं उत्पादन बढ़िया ले सकते हैं
2: उर्वरक के जो उपयोग है ना ओला एकड़ द्वारा हमन कम किए जा सकते हैं क्योंकि ओला जब हमन गौ के मूत्र का उपयोग करथन तो ओकर से कुछ अपना ग्राम सहायक द्वारा सुझाव दिए जाते हैं कि क्या उपयोग करके कैसे उर्वरक के क्षमता ला कम करे जाए तो एमा हमन किसानी में बजट भी कम ला सकथन और पैदावार भी ले सकथन
1: तो गोमूत्र के आप मन अपन किसानी के बूता में उपयोग करत हो
2: हाँ करता थे
1: का फायदा नजर आते आप
2: कीटनाशक के उपयोग कम पड़ते
1: हाँ और शास्त्र में ये भी कहे गए है कि धरती माता के विषाक्तता ला सिर्फ और सिर्फ गोमूत्र ही और गोबर हा ओला स्वस्थ कर सकते हैं ये बात से आप सहमत हो कि नहीं
2: हाँ बिल्कुल बिल्कुल सहमत हूँ
1: हाँ हाँ अच्छा अच्छा तो कते कन भुइया में आप मन खेती किसानी के उद्यम न करता
2: हाँ, मैं 7 एकड़ में करता हूँ
1: अच्छा। हाँ। तो आपके खेती के का कैसन प्रकृति है
2: मैं भी जैविक खेती ला ज्यादा प्राथमिकता देता हूँ जैसे खाए बर तो 2 एकड़ अपन परमानेंट जैविक खेती के उपयोग करते हैं बाकी बेचना है बोला थोड़ा सा पैदावार भी लेना रहते
1: हाँ, हाँ।
2: थोड़ा सा वो उर्वरक क्षमता बढ़ाए पड़ते
1: बहुत अच्छा बात ला बता था आपन पटेल जी लेकिन हमारे कतको जी किसान भाई मन देखे और जब ले धान के भाव बढ़े ना तो कोनो किसान है अपन खाए बन नहीं लगाते
2: नहीं लगाते अब हमारे चंद्राकर भैया ही सुझाव दे रही एक टाइम में कि उर्वरक के क्षमता कम करना है और जो अपना जैविक खेती है ना उसका उपयोग करके देख बढ़िया से वो दवाई की मात्रा वगैरह भी कम लगते
1: हैं हालांकि जैविक खेती में हम कहें तो उत्पादन कम आते हैं इससे किसान भाई मन करते लेकिन उनका मांग तो ज्यादा है ना
2: हाँ बहुत ज्यादा मांग है और अपन स्वास्थ्य स्वस्थ बनाए रखना है तो जैविक खेती बहुत जरूरी है
1: तो ये समय अने घाम के तफर्रा चला थे तो आपके किसानी के बूता और पशुपालन के बूता का पैसन चला थे
2: हाँ ठीक है जिसना से इसना वातावरण निर्मित होते उस हिसाब से अपन काम करवाथन।
1: अच्छा, जानना आप ले चाहते ना जिसे गाय के आप बात करें तो गर्मी के दिन मा इकर रहन सहन बर रखे बर का फैशन व्यवस्था करे आप
2: के लिए अलग से शेड है और ओकर लिए ग्रीड मैट वगैरह के सब उपयोग रहते पानी वानी सब के अलग से।
1: हाँ।

0: नहीं ज्यादा
1: हैं? धोता हो कि नहीं?
0: नहीं, गाल धोने हैं।
1: अच्छा, तो
0: हाँ
1: जिन चारा कुट्टी खावा था, उपचारित करके
0: हाँ
1: खावा था, उसमें कोनो किस्म के मिनरल या पोषक तत्व ले भरपूर आहार देता कि
0: हाँ
1: नहीं?
0: अपन कपिला पशु आहार आते, या अपन जो चावल के कनकी आते, कोढ़ा आते,
1: जी
0: और अपन अकरी दाना वगैरह, गुड़ वगैरह मिक्स के
1: अच्छा।
0: करके देसी बना के अपन तैयार करते हैं।
1: मतलब आपके पशु स्वस्थ है और स्वस्थ दूध देते
0: हाँ
1: हैं।
0: एकदम स्वस्थ है और स्वस्थ दूध देते हैं।
1: अच्छा, एक ठी बात के हम

0: युवा मन पढ़ीन, युवा शक्ति राष्ट्र शक्ति होते आज एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, किसान के क्षेत्र में, हमारे क्षेत्र के किसान मन आगू बढ़त जाते, युवा मन खास करके। तो आधुनिक खेती ला आप मन बढ़ावा नहीं देव का?
1: नहीं बोला काबट नहीं देवो भाई, देखा समय के हिसाब से अगर आप नहीं चले तो पीछे हो जाए। तो आधुनिक खेती में बढ़ना है जरूरी है, और शासन के वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग भी करना है।
0: हाँ।
1: उत्पादन भी बढ़ाना है और हमर जमीन जायदाद खराब भी मत हो। दोनों बात ला व्यवस्था बना के चलना है,
0: संतुलन बना के रखना है।
1: एकदम एकदम जरूरी है।
0: अभी पटेल जी मैं बता रही है, गरुआ रखे है, बढ़िया देख रेख करते, आप करा कठी गरुआ है?
1: अब मोर तो पुराना गाय है, चाटो गाय हवा।
0: अच्छा,
1: हाँ, सामान्य ढंग से अपन। हाँ, हाँ, हाँ।
0: अच्छा, देसी गाय के आप मन बात कह दिया तो देखा कि आज कोनो किसान मन देसी गाय ला रखना नहीं चाहते, समझ से परे है। जबकि देसी गाय के गोबर और गोमूत्र हमार अने पूरा खेती पर सबसे ज्यादा उपयोगी है, आपके विचार जानना चाहो।
1: असल में का है, आप उत्पादन के दौड़ में सब भागे चलते है।
0: हाँ, हाँ।
1: ना भाई, और देसी गाय रखिया तो देसी मतलब उत्पादन कम दे। एक सामान्य बात है, आप देसी घी पूछिया कोकरो से तो नहीं मिला, मिल तो जरूर जही बाजार में।
0: हाँ, हाँ।
1: लेकिन ओकर शुद्धता के प्रमाणीकरण नहीं हो सके। अभी आप हमार सो चाहिए ना तो हमार सो देसी घी मिल जाए।
0: हाँ, हाँ,
1: आप हमला कीमत नहीं दे सका।
0: हाँ, हाँ,
1: तो हम अपने उपयोग में रखे रहते हैं देसी गाय के उपयोग, ये है ओकर क्वालिटी है ना भाई। अभी एक झन लड़का बोर से पूछिस कि सरसों तेल है देसी अगर ओरिजिनल मिल जाए तो कतका चलत है? तो बिलासपुर में 400 रुपये चलत है, और बाजार में जिन सरसों के तेल मिले थे ते 150 रुपये मिला थे।
0: हाँ, हाँ,
1: अब बताओ वो ओरिजिनल की है ओरिजिनल है?
0: तो भ्रमित हो जाते हैं,
1: तो आदमी भ्रमित हुई 400 के तेल किसना है और 150 के तेल
0: किसना है। हाँ, तो बता था तेल के बाद जब चल गई सरसों का लोग खेती करे है तो तेल कहूँ पर पेरवा के देखे आप?
1: हाँ, हाँ, अभी यदि मोर पौर के तेल है अभी यदि आखिरी अचार में डाले।
0: वाह वाह,
1: अभी साल फिर
0: मतलब पौर जिन पेरवा रहा तेल अभी तक बौरा था।
1: हाँ, हाँ,
0: शुद्ध है।
1: हाँ, एकदम आखिरी डाले हैं दे, अचार वो डाले ना।
0: तो ये साल कते का निकलवा?
1: अभी निकलवाए नहीं ना, अब जाबो है तो खत्म हो गया।
0: अच्छा,
1: अब पेरवा
0: तो कते तेजी से सरसोला लुए नुखर बाद तुरंत पेरवाना चाहिए तो उमा कम तेला थे से के।
1: हाँ, उसे कहना तो रहते कि जब वो कच्चा रहते ना तो थोड़ा सा उत्पादन अच्छा आते। हाँ, हाँ, और समय के हिसाब से अब हम अपन हिसाब से एडजस्ट कर देते हैं। अब ओरिजिनल अपन घर के चीज कम आई तब वो चल जाएगी।
0: अच्छा पटेल जी, आपले फिर हम चर्चा करना चाहते हैं 7 एकड़ जैसे भूया आप बता था, आज युवा मन खेती किसानी ले हटत जाते हैं और सबले बड़का रोजगार किसानी है। देखरे सीधी पहली के तैया के सियान मन कहे कि उत्तम खेती मध्यम व्यापार, आज घलो खेती है उत्तम है, का कहना चाहते हैं?
2: आज भी खेती उत्तम है, लेकिन नया जनरेशन के जो दौर है वो मिट्टी से दूर होना चाहते, और मिट्टी से दूर होना चाहते, यहाँ कम मेहनत है और कल ज्यादा मेहनत बाहर भले करी
0: जी।
2: कम इनकम इनकम भले है लेकिन तुरंत के तुरंत पैसा देखते ना, तो जो नया बेच है वो सब शहर की ओर जाते है।
0: हाँ, हाँ।
2: जात तो है, वहाँ भी कुछ सीखे मिला थे, हो सकते खेती से भी वहाँ अच्छा रोजगार मिल जाते। तो नया युवा जनरेशन जाके वहाँ नया टेक्नोलॉजी के उपयोग करा थे, तो ये नाम से थोड़ा सा खेती से दूर हो जाते।
0: आप मन किसान क्रेडिट कार्ड बनवाए?
2: हाँ, बनवाए हैं।
0: एकर फायदा का है?
2: एकर से बहुत फायदा है
0: ना,
2: जब चाहिए तब ऋण मिल जाते।
0: हाँ।
2: बीमा हो जाते।
0: हाँ।
2: कुछ फसल के नुकसान होते ओकर द्वारा भी नुकसान के भरपाई हो जाते।
0: अच्छा, प्रधानमंत्री जी मन के जिन योजना चलते, प्रधानमंत्री कृषि जन धन योजना पे बात करबो के कृषि सम्मान निधि योजना, तेकर फायदा ले था आपका?
2: नहीं, कृषि सम्मान योजना के फायदा नहीं लेता।
0: अच्छा, आप मन ले था चंदा कर?
1: कृषि सम्मान के मिलते।
0: अच्छा, कतका मिलते?
1: 6,000 रुपये मिलते साल के।
0: तेकर का कैसन उपयोग करता?
1: अभी तो खेती खार में उपयोग हो जाते हैं, पारिवारिक रूप से काम हो जाते हैं, जैसे कुछ कुछ आते बर बिहा वगैरह में तो उस समय उपयोग हो जाते हैं।
0: अच्छा, हर गांव में देखिए तो ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी मन या कृषि सखी है, पशु सखी है, किसान मित्र मन काम करते हैं, आप गांव में इतना कुछ व्यवस्था हवा है?
1: हवा है, लेकिन धरातल में ठीक से आ नहीं पाते हो मन।
0: अच्छा।
1: किसान मन से अच्छा से सहयोग नहीं कर पाए, और किसान मन से सहयोग के मतलब ये होते उहू मतलब अपेक्षा करी सहयोग नहीं मिले, किसान मन वो बात ला नहीं समझाए, तेकर वजह से मन धरातल में ठीक से काम नहीं कर पाए।
0: अच्छा, कृषि वैज्ञानिक के बात करबो हन भाई, तुम मन हमार किसान मन मर के गुरु है, और सबसे बढ़िया बात है कि आप मन के लठमा कृषि विज्ञान केंद्र बिलासपुर का कृषि महाविद्यालय बिलासपुर है, एक कुछ फायदा उठा था आप मन?
1: अब जाथन कभू कभू जैसे सेमिनार के रथे
0: हाँ।
1: कृषि पखवाड़ा रथे तो आरियो

0: के माध्यम से लेके जाते और पखवाड़ा घुमाते आसपास में।
1: हमन अपन कार्यक्रम के सुनिए किसान भाई मल्ला आपके गांव के प्रकृति रेखा चित्र खींच के बताए हम रेखा जो कि लीलागर नदी के खड़म आपके गांव बसे कह के आपके गांव में जामुन और बिही के बगीचा की चर्चा करना चाहबो, का स्थिति है?
0: अब पहली रही से बिही है, अब का हो गए समय के हिसाब से ना वो खराब हो गए सब बिही के पेड़ मन। अब बिही है समझ लो थोड़ा बहुत दो चार पेड़ बचे है इसे स्थिति।
1: तो उद्वहन सिंचाई की आप चर्चा चला लिफ्ट इरीगेशन उखल आए के बाद आपके गांव के किसान मन के जीवन रेखा में का कैसन बदलाव आई है?
0: अब वो मन तो ठीक ठाक है, बढ़िया खाद पिया थे जिन कमाए खाए जात रहे थे ना बंद हो गए।
1: पलायन रुक गए?
0: हाँ पलायन रुक गए, जब तक किसानों से प्रभावित रही से तेरमन और मन बढ़िया खेती के ऊपर आश्रित हो गए।
1: अच्छा,
0: अब बढ़िया खेती ला बढ़िया बहुत अच्छा ढंग से करा थे।
1: मतलब हम ये कह सकते हैं कि आपके गाँव खेती ले जुड़ के निश्चित रूप ले स्वरोजगार के क्षेत्र में आगे बढ़त जाते।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: तो आप हम ये जानना चाहबो जिसे अब गर्मी के तफर्रा चलत है तो ये घनी हमर किसान भाई मन ढेलवानी चढ़ा के वो दिन कथे जमा दलहनी तिलहनी के जिसे आप बात कहेगा तो ऐसा आपके गांव में आप करत हो कि नहीं?
0: हाँ अभी अभी हमन चूँकि रवि फसल के उपयोग करत हन तभी नहीं कर पाए हन
1: जी।
0: और जैसे ही हमन धान वगैरह मन लुवाई कर डालबो तेकर बाद हमन करबेज करबो, साल में एक बार करे कर लगते और खेती रहते तो कुछ खेती ले ये साल करथन कुछ खेती ले अगले साल करथन।
1: अच्छा पटेल जी, आप पढ़े लिखे किसान हो और भारत सरकार है मिलेट फसल ला बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते मोटा अनाज ला, तो क्या कहना चाहता?
2: हाँ मोटा अनाज बहुत जरूरी है ना शरीर के पोषक तत्व के लिए, मिलेट खेती बहुत ही जरूरी है। सब हमन अधिक उत्पादन के लिए एति ओती भटकत हन और वो नुकसान ज़्यादा है और एमा जो शारीरिक जितना रोग के क्षमता ला अगर बनाए रखना है रोग प्रतिरोधक क्षमता ला तो मिलेट खेती बहुत जरूरी है।
1: चला बहुत सुघर सुघर बात ल बताया है ग्राम पंचायत बेलटुकरी जिला कसौंदी के नाम ले घलोक जानथन प्रकृति के गोद में बसे है संगवारी हो ये गांव हो ये निश्चित रूप ले किसानी के क्षेत्र में आगू बढ़त जात है। आज आप मन के गांव आयन और किसानी के बारे में संगे संग सरकार की योजना के बारे में बढ़िया जानकारी दिया, हमार घर जाए के बेरा हो गए। ग्राम पंचायत बेलटुकरी के रहिया जम्मू किसान भाई बहनी मन राजू भैया के राम राम जय जोहार
0: जय जोहार।
3: अभी सुने न भाई स्थल रिकॉर्डिंग में आधारित कार्यक्रम किसान वड़ी गांव में ग्राम पंचायत बेलटुकरी विकास खंड मस्तूरी जिला बिलासपुर के स्थल ध्वनांकन में आधारित कार्यक्रम रिकॉर्डिंग और संपादन रही समय महेंद्र साहू और राजू भैया के और संयोजन और प्रस्तुति रही समय डॉक्टर सुप्रिया भारतीन के। ये तो हुई से किसानवाड़ी गांव में कार्यक्रम और अब ये सूचना मतलब बोलबेच करबो बतावे करबो फिर ये प्रोमो एफसीटी ले पहले सुन लेते हैं तो अच्छा होगी।
4: अरे सुन तो
5: मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को।
4: किसको?
5: अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिसे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही है। हुँ?
4: अच्छा ये बात है।
5: हाँ क्यों क्या हुआ अब बात नहीं होती क्या?
4: अब तो झट से बात हो जाती है।
5: ऐसा क्या?
4: हाँ अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल्का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया।
5: अरे वाह इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म।
4: हाँ
5: तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है।
6: कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर।

0: मैंने 2015-16 से ऑयल पाम की खेती की है और इससे पर्यावरण को कुछ नुकसान है ही नहीं। और इनका जो पेड़ पौधा होता है, इनसे हम मल्चिंग भी यूज करते हैं और इनका यूज से हम काफी सारा जमीन में नमी लेते हैं। और इनके अंदर इंटरक्रॉप जो है, जो कपास वगैरह लगाते हैं, तो हम डबल गुण आय लेते हैं और अच्छा रहता है।
1: ऑयल पाम का खेती में धान और गन्ने से कम पानी लगता है। इसमें गवर्नमेंट का तरफ से ड्रिप सिंचाई के लिए पैसा भी दिया जाता है।
2: ऑयल पाम का खेती के लिए मुझे सरकार ने पौधे सीडलिंग देते हैं, वो जब बड़ा हो जाता है, जो फल जो देता है, हर महीने सरकार उसी फल खरीदने के लिए एक रेट बना कर देते हैं, वही रेट पे कंपनी खरीद लेते हैं।

0: मैं काट के खट्टा कर देता हूँ, कंपनी उठा के लिए जाते हैं।
1: अरे अरे अरे क्या कर रहा है इधर इधर इधर, हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का।
2: पुतला बोल रहे
1: पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं?
2: मतलब
1: देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ,
2: परम तो सभी डाले हैं।
1: सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं।
2: सच है?
1: रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं।
2: ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूँगा।
3: माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती।
4: अभी संदेशा सुनील, अब सूचना सुन लेवा आप मन। गुरुवार और शुक्रवार के संझा जुवार 7:30 बजे ले फोनिंग कार्यक्रम आधारित कार्यक्रम प्रसारित करे जाते, जेमा किसान भाई कृषि उत्पाद, पशुपालन, मुर्गी पालन, मछली पालन और अपन स्वास्थ्य संबंधी समस्या के समाधान ला पाते, विशेषज्ञ मन से फोन में सवाल पूछ के समाधान ला पाते। यही कड़ी में गुरुवार दिनांक 7 मई 2026 के स्टूडियो में हमार कृषि महाविद्यालय बिलासपुर के प्राध्यापक डॉक्टर आर के एस तिवारी जी मन उपस्थित रही। इनकर मनसो बिहनिया 10:30 ले 11 बजे तक आप सवाल पूछ सकते हो। विषय हवे धान फसल में रोग प्रतिरोधक किस्म के चुनाव और नर्सरी प्रबंधन, और बिहनिया 11 बजे ले 11:30 में दूसरी यह विषय हवे खरीफ फसल में बीजोपचार के विधि और महत्व और सावधानी। ये विषय ले संबंधित जन भी समस्या है, जिज्ञासा है, जगर समाधान पाए खातिर हमार फोन नंबर हवे 2665 92। फोन लगाए ले पहले हमार बिलासपुर के एसटीडी कोड ला लगाए ले झन भूला हो, 07752 ला जरूर लगा हो। ए कार्यक्रम के रिकॉर्डिंग के प्रसारण 7 मई 2026 और 8 मई 2026 के संझा जुवार 7:30 से 8 बजे तक आप सुन सकते हो। ये तो ही सूचना। और अब जैसन गोड शुरू कर रहे हैं कि एक एक बूंद पानी बहुत जरूरत है, एला चतुर मनखे ही बढ़िया ढंग से गीत में बता सकत है कि जे दिन कुआं के पानी अटा जाए ही रे। ये बहुत सुगर गीत है, जिला गावत हमें चतुर राम साहू और उनका चंगवारी मन। तो ले सुनो ये गीत ला।

जे दिन कुआ ले पानी हटा जाए ये सुघर गीत ला गावत रही है चतुर राम साहू उनकर संगवारी मन। समय हो गए है, मौसम की अगर बात करबो तो बहुत खराब मौसम है भैया। आज चारों कती ऐसे हमार बिलासपुर शहर की अगर बात करबो तो पानी वानी गिरे है, मौसम खराब है, पेड़ पौधा गिरे है। देख के रैया भैया आपो जन गिर जाओ, हम तो गिर गए कह जाए, बड़ा समस्या है। और मौसम का देख के है ना भाई अपन सब उतल करो। तो ये तो इस ग्राम सभा किसानवाड़ी कार्यक्रम जाए ले पहली हम बता दी कि हमारे फोनिंग कार्यक्रम ला सुनत रही हो और बढ़िया ढंग से मंगू भैया ला दो आज्ञा किसानवाड़ी कार्यक्रम सुनिए जम्मू संगवारी मल्ला मंगू भैया के राम राम जय जोहार।

किसान वाणी, ये कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8 बजे हैं, पेश है सुगम संगीत। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अनुराग शर्मा।

0: निखार। इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
1: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। इसमें आज कलाकार हैं अनुराग शर्मा।

0: जाए निखार।
1: इफको नैनो उर्वरकों का कमाल, हर खेत किसान बने खुशहाल।
2: सुगम संगीत आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के बिलासपुर केंद्र से। सुगम संगीत में आज कलाकार हैं अनुराग शर्मा।

अनुराग शर्मा की गाई इस नज्म के साथ ही सुगम संगीत समाप्त हुआ। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है, एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर। रात्रि के 8:15 हुए हैं। पेश है कार्यक्रम रजनीगंधा।

श्रोताओं, धरती, पानी, गगन, वायु और अग्नि, इन पांच तत्वों से मिलकर हमारे शरीर की संरचना हुई है। और इन दिनों हमारा ध्यान इन पांच तत्वों में सर्वाधिक आकर्षित होता है, पानी के प्रति। बढ़ती तपन के परिणाम स्वरूप पानी प्रकृति का वो अनमोल धरोहर है जो हम सब की सूखे कंठ की प्यास बुझाता है और धरती को तृप्ति देकर इस भूधरा पर हरियाली का स्वागत करता है। बिन पानी सब सुन, पानी की महत्ता को लेकर हमारे ग्रंथों में भी अनेक प्रकार की बातें वर्णित हैं जो जल की महत्ता को प्रतिपादित करती हैं। आज के रजनीगंधा कार्यक्रम में हमने जल को यानी पानी को विषय वस्तु बनाकर आपके सामने बातों और गीतों के इस कार्यक्रम में एक शुरुआत की है।

जल संरक्षण का अर्थ है पानी का विवेकपूर्ण और कुशल उपयोग करके इसे संरक्षित करना या इसे बचाना। जल एक कीमती संसाधन है जिसे भविष्य की जरूरतों और पर्यावरण के लिए संरक्षित करना अति आवश्यक है, और ये जिम्मेदारी सिर्फ शासन या किन्हीं संगठन या समुदायों पर छोड़ देना उचित नहीं है। इस जल की महत्ता को हम

श्रोताओं, छोटे छोटे उपायों को हम अपनी आदतों में शामिल करें तो हम बेहतर तरीके से जल संरक्षण कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम घर के अंदर नलों में होने वाले रिसाव को ठीक करें, पानी का समुचित उपयोग करें, सीमित उपयोग करें, ब्रश करते समय या बर्तन धोते समय नल अनावश्यक चालू न रखें ताकि जल व्यर्थ न बहे, और साथ ही साथ घरेलू जल का संरक्षण करने के साथ साथ हमें वर्षा जल का संचयन करना भी बेहद आवश्यक है। भूजल स्तर को समृद्ध करने के लिए वर्षा जल बेहद कारगर उपाय है और इसे अपनाकर हम जल समृद्ध समाज की परिकल्पना को साकार कर सकते हैं।

श्रोताओं, पृथ्वी पर मीठे पानी का जो स्रोत है, जो उपलब्धता है, वो सीमित है। समुद्री जल अधिक मात्रा में है और मीठा पानी, शुद्ध पेयजल, वो सीमित मात्रा में है। ऐसे में ये जिम्मेदारी हम पर और भी गंभीर रूप से है कि हम इस पेयजल की जो राशि हमें मिली है, इस प्राकृतिक उपहार को हम सहेज कर रखें, इसे व्यर्थ न बहने दें और इसका संचय करें, इसका संरक्षण करें, ताकि जल समृद्ध वातावरण हम भावी पीढ़ी को भी सौंप सकें।

भावी पीढ़ी को जल संकट से जूझने पर मजबूर कर दे और हमें जल के लिए फिर से ईश्वर से प्रार्थना करनी पड़े कि वे हमें मेघों के माध्यम से जल वृष्टि कर हमारी धरा को हरा भरा कर दे।

श्रोताओं, जल रहेगा तभी सुरक्षित कल रहेगा, और जल से ही जल क्रीड़ा और उससे होने वाले आनंद की अनुभूति हमें हो पाती है।

0: हम उम्मीद करते हैं श्रोताओं कि आप सभी जल संरक्षण हेतु तत्पर होंगे। और अब समय हो चला है रजनीगंधा कार्यक्रम समाप्त करने का, तो अनुमति दीजिए मानस तिवारी को। नमस्कार।
1: स

रजनीगंधा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं। समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

रजनीगंधा कार्यक्रम अभी आप सुन रहे थे। यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। रात्रि के 8:45 होने को हैं समाचार संध्या और अंग्रेजी में समाचार। कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवलीन निगम। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में दो और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया। सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या 33 से बढ़ाकर 37 की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजेरा पर हुए हमले की निंदा की। इसमें 3 भारतीय नागरिक घायल हुए। उन्होंने पश्चिम एशिया में शांति और स्थिरता बहाल करने के लिए संवाद और कूटनीति का आह्वान किया। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम और पुदुचेरी में सरकार गठन के लिए राजनीतिक गतिविधियां तेज। और भारत आईसीसी क्रिकेट पुरुष T20 टीम रैंकिंग में शीर्ष पर बरकरार। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दे दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस योजना से आयातित कपास पर निर्भरता कम करने और विदेशी मुद्रा की बचत करने में भी मदद मिलेगी।
1: ये प्रधानमंत्री जी का विजन है 5F, फार्म से फाइबर बनाना, फाइबर से फैक्ट्री में जाना, फैक्ट्री से फैशन, फैशन से फॉरेन शोर्स तक कॉटन का पूरी सप्लाई चेन को मेंटेन करना, कस्तूरी कॉटन, इसकी प्रॉपर मार्केट में स्थापना करवाना, ये भी इस मिशन का पार्ट है। 32 लाख किसानों को इसका बेनिफिट होगा और कॉटन की प्रोडक्टिविटी उसको डबल करने का इसमें टारगेट हाथ में लिया है। हम प्रोडक्शन को पहुंचाना चाहते हैं 498, जिससे कि भारत की कंप्लीट डिमांड भारत में ही मीट हो सके, आत्मनिर्भर बन सके।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1,00,000 करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के पांचवें चरण को भी मंजूरी दे दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों और एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी दी जाएगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। श्री वैष्णव ने बताया कि इनमें गैलियम नाइट्राइड तकनीक पर आधारित देश की पहली वाणिज्यिक मिनी माइक्रो LED डिस्प्ले सुविधा और एक सेमीकंडक्टर पैकेजिंग सुविधा शामिल है।
1: 2 नए सेमीकंडक्टर यूनिट्स, अब तक 10 सेमीकंडक्टर यूनिट्स का अप्रूवल हुआ है इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन में, उसमें से 2 में कमर्शियल प्रोडक्शन ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। एक 31 मार्च को प्रधानमंत्री जी ने उसका इनॉग्रेशन किया था, एक 30 अप्रैल को उसका सेकंड वाले का, और अच्छी बात यह है कि दोनों के दोनों प्लांट्स की फुल कैपेसिटी बुक हो चुकी है, मतलब जितना मैन्युफैक्चर करे वो फुल्ली उसकी बुकिंग हो चुकी है।
0: श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने संसद में सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशों की संख्या संशोधन विधेयक 2026 पेश करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी है।
1: 2014 से अगर हम देखें तो 25 सुप्रीम कोर्ट के जजेस थे और आज 33 से 37 किया, यानी करीब करीब 50% जजेस की संख्या में वृद्धि की है, क्योंकि जस्टिस डिलीवरी बहुत इम्पोर्टेंट है। टोटल जो 92,000 केसेस पेंडिंग है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत जरूरी है कि हम जजेस बढ़ाएं और ये जजेस बढ़ाए गए।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेली लॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त अरब अमीरात के फुजैरा पर हुए हमलों की कड़ी निंदा की है। इन हमलों में 3 भारतीय नागरिक घायल हुए हैं। श्री मोदी ने कहा कि नागरिकों और बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्होंने कहा कि भारत संयुक्त अरब अमीरात के साथ एकजुटता से खड़ा है और संवाद तथा कूटनीति के माध्यम से सभी मुद्दों के शांतिपूर्ण समाधान के लिए समर्थन दोहराता है। एक रिपोर्ट।
2: प्रधानमंत्री ने कहा है कि होर्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित और निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करना क्षेत्रीय शांति स्थिरता और वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। विदेश मंत्रालय ने भी हमले की निंदा करते हुए इसे अस्वीकार्य बताया है। मंत्रालय ने संघर्ष को तत्काल समाप्त करने का आह्वान किया और इसमें नागरिक बुनियादी ढांचों और निर्दोष लोगों को निशाना बनाने की आलोचना की है। पश्चिम एशिया संघर्ष को हल करने के लिए भारत लगातार वार्ता और कूटनीति का समर्थन कर रहा है ताकि क्षेत्र में शांति और स्थिरता बहाल हो सके। प्रिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्रियंका अरोड़ा।
1: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की ऐतिहासिक जीत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। व्हाइट हाउस के प्रवक्ता कुश देसाई ने बताया कि पिछले महीने ही फोन पर हुई बातचीत में राष्ट्रपति ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की सराहना की और कहा कि भारत भाग्यशाली है जो उन्हें श्री मोदी जैसा नेता मिला है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक और ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोटों की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया है। उधर निर्वाचन आयोग ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोपों को निराधार और झूठ बताया है। दक्षिण कोलकाता के जिला निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि पूरी मतगणना आयोग के नियमों और विनियमों के अनुसार ही संपन्न हुई। मतगणना के दौरान सीसीटीवी कैमरे बंद किए जाने के आरोप का खंडन किया गया है और कहा गया है कि कैमरे पूरी मतगणना के दौरान चालू रहे हैं। उधर भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा ने कहा कि चाहे वो इस्तीफा दें या न दें, वर्तमान विधानसभा का कार्यकाल बृहस्पतिवार को समाप्त हो रहा है और उसके बाद सदन का कोई भी सदस्य नहीं रहेगा। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। एक रिपोर्ट।
3: केरलम में सरकार गठन को लेकर कांग्रेस खेमे में चर्चाएं जारी है, लेकिन विधायक दल की आधिकारिक बैठक के संबंध में अभी तक कोई जानकारी नहीं मिली है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ ने केरलम में 140 विधानसभा सीट में से 102 सीट पर शानदार जीत हासिल की है। विधायक दल की बैठक के बाद पार्टी सरकार गठन के लिए राज्यपाल से संपर्क करेगी। यूडीएफ सूत्रों के अनुसार विधायक दल की बैठक दिल्ली से पार्टी कमेटी के प्रतिनिधियों के आने के बाद ही निर्धारित की जाएगी। तिरुवनंतपुरम से स्मिथ एम पलरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कड़गम के नवनिर्वाचित विधायकों ने आज औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को नेता चुना है। एक रिपोर्ट।
4: राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर फिलहाल केरल में हैं, इसलिए सरकार बनाने का दावा पेश करने वाला पत्र भेजने में देरी हो सकती है। डीएमके प्रमुख एमके स्टालिन ने राज्यपाल को अपना इस्तीफा आज सौंप दिया है, जिसे स्वीकार कर लिया गया है। एक बयान में स्टालिन ने कहा कि उनकी पार्टी एक मजबूत विपक्ष के रूप में काम करेगी। एआईएडीएमके के महासचिव ई पलानीसामी ने कहा कि वे जनता के जनादेश को स्वीकार करेंगे। भाजपा नेता के अन्नामलाई ने नतीजों का स्वागत करते हुए कहा है कि जनता ने वोट खरीदने और वंशवादी राजनीति के खिलाफ अपना संदेश दिया है। जॉय के साथ सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, चेन्नई।
1: पुदुचेरी में मनातीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वी

0: सिंह को विधानसभा में भाजपा का विधायक दल का नेता चुना गया है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: पुदुचेरी में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वीपी रामलिंगम की अध्यक्षता में आज नव निर्वाचित विधायकों की परामर्श बैठक आयोजित की गई। बैठक में केंद्रीय मंत्री और पुदुचेरी में भाजपा चुनाव प्रभारी मनसुख मांडविया, प्रदेश प्रभारी निर्मल कुमार सुराणा और अन्य वरिष्ठ नेता शामिल हुए। इस दौरान मन्नादीपेट से निर्वाचित विधायक ए नमस्वयम को विधानसभा में पार्टी के विधायक दल का नेता चुना गया। बैठक में विशेष रूप से केंद्र शासित प्रदेश में नई सरकार के गठन के संबंध में विचार विमर्श किया गया। पुदुचेरी से विभिन्न एस नाथ की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
0: उधर बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल का 7 मई को विस्तार किया जाएगा। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष संजय सरावगी ने इस संबंध में जानकारी दी है।
2: 7 मई को गांधी मैदान में सम्राट चौधरी जी माननीय मुख्यमंत्री जी के मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय नितिन नवीन जी, देश के गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी, पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, एनडीए के सभी बिहार के जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं सभी लोग उसमें सहभागी होंगे।
0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे newzoneair ऐप पर भी उपलब्ध हैं। रक्षा मंत्रालय ने हैदराबाद में भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 5 ग्राउंड बेस्ड मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की खरीद के लिए 1,400 करोड़ रुपए का अनुबंध किया है। इसमें 72% स्वदेशी उपकरण शामिल हैं। इस तकनीक से भारतीय सेना का आधुनिकीकरण होगा, देश के स्वदेशी रक्षा विनिर्माण पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूती मिलेगी। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण और राष्ट्रीय फोरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय ने डिजिटल फोरेंसिक, साइबर सुरक्षा और उन्नत प्रौद्योगिकी अनुसंधान के क्षेत्र में 5 वर्षीय सहयोग के लिए एक समझौता किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी अधिकारी विवेक चंद्र वर्मा ने कहा कि यह सहयोग भारत के डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे को और मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं प्राची प्रिया।
3: बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स 252 अंक गिरकर 77,018 पर बंद हुआ, जबकि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 87 अंक फिसलकर 24,033 पर आ गया। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया आज $1 की तुलना में 21 पैसे कमजोर होकर 95.21 रुपए के स्तर पर बंद हुआ।
0: वियतनाम के राष्ट्रपति तो लाम ने आज बिहार के बोधगया स्थित विश्व प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर भगवान बुद्ध को श्रद्धांजलि अर्पित की। राष्ट्रपति तो लाम ने बोधगया स्थित वियतनामी मठ का भी दौरा किया। इस यात्रा को भारत और वियतनाम के बीच धार्मिक और आध्यात्मिक संबंधों को मजबूत करने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। एनईसी ने इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड रिसिट्स ईजीआर को जारी करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य सोने की व्यापक खरीद बिक्री में पारदर्शिता लाना है। इसके जरिए सोने की लिवाली और बिकवाली की प्रक्रिया को एक विनियमित तथा सुरक्षित आधार मिलेगा। ये सोना भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी द्वारा मान्यता प्राप्त वॉल्ट में रखा जाता है और डिपॉजिटरी के जरिए डिजिटली सुरक्षित रहता है। भारत ने आईसीसी T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में शीर्ष स्थान बरकरार रखा है। इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बनी थी। साथ ही टीम ने रिकॉर्ड तीसरी बार यह खिताब जीता था। भारत 275 अंक के साथ शीर्ष पर काबिज है। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक दिल्ली ने 17 ओवर में 5 विकेट पर 116 रन बना लिए हैं। दिल्ली कैपिटल्स ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला किया है। चेन्नई अंक तालिका में छठे और दिल्ली 7वें नंबर पर है। मौसम विभाग ने कल बिहार और पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में गरज और तेज हवाओं का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, असम, सिक्किम, तमिलनाडु, पुदुचेरी, कराईकाल, केरल और माहे में कल तेज बारिश की आशंका है। हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, तेलंगाना और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में भी तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने 5,600 करोड़ रुपए से अधिक की परिव्यय के साथ कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी। आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी स्वीकृति दी। मंत्रिमंडल ने गुजरात में 2 और सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को मंजूरी दी। 2026-27 सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 350

समाचारों का अनुप्रसारण हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से कर रहे थे। एफएम बैंड 103.2 मेगाहर्ट्ज पर यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। इस समय रात्रि के 9:15 हुए हैं। आइए जुड़ें विविध भारती प्रसारण सेवा से।

ओपन एयर के संगीत निर्देशन में अब सुनिए SH बिहारी का लिखा गीत, आवाजें मोहम्मद रफी और आशा भोसले की, फिल्म का नाम कश्मीर की गली।

कार्यक्रम की अंतिम पेशकश बाजार फिल्म से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और तलत अजीज ने, बोल है मखदूम मोइद्दीन के और संगीत खयाम का।

लता मंगेशकर के गाए इस गीत के साथ ही आपके लिए कार्यक्रम अब यही समाप्त होता है। आज का ये सफर आपने तय किया प्रीति मिश्रा के साथ।

आप सुन रहे हैं विविध भारती, आज के फनकार। ये कार्यक्रम आप सुनेंगे थोड़ी ही देर में।

0: विविध भारती के पास है बेमिसाल हस्तियों का अनमोल खजाना।
1: चंदा मामा दूर के हुए पकाए भूर के,
0: जरा सुनिए कैसे बना ये गाना।
2: एक जमाना था 1951 या 50 में, बाबूलाल चतुर्वेदी एक यहाँ प्रोग्राम इंचार्ज दिल्ली से आए।
0: संगीतकार रवि,
2: उन्होंने एक दिन फोन किया, कहने लगे यहाँ हम लोरियां रिकॉर्ड करना चाहते हैं, बना रिकॉर्ड कर दो। तो मेरी माँ अक्सर गाना गा के नहीं, एक लाइन सुना करते, दो लाइन, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के। मैंने उसकी ट्यून बना ली, चंदा मामा दूर के पुए पकाए दूर के।
1: आप खाए थाली में, सुनने को थे प्याली में।
0: ऐसी अद्भुत यादें आपको मिलेंगी सिर्फ विविध भारती पर। विविध भारती, आपका जीवन संगीत।
3: आज के फनकार।

नमस्कार, हमारे आज के फनकार हैं भारतीय सिनेमा के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद।

0: 25 दिसंबर सन 1919 को लखनऊ में जन्मे संगीतकार नौशाद की गिनती भारतीय सिनेमा के एक सफल और सुरीले संगीतकार के रूप में होती है। मुंबई आने से पहले नौशाद ने लखनऊ में ही वाद्यों की एक दुकान पर काम किया। इसी संदर्भ में संगीतकार नौशाद के उद्गार।
1: हमारे पास बाजा वाजा तो था नहीं। अब लखनऊ में एक दुकान थी लाडरूस रोड पर, वो वहाँ म्यूजिकल साज तमाम बनते थे। गुरबत अली साहब थे, उनकी ये दुकान थी, उस्ताद गुरबत अली साहब, और उनके वहाँ पियानो, हारमोनियम, सितार, तबला, हर कस्म के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट उनके वहाँ बिकते थे, और उनका एक कारखाना था, वहाँ बनते भी थे। हम जाके उनके साजों को देखा करते थे खड़े हुए घंटों। तो वो एक रोज़ उस्ताद ने कहा, बेटा इधर आ, तू ये खड़ा होकर घंटों क्या देखा करता है? मैं देखता हूँ कितने दिनों से तू आता है यहाँ, खड़ा रहता क्या देखा करता है? तो मैंने कहा, उस्ताद ये साज और सामान जो आपके हैं, हारमोनियम, सितार, पियानो, ये सब देखा करता हूँ। तो उस्ताद से मैंने कहा कि आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ उस्ताद, पता नहीं मुझे कैसे हिम्मत आई। हाँ कहो बेटा, क्या है? तो मैंने कहा, हुजूर अगर आप हुक्म दें तो सुबह आके मैं झाड़ू वाड़ू दे दिया करूँ और लोबान लोबान दे दिया करूँ यहाँ आके। तो उस्ताद मुझे देख के मुस्कुराए, ऐसे फरिश्ता लोग थे वो साहब वहाँ से। अच्छा बेटा, वो घामी के तकिए पर उधर मैं रहता हूँ, तुझे घर मालूम? मैंने कहा, हुजूर मालूम है आपका घर? तो कहने लगा, कल सुबह आ जाओ वहाँ। मैं पहुँच गया साहब, उन्होंने चाबी दे दी दुकान की कि जाओ खोल लो दुकान। और मैं जल्दी जल्दी आके दुकान खोल के झाड़ू वाड़ू साफ सफाई करके लोबान वान दे के और पेटी लेके कुछ प्रैक्टिस करना

शुरू कर दूं कि उस्ताद के आने से पहले ये अपना रियाज हो जाए, तो ये चलता रहा सिलसिला। वही चीज़ें जो रात को वहाँ सुनी मैंने रॉयल सिनेमा में, तो एक रोज़ उस्ताद आ गए, मुझे नहीं मालूम, मैं आँख बंद किए पसीने पसीने लगा हुआ हूँ, प्रैक्टिस कर रहा हूँ, वो आके पीछे बैठे अपनी मसनत पर, उन्होंने किया, अरे मेरी जान निकल गई कि आ गए उस्ताद। मैंने देखा उस्ताद बैठे, मैं मुजरिम की तरह खड़ा हो गया उनके सामने हाथ बांध के, कहने अच्छा तो आप इसलिए आते थे कि मेरे नए नए साजों का सत्यानाश करें, आप दुकान साफ करने नहीं आते थे, हाथ साफ करने के लिए आते थे। मैंने कहा उस्ताद गलती हो गई, आज के बाद ये गलती नहीं होगी, माफ़ कर दीजिए। नहीं नहीं माफ़ तो नहीं करूँगा, मैं सजा दूंगा इसकी। मैंने कहा कि आप जो भी आपका हुक्म हो सर आँखों पर। कहने लगे कि ये कहाँ से सीखा तुमने जो बजा रहे थे अभी। मैंने कहा हुजूर वो रॉयल सिनेमा में जाता हूँ मैं, लड्डन साहब वहाँ बजाते हैं तो उनके पीछे बैठ के सुना करता हूँ, तो वो जो सुना वो इसकी प्रैक्टिस करता था मैं। खैर सज़ा तो दूंगा साहब, तैयार हो जाइए सज़ा के लिए, अब मैं हुजूर माफ़ कर दीजिए इसके बाद कभी नहीं छूँगा। नहीं सज़ा तो दूंगा। तुम्हारे घर में बाजा है क्या? मैंने कहा जी नहीं। आपकी सज़ा ये है कि ये हारमोनियम जिस पर आप प्रैक्टिस कर रहे थे, मेरा नया हारमोनियम सत्यानाश कर रहे थे, ये आपको मैं देता हूँ आपकी ये सज़ा, और प्रैक्टिस किया करो, तुम्हारा हाथ अच्छा जहन अच्छा है, है? और लड्डन साहब को मैं एक रोज़ बुला के उनको सुनवाऊंगा, उनसे सीखा करो।

मुंबई में स्वतंत्र संगीतकार के रूप में स्थापित होने के लिए नौशाद को बहुत संघर्ष करना पड़ा। उनकी लगन, मेहनत, धैर्य और समर्पण का सकारात्मक परिणाम सामने आया। सन 1940 में नौशाद को स्वतंत्र रूप से संगीत निर्देशन का अवसर जिस फिल्म के लिए मिला वो थी प्रेम नगर।

संगीतकार नौशाद की धुनों से सजी 35 फिल्मों ने सिल्वर जुबली मनाई, 12 फिल्मों ने गोल्डन जुबली और 3 फिल्मों ने मनाई डायमंड जुबली।

फिल्म बैजू बावरा भारतीय शास्त्रीय संगीत की मिठास का उदाहरण है। इस फिल्म के लिए नौशाद ने उस्ताद अमीर खान और पंडित डीवी पलुस्कर से पार्श्व गायन करवाया था। फिल्म बैजू बावरा के लिए नौशाद साहब को सर्वश्रेष्ठ संगीतकार का फिल्म फेयर पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया।

संगीतकार नौशाद शास्त्रीय संगीत के चितेरे थे, लोक संगीत की शैलियों के भी वो मर्मज्ञ थे। नौशाद के संगीत से सजी

फिल्म मुगले आजम की भी एक रचना भारतीय शास्त्रीय संगीत की खूबसूरत मिसाल है, जिसके लिए नौशाद ने शास्त्रीय संगीत के महान गायक उस्ताद बड़े गुलाम अली खां का

सन 1952 में आई फिल्म आन। इस फिल्म के हीरो थे दिलीप कुमार। महबूब साहब की इस फिल्म के लिए नौशाद साहब ने 100 पीस ऑर्केस्ट्रा का इस्तेमाल किया था और उसकी रिकॉर्डिंग लंदन में हुई थी।

सन 1955 में फिल्म उड़न खटोला के एक गीत को नौशाद जी ने बिना ऑर्केस्ट्रा के रिकॉर्ड किया था और वाद्यों के स्थान पर समूह स्वरों का प्रयोग किया था।

0: बे।
1: गायक मोहम्मद रफी को पार्श्व गायन का पहला मौका नौशाद साहब ने ही दिया था, पहले एक कोरस में और फिर प्रमुख स्वर के साथ। फिल्म थी पहले आप और वो गीत था ये।

0: पाओगे।
1: नौशाद साहब के संगीत से सजी प्रसिद्ध फिल्म मदर इंडिया का नामांकन ऑस्कर के लिए किया गया था। इस फिल्म के सभी गीत आज भी बेहद लोकप्रिय।

नौशाद साहब ने डीएन मधोक, शकील बदायूनी, मजरूह सुल्तानपुरी, जिया सरहदी और खुमार बाराबंकवी जैसे चर्चित गीतकारों के साथ काम किया और शायद सबसे ज्यादा गीत संगीतबद्ध किए शकील बदायूनी के।

संगीतकार नौशाद के व्यक्तित्व और कृतित्व पर केंद्रित 5 फिल्मों का निर्माण किया गया। उनके संगीत और जीवन पर आधारित जो किताबें प्रकाशित हुईं, उनके नाम हैं दास्ताने नौशाद, आज गावत मन मेरो, नौशाद की कहानी, नौशाद की जुबानी और नोट्स ऑफ नौशाद।

सन 1988 में टीवी धारावाहिक अकबर द ग्रेट के लिए भी नौशाद साहब ने बैकग्राउंड म्यूजिक कंपोज किया था। लंबे अंतराल के बाद नौशाद जी ने माई फ्रेंड और तेरी पायल मेरे गीत नामक फिल्मों के लिए संगीत दिया।

सन 2005 में ताजमहल एन इटर्नल लव स्टोरी के लिए भी नौशाद साहब ने धुनें तैयार की थी। नौशाद एक उम्दा शायर भी थे। उनकी रचनाओं के संग्रह का नाम है आठवां सुर। भारतीय सिनेमा और संगीत में नौशाद साहब को उनके अमूल्य योगदान के लिए पद्म भूषण के अलंकरण और दादा साहब फाल्के पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। भारतीय सिने संगीत के महान कलाकार नौशाद का सुरीला संगीत आज अमूल्य धरोहर है हमारी। उनके कालजे गीत अपने सुरों से यूं ही सम्मोहित करते रहेंगे संगीत प्रेमियों को। 5 मई सन 2006 को संगीत का ये महान साधक इस नश्वर जगत को छोड़कर चला गया, उस सफर पर जहां से लौटकर कोई नहीं आता।

0: आप सुन रहे थे फिल्म जगत के सुप्रसिद्ध संगीतकार नौशाद पर केंद्रित ये कार्यक्रम। विविध भारती की ओर से इसे आपकी सेवा में प्रस्तुत किया रमेश गोखले ने। अब कमल शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।
1: आज के फनकार।

आइए सुने छाया गीत। छाया गीत के श्रोताओं को रेडियो सखी ममता सिंह का नमस्कार। दुनिया की नजरों से पहाड़ों की ऊंचाई पर चांद तारों की दुनिया में चलो कहीं दूर चलें, चलें वहां जहां कोई जख्म ना हो, जहां मुस्कुराने पर पहरे ना हो, जहां मोहब्बत के दुश्मन ना हो, जहां पलके झपकाएं तो फूलों की क्यारियां लहलहा उठें, जहां तुम्हारे बोलने से कोयल कूक उठे, दुनिया की तलखी से चलो कहीं दूर चलें।

जरा सी खुशी, जरा सी हंसी, जरा सी उदासी से मिलकर बनती है जिंदगी। ख्वाबों के तिनके जोड़कर बन जाता है जिंदगी का आशियाना। तो चलो बनाएं ख्वाबों का जहां, आधी आधी खुशी बांट लें, बांट लें गम, बांट लें आधी आधी जिम्मेदारियां, बांट लें आपस में ख्वाहिशों के मोती, कामयाबी के फूल।

खिड़की से दूर क्षितिज को देखते हुए जब आज फिर खोली मन की डायरी, तो जगमगा उठी वो तस्वीरें, जब मन से बांधे थे किसी के मन के तार, जब चलती हुई ट्रेन पर दौड़कर चढ़ने की कोशिश की थी एक दूसरे का हाथ थामकर, दिखाई दी वो तस्वीरें जब यूं ही सड़कों पर बेमकसद चले थे बहुत दूर तक, बहुत देर तक, याद आए वो पल जब यूं ही बैठे थे चुपचाप एक दूसरे के साथ।

दोस्तों, विविध भारती से इस समय आप सुन रहे हैं छाया गीत। तुम्ही ने भरी जिंदगी में रोशनी, तुम्ही ने सींचा प्रेम के जल से मन की क्यारी को। यही वो मौसम था जब गुलाबी मन पर तुमने पीला रंग छिड़क दिया था।

फिर सरसों के पीले फूल इतराते हुए मुस्कुरा उठे थे। बाग में बैठा मैना का जोड़ा अपनी बोली में कुछ बोल उठा था और दो चेहरों के गाल गुलाबी हो गए थे।

हम गुम हैं अपनी ही दुनिया में, बार बार सुनाई देती है किसी की आवाज, जानी पहचानी सी आवाज। हम पलट कर देखते हैं तो पाते हैं कोई नहीं है आसपास, फिर भी है एक एहसास जैसे वो कहीं आसपास है। इसी एहसास ने गुनगुनाया प्यार का मीठा सा राग, इसी एहसास ने लिखी थी नेह की पाती किसी के नाम।

वैसा होता नहीं जैसा हम चाहते हैं, फिर भी हमारी चाहत होती है कि काश ऐसा हो जाता, काश ऐसा होता कि हम न लिखते अपने दिल में किसी और का नाम, काश ऐसा होता कि हम जानते हुए भी बन जाते अजनबी उनके साथ, काश ऐसा होता कि उनके मन की इबारत पढ़कर भी बने रहते अनजान।

यह आकाशवाणी का बिलासपुर केंद्र है। हिंदी और अंग्रेजी में समाचार कुछ ही पलों में हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से अनुप्रसारित करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 5,600 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ देश में कपास क्षेत्र में बाधाओं, घटती वृद्धि और गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने के लिए कपास उत्पादकता मिशन को मंजूरी दी है। नई दिल्ली में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस

0: योजना से लगभग 32 लाख कपास किसानों को लाभ मिलने की उम्मीद है। श्री वैष्णव ने बताया कि मंत्रिमंडल ने वर्ष 2026-27 के चीनी सीजन के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य 365 रुपए प्रति क्विंटल तय किया है।
1: जो फेयर एंड रिम्यूनरेटिव FRP प्राइस जो कहते हैं वो तय हुआ 365 रुपए पर क्विंटल, जो रिकवरी रेट है 10.25% के लिए। किसानों को करीब करीब 1 लाख करोड़ एक्स्ट्रा मिलेगा और ये हिस्टोरिकल ग्रोथ हुई है गन्ना किसानों के लिए। करीब 1 करोड़ शुगर केन फार्मर्स हैं देश में, उन सब के लिए बहुत बड़ा बेनिफिट रहेगा।
0: मंत्रिमंडल ने आपातकालीन ऋण गारंटी योजना के 5वें चरण को भी मंजूरी दी है। इस योजना के अंतर्गत सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों को 100% ऋण गारंटी प्रदान की जाएगी, जबकि गैर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों तथा एयरलाइन क्षेत्र को 90% गारंटी मिलेगी। मंत्रिमंडल ने इंडिया सेमी कंडक्टर मिशन के अंतर्गत गुजरात में 2 और सेमी कंडक्टर विनिर्माण इकाइयों को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल ने सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या को 33 से बढ़ाकर 37 करने को मंजूरी दी है। पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरलम, असम और पुदुचेरी में विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद सरकार गठन को लेकर राजनीतिक गतिविधियां तेज हो गई हैं। पश्चिम बंगाल में भाजपा की शानदार जीत के बाद नई सरकार के गठन और शपथ ग्रहण समारोह की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह 9 मई को होने की संभावना है। इस बीच भाजपा ने विधायक दल के नेता के चुनाव के लिए वरिष्ठ पार्टी नेता और केंद्रीय मंत्री अमित शाह को केंद्रीय पर्यवेक्षक तथा ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी को केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। वहीं असम में विधायक दल के नेता चुनने के लिए केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय पर्यवेक्षक और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी केंद्रीय सह पर्यवेक्षक नियुक्त किए गए हैं। उधर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने से इनकार कर दिया है। कोलकाता में उन्होंने वोट की हेराफेरी और पूरी मतदान प्रक्रिया में धांधली का आरोप लगाया। भाजपा ने इस बयान की कड़ी आलोचना की है। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि देश के लोकतंत्र में सत्ता का हस्तांतरण हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से होता रहा है। उन्होंने कहा कि सुश्री बनर्जी का ये बयान भाजपा पर नहीं बल्कि लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। केरलम में कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूडीएफ में सरकार गठन को लेकर अनौपचारिक चर्चा जारी है। उधर तमिलनाडु में तमिलगा वेट्री कजगम के नव निर्वाचित विधायकों ने औपचारिक रूप से अभिनेता से राजनेता बने सी जोसेफ विजय को अपना नेता चुना है। विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में जापान की आर्थिक सुरक्षा मामलों की मंत्री किमी ओनोडा से मुलाकात की। विदेश मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया कि इस दौरान दोनों पक्षों ने भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी के महत्व पर सार्थक बातचीत की। भारतीय नौसेना का जहाज INS सुनैना म्यांमार के यांगोन बंदरगाह पहुंच गया है। रक्षा मंत्रालय ने कहा कि ये तैनाती और बंदरगाह पर आगमन भारत के महासागर विजन का हिस्सा है। ये तैनाती हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोगात्मक समुद्री गतिविधियों में भारतीय नौसेना की भूमिका को भी दर्शाता है। दिल्ली सरकार ने वोकेशनल और समग्र शिक्षा अभियान के तहत काम करने वाले शिक्षकों के वेतन में भारी वृद्धि को मंजूरी दी है। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि दिल्ली में विभिन्न विषयों में कौशल आधारित प्रशिक्षण प्रदान करने वाले लगभग 1130 वोकेशनल शिक्षकों को अब प्रति माह 38,100 रुपए मिलेंगे। भारत ने ICC T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट रैंकिंग में अपना शीर्ष स्थान बरकरार रखा है, जबकि इंग्लैंड दूसरे और ऑस्ट्रेलिया तीसरे स्थान पर है। भारत मार्च में इतिहास रचते हुए T20 विश्व कप का खिताब सफलतापूर्वक बचाव करने वाली पहली टीम बना था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: The news read by R.S. Raghu. The Union Cabinet has approved the Mission for Cotton Productivity, Kapas Kranti, with an outlay of over 5,600 crore rupees to address bottlenecks, declining growth and quality concerns in India's cotton sector. Addressing a press briefing in New Delhi, Information and Broadcasting Minister Ashwini Vaishnaw said the Mission Alliance with